ओम शांति। संगम युग का वास्तविक वर्षा सर्व शक्तियां और सर्वगुण है। यूं तो बाबा हमें भविष्य का स्वर्ग का राज भाग्य देने आया है, पर उसको प्राप्त करने के लिए शक्ति संपन्न, गुण संपन्न, चरित्रवान, दिव्य बुद्धि से संपन्न बनना परम आवश्यक है। इसलिए सभी ध्यान दें, यही वो समय है जब हम अपनी खोई हुई समस्त शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन था जब हम परमधाम से इस धरा पर आए थे, संपूर्ण थे, शक्तियों में भी संपूर्ण, गुणों में भी फुल, मर्यादाओं में भी फुल और पवित्रता में भी फुल। धीरे धीरे हमने अपनी शक्तियां गंवा दी। अब पुनः समय है शक्ति संपन्न बनने का। पहला ध्यान हम दें कि हमारी शक्तियां नष्ट न हो रही हों, व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ देखने में, व्यर्थ बोलने में, व्यर्थ कर्म करने में, दूसरों के अवगुण देखने में, पर चिंतन करने में, पर दर्शन करने में, अवगुणी दृष्टि रखने में, ईर्ष्या द्वेष में, घृणा नफरत में, काम क्रोध आदि विकारों में हमारी आंतरिक शक्तियां नष्ट होती हैं। हमें पहले तो जो नष्ट होने का लीकेज है उसे बंद करना है और फिर स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए मन में शक्तिशाली विचारों की रचना करनी है। सीख लें आप कम से कम 10 सुंदर और शक्तिशाली विचार अपने पास जरूर रखें, जैसे मैं कल्प कल्प का विजय रतन हूँ, माया मुझे हरा नहीं सकती, इस माया को मैंने कल्प कल्प जीता है। दूसरा, मार्ग में चाहे कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, मैं अपनी स्थिति से विचलित नहीं होऊंगा। तीसरा, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस संसार की सबसे अधिक शक्तिशाली आत्मा, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। चौथा, मेरे साथ तो स्वयं भगवान है, उसकी शक्तियाँ मेरे साथ काम कर रही हैं, मुझे किसी का कोई भय नहीं। इस तरह के सुंदर संकल्प अपने पास नोट रखें तो शक्तियां बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हमारे हर संकल्प से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हमारा हर पावरफुल संकल्प हमें इनर पावर प्रदान करेगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजय रतन हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, ये सब स्वमान के संकल्प भी हमें शक्ति प्रदान करेंगे। साथ साथ योग बल को हम बढ़ाते चलें, योग बल से ही हमें सबसे ज्यादा शक्तियाँ मिलती हैं। पवित्रता का बल भी बहुत बड़ा बल है, इस बल को जितना हम बढ़ाएंगे हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। ऐसे ही ज्ञान चिंतन भी हमें बल प्रदान करता है, तो अपनी शक्तियों में दिनों दिन वृद्धि करते चलें। गुण संपन्न भी हमें बनना है, कुछ गुणों पर विशेष ध्यान दें, संतुष्टता, सरलता, निर्भयता, अंतर्मुखता, निरहंकारिता, समर्पणता, सुभावना, निर्भयता, दृढ़ता, इन गुणों पर विशेष ध्यान देंगे। या 10 गुण हमें गुण संपन्न बनाने में संपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो व्यक्ति गुणवान होता है वही सबको प्रिय लगता है। तो आइए आज सारा दिन हम अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास करें। हम अपने देव स्वरूप को देखें, वो भी गुणों से संपन्न और शक्तियों से संपन्न है। हम अपने आत्मिक स्वरूप पर नजर डालें, मैं सभी गुणों से संपन्न, संपूर्ण पवित्र और शक्ति स्वरूप हूँ। हम अपने पूज्य स्वरूप पर नजर दौड़ाएं, हमारे मन में सभी के लिए शुभ भावनाएं हैं, हम दाता हैं, हम बहुत रहम दिल हैं,
हम अपने ब्राह्मण स्वरूप पे ध्यान दिलाएं भगवान के साथ और फरिश्ते स्वरूप को देखें, हम संपूर्ण पवित्र हैं। इन पांचों स्वरूपों का चिंतन करते रहेंगे आज हर घंटे में एक बार, तो ये पांचों स्वरूप हमें शक्तिशाली भी बनाएंगे और गुण संपन्न भी। ओम शांति।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहे, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।
2: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर। जापान की एक लोक कथा है कि किसी मनुष्य को एक भयंकर दैत्य दिन रात तंग किया करता था। एक दिन उसने दैत्य से पूछा, तुम मुझे क्यों इतना सताते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उत्तर में दैत्य बोला, अपने कष्टों के लिए तुम्हें अपने को ही दोष देना चाहिए। तुमने मुझे पैदा किया है और मेरा स्वभाव वही है जो तुमने मुझे दिया है। आज सारी मानव जाति एक दैत्य के हाथों दुख पा रही है। क्या उस दैत्य का नाम आप जानते हैं? वह रोग है या मृत्यु? नहीं, इनमें से कोई भी मानव का मुख्य शत्रु नहीं है, वह इन सब का बाप है और उसका नाम है भय। ओह, ईश्वर की सबसे उत्तम रचना अर्थात मानव को इस दैत्य ने कैसी दयनीय दशा में पहुंचा दिया। मनुष्य अपने गौरव, आत्मविश्वास और अपनी ईश्वर दत्त शक्ति

शत्रु को देखते ही निष्क्रिय और विवश हो जाता है। इससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात तो यह है कि हम इस तथ्य को नहीं समझ पाते कि भय का निर्माण हम स्वयं अपने विचारों द्वारा करते हैं। वह हमारी अपनी ही पहचान होती है। हमारे विचारों, हमारी कल्पना से ही उसका जन्म होता है और अपनी ही उस रचना के आगे हम सब शस्त्र डाल देते हैं। हर एक मनुष्य अपने भय की रचना स्वयं करता है, यह सत्य है। यह भी ठीक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भय को अपने आप ही नष्ट कर सकता है। इसके लिए केवल अपने विचारों पर नियंत्रण करना आवश्यक है। हमें अन्य कोई शक्ति, प्राणी या पदार्थ भयभीत नहीं कर सकता। यह संभव है कि वे ऐसी स्थिति पैदा कर दें जिससे हम डर जाएं, परंतु हम तभी भयभीत हो सकते हैं जब हम अपने हृदय को भयभीत होने की अनुमति दें। जब हम अपने मन को अपने वश में न रख कर खुला छोड़ देते हैं, तभी वह भय का शिकार बन पाता है। भय का कोई भी कारण हम पर कुछ भी प्रभाव नहीं डालता, जब तक कि हम भय को अपने मन पर आक्रमण न करने दें। कहने का भाव यही है कि भय कुछ और नहीं बल्कि हमारे अपने ही विचारों की कमजोरी है, जिसे हम खुद ही दूर कर सकते हैं। किसी दूसरों के हाथ में हमारे भय को दूर करने की शक्ति नहीं है। वह केवल हम में और सिर्फ हम में।

ओम शांति। मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

एक स्वस्थ हृदय को किसी भी प्रकार की परिस्थितियां भयभीत नहीं कर सकती। जैसे कोई आदमी हमारे घर में तब तक नहीं घुस सकता जब तक कि हम स्वयं उसके लिए अपने घर का दरवाजा ना खोल दें। उसी प्रकार भय हमारे मन में घुसकर हम पर चोट नहीं कर सकता जब तक कि हम उसके लिए अपने मन का द्वार ना खोल दें। हमारी इच्छा के विपरीत वह हमारे मन को कभी प्रवेश नहीं कर सकता। हमारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि जिसको हम चाहे मन में घुसने दें और जिसको न चाहे उसे बाहर ही रोक दें। हम अपने मन के दरवाजे उस वस्तु के लिए पूरी तरह बंद कर सकते हैं जो भय को साथ लाती है। यह बात हमारे अपने हाथ में है कि हम केवल उन बातों को ही अपने मन में लाएं जो संतुलन, संपूर्णता, शांति और आनंद को संग लाते हैं। एक बार जब हम अपने मन का दरवाजा भय के लिए खोल देते हैं तो फिर उस द्वार को बंद करना मुश्किल हो जाता है। भय का दैत्य जब आक्रमण करता है तो कई लोग तो उससे इतने त्रस्त हो जाते हैं कि बरसों तक इसके पंजे से मुक्त नहीं हो पाते। तब उनके हर एक काम और प्रत्येक चेष्टा पर इसी का हानिकर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के अभागे व्यक्ति यह नहीं समझ पाते कि कैसे स्वयं ही उन्होंने अपने जीवन को दुखपूर्ण बना डाला है। वे नहीं समझते कि भय से कार्य की लगन नष्ट हो जाती है, जीवन का आनंद फीका हो जाता है, आयु के कई वर्ष कम हो जाते हैं। कार्य कुशलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा भय ही है। एक महान और प्रभावशाली जीवन का अर्थ है विशाल स्वतंत्रता। विशाल स्वतंत्रता का अर्थ है प्रगति के मार्ग की सब बाधाओं से मुक्ति पाना। भय सबसे बड़ी बाधा है, यही सबसे बड़ा शत्रु है, और इस बाधा से, इस शत्रु से मुक्ति पाना स्वयं हमारे हाथ में है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

लीजिए आज से 3 मास बाद आपको भाषण देना है। यदि आप स्वभाव से ही भावुक हैं, झिझकने वाले हैं, तो एकदम भय की भावना आपके अवचेतन मन के चारों ओर मंडराने लगेंगी। इससे पहले कि आप उसे समझ पाएं, आप सप्ताह गिनने लगेंगे। यह भय पहले सप्ताह में आपके मन में स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगेगा। आपको इसकी अधिक से अधिक अनुभूति होने लगेगी। आपकी पीड़ा बढ़ती जाएगी और तब तक यह बढ़ती रहेगी जब तक कि वह निश्चित समय नहीं आ पहुंचेगा जब आपको भाषण आरंभ करना है, और उस समय आपको जो कष्ट होगा उसका तो कहना ही क्या। आपके मन में तनिक सा भय पैदा हुआ कि आप भाषण में असफल रहेंगे, बस इस भय के उदित होते ही आपकी नींद, आपका आराम, आपकी एकाग्रता और आपकी कार्य शक्ति सब नष्ट हो जाएंगे। न जाने कितनी बार हम इस प्रकार के कष्ट उठाते हैं, न जाने कितनी ही बार हम अपनी कल्पना द्वारा पहले ही लज्जा

शर्म, बदनामी और असफलता का कष्ट पा लेते हैं और इस प्रकार हम इन कष्टों की संभावना को और भी बढ़ा लेते हैं। हमें जिस बात का भय होता है वही हमारी ओर खींचती चली आती है। भय का स्वाभाविक परिणाम ऐसा ही है, यह इसका अनिवार्य परिणाम है। इसके विपरीत यदि कहीं हम साहस के लिए अपने मन के दरवाजे खोलें, केवल सफलता के ही दर्शन करें, तो हर रोज हमारा आत्मविश्वास दृढ़ होता चला जाएगा। हम सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं लेकिन हर समय असफलता के बारे में सोचते रहते हैं। यह कैसा विरोधाभास है, यह तो तेजाब और क्षार को एक ही पात्र में मिलाने जैसी बात है। मन से तो हम असफलता की तरफ कदम बढ़ाते हैं किंतु प्रयत्न कर रहे हैं सफलता के लिए। कार्य किसी और चीज के लिए कर रहे हैं, आशा किसी और चीज की कर रहे हैं। यह कैसा जीवन दर्शन है। सफलता, समृद्धि और सुख यह एक निश्चित नियम या कानून पर आधारित है। यह नियम या कानून परिवर्तनशील नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे गणित का सिद्धांत। इस नियम या कानून को हम सुविधा के लिए आकर्षण का सिद्धांत कह सकते हैं। हमें सफलता की अवश्य ही आशा करनी चाहिए। यदि हम असफलता की आशा करेंगे तो निश्चय ही हम असफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसा ही बीज होगा वैसे ही फल। इसीलिए भय बड़ा भारी शत्रु है। यह बहुत उत्साह भंग करने वाला शत्रु है। यह व्यक्ति को लगातार निरुत्साहित करता रहता है और इस प्रकार उसे हर कार्य में असफल बना देता है जिसकी उस व्यक्ति में सामर्थ्य थी। तो कहने का भाव यही है कि भय से हमें बड़ा भारी नुकसान होता है। इसीलिए बेहतर यही है कि हम अपने मन को इस भय के विचारों से मुक्त रखें और उसके बदले में सफलता के, आत्मविश्वास के विचारों से अपने मन

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: प्राचीन रोमन लोगों पर भय का इतना असर था कि उन्होंने इसका एक मंदिर ही बना दिया था। भय इच्छा और महत्वाकांक्षा का वध कर डालता है, उत्साह को उड़ा देता है। यह कार्य आरंभ करने की शक्ति को, कार्य प्रवृत्ति को ही मिटा देता है। मनुष्य के मन पर जब भय का आक्रमण होता है, तब उसके अंग प्रत्यंग कितने निश्चेष्ट हो जाते हैं, इसका अनुमान लगाना कठिन है। आज तो बहुत से व्यक्ति अपने जीवन विकास की दृष्टि से बौने रह गए हैं। वे पूर्ण विकसित जीवन प्राप्त करते यदि यह भय नामक शत्रु उन पर आक्रमण न करता। इस शत्रु ने अगणित उदात अनुभूतियों को कुचल दिया, सुंदर स्वप्नों को मार डाला और गौरवपूर्ण दृष्टिकोण को समाप्त कर दिया। अज्ञान से भय का जन्म होता है। हम भयग्रस्त होते हैं क्योंकि हम अपनी दिव्य कार्य शक्ति और सामर्थ्य, आशाओं और संभावनाओं के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। हमने अब तक अपनी शक्तियों के एक छोटे से अंश का ज्ञान प्राप्त किया। हमें अपने साधनों की पूरी जानकारी नहीं है। शक्ति का एक विशाल सुरक्षित भंडार हमारे भीतर मौजूद है, जिसकी अब तक हम खोज नहीं कर पाए हैं। भय का सबसे मुख्य कारण यह है कि हम अपने आप को एक पृथक इकाई समझते हैं, पृथक व्यक्ति मानते हैं। अपनी सत्ता को हम ऐसी संभालते हैं जिसे सृष्टि रचयिता ने इस विशाल ब्रह्मांड में संग्राम और संघर्ष करने के लिए मानो अकेले को फेंक दिया है। वास्तविकता ठीक है कि हम उस कर्ता की विशाल योजना के एक अभिन्न अंग हैं। हम उस महान सृजन शक्ति का एक अंश मात्र हैं। साथ ही साथ स्वयं हमारा भी प्रतिपल पुनः निर्माण और रूप विधान सृजन देता रहता है। प्रतिपल हमारा पुनर्नवीनीकरण होता है, प्रतिक्षण हमारा नवीन निर्माण होता है। जितनी बार हम सांस लेते हैं उतनी ही बार फिर से नई रचना होती है। कर्ता को उसकी कृति से अलग नहीं किया जा सकता है। हम जीते हैं और गतिशील हैं, वह सर्वशक्तिमान है। हम उसकी रचना हैं और उससे अलग नहीं है, फिर भय का स्थान कहाँ? हमें असफलता की आशंका से भय होता है, पर हम यह नहीं सोचते कि जब हम सफलता के दिव्य स्रोत से अपना संबंध जोड़ लेते हैं तो असफलता का अस्तित्व ही कहां रह जाता। हम रोग से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि स्वास्थ्य ही हमारा जीवन है और यही जीवन की स्वाभाविक स्थिति है। रोग की कोई सत्ता ही नहीं। स्वास्थ्य के अभाव का नाम ही रोग कहा गया है। निर्धनता की आशंका से भयभीत होते हैं क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान नहीं कि हमारे जीवन का स्रोत जहाँ से हो रहा है वह समस्त पदार्थों का अखंड स्रोत है। उसके रहते भला हम अभावग्रस्त कैसे हो सकते हैं? हाँ, जब उससे संबंध विच्छेद कर हम अपनी सत्ता को व्यक्तिगत समझ लेते हैं, तब हम निर्धनता का अनुभव करने लगते हैं। हम नहीं समझते हैं कि हमारे भीतर ऐसी शक्ति भी विद्यमान है जो संकटपूर्ण परिस्थिति का सामना करने के लिए कहीं ज्यादा सामर्थ्य वाली है। यदि हमें अपने इस सामर्थ्य का विश्वास है तो संकट रूपी भेड़िये के आक्रमण की अपेक्षा वह अत्यधिक शक्तिशाली सिद्ध हो सकती है। तो कहने का भाव यही है कि अपने सामर्थ्य पर विश्वास करें, अपने मनोबल पर विश्वास करें और उसी के बल से आप हर भय को दूर कर सकते हैं और अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

प्रेम, दया और संयम की प्रतिमूर्ति, अपकारी पर भी उपकार करने वाली दादी माँ, यज्ञ रक्षक, वत्स रक्षक, असीम करुणा से भरपूर दादी जी, रत्नों की खान रत्न मोहिनी दादी जी ने संयम और नियम की तपोभूमि पर न केवल अपना जीवन बल्कि अनेकों का जीवन बनाने की प्रेरणा प्रदान की और उन्हें सद्मार्ग पर चलने का साहस प्रदान किया। मैं मधुबन न केवल यज्ञ वत्सों के लिए महातीर्थ हूं बल्कि परमात्मा के अवतरण और महान तपस्वी आत्माओं के कारण मैंने सृष्टि के महापरिवर्तन के कार्य में भी इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सत्यता को हमेशा ही सभ्यता से सिद्ध करने की प्रेरणा देने वाली दादी जी ने परमात्मा के बताए मार्ग पर चलते समय कभी किसी को मर्यादाओं को पार करके खुशी देने की बात नहीं की। दादी जी ने ब्रह्मा बाबा की शिक्षाओं को हूबहू अपने जीवन में न केवल उतारा बल्कि उन शिक्षाओं को ही ब्राह्मण जीवन की सुरक्षा कवच के रूप में ब्रह्मावत्सों को धारण करने की शिक्षा भी प्रदान की। मैंने देखा है विदेश यात्रा के दौरान भोजन की उचित व्यवस्था न होने पर भी दादी जी ने खान पान की मर्यादा को बखूबी निभाया। दादी जी ने अपने निस्वार्थ ईश्वरीय प्रेम और करुणा से अनेकों को परमात्मा अनुभूति कराने के निमित्त भी बने। शक्ति वंदन की श्रृंखला में आज हम जापान की रजनी दीदी से आदरणीय रत्न मोहिनी दादी जी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अनुभवों को जानने का प्रयास करेंगे।

0: आप सबसे पहली बार दादी रतनमयी जी से कब और कहाँ मिले थे? उस समय का क्या सीन रहा?
1: हम दादी रतनमयी जी से जब मैं 20 साल की थी, वो छोटी यंग एज की थी, माउंट आबू आई थी, तो हम मिले थे माउंट आबू में। वो हमारी ट्रेनिंग टीचर हैं। उन्होंने हम लोगों को ट्रेनिंग दी है कि कैसे एक आदर्श ब्रह्म कुमारी बहन बन के रहो सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि दादी के अंदर बहुत दृढ़ता है, एक डिसिप्लिन है, एक्यूरेसी है। ये मैंने रतनमणि दादी के अंदर देखा है। चुस्ती, एक्टिवनेस है, अलर्टनेस है, शार्पनेस है, बहुत बहुत क्वालिटी हमने दादी में देखी है और हमको उन्होंने ट्रेनिंग दी है माउंट आबू में। कोई भी हमारे से कोई भूल होती थी, हम दादी से पूछते थे करेक्शन के लिए, तो दादी हम लोगों को प्यार से समझाती थी कि हाँ ये तुम्हारी गलती है, फिर इसको आप इस ढंग से करो। तो हम बुरा नहीं मानते थे क्योंकि दादी के अंदर कल्याण भावना होती थी, पेन नहीं होता था हम लोगों को, टच ऐसे लेकिन अच्छा लगता था, दादी हम लोगों को समझाती थी। तो दादी हमारे लिए एक आदर्श टीचर है जिन्होंने हमको ट्रेन किया है आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए। मैंने देखा दादी रतनमयी के अंदर जो एक न सत्यता के प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, यूनिवर्स प्रिंसिपल्स, वो बहुत क्लियर थे कि हम किसी के प्रभाव में आ गए, किसी को खुश करने के लिए कुछ गलत काम कर दिया और कुछ बेईमानी कर दी, किसी को खुश करने के लिए हमने कुछ उल्टा सुलटा बोल दिया। हम लोगों को दादी ये सिखाते थे और हम देखते भी थे कि हमारा जीवन जो है वो त्याग तपस्या वाला जीवन है, ना कि किसी के प्रभाव में आकर के हमको कोई कुछ मिल गया थोड़ी देर के लिए कोई चीज, हम उसमें खुश हो जाएं और बाद में नहीं है तो हम दुखी हो जाएं। वो वाला जीवन सत्य प्रिंसिपल, जो सत्यता का प्रिंसिपल है, उसके आधार से नहीं बनता है। मैंने ये दादियों के देखा है, चाहे वो बोल ऐसा बोलते हैं, चाहे वो सोच ऐसा करते हैं, वो जब धन का लेन देन करते हैं या बोल का लेन देन करते हैं, सब प्रकार के व्यवहार में हमने देखा है सत्यता ही उनकी प्रिंसिपल रही है।
0: जैसे कहा आपने कि सत्यता उनके जीवन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग नींव रही है, तो ट्रेनिंग में वो कौन सी बातें थी आपके दिल को छू गया और आपको लगा कि नहीं, मुझे इन प्रिंसिपल्स पे खड़ा उतरना है, मुझे भी ऐसा जीवन बनाना है?
1: जब दादी हम लोगों को ट्रेनिंग देते थे माउंट आबू में, दादी हम लोगों को ट्रेनिंग देते थे, हम वहां रहते थे, तो हम लोगों की सारे दिन की दिनचर्या के बाद दादी पूछते थे कि आपने सारे दिन में किसी से झूठ तो नहीं बोला? हाँ, दादी हम लोगों को चेक भी करते थे फॉलो अप, क्योंकि हम ट्रेनिंग में थे। और जब हमने कहा हमने तो ऐसा किसी को खुश करने के लिए बोल दिया, तो दादी हम लोगों को समझाते थे कि आपके जो कर्म होना चाहिए वो सत्यता के आधार से होना चाहिए। हमने किसी को खुश करने के लिए कुछ ऐसा वैसा बोल दिया वो नहीं, लेकिन हमने दिल में उनके प्रति रिस्पेक्ट, उनके अंदर जो अच्छाई है वो देखी, उनकी जो अंदर आध्यात्मिक शक्ति है उसको पहचाना, या हमने ऐसे उसको समझ लिया। तो दादी हम लोगों को बहुत गहराई में इस ढंग से समझाती थी कि हर एक के अंदर जिसकी अच्छाई है उसको आप समझो, उसको आप देखो और उसके आधार से आप उसको वैल्यू भी दो, ताकि आपको पता चले वो क्या है व्यक्ति। कई बार हम ऊपर से देख रहे होते हैं, शक्ल, सूरत, उसका ना क्या कहते हैं पोजीशंस, यू नो, लेकिन वो आत्मिक उसके अंदर पावर क्या है, वो आत्मा में कितनी अच्छी शक्ति है, आप उसको पहचान करके उस चीज को आप वैल्यू दे करके उस सत्यता के मार्ग पर चलकर चलते रहेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं।
0: एक पहली मुलाकात तो आपको टीचर्स ट्रेनिंग में हुई दादी के साथ, लेकिन एक लंबी अरसे का जर्नी आपने भी अपनी समर्पित जीवन में इस विश्वविद्यालय में बिताया और कई बार दीदी के साथ भी आपने कहीं पे ट्रैवल किए होंगे, प्रोग्राम्स में भी अटेंड किए हैं। तो दादी इतनी वैरायटी लोगों के साथ जब मिलते थे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग है, किसी भी एज ग्रुप के लोग है, तो दादी

0: से कनेक्ट कर पाती थी और लोग कैसे दादी से कनेक्ट हो जाते थे।
1: दादी जी के साथ जापान का अनुभव है। दादी के साथ हमने ट्रेवल किया जापान का। मैंने देखा दादी ना कैसे जो बुद्ध धर्म की आत्मा है, कैसे दादी ने उनका हाथ पकड़ा, उनको दृष्टि दी और उनको अपनेपन का अनुभव करा दिया। मैं हैरान हो गई। वो जो व्यक्ति था बहन थी, कैसे उसकी आंखों में आंसू आ गए, नम हो गए। ये दादी की जो अपनेपन की भावना, हाथ एक मिलाना नहीं लेकिन वो अंदर से एक शुभ भावना उस आत्मा को पहुंच गई होगी जो उसकी अवेकनिंग हो गई। तो दादी अपनापन देती थी सबको, तो उनको अपनापन दे करके रिस्पेक्ट दे करके, उनको अपनापन दे के रिस्पेक्ट दे करके आध्यात्मिकता के मार्ग पे लाया। मैंने ये देखा दादी ने किया। मतलब दादी ने धर्म नहीं देखा कि ये बुद्ध धर्म है, ये कहाँ के हैं, ये भाषा नहीं जानते हैं, लेकिन दृष्टि से, क्योंकि दादी ने जापान में बहुत सेवा की है जापानीज लोगों की 1953 में। तो दादी को मालूम था कि दादी उनके दिलों में क्या है और क्या चाहते हैं। तो वो मैंने देखा है कि दादी जब भी विशेष व्यक्ति को मिली थी वहां पर, कैसे एक मिनट में उनको अपनापन दे दिया, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे करके और उनकी अवेकनिंग करके और उनको वो सत्यता की फीलिंग्स दे करके उनको भी उठा दिया। ये मैंने देखा आंखों से।
0: जैसे दादियां सिंध से भारत में आई, फिर विदेश की सेवाओं में गए, जैसे आपने कहा जापान में बुद्धिज्म चलता है और उनको अपनापन फील कराना, जब तक किसी व्यक्ति के अंदर वो भेदभाव नहीं होता है तब तक वो फील नहीं करा सकता है, तो एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस या ये चीजें कैसे उनके अंदर आया है?
1: मैंने ये देखा है कि जो दादियां हैं उन्होंने अपने जो एक कॉन्शियसनेस है ना उसमें एक अनलिमिटेड रखा हुआ है। अनलिमिटेड का मतलब है कि दे आर बियॉन्ड लिमिटेशन। वो ये नहीं सोचा हुआ कि मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदू हूँ और या मैं ब्राह्मण हूँ, नहीं, मैं विश्व की एक नहीं, एक विश्व मेरा परिवार है, मेरे सब भाई बहन हैं। वो एक बेहद का सुख देने वाली भावना उन्होंने अपने अंदर इमर्ज की हुई है। वो मैंने देखा ये लोग छूटते नहीं थे, किसी को भी मिलेंगे वो वाली भावना इमर्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो उस स्मृति में रहते हैं कि मैं विश्व की एक परिवार की आत्मा हूँ, बहन भाइयों, विश्व मेरा परिवार है। तो ये बेहद की है, बेहद की स्मृति में रहते हैं, अपना नहीं कि मैं हूँ, ये फीमेल हूँ, इंडिया से आई हूँ, मैं इंडियन हूँ, कुछ नहीं ना, बियॉन्ड दिस सिस्टम, कास्ट, कलर, बहुत बेहद की है ये, तो योग पावर ही है।
0: जैसे आपने कहा कि विश्व बंधुत्व की भावना उनके अंदर है और सारा विश्व मेरा परिवार है, तभी वो इस बात को उनके अंदर भी इंस्टॉल कर पाए सामने वाले व्यक्ति के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ जैसे कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं तो वो एक्टिवनेस मेंटली फिजिकली वो कैसे संभव है, क्या ऐसा पुरुषार्थ करते थे दादी?
1: मैंने जहाँ तक समझा है कि इनका जो पुरुषार्थ शुरू से रहा है ना वो बहुत पक्का रूटीन का रहा है, कहीं चूक नहीं मारी है। यदि एक बार भी चूक मारी तो फिर नीचे गिर जाता है इंसान। इन्होंने पक्का रखा था शुरू से भी। मैंने देखा था दादी का कुछ साल पहले टांग ना थोड़ा घुटना, परंतु फिर भी आ जाती थी अमृत वेला कराने गाड़ी में बैठ के, मैं भी कई बार आती थी उसके साथ। तो मतलब शुरू से वो जो डिटर्मिनेशन है, निश्चय है, दृढ़ता है, उससे ये हिले नहीं है। तो वो जो पावर है ना इनको अलर्ट रख के बैठे अभी तक, नहीं तो उसमें कमी आ जाएगी ना, क्योंकि वो एक जो बन जाती है ना फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी से दूर नहीं होने देते अपने को, उस रेंज में ही रखा हुआ इन्होंने।
0: मतलब जो परफेक्शन है, आध्यात्मिकता है, उसकी जो डिसिप्लिन है, उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, उसी लेवल पे आप रहे हैं। दादी की क्या हॉबीज रहे हैं, देश विदेश में घूमना, ये सभी चीजें करते हुए भी जैसे दादियां, दादी जो जो है, जैसा है, आप किधर भी जाएंगे दादी को दादी की तरह ही देखते हैं, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं है, किसी देश का कोई कल्चर का इम्पैक्ट नहीं, लेकिन दादी की क्या हॉबीज रहे हैं?
1: दादी की मैंने देखा था हॉबी मुरली पढ़ना थी और लिखती थी दादी। जब जापान में भी आई थी मैंने देखा दादी मुरली पढ़ती है लिखती है, मुरली पढ़ती है लिखती है, फिर उसको विचार सागर मंथन करती, फिर एक एक पॉइंट को बहुत अच्छा दादी समझाती। हम जापान का ग्रुप लेके जाते थे ना दादी के पास, दादी उनको प्रश्न करती थी मुरली से, फिर उसका मीनिंग डीप बताती थी और उनको स्टेबलाइज कर देती थी। ये मैंने देखा उनका पुरुषार्थ मुरली पर।
0: सो कौन सा ऐसा गुण जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है दादी के अंदर, जो आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी ये लेके आना है?
1: दादी का जो गुण मेरे को अभी अट्रैक्ट करता है वो है एक्यूरेसी, डिटर्मिनेशन तो है, एक्यूरेसी, हर बात में एक्यूरेट, कंप्रोमाइज नहीं करो किसी बात में, कंप्रोमाइज करते हैं तो इनएक्यूरेट, एक्यूरेट नेचुरली, ऐसे अंडर प्रेशर नहीं है लेकिन नेचुरली एक्यूरेट।
0: दादी जब 1950s में जापान में आए थे पहले कॉन्फ्रेंस के लिए, उस समय तो संस्था की इतनी सुविधाएं और ब्रांचेस ये सब चीजें नहीं थे, तो दादियों ने कैसे सेवाएं की वहां पर?
1: दादी जब आए थे, दादी की हम लोगों के पास एल्बम है, पिक्चर है, हमने ये देखा था कि दादी जो है वो अपनी लेक्चर्स तैयार करते थे और वहाँ देने के लिए आए थे, परंतु बहुत टाइम वो मेडिटेशन करते थे, योग युक्त रहते थे, और एक एक घर के आगे, एक एक दुकान के आगे जा करके दादी उनको पर्चे बांटते थे, और भाषा नहीं आती थी फिर भी ट्राई करते थे समझाने के लिए। और फिर दूसरा हमने ये देखा कि दादी रतम दादी जब जापान में थे तो उन्होंने बताया भी सही थी हमको कि दादी कहते थे कि हम लोग के पास कोई इतने सेवा का साधन तो नहीं था, सुविधा भी नहीं थी, मतलब उस समय हमारी संस्था चालू हो रही थी ना, जैसे थोड़ा बैगरी रोल में जा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने ये साधन और सुख को ना देख करके, पैसे को ना देख करके, अपनी विल पावर और अपना जो इंटरेस्ट है लोगों में सत्य ज्ञान का शेयर करना, वो नहीं छोड़ा। तो अपना रोज की दिनचर्या को भी मेंटेन किया और साथ में दूसरों को भी बाबा का ज्ञान समझाया, और तीसरा हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए नया कुछ सोचा, मतलब नहीं कर सकते हैं ऐसे गिव अप नहीं किया, परंतु नया और क्या क्या करना है, नहीं है तो भी नया कुछ सोच करके करना है, ये उन्होंने करके दिखाया है। नहीं तो इंसान सोचता है अरे नहीं है बैठ जाओ, लेकिन दादी कहती थी हम बैठते नहीं थे, हम कहते थे चलो कहीं और चल करके हम ज्ञान का बीज डालते हैं, तो इसलिए वो इंटरेस्ट इन्होंने रखा था, तो इसलिए नए नए प्रोग्राम वो बनाते थे और करते थे। हमने ये देखा था दादी बताते थे कि वो लोग 15 दिन के लिए एक प्रोग्राम में गए थे, तो दादी कहती थी हम लोगों के उस समय खाने पीने के लिए नहीं होता था ना इतना वहां पर, क्योंकि हम बाहर का भी नहीं खाते हैं, तो दादी कहती हम चावल खाते थे, एक जापानीज फ्रूट होता था उसको खाकी कहते हैं वैसे मम फ्रूट, तो वो हम लोग बस मिला के खा लेते थे। तो उन्होंने एक बार बाबा को लिखा, तो बाबा ने कहा कि बच्चे ब्रेड खा लो, तो बच्चे ने लिखा बाबा आप खाते हो, बाबा ने कहा नहीं मैं तो नहीं खाता हूँ, मतलब बाबा ने कहा था छुट्टी दे रहा हूँ मशीन की, बनी खा लो, बच्चों ने कहा बाबा आप नहीं खाते हम भी नहीं खाएंगे, मतलब उन्होंने ऐसी परिस्थिति में भी डिसिप्लिन को नहीं छोड़ा, जो ब्रह्मा बाबा करे उनको फॉलो किया, वो ताकत थी इनके अंदर। हाँ खाना तो वो खुद बनाते ही थे, क्योंकि क्योंकि उस समय सब साधन भी नहीं थे, जो मिला बनाया और खाया और कितने कम में जीवन चलाया, ये हमने देखा है। 2-2 किलोमीटर दादी कहती हम पैदल चलते थे एक एक दुकान पर बैठ के और बाबा का परिचय देने के लिए। कहती 2.5 किलोमीटर, पैसे नहीं होते थे, ट्रेन नहीं ले सकते थे, तो हम पैदल ही करते रहते थे सारा दिन। मतलब घर में बैठ गए, हाँ नहीं ऐसे ऐसा नहीं सोचा था, सुबह प्लान कर लेते थे, जाना है, पर्चा बांटना है, सबको संदेश देना है, सिंपल खाना खाना है, ब्रह्मा बाबा ने हमको जो दिया है संदेश वो हमको सबको दे।
0: तो ये तो शुरुआत उन्होंने एक फाउंडेशन डाला भारत की इस राजयोग पद्धति का, वहां पर एक परिचय दिया। 80s में आप जब जापान गए तो एक लंबा बीच में गैप भी रहा, कई लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन जब आप 70s 80s में जब गए, आपने उसके बीज को फलते हुए कैसे देखा? उन्होंने जो 50s में जो बीज बोया लोगों को भारत की इस प्राचीन राजयोग परंपरा के बारे में जो बताया, आपको उनकी जो मेहनत है वो आपको कैसे मदद की?
1: दादी हम लोगों को फिर सिखाती थी ना यहाँ पर कि कैसे आप लोग अभी जाते हो जापान, कैसे सेवा करो। दादी हम लोगों को बताती थी कि कैसे उनको दिल की बात सुनो उनकी, फिर उनको बाबा का रास्ता दिखाओ, वो दादी ने हम लोगों को बताया था। और कई लोगों ने वहाँ पर इंटरेस्ट लेना शुरू किया योगा में, वहाँ बहुत योगा संस्थाएं हैं जो भारत से गई हुई हैं, और जापान के लोगों को बहुत पसंद है योग, इसलिए वो योग सीखते ही हैं। तो हम लोगों को राजयोग और योग, उनके हठ योग होते हैं और राजयोग है, तो हम वहाँ से जब हठ योग वालों को जापान से इंडिया ले आए थे राजयोग सिखाने के लिए 28 लोगों को, ये 1980s में, तो यहाँ पर दादी रत्नमोनी दादी जी ने उनको राजयोग सिखाया। तो दोनों दादियों को मैंने देखा कि उन्होंने बैठ करके उनको दृष्टि दी, राखी बांधी, इतने प्यार से खाना खिलाया, उनको कहा कि ये बहुत मेहनती लोग हैं, आप इनको पीस पार्क में ले जाओ, इनको खिलाओ, हल्का करो, लाइट करो, ऐसा दादी ने उनको बताया करो, तो उनका जो दिल है उनको खिलाओ, दादी जी ने ऐसा बोला, तो इसलिए हमने किया। तो हमने देखा वो जो राखी दादी ने बांधी थी दीदी के कमरे में बैठ करके 2.5 घंटे लगाए थे, 28 लोग थे हठ योगा के, तो कैसे उनको अपनापन महसूस करा दिया था, अवेकनिंग करा दी थी, तो वो 7 दिन का ऑफकोर्स ज्ञान भी दिया था, तो उसमें से ही 2 लोग इंस्ट्रूमेंट बन गए सेंटर खोलने के लिए। हम तो हैरान हो गए, बाद में हमने फोटो देखी, वही 2 लोग उस फोटो में दादी जी के नजदीक वही दोनों खड़े। तो बाद में हमने कहा भाई तुम लोग अभी बने बैठे हो सेंटर खोल के, आपको पता था जब दादी ने उस समय राखी बांधी थी? नीते नहीं कैसे है कनेक्शन। और दूसरा जो हमारे पारिवारिक प्यार है ना अपनी संस्था में, तो वो जो परिवार का सच्चा प्यार महसूस कराया दादी ने उनको, तो वो जो सच्चा प्यार है उनको खींच के ला रहे बाबा की तरफ। तो वो जो 28 लोग आए थे हठ योगा गुरु एक लेके आ गया, तो फिर उसमें से दादी जी तो समझ गई थी कैसे इनको करना है, भगवान के घर आए हैं पहली बार इतने सालों के बाद। फिर दादी जी दादी रत्नमोनी दादी दोनों ही दादियों ने उनको राखी बांध के दृष्टि देकर नीचे बिठाकर रियली बहुत प्यार से, मुझे याद है वो सीन। और फिर वहां से जब गए 2 इंस्ट्रूमेंट सेंटर खोल दिए, फिर वहां से तरक्की होती, उनका एक घर ही वो बन गया। फिर दादी आई थी उनके घरों को देखने के लिए कैसे सेंटर खोले, दादी फिर आए थे एक बार, दोनों दादियां देखा तो दादी बैठ के कहती हाँ ब्रह्मा बाबा आप यहाँ भी बैठे हो अभी दादी जी ने देखा, वाह बाबा वाह साकार बाबा आप यहाँ भी आ गए हो, इतने साल हम पहले आए थे बाबा अब यहाँ भी बैठ गए हो आगे दादी ऐसे बोलती थी। बहुत अच्छा, अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, वो पार्ट ऑफ हिरोशिमा सेंटर है।
0: दादी जब भी आपको देखते थे क्या इंस्पिरेशंस देते थे? आपका और दादी के बीच का जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जो एक प्यार है, उसके बारे में बताइए।
1: मैं समझती हूँ दादी जो है हम लोगों को देखते थे एक बाबा की निमित्त आत्मा है। दादी हम लोगों को हमेशा ये कहते थे आप बाबा के निमित्त बच्चे हो, बाबा का संदेश देने के लिए आप बाहर गए हो और बाबा का प्यार देने के लिए आप बाहर गए हो। तो दादी हम लोगों को निमित्त के हिसाब से देखते थे कि बाबा क्या विशेष सेवाधारी हैं, आप बाहर गए हैं विश्व सेवा करने।

मैं मधुबन ये बखूबी जानता हूं कि बाबा के जाने के बाद हम ये गीत बाबा की याद में गाते तो हैं ही, साथ ही बाबा की शिक्षाओं को हम अपने दिलों में हमेशा ही जीवंत रखकर बाबा मम्मा को अपने साथ जरूर महसूस करते हैं। वास्तव में दादी जी ने अपने जीवन काल में मुरली और बाबा की आज्ञाओं को अपना मार्गदर्शक बनाया और उसी के द्वारा ही उन्होंने इस जीवन की यात्रा को न केवल सफल बल्कि शिक्षा प्रद भी बनाया। और कहा भी जाता है कि ज्ञान को व्यवहार के दर्पण में प्रदर्शित भी होना चाहिए, तभी उस ज्ञान की श्रेष्ठता है। दादी रत्न मोहनी जी जीवन पर्यंत ज्ञान की इस धारणा को सर्वोच्च स्थान देते हुए उदाहरण मूर्त बने। मुझे याद है जब दादी जी कुमारियों की क्लास कराते तो वो स्वयं के उदाहरण से हर बात को सिद्ध कर बताते और ज्ञान को अनुभव रूपी बातों से सरल और धारणा स्वरूप हो प्रत्यक्ष करते। शायद यही कारण था कि दादी जी की क्लास से सभी का हृदय स्वतः ही परिवर्तन हो जाता था।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। रिश्तों को एक नई नज़र से देखने का ये जो पूरा सिलसिला चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब ये लगता है कि जिन रिश्तों से कई बार हम दूर भागते थे, लगता था कि ये रिश्ते जो हमारे घर में बने हुए हैं, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, वही कहीं उनमें दरार हो पड़ती नज़र आ रही है। बहुत कुछ ऐसा था जो हम करना चाहते थे, कहना चाहते थे, हिम्मत नहीं मिल रही थी। खुद की पहचान हुई, परमात्मा की पहचान, और फिर ये सारे रिश्ते भी कितने आसान होते चले गए। आज इस सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर हमारा कर्म क्षेत्र, जहाँ हम काफ़ी वक्त गुजार रहे होते हैं, वहाँ कैसे होने चाहिए हमारे रिश्ते, क्योंकि वहाँ फिर हम आत्माओं के कांटेक्ट में होते हैं और उनके साथ पूरा दिन गुजार रहे होते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। इट हैज़ बीन अमेजिंग जर्नी, द वे you know, the kind of response we are getting and the way things are happening. घर के ही वो रिश्ते जो लगता था कि बहुत कटु हो गए हैं, इतने दूर दूर चले गए हैं, जब हमने कहा था पिछली बार बात की थी कि ऐसे बैठ गए हैं, आज वो लगता है कि फिर मुड़े हैं और घर में एक अच्छा सा माहौल आता नजर आ रहा है। एफर्ट्स शुरू हो गए हैं, कदम बढ़ाए जाने लग गए हैं, घर से बाहर निकलेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बात आप कहना चाहेंगे घर के इन्हीं रिश्तों को जो सबसे ज़्यादा मधुर होने चाहिए?
1: आई थिंक इसको हम प्रायोरिटाइज कर दें कि ये हमारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी सब बातें इसकी सेकेंडरी आ जाती हैं। एंड हम इनको जितना सिंपल बनाना चाहें हम सिंपल बना सकते हैं, और उसी को जितना कॉम्प्लिकेटेड करना चाहें हम कर सकते हैं। एक दूसरे की कही हुई बात को जितना जल्दी भूलना चाहें हम भूल सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑल हियर,
0: इट्स
1: जस्ट अ थॉट अवे। और जितना समय पकड़ कर रखना चाहें उतना समय पकड़ सकते हैं। तो जो चीज़ हमारे लिए इतनी वैल्यूबल होती है, जिनसे हम इतना प्यार करते हैं, उन चीज़ों को सिंपल करते जाएं, क्योंकि उससे पहली बात हमारी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी एंड ऑटोमेटिकली द रिलेशनशिप विल गेट अफेक्टेड। सो एवरी टाइम यू गेट हर्ट, विच वी फील कि आई गॉट हर्ट, दैट एवरी टाइम आई गेट हर्ट बिकॉज ऑफ यू, विच आई फील आपने ऐसा कहा तो आई गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ यू, तो हमें सिर्फ याद रखना है कि आई एम नॉट हर्ट बिकॉज ऑफ यू, I'm hurt because of my own weakness. तो अगर मैं अभी चाहूँ तो एक सेकेंड में इस संकल्प को फिनिश कर सकती हूँ। और इसको बार बार ट्राई करें, ये एक बारी में नहीं होगा। इवन इफ वी से इट्स अ थॉट अवे, इट इज़ अ थॉट अवे, लेकिन ये अ थॉट अवे हमें बार बार करना पड़ेगा, कि हर बार हमें कोई बात थोड़ा सा तकलीफ देती है, हर्ट करती है, किसी की कोई बात पसंद नहीं आती है, आप अपने आप एक बैठ कर देखें कि इस क्षण मेरे पास चॉइस है कि मैं कितनी देर इस बात को
0: पकड़ कर
1: रखना चाहती हूँ, कितना बुरा मैं उसके बारे में फील करना चाहती हूँ,
0: बार बार याद करना चाहती
1: हूँ, इट्स ऑल हियर, इट्स ऑल इन मी, एंड कितनी जल्दी मैं उसको छोड़ सकती हूँ। और बार बार ट्राई करके देखे, छोड़ दे, इट्स ओके, लेट गो, इट्स नॉट द अदर पर्सन, इट्स मी, आई हैव टू लेट गो हियर, छोड़ दे, फिनिश्ड, इट्स ओके। एंड जितनी बार इट्स ओके बार बार कहेंगे, जितनी जल्दी कहेंगे, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि वो कितना सिंपल है, और फिर वो बार बार करना बहुत ईजी हो जाएगा। थोड़े बार थोड़ा सा, क्योंकि कई लोग कहते हैं नहीं, लेकिन उन्होंने बात इतनी बड़ी कर दी, बात बहुत बड़ी कर दी, लेकिन फिर भी आत्मा के अंदर वो ताकत है कि वो बड़ी से बड़ी बात को छोटा कर दे एकदम। तो वो छोटा करने की कला हमारे अंदर है, उसको बार बार यूज़ करते जाएं। और कहते हैं जो शक्ति को बार बार यूज़ करते हैं वो शक्ति और भी बढ़ती जाती है, और फिर आप एक समय पर पहुंच जाएंगे जहां आप हर एक बात को बहुत जल्दी से छोटा कर पाएंगे। एफर्ट विल नॉट बी नीडेड, वो आपका नेचुरल संस्कार बनता जाएगा। लेकिन इसको सिर्फ सुनने तक नहीं रखें अभी, यू नो, बिकॉज इट्स समथिंग दैट्स गोइंग टू वर्क, दिस विल वर्क, बस उसको करना शुरू
0: कर। हर बार की तरह अनुभव जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, कि जब हम किसी भी प्रोसेस में हो, वी हैव टू कंटिन्यू टू एक्सपेरिमेंट डूइंग। एक्चुअली जब हम कहते हैं कि मैं नॉन डूइंग में हूँ, तो नॉन डूइंग सिचुएशंस के साथ हो सकता है, लेकिन अपने इस थॉट के साथ नहीं हो सकता।
1: एंड कई बार लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता है, बट देन मुश्किल यहाँ लग रहा है क्योंकि हमने किया नहीं है। जब वो एक बार कर लेंगे, बिकॉज ये फिजिकल काम नहीं है, यू नो, कोई फिजिकल काम मुश्किल हो सकता है, कि सपोज आप मुझे कहें अभी ये सोफा उठा लो, हो सकता है ऐसे नहीं, ये मेरे लिए मुश्किल है, आई कैन नॉट पिक इट अप अलोन। लेकिन यहाँ जो काम करना है, इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, अपनी आंतरिक पावर चाहिए और वो हर आत्मा के पास है, और ये पावर जितना हम यूज करते हैं ये बढ़ती जाती है. तो बाय सेइंग कि ये मुश्किल है, वी एक्चुअली गिविंग अप एन अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग समथिंग विच इज वेरी सिंपल. वो जब कर लेंगे तब पता चलेगा ये तो बहुत ईजी है.
0: और सबसे बड़ी बात, पहली बार तो मौका आया खुद करने का. अभी तक तो हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते थे कि वही करेगा तो मैं ठीक होंगी. आज तो ये हमारे हाथ में ताकत आ गई है कि आई कैन डू इट.
1: एंड देन बिकॉज हम वेट कर रहे थे कि आप करेंगे, तो मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं था, तो आई हैड टू कीप वेटिंग फॉर यू कि आप कुछ करेंगे, देन आई विल फील गुड. तो उस वजह से क्या हुआ, मेरा फील गुड मोमेंट्स बहुत कम होते गए,
0: मिला ही नहीं, बिकॉज मैं सारी जिंदगी इंतजार में निकाल दी.
1: यस, अब जब पता चलता है कि आई कैन फील गुड व्हेन आई वांट टू फील गुड, I can increase the duration of that during the day.
0: That's wonderful, actually. Feeling good factor. Feel good factor ko hum talashte rehte. Wo within hi hai aur khud hum hi decision maker ho sakte hain. Sister Shivani, ghar se thoda bahar nikalte hain aur kaam par chalte hain. क्योंकि वो भी एक ऐसा धर्म क्षेत्र, एक कर्म क्षेत्र है जो कि सबको जाना ही है. अब कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि भोगना ही है, जहाँ परमानेंट नौकरियां हैं तो वहाँ तो मतलब करना ही है, एडजस्ट करना ही है. जैसे हम इन लॉस के साथ बात कर रहे थे कि एडजस्ट करना ही है. ऑफिस पहुँच के, घर से बाहर निकल के ऑफिस पहुँच के क्या ऐसा हो जाता है, एक तो मेरा चेहरा बदल जाता है, मैं कुछ और सामने आता हूँ, कुछ और चेहरा लेकर पहुँचता हूँ वहाँ पर, कि वहाँ पर जो डिसकंटेंट है उसके बाद उसकी तो कोई ऑप्शन ही नहीं होती.
1: घर में और ऑफिस के वायुमंडल में एक वर्ड है जो सबसे बड़ा चेंज, जो फैक्टर आता है. घर में है कोऑपरेशन और ऑफिस में है कंपटीशन. तो उससे पूरा वायुमंडल ही चेंज हो जाता है. जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा मूड कैसा होता है कि हमें ऑफिस जाना है, और जब शाम को 6 बजने वाले हैं तब हमारा मूड क्या होता है कि घर जाना है. व्हाट आर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू? डू आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू वर्क, और डू आई हैव टू गो टू वर्क अगेन? यू नो, डू आई वांट टू गो टू वर्क और डू आई हैव टू गो टू वर्क? एंड शाम को 6 बजे कैसा फील करते हैं? दैट आई वांट टू गो बैक होम. तो घर में और ऑफिस में क्या अंतर है कि घर से ऑफिस जाने का मन नहीं करता, लेकिन ऑफिस से घर आने के लिए मन करता है. फ्राइडे शाम को कैसा फील करते हैं, या सैटरडे शाम को, डिपेंडिंग ऑन व्हेन इज योर हॉलिडे, एंड मंडे मॉर्निंग को कैसा फील करते हैं? बहुत डिफरेंस है. मंडे मॉर्निंग ऑलरेडी द डे स्टार्ट्स ऑन अ, यू नो, ओ अब एक पूरा हफ्ता,
0: अनदर वीक.
1: यस, यू नो, तो इट्स लाइक अ बोझ, एक बर्डन है जो हम कैरी कर रहे हैं, क्योंकि परिवार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोऑपरेशन है, बिलोंगिंगनेस है, कि ये मेरा परिवार है. तो मेरा परिवार होने से दैट्स बिलोंगिंगनेस इज देयर. लेकिन ऑफिस
0: किसी और का है, काम करना है, पैसा कमाना है, वापस आना है.
1: यस, और वहाँ कंपटीशन का वायुमंडल आज जो बन गया है, तो कोऑपरेशन घर पर है तो वायुमंडल पॉजिटिव होता है. ऑफिस में कंपटीशन होने के कारण वायुमंडल नेगेटिव होता है. घर में भी अगर कंपटीशन की भावना आ जाए, सपोज दो बहुए हैं, यू नो,
0: वहाँ कॉन्फ्लिक्ट
1: है ना, तो वहाँ भी घर का वायुमंडल देखो क्यों डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन हो जाता है, एक दूसरे को नीचे खींचने की भावना आ जाती है, एक दूसरे को, यू नो, पुल डाउन, अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत, ये सारी बातें जो कंपटीशन में आती है. लेकिन कहीं ना कहीं हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि कंपटीशन की दुनिया है. आज भी अगर पेरेंट्स से पूछते हैं आपके बच्चों को इतनी टेंशन क्यों है, जी कंपटीशन बहुत है. व्हाट इज कंपटीशन, किस चीज का कंपटीशन है? एंड बचपन से एक वर्ड हमें सिखाया गया, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, यू नो, तो दिस वर्ड इटसेल्फ, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, मतलब आप गला भी,
0: गला you know, काट के,
1: लेकिन आपको कॉम्पिटिशन में आगे जाना है. तो ये जो भावना क्रिएट हो गई है, तो उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे हो सकते हैं उस स्थान के? नेगेटिव वाइब्रेशन है, एंड दैट इज वाई द ऑफिस इन द होम विल ऑलवेज फील डिफरेंट, बिकॉज वहाँ पॉजिटिव वायुमंडल है. And yeah, absolutely uska contradictory.
0: I think because we are actually entering that with a mindset also.
1: Yeah, it is a mindset. Ye hum sab, lekin hum sab ne banaya wo. Hum sab ne wo mindset banaya ki ye competition hai. Mujhe apne aap ko proof karna hai. Mujhe aage jana hai. Ek bhi agar koi naya aa gaya, to main kahin piche na reh jaun. So it's always this feeling of competition jo hume पीछे खींच देती है. लेकिन हम अब इस कल्चर को अगर चेंज कर लें, द होल आइडिया ऑफ व्हेन विल आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू ऑफिस, जो मेरा ऑफिस भी एक घर की तरह हो जाएगा।
0: लेकिन सवाल यहाँ आता, सबसे बड़ा सिस्टर शिवानी ये कहते हैं कि घर पे तो हम चार या पांच लोग ही हैं, ठीक है, सबको समझाया जा सकता है, पूरे माहौल को हम सब मिलके, क्योंकि एक व्यक्ति से माहौल नहीं बदलता है, तो मैं घर के माहौल को बदल सकता हूँ, और अगर मैं भी बदल जाऊँ तो ठीक है, वो नहीं भी बदले तब भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ तो 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, सब नहीं बदलेंगे, तो मैं अकेला एक बदल के क्या कर लूँगा।
1: बात अंदर बदलने की है, जब हम अंदर बदलते हैं वापस वही बात आ जाती है, हम अंदर बदलते हैं सब कुछ बदल जाता है। वो ही ऑफिस के लोग हमें डिफरेंट दिखाई देंगे व्हेन माय वे ऑफ लुकिंग एट देम। कंपटीशन किसका है? मेरा कंपटीशन सबके साथ है। व्हेन आई रिमूव दैट कंपटीशन फैक्टर कि मैं किसी रेस में नहीं हूँ, I'm not standing in any race.
0: Actually, we do say that at times, but I think we are not. We are part of it.
1: We are part of the race, na? So we need to change that belief system. वो belief system इतना strong है कि ये important नहीं है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कब तक वहाँ पहुँचना है। ये important हो गया कि मुझे इनसे आगे जाना है। वो एक दूसरे को देखकर, जो हमने एक बार पहले भी बात की थी कि अगर हम drive कर रहे हैं हाईवे पे तो हम अपनी स्पीड पर जाते हैं, लेकिन जब हम एक रेस में जाते हैं दूसरी गाड़ी के साथ तो हम दूसरी गाड़ी की स्पीड के अनुसार अपनी स्पीड को चेंज करते जाते हैं, एंड कई बार हम बहुत ज्यादा अपने आप पर स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं जस्ट बिकॉज हम उसके साथ रेस कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ अपनी जर्नी पर फोकस करें तो जर्नी इज नॉट स्ट्रेसफुल एट ऑल। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि दो लोग जंगल में जा रहे थे एंड सडनली उन्हें पता चला कि एक शेर उनके पीछे आ रहा है, तो दोनों भागने लगे। तो एक के पास शूज थे, रनिंग शूज थे बैग के अंदर, तो वो बीच में रुका और उसने वो शूज पहनने शुरू कर दिए। तो दूसरे ने क्या कहा कि आपको क्या लगता है कि ये शूज पहनने से आप यू कैन गो फास्टर देन दैट टाइगर? तो इसे नहीं, मैं टाइगर से ज्यादा फास्ट तो नहीं जा सकता, लेकिन तुमसे तो फास्ट जा सकता हूँ। My whole way of looking at things is not, I'm not looking at the destination, I'm not looking at my goal, I'm not looking at where I have to reach, I'm just looking at who all is there in the race and I want to be faster than them. Tab wo stress create hoga. Kyunki koi na koi to aayega na jo thoda fast ja raha hoga, par hum hamesha unse fast jaane ki.
0: Lekin dar ye hai ki position to ek hi hogi na. जब हम रेस में हैं तो जीतेगा तो वो जो जीता वही सिकंदर वाला जो होता है, तो एक ही पहुंचेगा, तो मैं क्यों नहीं?
1: एब्सोल्युटली। तो ये हमारे को अपने आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले डिसाइड करनी पड़ेगी, अपने जीवन में प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेंगे। और ये एक जो बिलीफ सिस्टम है कि नेगेटिव अंडरकरंट से या कंपटीशन से हम ज़्यादा आगे जा सकते हैं, इसको भी ट्राई करके देखना कि कोऑपरेशन से क्या रिजल्ट निकलते हैं, क्योंकि आगे कौन जाएगा, इफ दैट इज ऑल्सो द क्राइटेरिया कि आगे की पोजिशन पर कौन पहुँचेगा। तो आज किसी भी कंपनी में हम देखें, किसी भी इंडस्ट्री में देखें, तो हर एक व्यक्ति का इमोशनल कोशेंट चेक किया जाता है कि हो सकता है एज एन इंडिविजुअल आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत केपेबल हैं, आप वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन शायद आप लोगों के साथ मिलजुल कर चलने की जब बात आती है तो आपके अंदर वो
0: इंटरनली
1: क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है। हर एक के साथ एडजस्ट होकर चलना, हर एक को अपने साथ लेकर चलना, तो शायद आप उस क्वालिफाइड नहीं है उस बात के लिए कि आपको वो टॉप पोजिशन पर लेके जाया जाए। क्योंकि अब वर्तमान समय जो वातावरण है, जो माहौल है इंडस्ट्री का, टॉप पोजीशन पर उन्हीं को लेकर जाया जाएगा जिनके अंदर वो स्टेबिलिटी की क्वालिटी है, जिसको हम कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट अ वर्ड कि आप पोजीशन से लीडर हैं, कि आप सीनियर मैनेजर हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन लीडरशिप आप एक क्वालिटी है जो एक इंडिविजुअल के अंदर होनी चाहिए अगर वो आगे जाना चाहते हैं। लीडर अर्थात क्या, क्योंकि वर्तमान समय बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर डिस्कशन है कि लीडरशिप क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। लीडरशिप इन वेरी सिंपल वर्ड वुड बी अ पर्सन जो किसी भी परिस्थिति में स्टेबल रह सकता, क्योंकि उनका रोल है औरों को अपने साथ लेकर आगे चलना। लेकिन अगर कोई परिस्थिति आती है जिससे सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक टीम है, एक आईटी कंपनी है, एक टीम है, उसने एक प्रोजेक्ट पर काम किया, एक मास तक काम करते रहे, कितनी भी साइज हो टीम की, 10 हो, 100 हो, डजंट मैटर। अब एंड डे पर पहुंचकर जब वो प्रोजेक्ट सबमिट करने का टाइम आता तो किसी कारणवश से कोलैप्स हो जाता है, पूरा प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाता है या उसमें कोई बहुत बड़ा एरर आ जाता है, अब उस टीम की हालत क्या होती है? वी जस्ट हैव टू विजुअलाइज दैट सीन कि डे एंड नाइट अपनी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, फिजिकल बॉडी सबको इग्नोर करके हमने बस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पर काम किया, सब ने मिलजुल कर काम किया, लेकिन आज उस प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, अब उस टीम की हालत क्या होगी? व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम? क्या हो जाएगा?
0: देयर इज अ क्योस एक्चुअली, ब्लेम गेम,
1: देयर इज अ ब्लेम गेम,
0: ब्लेम गेम, टोटल ब्लेम गेम कि आपके कारण, आपके कारण,
1: और सब एक दूसरे की गलती पॉइंट करना शुरू कर देंगे, तब उस समय जो ये था ऐसे वो सारा स्कैटर हो जाएगा और सब अपने को बचाने की कोशिश करेंगे और औरों को ब्लेम करते जाएंगे। उस समय जो वायुमंडल होगा वो बहुत ज्यादा तनाव का हो जाएगा क्योंकि इंटरनली डिस्टर्ब्ड, औरों को ब्लेम कर रहे हैं, हर एक दूसरे को नीचे खींच रहा है, अपनी पोजीशन को बचाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी गलती नहीं थी। अब इस समय पर एक दूसरे से बात करने का तरीका कैसा हो जाएगा? पूरी भाषा चेंज हो जाएगी, लहजा चेंज हो जाएगा। अब ऐसे वातावरण में वो 10 या 20 लोगों की जो टीम है इसमें हम लीडर किसको कहेंगे?
0: वही जो अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करके इनको एक दोबारा एक बार फिर ये हौसला दे पाए कि हो सकता है।
1: और वो हौसला उसको वर्ड्स से नहीं देना है, बस वो जब अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाएगा, किसी को ब्लेम नहीं करेगा और जो प्रॉब्लम आई है उसको ना देखकर अब सोल्यूशन को ढूंढना शुरू करेगा एंड विद एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कि नाउ दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट दैट मैंने तो किया, इन्होंने नहीं किया, नो, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब इसको ठीक कैसे करना है। तो क्या होगा, वो किसी को ब्लेम नहीं करेगा, उनका बात करने का तरीका ठीक रहेगा, उनकी प्रायोरिटी ये होगी कि ये सब एक रहे, टूट ना जाए एक प्रोजेक्ट के पीछे। जनरली ऑफिस कल्चर में आज क्या है, प्रोजेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड नॉट द टीम। तो आप उस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए एक दूसरे को कुछ भी कह देते हो, कुछ भी कर देते हो, तो क्या होगा, प्रोजेक्ट तो शायद पूरा हो जाएगा लेकिन टीम का क्या हुआ? वो तो सारी टूट जाएगी। अब ये जो व्यक्ति होगा जो ये इनर स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखेगा, तो इनर स्टेबिलिटी के कारण वो आउटर भी स्टेबिलिटी को ले आएगा। अब इस केस में अगर आपको प्रमोशन देकर फाइनली किसी को वो पोजिशन वाले लीडर पे लाना पड़ेगा, तो आप उसी व्यक्ति को लाएंगे ना, आप उसको तो नहीं लाएंगे जो कंपटीशन में बस दूसरों को पीछे छोड़ के खुद आगे जाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, ये क्वालिटी चाहिए क्योंकि वर्तमान समय डिग्रीज बहुत हैं, आज डिग्रीज ज्यादा हैं, जॉब्स कम है, आईक्यू सबके पास है, लेकिन साथ साथ ईगो भी सबके पास है, और ईगो अर्थात लो ईक्यू, आपका इमोशनल कोशेंट हम में से मेजॉरिटी का बहुत लो है, और वर्तमान समय अगर हमें आगे जाना है तो हमें हाई ईक्यू चाहिए, ये इंटरनल स्टेबिलिटी चाहिए। दिस इज द एसेट व्हिच एवरी इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर टुडे, और ये जिसके पास है वो पैसिव नहीं है, वो स्लो नहीं है, खुद कैसा महसूस कर रहे हैं, वाई डू आई गो टू वर्क, वाई डू यू गो टू वर्क, व्हाट्स द रीजन?
0: आई एंजॉय।
1: यू एंजॉय, बट अगर वो एंजॉयमेंट ही खत्म हो जाए, सी आई गो टू वर्क बिकॉज आई एंजॉय, अब वो एंजॉयमेंट फिर होनी चाहिए। हम ऑफिस क्यों जाते हैं, हम काम इतना मेहनत क्यों करते हैं?
0: हाँ, हमें से ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं।
1: ओके, व्हिच इज फाइन, व्हिच इज एब्सोल्युटली ओके, लेकिन हम फाइनली एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहते हैं? हैप्पीनेस, यू नो, फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली, एंड उस हैप्पीनेस में एक एस्पेक्ट होता है मटेरियल कंफर्ट, और वो मटेरियल कंफर्ट अर्न करने के लिए I have to go to work. लेकिन उस material comfort के साथ साथ happiness भी तो मेरे जीवन में चाहिए। आज हम ऑफिस तो जा रहे हैं, material comfort भी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां की बातों की वजह से और खुद उसको कोप नहीं करने की वजह से हम अपनी happiness गवा भी रहे हैं। और वो अपनी happiness गवा रहे हैं, मतलब टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, और वही टेंशन फिर घर आ रही है। तो घर पर लाना चाहते हैं खुशी, चाहते हैं कि घर का वायुमंडल बहुत खुशी से भरा, लेकिन आज घर का वायुमंडल बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, एंड अ वेरी बिग रीजन फॉर दैट इज कैरिंग स्ट्रेस फ्रॉम वर्क होम,
0: क्योंकि मैं खुद कैरी कर रहा हूँ और मैं कह ये रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए तो कर रहा हूँ सब कुछ,
1: एब्सोल्युटली
0: या कर रही हूँ,
1: एंड घर पे अगर कोई हमारे से हमारा टाइम या एनर्जी डिमांड करते हैं तो वी डोंट लाइक इट बिकॉज वी आर एग्जॉस्टेड, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है. एंड फिर अगर कोई हमें कहे कि आप इतना ज़्यादा टाइम उधर स्पेंड करते हैं तो आप कहते हैं हम आपके लिए कर रहे हैं. सो वी आर ऑल अ लिटिल कन्फ्यूज, क्योंकि कहीं हो सकता है कि मुड़कर आपके बच्चे कल आपको कहे कि मुझे शायद इतना सारा ये नहीं चाहिए था कि आप ये भी देते, ये भी देते, ये सारा सामान भी खरीद देते, लेकिन शायद अगर आप मेरे साथ थोड़ा समय और होते, मे बी दैट इज व्हाट आई वांटेड.
0: और मे बी यू नो हम बच्चे को ये भी आइडिया दे रहे हैं, एक रॉन्ग बिलीव क्रिएट कर रहे हैं कि जितना पैसा ही हैप्पीनेस है. यू नो लाइक इफ यू हैव मनी यू आर हैप्पी.
1: एब्सोल्युटली.
0: सो ही विल आल्सो फील
1: एंड ही विल आल्सो ग्रो अप इन दैट. एंड हम भी तो ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की भावना भी हम उसको अभी से ही तो सिखा रहे हैं. एंड वी आर ऑल्सो टीचिंग हिम कि नहीं, आपको ये अचीव ही करना है, इफ़ यू डोंट अचीव यू आर अ फेलियर. तो वो सारे जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स बने हैं वो फिर हम घर पर भी इम्पोज करते हैं. तो कहीं ना कहीं रुक कर, इट डजेंट मीन कि हम यू नो विदड्रॉ कर जाएं और हम अपना प्रोग्रेस नहीं करें, करियर में आगे नहीं बढ़ें, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. लेकिन कहीं ना कहीं रुक कर इंट्रोस्पेक्ट करके चेक करना पड़ेगा कि व्हाट डू आई वांट, मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए, बिकॉज इट्स अ वैल्यूएबल लाइफ, व्हाई नॉट गेट व्हाट आई वांट.
0: सो शिवानी लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग, यू नो वी विल कम टू ये मिडिल लेवल वाला जो है, उससे पहले हम फ्रेशर्स की बात करते हैं.
1: ओके.
0: वो फ्रेशर्स जो एक जिंदगी बदल देने की उम्मीद लेकर और इतने सपने लिए एक कॉर्पोरेट में एंटर करते हैं और इतनी एनर्जी के साथ करते हैं, व्हाट रियली हैपेंस टू देम, यू नो कि वो मिडिल मैनेजमेंट तक पहुंचते पहुंचते डिप्लीट हो चुके होते हैं. क्या वो विजन लेकर, अगर पॉजिटिविटी लेकर भी पहुंचे थे, गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि वो उसका एक हिस्सा बन के फिर डिप्लीट होने लगा.
1: राइट. क्योंकि एक एनर्जी सोर्स हमारे पास है, यहाँ हम जा रहे हैं एक ऐसे वायुमंडल पे जहाँ बहुत लोग हैं उसको खींचने के लिए, क्योंकि वर्तमान समय आप एक बहुत हाई एनर्जी लेवल के साथ वहाँ जा रहे हैं और बहुत लोग होंगे जिनको आपके आने से थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होगी, और तब छोटी छोटी बातें हो जाती हैं आपको नीचे खींचने की, आपके अगेंस्ट कुछ के, जो भी छोटी छोटी बातें इस तरह से ऑफिस में हो जाती हैं. अब उस वायुमंडल में अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना और अपनी विशेषता को कायम रखना,
0: और फिर रिजेक्शंस जब मिलनी शुरू होती हैं उस हर्ट को, क्योंकि एक एनर्जी लेके जब गए होते हैं, इफ आई कैन एक्चुअली गो बैक टू माय ओन सेल्फ आल्सो, व्हेन वी आर वेरी यंग वी हैव लॉट ऑफ होप, लेकिन पहला रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन एंड देन यू,
1: हमारे पास बहुत एनर्जी है उस समय, हमारे पास बहुत क्रिएटिविटी है, क्योंकि नेगेटिविटी अभी तक हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं की ना, तो हमारे पास बहुत क्रिएटिविटी है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, हम बहुत नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं. क्या होता है कि जिन्हों को हमारी वजह से इनसिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं हमारे आइडियाज को रिजेक्ट करना शुरू करते हैं, और उसका तरीका होगा हमारे अगेंस्ट कुछ कहना, हमें नीचे खींचना, हमारे आइडियाज़ को अप्रूव नहीं करना. अब ये सारी बातों जब आएंगी हमारे सामने, इस टाइड के अगेंस्ट खड़े होना, इसके लिए पावर चाहिए. अब ज़्यादातर क्या होगा, एक बात आई सहन कर ली, दूसरी आई सहन कर ली, 10 बातें आई सहन कर ली, लेकिन वो 10 बातें सहन करते करते अपनी जो पावर थी वो पूरी तरह से फिनिश हो गई, कि यहाँ पे क्रिएटिविटी का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे नए आइडियाज लाने का कोई फायदा नहीं है. इतनी मेहनत की, कल पूरा प्रोजेक्ट बनाया, प्रेजेंटेशन बनाई, रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे कुछ फायदा नहीं है. तो वो नहीं है करते करते धीरे धीरे वो जो विशेषता थी गिव अप कर दिया.
0: तो यहीं से शुरू करते हैं, वो यंगस्टर्स जो कदम रख रहे हैं जो पूरी ऊर्जा के साथ, एक और उनके साथ भी एक माइंडसेट, क्योंकि जिस तरह के बिलीफ लेकर चल रहे हैं कि मुझे दूसरे को रिप्लेस करना है, मुझे वहां तक पहुंचना है, कई बार हम ये लेकर भी अपना मोटो लेकर चल रहे होते हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ यू नो माइंडसेट दे शुड
1: हैव, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक ऑफिस है, अगर लेट्स से विल टेक एन एग्जांपल, उसमें 10 लोग हैं से फॉर एग्जांपल, और अगर आज आपको रिक्रूट किया गया है, वो इसीलिए रिक्रूट किया गया है क्योंकि वहां 11 लोगों की जरूरत है, वो इसलिए नहीं रिक्रूट किया गया है कि आपको लाया जाएगा और एक को निकाला जाएगा. सो एक्चुअली देयर इज नो कॉम्पिटिशन, इफ यू गो टू लुक एट इट इन इट्स राइट परस्पेक्टिव, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है. और जो लोग पहले से 10 लोग वहां थे उन्हें भी ये समझना पड़ेगा कि इनको इसलिए रिक्रूट किया गया क्योंकि 11वें व्यक्ति की जरूरत है. ये नहीं है कि ये काम 10 में ही हो सकता है और ये सोचा जा रहा है कि इनको ले आओ तो यहाँ में से 10 को हटा दो. तो फिर हमारा उनके साथ कॉम्पिटिशन कैसा, ना पुरानों को नयों के साथ, ना नयों को पुराने के साथ. एवरी वन इज यूनिक, एवरी वन इज कैरिंग देयर ओन एनर्जी एंड एवरी वन हैज टू कम्पीट ओनली विद देमसेल्व्स.
0: और इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट व्हाट यू हैव सेड इज हर कोई वहां पे इसलिए है

0: कि उनकी जरूरत है.
1: Absolutely. जब आपको नया रिक्रूट किया गया है तो आपको पूरी तरह से इवैल्यूएट करके रिक्रूट किया गया, एंड बिकॉज यू आर वेरी सूटेबल इस पोस्ट के लिए तब आपको रिक्रूट किया गया. तो आपका इनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है जो एग्जिस्टिंग है. अब आपको अपने आप की जो क्वालिटी है उसको दिखाना है वहां पे, अपने काम के अंदर दिखाना है. और उसको दिखाने का तरीका ये नहीं होगा कि जो एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं उनसे ज्यादा अच्छा करके दिखाना है, तो कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं है, लेकिन अपनी बेस्ट करके दिखानी है. हो सकता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, कि जो बाकी 10 लोग हैं उनका लेवल 70% है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेकिन आप अगर उनके साथ कम्पीट करके करने दिखाना शुरू करें तो आप सिर्फ 75 दिखा दें. लेकिन हो सकता है आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी 90 की थी. लेकिन जब भी हम औरों को देखते हैं, सी अगेन दैट ड्राइविंग वाली स्पीड, अगर एक 70 की स्पीड पर चल रहा है, इफ आई जस्ट वॉन्ट टू गो अहेड आई जस्ट गो अप टू 80, बट एक्चुअली प्रोबेबली आई कैन ड्राइव एट 100. सो इंडिविजुअल स्पीड एक्चुअली हमें उस यात्रा में, जहां तक फोकस की बात है, फोकस सिर्फ स्ट्रेट होना चाहिए, इट शुड नॉट गो हियर एंड देयर. जहां तक काम की बात है, एक दूसरे की तरफ तब देखें जहां सहयोग करने की बात है, लेकिन प्रूव करने के लिए माय बेस्ट.
0: बिल्कुल सिस्टर शिवानी, नया अपॉइंट जो आया है, जो रेया एम्प्लॉय आया है, कम्पीट कर रहा है कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन की भावना, और जो बाहर ऑलरेडी थे वहाँ पे वो इनसिक्योर हो रहे हैं. वो इनसिक्योरिटी और ये जो पूरा एस्पेक्ट है,
1: ये दोनों चीजें हमारी क्रिएटिविटी को फिनिश कर देती हैं. क्रिएटिविटी मतलब यहाँ क्लैरिटी. क्रिएटिविटी तब होगी यहाँ जब नेगेटिविटी का अंश भी नहीं है. इंट्यूशन, यू नो, नए नए आइडियाज निकालना, इनोवेशन, ये आज इंडस्ट्री की डिमांड है. कुछ नया बताओ, कुछ नया करके दिखाओ. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में भी हर रोज इतना कुछ हो रहा है. एक कंपनी ने एक एड बनाई, लॉन्च किया प्रोडक्ट, तुरंत दूसरी कंपनी जो कॉम्पिटिटर है, अगेन कॉम्पिटिटर, वो उनको भी कुछ लॉन्च करना है. सो देन व्हाट आर दे गोइंग टू टेल देयर पीपल? नया नया, कुछ नया सोचो. अब नया कैसे सोचेंगे जब यहाँ क्लैरिटी है? लेकिन जब ये माइंड इस चीज से भरा हुआ है कि मुझे इससे अच्छा सोचना है, मुझे इससे अच्छा सोचना है, मुझे इससे अच्छा आइडिया देना है, तो ये नेगेटिविटी है. और जहाँ नेगेटिविटी अंडर करंट चल रही है वहां क्रिएटिविटी नहीं आ सकती. नेगेटिविटी एंड क्रिएटिविटी टुगेदर नॉट पॉसिबल. तो अपने आप को अगर प्रूफ करना है, अपनी कैपेसिटी को प्रूफ करना है, तो बिल्कुल एक पॉजिटिव यहाँ स्टेबिलिटी मेंटेन, साइलेंट वाटर बिल्कुल, तो उसमें से वो रिफ्लेक्शन दिखाई देगी जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है. लेकिन ये क्यों, ऐसे कैसे, ये ना कर ले, ये मेरे से आगे ना चला जाए, जब मन में ये सारे थॉट्स आएंगे तो नया आइडिया कहाँ से आएगा?
0: बिल्कुल. और सबसे बड़ी बात जो है कि आपने जो काम करने गए हो उसका जो अंडरलाइन है, वो जो आपका मन है वो ये है कि आपको खुशी मिलेगी. तो वो याद रख के आई थिंक अगर हम काम पे जाते हैं तो एक कहीं ना कहीं पूरा माइंड सेट चेंज हो सकता है. अभी बहुत सी बातें बाकी हैं, अभी बहुत कुछ हमने पूरा प्रोफेशन में जाना है, एक एक चीज़ के बारे में बात करनी है, लेकिन फिलहाल वक्त खत्म हो रहा है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: ओम शांति.
0: ओम शांति. घर से बाहर जब कदम रखते हैं तो क्या हम कोऑपरेशन को छोड़कर कंपटीशन की भावना को ही लेकर चलेंगे, या फिर जहां हम जा रहे हैं, जो हमारा कर्म क्षेत्र है, जहां हमें अच्छा लगना चाहिए, उसे हम अच्छा लगने की तरफ लेकर जाएंगे और पूरी कोऑपरेशन के साथ, पूरी क्रिएटिविटी के साथ अपना 100% दे पाने की जो कैपेबिलिटी हम में है वो दे पाएंगे. तो यही सब कुछ हमारी श्रृंखला में आगे भी चलेगा. कोई सवाल है आपके पास, कोई ऐसी बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999 3445, 9999 3446, 9873 666 555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इन दिनों रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगली कड़ी में भी फिर चलेंगे आपके ऑफिस में और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपने इनसिक्योरिटी को या फिर कॉम्पिटिटिव जो भावना हमारे मन में कभी कभी आ जाती है उसे दूर करके एक बेहतर ऑफिस माहौल तैयार किया जा सकता है. अब दीजिए इजाजत. ओम शांति.

0: नमस्कार दोस्तों, नई किरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज देखेंगे कि आज के दिन किन किन लोगों का जन्मदिन, उसके बारे में हम सभी को जानकारी तो दे देंगे, लेकिन साथ साथ आज कौन सा दिवस है आप सभी को पता है। जी हाँ, आज विश्व परिवार दिवस है, तो विश्व परिवार दिवस के बारे में भी हम बातें करेंगे। जी हाँ, 15 मई को यह विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। प्राणी जगत में परिवार सबसे छोटी इकाई है, या फिर समाज में भी परिवार सबसे छोटी इकाई है। हाँ जी, नमस्कार, ओम शांति।
1: नमस्कार सर जी, ओम शांति। कल आपको फोन नहीं किया हमने, 9 बजे के

0: ओम शांति,
1: ओम शांति। आपको विश्व परिवार दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, विश्व परिवार दिवस आज के दिन मनाया जाता है। अमेरिका ने 1994 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित किया था। समूचे संसार में लोगों के बीच परिवार की अहमियत बताने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाने लगा है। आप सभी को याद है, जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनको सभी को याद है, पहले हमारा घर परिवार तीन तीन चार चार भाई इकट्ठे रहते थे, बड़ी बड़ी फैमिली होते थे, पांच पांच भाई, तीन तीन बहनें, चार चार बहनें, सब परिवार इकट्ठा रहता था। चाचा, मामा, काका, सारे परिवार एक साथ रहते थे। लेकिन जैसे समय बढ़ता गया, लेकिन वैसे परिवार अलग अलग होते गए। तो उस परिवार में भी बहुत प्यार मिलता था। जैसे कि अभी भी याद है, कई लोग छुट्टियों में मामा के घर जाते थे, मौसी के घर जाते थे, लेकिन वो ज़माना अभी बदल गया है। सब अभी मोबाइल फ़ोन आ गए, सब इससे ही अभी जाके बात करते, दिल को हल्का करते। लेकिन जो परिवार का आपसी प्यार है, जो बैठ के बातें करना, एक में कुछ शेयर करना, वो अभी कम हो गया है। तो भारत की ये प्राचीन संस्कृति रही है कि परिवार इकट्ठा हो। आज भी कई परिवार इकट्ठे रहते हैं, बड़े खुशी में रहते हैं, बड़े परिवार है, सारे इकट्ठे रहने में बहुत बड़ा प्यार भी मिलता है, एक सुकून मिलता है। अथर्ववेद में परिवार की कल्पना करते हुए कहा गया कि अनुवृत्त पितु पुत्रो माता भवतु समना, जायापत्ये मधुवती वाच वदतु शांतिवम। इसका अर्थ है कि पिता के प्रति पुत्र निष्ठावान हो, माता के साथ पुत्र एक मन वाला हो, पत्नी पति से मधुर तथा कोमल शब्द बोले। परिवार कुछ लोगों के साथ रहने से नहीं बन जाता, इसमें रिश्तों की एक मजबूत डोर होती है। सौ के टूट बंधन होते, एक दूसरे की सुरक्षा के वादे और इरादे होते। हमारा यह फर्ज है कि इस रिश्तों की गरिमा को बनाए रखे। हमारी संस्कृति में, परंपरा में पारिवारिक एकता पर हमेशा से बल दिया जाता है कि परिवार एक संसाधन की तरह होता है। परिवार कुछ अहम जिम्मेवारियां भी होती है। इस संसाधन को कई तत्व भी होते हैं। जी हाँ, ओम शांति, नमस्कार।
2: हेलो जी, नमस्कार बाबू जी, मैं मानपुर से बुरीलाल बोल रहा हूँ।
1: बोलिए बुरीलाल जी, कैसे हैं?
2: बहुत ही बढ़िया है, आप बढ़िया। प्रोग्राम को सुनकर के आनंद ले रहे हैं। आनंद के साथ में, हाँ, इस आनंद के साथ में मेरा भी एक गाना हो जाएगा।
1: जी जी जी, जरूर जरूर जरूर।
2: सामने तो आइए, चलिए, चुप चुप रहने में क्या राज है।
1: जी,
2: ये गाना हो जाएगा तो सभी साथियों को भी आनंद आएगा और हमारे को भी मजा आएगी।
1: जी जी,
2: इस मजा बढ़ाने के लिए सभी साथियों से हम संपर्क करते रहते हैं और आप साथ ही, आप जैसे आगे को मिल करके हमारे को अच्छा लगता है।
1: जी जी जी जी जी,
2: हाँ, इस खुशी को बढ़ाने के लिए हम आपसे संपर्क करते हैं। हमारी स्कूल एक प्रकार की प्रभावशाला है, इसमें अच्छी अच्छी बातें मिलती है, अच्छे अच्छे ज्ञान विज्ञान मिलते हैं, अच्छी अच्छी लोगों से मिलना होता है, बातें होती है, तो अच्छा लगता है।
1: जरूर जरूर। और आज विश्व परिवार दिवस है, इस परिवार दिवस की बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप भी रेडियो मधुबन के परिवार के हिस्से हो। जो भी हमारे श्रोता है, जो भी सुनते हैं, जो हमें हमेशा याद करते हैं, रेडियो मधुबन आपके दिल में और हमारे दिल में आप सभी है। तो विश्व परिवार दिवस की
2: संपर्क करते हैं सर।
1: जी जी जी जी जी जी,
2: एक मिलने से अच्छा लगता है हमारे को।
1: जी जी जी जी,
2: समय भी पास हो जाता है।
1: यस यस यस,
2: मिलना भी अच्छा
1: लगता है। जी जी जी, आप भी हमारे परिवार के हिस्सा हो। जी जी,
2: ठीक है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: जी जी जी, जरूर जरूर।
2: इंतजार करते होंगे, वो भी कहीं कहीं बैठे बैठे बैठे बैठे सुनते होंगे।
1: यस यस यस,
2: धन्यवाद
1: धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज विश्व परिवार दिवस है। विश्व परिवार दिवस के लिए तो बहुत सारी बातें बताई जाती है। तो हम ये चाहेंगे कि परिवार हमारा आबादित रहे, परिवार में कुछ अनबन न रहे। तो परिवार में प्रेम बढ़ाए, उसके लिए क्या क्या करना जरूरी है? क्योंकि परिवार में प्रेम, सम्मान और एकता बनाए रखना किसी भी घर की सबसे बड़ी ताकत होती है। एक ही परिवार तब मजबूत बनता है जब उसमें रहने वाले लोग केवल साथ नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे को समझते हैं, सहारा देते, दिल से जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप उसी प्यार में रहेगा, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को साथ

देंगे, दिल की बात समझते रहेंगे तो परिवार हमेशा टिकता है, उस परिवार में खुशी होती है। अगर हम एक दूसरे को साथ नहीं देते, मैं क्यों साथ दूं, मैं क्यों इनका काम करूं, मैं क्यों, मेरे को ही क्या पड़ी है, अगर मन में ऐसे भाव रखेंगे तो परिवार साथ नहीं निभाएगा। मैं हमेशा करता हूं, मैं हमेशा झुकता हूं, मेरे को क्यों झुकना है, अगर ऐसा रहेगा तो वो परिवार में प्यार नहीं दिखाई देगा, वो तो बिखरता रहेगा, उसमें दुख और दुख ही मिलेगा, सुख की बात ही नहीं रहेगा। परिवार में प्यार चाहिए तो अक्सर करके क्या हो जाता है, कभी कभी हमारे गलत फहमी बढ़ती है, हम बातचीत नहीं करते, रोज थोड़ा थोड़ा आपस में बैठकर बात भी करें, किस प्रकार से हमारे मन में गलत फहमी है, कभी कभी गलत फहमी भी बातचीत, केवल काम की बातें नहीं बल्कि मन की भी बातें साझा करें। और दूसरा, कोई अगर बात करता है हमें तो उसकी बात को न काटे, हम अपने को बड़ा होशियार समझते, वो बात उसकी पूरी नहीं होने देते और हम काट देते तो उसके दिल को ठेज पहुंचती है। और ये बात याद रखे, गुस्से में कभी कभी हमको गुस्सा भी आ जाता है, को तो गुस्से भले आ जाए लेकिन गुस्से में कभी कठोर शब्द ना बोले, अगर कठोर शब्द एक बार मुंह से निकलता है तो सामने वाले के दिल को घायल कर देता है, और वो शब्द इतने घायल कर देता है कि सालों साल वो भूल नहीं पाता, बोलता है कि तुमने पिछले साल ये बोला था, 10 साल पहले ये बोला था। तो ऐसे कभी कभी हम गुस्से में आकर कटु शब्द बोलते, तो याद रखना परिवार वाले ही है, हमारा परिवार है, तो भी कभी भी गुस्से में कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए कि उनके दिल को ठेस पहुंच जाए। हमारे घर में चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, सभी को हमें सम्मान देना जरूरी है, नहीं तो हम क्या बोलते, छोटे को क्यों सम्मान दे। लेकिन आज की जनरेशन ऐसी है तो उनको भी लगता है कि हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी बड़े हैं, हम भी इंटेलिजेंट हैं, हम भी होशियार हैं, बड़े को जो नहीं आता है हमें वो आ जाता है। आज कंप्यूटर का जो युग है, आज देखते हैं छोटे बच्चे इतना अच्छे तरह से मोबाइल चलाते जो बड़े बड़ों को नहीं आता, कंप्यूटर चलाते हैं। तो इस प्रकार से उनको भी लगता है आज की पीढ़ी जो बहुत होशियार है, तो उनको भी सम्मान देना चाहिए, उनकी भी बात सुने, बच्चों की बात सुने, उनको भी लगेगा कि हम बच्चों की बात कोई तो भी सुन रहा है। और साथ साथ जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी हम आदर करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि उन्होंने सारी दुनिया देखी, बहुत सारे अनुभवी है, तो उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे हमारे नाना जी हो, दादाजी हो, दादी हो। तो देखा जाए कि अभी अक्सर करके पति पत्नी में भी बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं, तो पति पत्नी भी आपस में एक दूसरे की इज्जत करे, सम्मान करे, अगर सम्मान करते हैं, सम्मान देते हैं तो झगड़े से बच जाते हैं। और सबसे मेन बात, किसी को भी अपमानित न करे, और खास किसी के सामने भी अपमानित न करे, जहाँ सम्मान होता है, प्रेम होता है, वह परिवार में प्यार बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए लेते एक छोटा सा ब्रेक। हर जो फरमाइश थी बुरेलाल की, जन्म जन्म का जरा सामने तो आए चलिए, ये जन्म जन्म का फेरे, इस पिक्चर का एक गीत है, तो हम आपको सुनाते हैं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

तो भूरीलाल जी, हमें लगता है ये गाना आपको बहुत पसंद आता होगा, तो जरा सामने तो आओ चलिए। ये मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाना था। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि आज विश्व परिवार दिवस है। तो विश्व परिवार दिवस में हम परिवार में, अपने परिवार में क्या क्या ख्याल रख सकते हैं। जब भी हमें गुस्सा आए तो गुस्से में ये निर्णय ले लें। कभी कभी हम गुस्से में आ जाते हैं और कुछ निर्णय ले लेते, गलत निर्णय ले लेते। तो गुस्से में जब हम आ जाते हैं तो गलत निर्णय ले, हम परिवार में मतभेद होते हैं, लेकिन परिवार में झगड़ा बढ़ाना या रिश्ता तोड़ना या रिश्तों में समाधान लाना ये हमारे हाथ में होता है। तो कोई भी बात को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। परिवार में प्यार तभी बढ़ता है जब हम आपस में के जो मतभेद है उसको मिटा देते हैं। जब गुस्सा आए तो कुछ देर शांत रहें, उसी समय फैसला न करें। कभी कभी हम गुस्से में आते हैं और कठोर फैसला कर लेते कि हम जिंदगी भर इनसे बात नहीं करेंगे, हम जिंदगी भर इनका कुछ नहीं सुनेंगे। तो ऐसे कठोर फैसला न करें, मैं ही सही हूँ, आप गलत हो। ये कभी ये ना सोचे कि ये भी हो सकता है कि वो भी सही है, हम गलत हो सकते। तो इसीलिए गुस्सा जब आए तभी थोड़ा शांत रहे। कई बार चुप रहने से भी परिवार में शांति रह सकती है और परिवार टूटने से बच सकता है। और परिवार के लिए कहा जाता है, परिवार में एक दूसरे की मदद करना भी जरूरी है। परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं है बल्कि जिम्मेवारी भी है। माँ बाप अपनी जिम्मेवारी निकाह बखूबी से निभाते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी जिम्मेवारी होती है। घर के काम भी मिल करके करें। बीमारी या परेशानी में साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी है। जब घर में कोई बीमार है, चाहे बुजुर्ग हो कोई भी हो, तो उस बीमारी में हमें उनको साथ देना चाहिए, नहीं कि ऐसे उनको अकेले छोड़ा। तो अकेले छोड़ते हैं तो उनको बहुत सारा दर्द हो जाता है। आर्थिक कठिनाई में एक दूसरे को दोष देने के बजाय सहारा दें। जब भी परिवार के ऊपर कोई भी संकट आता है तो हमें एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। संकट के समय जो साथ देता है वही तो अपना कहलाता है। और हम परिवार को साथ नहीं देंगे तो किसको देंगे? तो पहले सबसे शुरुआत अपने परिवार से करना चाहिए। परिवार

अंतर को समझना चाहिए। और जबकि परिवार बड़ा है तो कभी भाई भाई के बेटे, चाचा बहन के बेटे, ऐसा अगर बड़े परिवार होता है तो क्या होता है, कभी कभी ईर्ष्या की जाती है, तुलना की जाती है, मेरा बेटा तुम्हारा बेटा, तो ऐसे परिवार में तुलना करते तो ईर्ष्या भी हो जाती है। हर व्यक्ति अलग अलग है, हर बच्चे की बुद्धि का विकास अलग अलग है, हर एक की बुद्धि अलग अलग है, इसलिए कभी अलग अलग बच्चों से तुलना ना करें। तुलना होती है तो वहाँ टकराव हो जाता है, तुलना से दूरी बढ़ जाती है। इसके लिए क्या करें, एक में को प्रोत्साहित करें, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, उसकी गुण और विशेषता को देखें, ईर्ष्या से बचे, गुण और विशेषता को देखेंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे, कोई भी ताना नहीं मारेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपसी प्रेम बढ़ता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम आपको फिर से एक गाना सुनाना चाहते हैं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि आई बिलीव एट लीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। यू नो योर रिलेशनशिप इज़ ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज़ रिलेशनशिप नॉट द वर्क। लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते। से आई एम एंग्री, डोंट से आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट बींग असर्टिव, ये चीटिंग है अपने आप से दूसरे से भी। तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल है और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन एंड असर्टिव। डजेंट हैव टू बी लाउड, यू नो इट डजेंट हैव टू बी लाउड। हम सोचते हैं जोर से बोल दिया तो दैट इज असर्टिव, दैट इज अ ट्रेस ऑफ एंगर। आपका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो एनर्जी अक्यूमुलेट नहीं हुई है अंदर। तो इवन जब हमारा वॉल्यूम इस तरह से जोर से बढ़ जाता है, दैट एनर्जी हैज बीन क्रिएटेड इनसाइड। बहुत आराम से, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी एवरीवेयर, यू नो थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस। तो अंदर वो स्टेबिलिटी होगी वो बाहर अपने आप आएगी, वी विल नॉट हैव टू डू इट। एंड फिर डिसिप्लिन करने के लिए आपको जो डायरेक्शन देना है उसको आप देते हैं। तो आई थिंक एनर्जी एक्सचेंज विल बी वेरी कम्फर्टेबल बिटवीन द टू पीपल।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर से हम एक बार विश्व परिवार दिवस की ओर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आज विश्व परिवार दिवस है, उसके बारे में कुछ जानकारी हम आपने दी कि परिवार में एकता लाने के लिए, परिवार के आपसी संबंध एकमत होने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। जी हाँ, तो जरूर आगे हम कुछ टिप्स भी आपको बताना चाहेंगे। आजकल तो देखते हैं मोबाइल का जमाना है, परिवार में बहुत सारे, लेकिन देखते हैं सबके हाथ में मोबाइल, माँ के हाथ में अलग मोबाइल, पिता के हाथ में और बच्चों के हाथ में भी मोबाइल, सब मोबाइल में लगे रहते हैं। ये चित्र हर अखबार, हर जहां पर हमें देखने को मिलता है। तो हमें याद रखना है कि परिवार में जब घर में सभी साथ हो तो मोबाइल का उपयोग कम करें। क्या मोबाइल के कारण दूरी बढ़ जाती है, घर में रहकर भी साथ नहीं रहते तो ये भी ठीक नहीं है। तो रोज एक साथ खाना खाने की आदत भी डालें। जिस प्रकार से सभी ऑफिस जाते हैं, काम जाते हैं, फिर शाम को जब इकट्ठा आते हैं तो साथ में एक साथ भोजन करने की आदत डालेंगे तो परिवार में और ही प्यार बढ़ जाता है। जिस प्रकार से त्यौहार है, पूजा है, यात्राएं, छोटे छोटे कार्यक्रम है, साथ में मनाए। नहीं तो पिता अलग है, पत्नी अलग है, बच्चे अलग है तो त्यौहार की मजा नहीं रहता। सारा परिवार एक साथ है तो मज़ा बहुत अच्छा होता है। कोई छोटी छोटी यात्रा होती है, गांव की यात्रा होती है, कुछ विशेष त्यौहार होते हैं तो साथ में मनाने से वो खुशियाँ और दुगनी होती है। और साथ साथ ये भी ख्याल रखें कि सप्ताह में एक दिन परिवार के लिए रखें, क्योंकि आजकल क्या हो जाता है, आज महिलाएं भी काम पे जाती है, महिलाएं भी अभी पीछे नहीं है, वो भी बिजनेस करती है, दफ्तर संभालती हैं, तो कभी कभी उन्हें घर में टाइम देने के लिए समय नहीं मिलता। लेकिन सप्ताह में कम से कम एक दिन ऐसा रखें कि हम सारा परिवार एक साथ हो। तो एक साथ परिवार रहेगा तो क्या हो जाएगा, रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे। परिवार में कुछ होता है, कोई छोटी मोटी गलती सबसे होती है, तो छोटी मोटी गलती कोई इंसान करता है तो उसे बड़े दिल से क्षमा करें। छोटी छोटी बातों को दिल में न रखें, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया तो क्या हो जाता है, वो गलती अगर दिल में रखते हैं तो दिल घायल हो जाता है। माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए, कोई बात नहीं, बोलना सीखे, उनको आगे बढ़ाए, मोटिवेट करें। अगर हम उसको और डांटते रहेंगे, छोटी छोटी गलतियां मन में रखेंगे तो ये भी परिवार को बिखेर देता है। और जो भी भूतकाल में जो घटनाएं घटी है उसे याद न करें। नहीं तो हम क्या करते हैं अक्सर करके, पिछले साल तुमने ये किया था, पिछले महीने में ये किया था। अगर छोटी छोटी गलतियां भी बार बार दोहराते तो क्या हो जाता है, उससे भी वो परिवार में संघर्ष निर्माण होता है। तो एक दो को माफ करें, माफी करने से, क्षमा करने से परिवार भी इकट्ठा रहता है। बच्चों के सामने हमेशा अच्छा वातावरण रखें, प्रसन्न रखें, घर को सदा प्रसन्न रखें, घर में कोई कूड़ा किचड़ा ना हो, सदा साफ सुथरा हो, घर के पर्दे, घर के सब कोई चीज़ें जहाँ कहाँ क्लीन हो, तो उससे भी क्या होता है, घर का वातावरण भी अच्छा होगा। यदि घर में प्रेम और सम्मान होगा तो बच्चे भी वैसे व्यवहार करेंगे, बच्चे भी वही सीखेंगे। अगर घर में ही वैसा होगा वातावरण होगा तो बच्चे क्या सीखेंगे, तो बच्चों भी बड़ों से ही सीखते हैं। हर समय लड़ाई झगड़ा ना हो, अगर लड़ाई झगड़ा पति पत्नी करते तो बच्चों के मन में क्या असर होगा, तो इसलिए शांति से प्रेम पूर्वक बच्चों के सामने हमेशा रहे तो घर का वातावरण भी अच्छा होगा। और जैसे कि हमारे बुजुर्ग, जो बूढ़े बुजुर्ग थे, उन्हें भक्ति भाव के संस्कार रहते, वो किसी न किसी देवता के, इष्ट देव की भक्ति करते, पूजा करते हैं, तो संस्कार अगर घर में अब तक भी करेंगे, कोई पूजा पाठ करेंगे, धार्मिक भावना अगर हमारे मन में होगी, ईश्वर के प्रति आस्था होगी, सामूहिक प्रार्थना करेंगे, जैसे कभी गणेश चतुर्थी होती है या नवरात्रि होती है तो सामूहिक प्रार्थना करें, आरती करें, तो क्या हो जाता है, उस घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो जाता है। और अच्छे संस्कार हमारे बच्चों को दिए जाते हैं, भक्ति भाव के संस्कार अगर बच्चों के मन में है तो झूठ के रास्ते पर वो चलेगा नहीं, लड़ाई झगड़े के रास्ते पर चलेगा नहीं, उसके मन में सच्चाई के बीज बोए जाएंगे। और सभी को धन्यवाद, शुक्रिया करने के संस्कार डालें, थोड़ा आध्यात्मिकता से भी बच्चों को जुड़ाए रखें, तो आध्यात्मिकता से क्या हो जाता है, उनके मन में सभी के प्रति प्यार की भावना इमर्ज रहती है।
परिवार में कभी भी मैं नहीं, हम सब, मैं ही करता हूँ, मैं ही करती हूँ, मैं ही जिम्मेवारी करता हूँ। अगर मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता था, मैं नहीं होती करती तो कुछ नहीं करता। तो ये मैं परिवार में अहम का रोल है, वो परिवार को दूर करता है, एक दो से दूर करता है। हमारा बड़ा परिवार है, कोई भाई भाई का है, भाई बहन का परिवार है, चाचा मामा का परिवार है, सब अगर एक साथ रहते तो कभी ये नहीं कहना कि मैं ही करता हूँ, मैं ही बड़ा हूँ या मेरे कारण परिवार चल रहा है। तो अगर मैं आ जाता है तो वहाँ दूरी हो जाती है। तो परिवार में हर एक कार्य से रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, हम सब साथ हैं, हम हैं, कभी भी मैं नहीं करें। रोज मुस्कुराए के मिलिए, सभी आपस में परिवार को मिलते तो मुस्कुरा कर मिलिए। कुछ होता है कल की बात कल छोड़ दीजिए, आज सवेरे उठ जाते तो मुस्कुरा कर बोलिए, सभी को धन्यवाद दीजिए और उनसे बातचीत करिए, उनका हाल पूछिए। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातों का अगर हम परिवार में ख्याल रखते हैं तो परिवार में प्यार पनपता है और ऐसा सुखी परिवार, मीठा परिवार आपका ही बनेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पे असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रहे, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

0: स्थापित करने की स्थिति में है और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने
1: पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा निवेश प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने पर
2: नमस्कार
1: में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा निवेश प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद
2: को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिन में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए फिर से हम आज के दिन के ओर जा रहे। आज विश्व परिवार दिवस है और विश्व परिवार दिवस के बारे में आप सभी को बहुत सारी बातें बताइए। दोस्तों कल देखते हैं, कल वट सावित्री है और वट सावित्री का व्रत हमारे भारत में बहुत प्राचीन काल से करते आए हैं। वट सावित्री के बारे में बताना चाहेंगे तो वट सावित्री की व्रत की कथा पति की लंबी आयु स्वास्थ्य और सौभाग्य का प्रतीक है। इसके अनुसार पतिव्रता सावित्री अपने दृढ़ संकल्प और भक्ति के बल पर यमराज से अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस ले आई थी। इस पौराणिक कथा को वट वृक्ष जो बरगद का पेड़ है वो भी कहा जाता है। तो ये कहानी हम आपको विस्तार से पूरा सुनाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वट सावित्री की जो सत्यवान सावित्री की कथा भी कहा जाता है, सत्यनारायण की कथा भी कहा जाता है, तो आपको हम सुनाना चाहते हैं।

तो चलिए आपको बताते हैं वट सावित्री व्रत की कथा के विषय में। यह वट सावित्री का व्रत एक प्राचीन हिंदू परंपरा है। इस व्रत को शांति, सुख और समृद्धि की कामना के लिए करते हैं। तो यहाँ जो सावित्री की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, यह आध्यात्मिक महत्व को तो दर्शाती ही है, साथ ही साथ सच्चा प्रेम, अटूट प्रतिबद्धता के द्वारा हम कठिन से कठिन परिस्थितियों पर व चुनौती पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में ये कहानियाँ बताती है। तो श्रोताओं, चलिए सुनते हैं आज हम सत्यवान और सावित्री की कहानी, जो कहानी है भक्ति व दृढ़ संकल्प की कहानी।

मृत्यु के भय से मुक्ति। सावित्री का आचरण मृत्यु को शत्रु से संवादकर्ता के रूप में पुनर्भाषित करता है। उपस्थिति और सद्गुण के साथ मृत्यु का सामना करने से इसका आतंक कम होता है और मुक्ति के लिए स्थान खुलता है। नेतृत्व और वार्ता स्थापित प्रणालियों का सामना करते समय शांत तर्क नैतिक स्पष्टता और दृढ़ता का प्रयोग करें, जैसे कि सावित्री ने यमराज के साथ किया। हानि और बीमारी से निपटना। इसमें सावित्री के चरित्र को देखकर हमें शिक्षा मिलती है कि हानि और बीमारी ये चीजें तो हमारे सभी के जीवन में कभी ना कभी आती ही हैं। तो इसमें स्वास्थ्य संकट के समय व शोक के समय मानसिक स्थिरता को गरिमापूर्ण तरीके से विकसित करें।

तो यहाँ आपको एक बात और बताना चाहेंगे, वो ये कि सवाल यहाँ ये उठता है कि वट सावित्री का व्रत करते हैं, मगर उसका जो डीपली शिक्षा हमें उससे प्राप्त होती है, क्या इस पर कभी हमने ध्यान से सोचने की कोशिश की है? इसमें हमारे जीवन के लिए कितनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं छिपी हैं। रमेश जी, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है अपनी मम्मी को या सबको व्रत करते हुए ना। खाली होता क्या है वो तो आप भी जानते हैं, खाली जो बताया किताबें पढ़नी, रिचुअल्स करे, दैट्स ऑल। लेकिन शायद ये तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं और हमारे श्रोता भी आज समझ जाएंगे कि खाली किताब पढ़ने से, व्रत करने से उसका महत्व इतना नहीं होता है जितना कि इससे जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं, अगर इस पर हम ध्यान से सोचें तो हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। तो जैसे यहाँ हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने श्रोताओं को कि जीवन में कितनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं छिपी हैं इसमें। अब सवाल ये आता है कि इस आधुनिक युग में ये सावित्री की जो शिक्षाएं हैं, हम अपने जीवन में कैसे लागू करें? कभी आपके दिमाग में ये चीज आती है रमेश जी? जी, सावित्री की कहानी पति को यमराज से वापस लाने की ही नहीं है, जो प्रेम, बुद्धि, संकल्प व संवाद की कहानी है। जो आज के रिश्तों में चार जगह उनकी शिक्षाएं एकदम फिट बैठती हैं। पहला, चुनाव में संकल्प। पिता ने मना किया, फिर नारद जी ने कहा कि वे अल्पायु हैं, फिर भी सावित्री ने अपना पार्टनर खुद चुना और उसके साथ खड़ी रही। आज हम इसको कैसे लागू करें? तो अपना परिवार खुद चुनो, परिवार व समाज की प्रेशर से नहीं, अपनी वैल्यू से मैच करने वाला इंसान चुनो। सावित्री ने सत्यवान की गरीबी देखी, उसकी मौत नहीं, कैरेक्टर देखो, बैंक बैलेंस नहीं। अगर कोई बेईमान है, वॉयलेंट या डिसरिस्पेक्टफुल है, तो प्यार इसको बदल देगा, इसका भ्रम कभी मत पालो। एक बार चुनाव कर लिया तो कमिटमेंट के बाद उसका साथ निभाओ, उसको मुश्किल में मत छोड़ो। बुद्धि से संवाद। सावित्री यमराज के आगे रोई नहीं, लड़ी नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं, उसने यमराज से धर्म, नीति

थी। बचाया इसलिए क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी। रिश्ते में प्यार, इज्जत व बुद्धि, सब कुछ एक भी मिसिंग है तो सावित्री वाला रिश्ता नहीं हो सकता। साथ ही प्रेम में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और बुद्धि को नहीं खोना। तो साथियों, यहाँ जैसे आपने सुना और हमने आपको यहाँ कुछ कंक्लूजन इस स्टोरी का बताया है, तो उम्मीद करते हैं रमेश जी आप भी बताइए जरा श्रोताओं को।

वहाँ तक अप्लाई करना है। जब हम रिचुअल के साथ उसका जो करेक्ट जो एप्लीकेशन होते हैं अपनी हम लाइफ में करते हैं तो 100% वो चीज़ हमें सफलता दिलाती है, चाहे परिवार हो, समाज हो या अपने हमारे आपसी रिश्ते हों। तो आज जो सत्यवान सावित्री की, जो बट सावित्री के व्रत की आप लोगों ने कथा सुनी और जिसका कंक्लूजन निकला है, जब आप अपनी लाइफ में इसको अपनाएंगे और जब इससे आपको लाभ होंगे तब आप मनाएंगे सच्चे सावित्री की व्रत कथा।

ओम शांति।

तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए यहाँ कार्यक्रम को पूरा करने का टाइम हो गया है। मेरे को लगता है वट सावित्री की कहानी आप सभी को बहुत ही पसंद आई हुई होगी, क्योंकि वट सावित्री का दिन कल है और कल नहीं करें इस कार्यक्रम अपना नहीं होता है, डायरेक्ट सोमवार से शुक्रवार नहीं करें इस कार्यक्रम का आप लाभ लेते हो। तो फिर मिलते हैं सोमवार को नई करें इस कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओम शांति।

0: मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अभी बजे हैं सुबह के 10। स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

आशियाना में आज के कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करेंगे और घरेलू नुस्खे भला कैसे भूल सकते हैं जरूर देंगे। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो नए नए व्यंजन जरूर सिखाएंगे। पेन और डायरी लेकर के तैयार रहिएगा, सामान्य जानकारी भी देंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और आज का विचार इस प्रकार है, अपनी संपत्ति का भी त्याग के साथ उपभोग करिए। अपनी संपत्ति का भी त्याग के साथ उपभोग करिए। आज के विचार का विस्तार इस प्रकार है, जैसे मिलावट करने से सोना खोटा हो जाता है, उसी प्रकार बेईमानी भ्रष्ट आचरण की मिलावट से व्यक्ति भी खोटा हो जाता है। खरा वही है जो अंतरात्मा की आवाज पर ईमानदारी की कमाई से संतुष्ट है। किसी का छीन कर झपट कर नहीं, बल्कि अपनी संपत्ति का भी त्याग के साथ उपयोग करिए। किसी के धन को लालची दृष्टि से मत निहारिए। किसी को महल में रहने की इच्छा हो, ये बुरी बात नहीं है, परंतु वह आज से ही महल खड़ा करने का कार्य आरंभ कर दे। दूसरे के बने बनाए महल को लोभ की दृष्टि से न देखे। यही त्याग का भाग्य जमा होता है। और अपनी संपत्ति का भी अगर हम त्याग करके उपभोग करते हैं तो वो संपत्ति भी जैसे एक रुपया है, फिर भी

0: Hello, I'm Alexander, diplomat from Russia, and you are listening to FM Radio Madubar. Keep listening and keep smiling. You can also tune radiomadyuban.in on internet, even Russia, even everywhere.
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं घरेलू नुस्खे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में रोगों का प्रभाव पड़ता ही रहता है। हम छोटी मोटी बीमारियों का इलाज स्वयं कर सकते हैं, पर थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे नुस्खे देने जा रही हूँ दम्मे के रोगियों के लिए। आप क्या करेंगे, तुलसी की 10 पत्तियों के साथ वासा बोले तो अड़ूसा के भी आप 10 पत्ते ले लीजिए और 10 पत्ते तुलसी के। फिर आप 250 मिलीलीटर पानी में अच्छी तरह उबालिए और इसका काढ़ा तैयार कर लीजिए, ठीक है। फिर ये काढ़ा 21 दिन तक सुबह सुबह खाली पेट पीना है। इससे दम्मा में काफी राहत मिलेगी, ठीक हो जाएगा दम्मा। पुनः दोहरा रही हूँ इस नुस्खे को, ध्यान से सुनिएगा। दम्मे के रोगियों के लिए है तुलसी की 10 पत्तियां और वासा अड़ूसा के भी 10 पत्ते। इन दोनों को 250 मिलीलीटर पानी में अच्छी तरह उबालिए। उबाल करके इसका काढ़ा

बना दीजिए। फिर इस काढ़े को छान करके सुबह सुबह खाली पेट पीना है 21 दिन लगातार। इससे दमा ठीक हो जाएगा। अब अगला नुस्खा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। मौसम के अनुसार खांसी होती है ना, उसके लिए तो मौसम के अनुसार खांसी होती है, उसके लिए आप लीजिए सेंधा नमक की लगभग 5 ग्राम की डली, ठीक है। इसको आप चिमटे से पकड़िए और चिमटे से पकड़ करके आप गैस पर या तवे पर गरम कर लीजिए। जैसे हम पापड़ी सेकते ना चिमटे से पकड़ के, पापड़ पापड़ी, इसी तरह आप सेंधा नमक की डली को सेकिए और जब ये डली लाल हो जाए ना तो गरम गरम डली को तुरंत आप आधा कप पानी में डुबो दीजिए। डुबा करके फिर से तुरंत निकाल दीजिए, ठीक है। ये नमकीन गरम पानी को एक ही बार में पी जाइए, एक ही घुट में। ऐसा नमकीन पानी सोते समय लगातार 2-3 दिन पीने से खांसी, विशेष करके जो बलगम वाली होती है ना, उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। फिर आप नमक की डली को सुखा करके रख लीजिए और फिर अगले प्रयोग में आप इस तरह यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल है ना नुस्खा, पुनः दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मौसम के अनुसार खांसी होती हो तो आप सेंधा नमक की लगभग 5 ग्राम की डली को चिमटे में पकड़ करके आग पर आप सेकिए या फिर तवे पर भी आप सेक सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए डली एकदम लाल हो जानी चाहिए। फिर इतनी गर्म डली को आधा कप पानी में तुरंत डालिए और डालते ही निकाल दीजिए और इस गर्म पानी को, नमक वाले पानी को आप एक ही घूट में पी जाइए। इससे ये पानी आपको 2-3 दिन रात को सोते समय पीना है। इससे विशेष करके जो बलगम वाली खांसी होगी उसमें तो राहत मिलेगी ही, साथ ही साथ मौसम के अनुसार होने वाली खांसी पर भी कंट्रोल हो जाएगा और खांसी की तकलीफ ठीक हो जाएगी, ठीक है। फिर इस नमक को आपको सुखा देना है, अगले प्रयोग में फिर से इस नमक को आप यूज कर सकते हैं। और लास्ट नुस्खा भी आप ध्यान से सुनिएगा। गला बैठ जाता है कितनी ही बार, है ना, तो गला बैठ जाता है तो इस कंडीशन में आप मुलेठी के चूर्ण को पान के पत्ते में रखकर खाइए। इससे बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है। या फिर आप सोते समय 1 ग्राम मुलेठी के चूर्ण को मुख में रख करके देर तक चबाते रहे और वैसे ही मुंह में रख करके सो जाइए, ठीक है। सुबह ही सुबह आप देखेंगे कि गला साफ हो जाएगा, गले का दर्द, अगर सूजन भी होगा तो उसमें भी आराम मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा नुस्खा है, ध्यान से सुनिएगा, पुनः दोहरा रही हूँ। बार बार गला बैठ जाता है तो आप मुलेठी के चूर्ण को पान के पत्ते में रखकर खाइए। इससे बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है। या फिर आप सोते समय 1 ग्राम मुलेठी के चूर्ण को मुख में रख करके कुछ देर हल्के हल्के चबाते रहिए, फिर वैसे ही चबाते चबाते सो जाइए, ठीक है। सुबह ही सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह, गला तो साफ हो गया, गले का दर्द भी ठीक हो गया, जो सूजन थी वो भी ठीक हो गई। तो इस तरह ये नुस्खे बहुत ही लाजवाब है और आप आजमा सकते हैं और महंगे भी नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना, और साइड इफेक्ट भी नहीं होते इसके। तो चलिए, ये तो हुए घरेलू नुस्खे, अब फिर से सुना देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो।

प्रीत में बोलो एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक सूरत

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए खुशनुमा जीवन की बातें करते हैं। सविता जी हमारे साथ बने हुए हैं। सविता जी आपका अपने घर में स्वागत है।
2: उषा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, रेडियो मधुबन का भी थैंक्स, और बहुत अच्छी बातें आप कह रही थी, कविता बहुत सुंदर लगी मुझे, जरा एक बार फिर से दोहराइए।
1: ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा
2: जी,
1: कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को
2: जी,
1: अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा।
2: देखिए बात अभी आपने जो की कि अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ेगा, तो इस पर एक कहावत मुझे भी याद आ गई
1: जी, बिल्कुल।
2: पुराने जमाने में कहते थे खुद ही मरने से स्वर्ग प्राप्त होगा, किसी और के मरने से हमको स्वर्ग नहीं प्राप्त होगा, यदि हमें स्वर्ग प्राप्त करना है तो खुद ही मरना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, अगर अपने रास्ते में हमें उजाले करने हैं, अपने लक्ष्य तक हमको पहुंचना है, तो ये जान लीजिए कि हमको खुद ही मेहनत करनी होगी।
1: तो मरने के नाम से मरने के नाम से दो लाइनें फिर से मुझे याद आ रही है सविता जी,
2: फरमाइए।
1: देखिए नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती,
2: वाह,
1: नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती, मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता।
2: वाह वाह, देखिए जिसे तैरना आता है वो सागर को पार कर लेगा
1: जी, और ठीक उसी तरह परिस्थितियां कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती
2: जी,
1: परिस्थितियां कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती है सविता जी जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता,
2: उसका रास्ता ही नहीं मालूम होता है कि हम कैसे निपटें, तब हमें लगता है कि रुई भी जैसे लगता है राय भी पहाड़ बन गई है
1: जी, बिल्कुल।
2: और कुछ लोग ऐसे होते हैं आप देखिए बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में पहाड़ को
1: राय बना देते हैं।
2: हाँ तो ये सब जो बातें हैं कहने का तात्पर्य इन तीनों चारों जो अभी हम लोगों ने बातें की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सबसे यही निकलता है कि बिना मेहनत के आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल सविता,
2: कई बार लोग कहते हैं कि मेरे भाग्य में नहीं था, मेरे भाग्य खराब हैं, या कर्म को कोसते हैं, भाग्य को कोसते हैं, लेकिन अपने कर्मों की तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए इसे कहा गया कर्म प्रधान है और कर्म ही पूजा है। पूजा हम कर रहे हैं, कई बार देखिए होता है हमारे जीवन में हम बोलते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, ये किया, या पूजा पाठ भी बहुत करते हैं तो उससे हमें भगवान दे देगा लेकिन कहा गया कि कर्म करना, जो हम कर्म करेंगे वही वास्तविक पूजा होती है और उसी से ही हमको फल की प्राप्ति होती है। जीवन में कितने भी अंधेरे क्यों ना आ जाएं, दीपक सच में हमें ही जलाना पड़ेगा। जैसे घर में अगर लाइट नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, हर कमरे को रोशन करने के लिए मोमबत्ती खुद ही जलाएंगे
1: जी।
2: अब कमरे तो अपने आप रोशनी करेंगे नहीं, उसे हमें ही करना पड़ता है। तो उषा जी बहुत अच्छी बात लगी मुझे ये बात कि हाँ मेहनत हमें करना पड़ेगा और जीवन के अंधेरों से घबराना नहीं है बल्कि उससे लड़ना पड़ेगा।
1: लेकिन सविता जी आजकल हम देखते हैं कि लोग बाग मेहनत से कतराते हैं और देखते हैं कि वो कहते हैं ना कि राम नाम जपना पराया माल अपना
2: जी,
1: ये वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं।
2: हाँ, क्योंकि उनके मन में ये है ना कि रोशनी तो हमें पूरी चाहिए
1: जी,
2: पर दीपक जलाना भी ना पड़े और दीपक बन के जलना भी ना पड़े। देखिए दीपक में कितना परिश्रम करता है दीपक, खुद जल के दूसरों को रोशनी देता है।
1: बिल्कुल
2: ना, तो दूसरों की खुशी के लिए हमें अपनी खुशी की कई बार कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है, तब जाकर हम दूसरों के लिए भी दीपक बन पाते
1: जी।
2: और हमारी जो सोच है, समझ है, या हमारे जो कर्म है वो संसार के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। और जब हम स्वयं ही कहते हैं कि कई बार कहते घर का दीपक घर में ही आग लगा दे,
1: अक्सर देखते हैं अपनी इन्हीं आंखों से कि ऐसा भी हो रहा है समाज में।
2: क्या है? हम सोचते हैं हम बहुत समझदार हैं और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें हमारा फायदा तो होता है, ये सत्य है, लेकिन जो हमारे चारों तरफ का माहौल होता है, हमारे आसपास के लोग होते हैं, चाहे फैमिली में हो या हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ हो या पास पड़ोस में, उनको नुकसान पहुँचाते रहते हैं
1: जी।
2: मैंने देखा है कई बार कई लोगों को, बहुत अच्छे होते हैं, समझदार होते, बुद्धिमान होते, उन्हें दुनिया की नॉलेज होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, सारी नॉलेज सिर्फ अपने तक ही रखते हैं, मतलब अपने लिए ही उसका उपयोग है और दूसरों को मिसगाइड करते रहते हैं, है ना। और कई बार देखिए घर में ही घर का नुकसान ही कर डालते हैं कई लोग, तो घर के दीपक से घर का ही नुकसान हो जाता है। और कई बार देखिए आप कि जो दीपक होते हैं घर में भी उजाला करते हैं और बाहर भी उजाला करते हैं।
1: जी,
2: तो वैसा ही दीपक बनना है हमें।
1: बिल्कुल सविता जी, बाकी कहते हैं कि हम दूसरों को ठगते हैं लेकिन घर में ही हम ठगे जाते हैं
2: कई बार होता है। हाँ,
1: होता है, हमारे बच्चे ही हमें धोखा देते हैं फिर।
2: और दीपक भी उषा जी कई तरीके के बताए गए हैं दुनिया में, जैसे कुल दीपक कहा गया जो कुल के नाम को रोशन करे। कई होते हैं दीपक आशाओं के दीपक, जो हमारे मन में इच्छा है, संकल्प है, भाई हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। दुनिया में न जाने कितने लोग कितने प्रकार के आशाओं के दीपक जगा के बैठे हुए हैं। तो यदि हमारी इच्छाओं के दीपक, आशाओं के दीपक अच्छे से जल रहे हैं तो हमें भी खुशी होती है और उससे दूसरों को भी प्रकाश मिलता है। और कई बार हमारे द्वारा दूसरों की इच्छाएं पूरी होती है, आशाएं पूरी हो जाती हैं, तो ये भी एक प्रकार का दीपक जलाया जाता है ना। आशाओं के दीपक है, देखिए कुल दीपक है, उम्मीदों के दीपक है, ऐसे सब जलाते रहते हैं। और इसी दीपक की बात से याद आ रही उषा जी कि हमारे देश भारतवर्ष में बहुत बड़ा त्यौहार दिवाली मनाई जाती है
1: जी,
2: है ना। तो ये इसी का मतलब इसी का एक प्रतीक है
1: जी,
2: कि खुशियों के दीपक जलाना, उम्मीदों के दीपक जलाना, सफलता के दीपक जलाना। तो ये दीपक के रूप में जो कहा गया है कि हाँ भाई दीपक बहुत सुंदर, देखने में भी बहुत सुंदर प्रतीत होता है, तो उसकी जो रोशनी होती है वो बहुत आकर्षण मूर्त होती है, आकर्षित करती है दुनिया को।
1: बिल्कुल सविता जी, पर बात चल रही थी कर्म की, कि कर्म किए बिना, कहते हैं कि भोजन भी हमारे सामने आता है लेकिन हाथ से कोए को तो तोड़ना ही पड़ेगा तभी मुंह में रखेंगे और मुंह में जाएगा। बाकी भोजन आ गया सीधा बना बनाया और हम मेहनत ना करें तो थाली भी चली जाएगी।
2: तो वही हाल है ना, दीपक तो जला लिया लेकिन उसमें तेल ही नहीं डाला हमने तो वो बुझ जाएगा। कर्म ही नहीं किया, एक बार तो जला लिया, और जब कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो जीवन में कर्म करना अति आवश्यक है और कर्म ऐसा होना चाहिए उषा जी जो कि महान बन जाए, पूजनीय बन जाए, गायन योग्य बन जाए। कर्म तो दुनिया में तमाम लोग करते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, कुछ विकर्म करते हैं, कुछ सुकर्म करते हैं, है ना। लेकिन जो कर्मों का महत्व है, बहुत श्रेष्ठ कर्म हमें करने चाहिए।
1: कर्म का भी ज्ञान होना चाहिए कि हमें किस तरह के कर्म करने हैं जिससे हम भी खुश रहे और हमारे जो आस पास है, हमारे जो संपर्क में आते हैं वो भी सदैव खुश रहे। तो कर्म हमेशा अच्छे ही करने हैं, अच्छे कर्मों के द्वारा स्वयं भी खुश रहेंगे, औरों को भी खुश रख सकेंगे। बाकी तो दुखों का तो कहते हैं कि विस्तार बहुत है, लेकिन कर्म सदैव श्रेष्ठ करने हैं और कर्म करना ही है, कर्म से भागना नहीं है। तो चलिए सविता जी और भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो सुना देते हैं एक गीत।
3: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
4: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
3: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: क्या खूब लिखा है किसी ने, गांव को गांव ही रहने दो साहब, क्यों शहर बनाने में तुले हुए हो। क्या खूब लिखा है किसी ने, गांव को गांव ही रहने दो साहब, क्यों शहर बनाने में तुले हुए हो। गांव में रहोगे तो माता पिता के नाम से जाने जाओगे और शहर में रहोगे तो मकान नंबर से पहचाने जाओगे। तो ये थोड़ी सी सविता जी मेरे को याद आ गई थी ऐसे ही कॉमेडी शायरी, तो मैंने सुना दी।
2: बहुत अच्छी बात कही,
1: क्योंकि अपने सविता जी अपने क्या टॉपिक का नाम ही है खुशनुमा जीवन। कोई भी बात कहो लेकिन खुशी वाली होनी चाहिए,
2: खुशी से
1: और उससे खुश, हाँ उससे खुश रहने चाहिए सुनने वाले भी और हम बोलने वाले भी।
2: और जो अभी आपने सुनाई ये बात हमारी पीछे वाली बात से मिलती जुलती है,
1: बिल्कुल मिलती जुलती
2: है। जैसे उन्होंने क्या कहा कि अगर हम गांव में रहेंगे तो माता पिता के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि माता पिता का नाम होता है वहां पे, उनकी जन्मभूमि होती है, उनके कर्म होते हैं, जिस वजह से हमारी भी पहचान बनती है।
1: जी बिल्कुल।
2: और शहर में हमारी पहचान तो होती नहीं, हम क्या हो जाते हैं, मकान नंबर से जाने जाता। और दूसरा, जब हम कर्म ऐसे करेंगे तो शहर में भी हमारा नाम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन यह है कि कर्म का महत्व गांव में भी बताया गया है और शहर में आके व्यक्ति वो उतने अच्छे नहीं कर पाता, क्योंकि जीवन ऐसा बन जाता है भाग दौड़ का, एक मशीनी जीवन हो जाता है उषा जी, और पत्थर जैसा हो जाता है। कई बार आप देखो एक अपार्टमेंट में रहने वाले अगल बगल क्या हो रहा है उनको नहीं पता होता, लेकिन गांव में ऐसा होता है उषमन?
1: नहीं, पूरे गांव का पता होगा कि फलानी जगह कौन रहते हैं, अरे वो रहते हैं, और यहाँ अपने बाजू में कौन रहता है वो भी नहीं पता, शहरों में
2: जीवन में क्या बीत रहा है ये भी नहीं पता होता है।
1: जी बिल्कुल।
2: और गांव में आप देखो कई पीढ़ियों तक की बातें लोगों एक दूसरे को बताते हैं कि उनके परिवार के लोग ये थे वो थे ऐसे थे वैसे थे, या आते जाते दरवाजे से भी गुजरते हैं तो दुआ सलाम होती रहती है, राम राम होती रहती है।
1: बिल्कुल होती
2: है। लेकिन यहाँ तो कोई किसी की शक्ल ही नहीं देख पाता।
1: यहाँ पर तो ऐसा होता है सविता जी के साथ में भी, वो भी अपने घर से बाहर निकले, हम भी हमारे घर से बाहर निकले, लेकिन नजरे मिल गई तो भी ऐसा लग जाता है कि अरे नजरें क्यों मिली, चलो अपने रास्ते। इस तरह का माहौल भी है शहरों
2: मतलब
1: में,
2: वो चीजें खत्म हो रही हैं शहर से, और इतनी भागम भाग और सुख शांति, और आप देखो क्या कहते हैं कि मतलब बिल्कुल अजीब सा माहौल। मुझे गांव बहुत पसंद है उषा जी, बचपन से।
1: चलिए सविता जी, गांव पसंद है तो क्यों ना अपन आबू के आसपास बहुत सारे गांव है, आपको मैं जरूर घुमा के लाऊंगी।
2: नहीं घुमा है मैंने थोड़ा बहुत, लेकिन कभी कभी मुझे, मैं आपको दिल की बात बताती हूँ, सच बात, आप रेडियो में मेरे दिल की भावना जो एकदम सच्चाई से कह रही हूँ। एक बार मैं इधर गई थी गाँव की तरफ ऐसे किसी काम से, तो मैंने देखा वहाँ पे कि जो गांव के लोग थे आदिवासी बच्चे थे उषा बहन, वो इतना अच्छा खेल कूद रहे थे पूरे मतलब खेतों में इधर उधर, अपने जानवरों को भी चरा रहे थे और बड़े मजे से खेल रहे थे
1: जी।
2: तो और कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी झोपड़ियाँ बना रखी थी, और मतलब कहीं पहाड़ पर थोड़ा ऊंचाई होती है ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़, थोड़े थोड़े ऊंचे पहाड़ रहते वहां पर, एक नीचे कोई कहीं कोई कहा, और अलग अलग झोपड़ी पास पास में सटके नहीं बनी थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। जानते हैं क्यों अच्छी लगी? मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब हम शहर में जमीन खरीदने जाते हैं तो कितना नाप जो कितना सारा पैसा देकर हम लोग छोटे छोटे से फ्लैट खरीदते हैं या जमीन खरीदते हैं, और उसी में ना एकदम दड़बे में

0: कबूतर खाने में सब रहते हैं, कई बार तो एक परिवार में कई लोगों को रहना पड़ता है ना उषा जी। और आप ये देखेंगे कि वहां पे मैंने देखा कि कोई नाप चोक नहीं, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक, ऐसा लग रहा था, और प्रकृति का पूरा सुख उठा रहे थे, हवा भी अच्छी, धूप भी अच्छी, बच्चे खुलकर खेल रहे थे, उन्हें कहीं किसी गार्डन की जरूरत नहीं, किसी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं कि हम बच्चों को कहाँ खेलने भेजे, और आराम से एक झोपड़ी के बगल दूसरी झोपड़ी नहीं थी, आराम से फैल फैल के मजे से रह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
1: बिल्कुल सविता जी,
0: देखो इनको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते और कितने आराम से प्रकृति का पांचों सुख ले रहे हैं
1: जी,
0: प्रकृति के पांचों तत्वों का सुख मिल रहा
1: है। कहते हैं शहरों में कितने भी भाग दौड़ करो फिर भी आधी ही मिलती है, और गांव में आप थोड़ा सा भी भाग दौड़ करोगे, मेहनत करोगे, आपको पूरी मिल जाएगी, क्योंकि प्रकृति तो नेचुरल वहाँ होती ही है। और शहरों में तो हम देखते हैं कि फ्लैट लेते हैं तो नीचे व्यवस्था देखते हैं, अच्छा यहाँ पर झूला है कि नहीं है, अच्छा यहाँ पर रोशनी किधर से आएगी, यहाँ पे बगीचा है कि नहीं है, वो कितना देखना पड़ता है, और हर चीज की कीमत चुकाई जाती है,
0: मिलती ही नहीं है। मैंने देखा कई बार जिनके पास बहुत पैसा हो भले थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं, ऐसी जगह अपना घर बना ले, लेकिन ज्यादातर लोगों को आप देखो खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं वो इतनी चीजें नहीं उनको मिल पाती, धूप के लिए तरसना होता है, बच्चे छोटे छोटे से कमरों में बालकनी में ऐसे खेलते रहते, उनको जगह नहीं मिल पाती। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यही सोचती थी कि वास्तव में गांव बहुत अच्छी चीज होती है,
1: गांव का अलहड़ जीवन, बच्चों का शारीरिक विकास, ये सब बहुत होता है, क्योंकि खुले मैदान में आप जितना चाहो दौड़ो, भागो, गाओ, नाचो, कोई भी खेल खेलो आप
0: जीवन में,
1: बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं,
0: देखने में अच्छा लगता है, बच्चे उनके साथ खेलते रहते दौड़ते रहते, मुझे अच्छे लगते हैं जानवर।
1: लेकिन सविता जी हम बात कर रहे थे कर्म की कि कर्म करने से लोग आजकल क्या थोड़े से कतराते हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ी मेहनत में काफी कुछ मिल जाए इसके लिए फिर लोग विकर्म करना शुरू कर देते हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और कर्म तो कर ही रहे हैं, कर्म तो बल्कि पहले से ज्यादा ही हो रहे हैं, आप देखिए और कई तरीके से लोग कर रहे हैं, लेकिन प्राप्तियां नहीं हो पा रही, जितना हम प्राप्ति चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रही। इसी बात को तो मैंने कहा कि देखिए जो गाँव में रहने वाले लोग वो इतना दिमाग नहीं लगाते, इतना कर्म दुनियावी तौर पे नहीं करते, लेकिन आप देखिए उन्हें वो सब कुछ मिल रहा है, घर भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही, शांति भी मिल रही, हाँ दिखावा नहीं होता उनके पास, कम कपड़ों में, कम खाना पीने में, कम मतलब भौतिक चीजें नहीं है उनके पास, ज्यादा विलासपूर्ण चीजें जिसे कहेंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा बहुत सुख शांति लगी।
1: कहते हैं कि हम अच्छा शहरों में भले कितनी मेहनत करके कितने पैसा खर्च करके सारी सुविधाओं को खरीद लेते हैं, फिर भी गांव में जाकर के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम खाली है।
0: हाँ बहुत, हाँ उनके सामने लगता है। और देखिए हम जो बाहर बहुत कर्म कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ टेंशन भी आ रहा, तनाव भी हम लेके आ रहे हैं अपने जेब में, तनाव भी, और पैसे के लिए तो बहुत ज्यादा ही मतलब संसार जैसे एकदम कहाँ से कहाँ जा रहा है हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो संसार में के दुख को, वो कर्म जो है वो दुख को कम नहीं कर पा रहे, बल्कि आप देखिए दुख को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए कर्म के भी दो प्रकार हैं, कर्म करना है हमें तो विकर्म करें या सुकर्म करें, तो अगर आप सुकर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो आप देखिए आपको सुख की प्राप्ति होगी, और अच्छे कर्म का फल आप जानते हैं क्या होता है, बुरे कर्म का फल भी, रामायण और महाभारत उदाहरण है हमारे सामने।
1: तो सविता जी कहने का भाव यही है कि कर्म करेंगे तो ही फल की प्राप्ति होगी, कर्म नहीं करेंगे तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए कर्म करिए। लेकिन कहते हैं कि कर्म करने के बाद फल ऊपर वाले पर छोड़ देना है, क्योंकि हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम तो हमको मिलना ही है, उसके फल की प्राप्ति तो होनी ही है। इसलिए ऐसा नहीं कि भाई हमने 2 घंटे मेहनत की और हमको 8 घंटे के पैसे मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। जितना समय आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा, बाकी ज्यादा कमाने के चक्कर में कोई भी विकर्म नहीं करना है, नहीं तो कहते हैं कि वो हिसाब किताब की लिस्ट में चला जाता है, फिर थोड़े समय हम पूर्व जन्मों के पुण्य के खाते की वजह से या पुण्य कर्मों की वजह से हम खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर जब हम विकर्म करते हैं वो भी तो जमा होता है और इसकी भोगना फिर भोगनी पड़ती है, तब काफ़ी तकलीफ होती है, काफ़ी कष्ट सहने पड़ते हैं, दुख होता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करिए और जितना मिले उससे खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, और ऐसी ही आदत डालिए कि भाई हम इतने कैपेबल हैं और इस अनुसार हम रह सकते हैं, बाकी योग्यता कम है और हम ज़्यादा की इच्छा रखते हैं तो फिर दुखी होंगे। तो सविता जी समय हो रहा है फिर से एक ब्रेक लेने का, तो ले लेते हैं एक अल्पविराम, सुनते रहिए
0: मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो।

0: Priyanka Chopra, and I'm truly blessed to share an incredible relationship with my parents. I just wonder, you know, the love, trust, the kind of feeling that you have for your own family. Can you feel like that for anyone and everyone else? Can you treat every single human being that you come across with that same love and trust? Well, that's what the Brahma Kumaris teach you, to treat every single human being that comes across with you with that same kind of feeling, with that same kind of love.
1: क्या खूब लिखा है किसी ने, गांव को गांव ही रहने दो साहब, क्यों शहर बनाने में तुले हुए हो। क्या खूब लिखा है किसी ने, गांव को गांव ही रहने दो साहब, क्यों शहर बनाने में तुले हुए हो। गांव में रहोगे तो माता पिता के नाम से जाने जाओगे, और शहर में रहोगे तो मकान नंबर से पहचाना जाओगे। तो ये थोड़ी सी सविता जी मेरे को याद आ गई थी, ऐसे ही कॉमेडी शायरी तो मैंने सुना दी।
2: बहुत अच्छी बात कही,
1: क्योंकि अपने सविता जी, अपने क्या टॉपिक का नाम ही है खुशनुमा जीवन। कोई भी बात कहो लेकिन खुशी वाली होनी चाहिए,
2: खुशी से
1: और उससे खुश, हाँ उससे खुश रहने चाहिए सुनने वाले भी और हम बोलने वाले भी।
2: और जो अभी आपने सुनाई ये बात हमारी पीछे वाली बात से मिलती जुलती है,
1: बिल्कुल मिलती जुलती
2: है। जैसे उन्होंने क्या कहा कि अगर हम गांव में रहेंगे तो माता पिता के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि माता पिता का नाम होता है वहाँ पे, उनकी जन्मभूमि होती है, उनके कर्म होते हैं, जिस वजह से हमारी भी पहचान बनती है।
1: जी बिल्कुल।
2: और शहर में हमारी पहचान तो होती नहीं, हम क्या हो जाते, मकान नंबर से जाने जाते। और दूसरा, जब हम कर्म ऐसे करेंगे तो शहर में भी हमारा नाम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन ये है कि कर्म का महत्व गांव में भी बताया गया है, और शहर में आके व्यक्ति वो इतने अच्छे नहीं कर पाता, क्योंकि जीवन ऐसा बन जाता है भाग दौड़ का, एक मशीनी जीवन हो जाता है उषा जी, और पत्थर जैसा हो जाता है। कई बार आप देखो, एक अपार्टमेंट में रहने वाले अगल बगल क्या हो रहा है उनको नहीं पता होता, लेकिन गांव में ऐसा होता है उषा बहन?
1: नहीं, पूरे गांव का पता होगा कि फलानी जगह कौन रहते हैं, अरे वो रहते हैं, और यहाँ अपने बाजू में कौन रहता है वो भी नहीं पता, शहरों में
2: जीवन में क्या बीत रहा है ये भी नहीं पता होता है।
1: जी बिल्कुल।
2: और गांव में आप देखो, कई पीढ़ियों तक की बातें लोगों एक दूसरे को बताते हैं कि उनके परिवार के लोग ये थे, वो थे, ऐसे थे, वैसे थे, या आते जाते दरवाजे से भी गुजरते हैं तो दुआ सलाम होती रहती है, राम राम होती रहती है।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन यहाँ तो कोई किसी की शक्ल ही नहीं देख पाता।
1: यहाँ पर तो ऐसा होता है सविता जी की, साथ में भी वो भी अपने घर से बाहर निकले, हम भी हमारे घर से बाहर निकले, लेकिन नजरे मिल गई तो भी ऐसा लग जाता है कि अरे क्यों मिली, चलो अपने रास्ते। इस तरह का माहौल भी है शहरों
2: मतलब
1: में,
2: वो चीजें खत्म हो रही हैं शहर से, और इतनी भागम भाग और सुख शांति, और आप देखो क्या कहते हैं कि मतलब बिल्कुल अजीब सा माहौल। मुझे गांव बहुत पसंद है उषा जी, बचपन से।
1: चलिए सविता जी, गांव पसंद है तो क्यों ना, अपन आबू के आसपास बहुत सारे गांव है, आपको मैं जरूर घुमा के लाऊंगी।
2: नहीं, घुमा है मैंने थोड़ा बहुत, लेकिन कभी कभी मुझे, मैं आपको दिल की बात बताती हूँ, सच बात, आप रेडियो में मेरे दिल की भावना जो एकदम सच्चाई से कह रही हूँ। एक बार मैं इधर गई थी गाँव की तरफ ऐसे किसी काम से, तो मैंने देखा वहाँ पे कि जो गांव के लोग थे, आदिवासी बच्चे थे उषा बहन, वो इतना अच्छा खेल कूद रहे थे पूरे, मतलब खेतों में इधर उधर अपने जानवरों को भी चरा रहे थे और बड़े मजे से खेल रहे थे।
1: जी।
2: तो और कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी झोपड़ियाँ बना रखी थी, और मतलब कहीं पहाड़ पर थोड़ा ऊंचाई होती ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़, थोड़े थोड़े ऊंचे पहाड़ रहते वहाँ पर, एक नीचे कोई, कहीं कोई कहाँ, और अलग अलग झोपड़ी पास पास में सटके नहीं बनी थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। जानते हैं क्यों अच्छी लगी? मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब हम शहर में ज़मीन खरीदने जाते हैं तो कितना नाप जो, कितना सारा पैसा देकर हम लोग छोटे छोटे से फ्लैट खरीदते हैं या ज़मीन खरीदते हैं, और उसी में ना एकदम दड़बे में कबूतर खाने में सब रहते हैं। कई बार तो एक परिवार में कई लोगों को रहना पड़ता है ना उषा जी, और आप ये देखेंगे कि वहाँ पे मैंने देखा कि कोई नाप चोक नहीं, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक है ऐसा लग रहा था, और प्रकृति का पूरा सुख उठा रहे थे, हवा भी अच्छी, धूप भी अच्छी, बच्चे खुलकर खेल रहे थे, उन्हें कहीं किसी गार्डन की जरूरत नहीं, किसी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं कि हम बच्चों को कहाँ खेलने भेजें, और आराम से एक झोपड़ी के बगल दूसरी झोपड़ी नहीं थी, आराम से फैल फैल के मजे से रह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
1: बिल्कुल सविता जी,
2: देखो इनको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते और कितने आराम से प्रकृति का पांचों सुख ले रहे हैं।
1: जी,
2: प्रकृति के पांचों तत्वों का सुख मिल रहा
1: है। कहते हैं शहरों में कितने भी भाग दौड़ करो फिर भी आधी ही मिलती है, और गांव में आप थोड़ा सा भी भाग दौड़ करोगे, मेहनत करोगे, आपको पूरी मिल जाएगी।
2: हाँ।
1: क्योंकि प्रकृति तो नेचुरल वहाँ होती ही है। और शहरों में तो हम देखते हैं कि फ्लैट लेते हैं तो नीचे व्यवस्था देखते हैं, अच्छा यहाँ पर झूला है कि नहीं है, अच्छा यहाँ पर रोशनी किधर से आएगी, यहाँ पे बगीचा है कि नहीं है, वो कितना देखना पड़ता है और हर चीज की कीमत चुकाई जाती है।
2: मिलती ही नहीं है, मैंने देखा कई बार, जिनके पास बहुत पैसा हो भले थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं, ऐसी जगह अपना घर बना ले, लेकिन ज्यादातर लोगों को आप देखो खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं वो इतनी चीजें नहीं उनको मिल पाती, धूप के लिए तरसना होता है, बच्चे छोटे छोटे से कमरों में बालकनी में ऐसे खेलते रहते, उनको जगह नहीं मिल पाती। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यही सोचती थी कि वास्तव में गांव बहुत अच्छी चीज होती है।
1: गांव का अलहड़ जीवन, बच्चों का शारीरिक अच्छा विकास, ये सब बहुत होता है, क्योंकि खुले मैदान में आप जितना चाहो दौड़ो भागो गाओ नाचो, कोई भी खेल खेलो आप
2: जीवन में,
1: बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं।
2: उनको देखने में अच्छा लगता है, बच्चे उनके साथ खेलते रहते दौड़ते रहते, मुझे अच्छे लगते हैं जानवर।
1: लेकिन सविता जी, हम बात कर रहे थे कर्म की कि कर्म करने से लोग आजकल क्या थोड़े से कतराते हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ी मेहनत में काफी कुछ मिल जाए, इसके लिए फिर लोग विकर्म करना शुरू कर देते हैं।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और कर्म तो कर ही रहे हैं, कर्म तो बल्कि पहले से ज्यादा ही हो रहे हैं, आप देखिए, और कई तरीके से लोग कर रहे हैं, लेकिन प्राप्तियां नहीं हो पा रही, जितना हम प्राप्ति चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रही। इसी बात को तो मैंने कहा कि देखिए जो गाँव में रहने वाले लोग वो इतना दिमाग नहीं लगाते, इतना कर्म दुनियावी तौर पे नहीं करते, लेकिन आप देखिए उन्हें वो सब कुछ मिल रहा है, घर भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही, शांति भी मिल रही, हाँ दिखावा नहीं होता उनके पास, कम कपड़ों में, कम खाना पीने में, कम मतलब भौतिक चीजें नहीं है उनके पास, ज्यादा विलासपूर्ण चीजें जिसे कही गई, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा बहुत सुख शांति लगी।
1: कहते हैं कि हम अच्छा शहरों में भले कितनी मेहनत करके कितने पैसा खर्च करके सारी सुविधाओं को खरीद लेते हैं, फिर भी गांव में जाकर के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम खाली है।
2: हाँ बहुत, हाँ उनके सामने लगता है। और देखिए हम जो बाहर बहुत कर्म कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ टेंशन भी आ रहा है, तनाव भी हम लेके आ रहे हैं अपने जेब में, तनाव भी, और पैसे के लिए तो बहुत ज्यादा ही मतलब संसार जैसे एकदम कहाँ से कहाँ जा रहा हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो संसार में के दुख को, वो कर्म जो है वो दुख को कम नहीं कर पा रहे, बल्कि आप देखिए दुख को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए कर्म के भी दो प्रकार हैं, कर्म करना है हमें तो विकर्म करें या सुकर्म करें, तो अगर आप सुकर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो आप देखिए आपको सुख की प्राप्ति होगी। और अच्छे कर्म का फल आप जानते हैं क्या होता है, और बुरे कर्म का फल भी रामायण और महाभारत उदाहरण है हमारे सामने।
1: तो सविता जी कहने का भाव यही है कि कर्म करेंगे तो ही फल की प्राप्ति होगी, कर्म नहीं करेंगे तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए कर्म करिए। लेकिन कहते हैं कि कर्म करने के बाद फल ऊपर वाले पर छोड़ देना है, क्योंकि हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम तो हमको मिलना ही है, उसके फल की प्राप्ति तो होनी ही है। इसलिए ऐसा नहीं कि भाई हमने 2 घंटे मेहनत की और हमको 8 घंटे के पैसे मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। जितना समय आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। बाकी ज्यादा कमाने के चक्कर में कोई भी विकर्म नहीं करना है, नहीं तो कहते हैं कि वो हिसाब किताब की लिस्ट में चला जाता है, फिर थोड़े समय हम पूर्व जन्मों के पुण्य के खाते की वजह से या पुण्य कर्मों की वजह से हम खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर जब हम विकर्म करते हैं वो भी तो जमा होता है और इसकी भोगना फिर भोगनी पड़ती है, तब काफ़ी तकलीफ होती है, काफ़ी कष्ट सहने पड़ते हैं, दुख होता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करिए और जितना मिले उससे खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, और ऐसी ही आदत डालिए कि भाई हम इतने कैपेबल हैं और इस अनुसार हम रह सकते हैं, बाकी योग्यता कम है और हम ज़्यादा की इच्छा रखते हैं तो फिर दुखी होंगे। तो सविता जी समय हो रहा है फिर से एक ब्रेक लेने का, तो ले लेते हैं एक अल्पविराम, सुनते रहिए
2: मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो।

0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल, मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद? नहीं ना।
3: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में आप सभी पधारिए, आज बनाएंगे आशियाना के किचन में बेसन का केक। ठीक है, केक कितने ही तरह के बनाए जाते हैं और बहुत सारे तरीके के आपको सिखा चुके हैं, आज आपको सिखाएंगे बेसन का केक। इसके लिए सामग्री लिखवा रही हूँ, पेन और डायरी तो आप ले ही लीजिए और लिखिएगा एक कटोरी बेसन। ठीक है, फिर लीजिएगा आप एक कटोरी मैदा। अब लीजिए सूजी आधी कटोरी, एक कटोरी नारियल का बुरादा लेना है, मतलब कसा हुआ नारियल। फिर लीजिए एक चौथाई चम्मच वनीला एसेंस, दो चम्मच शहद ले लीजिए, एक चम्मच बेकिंग पाउडर लेना है और कुछ कटे हुए मेवे लेने हैं आपको, एक कटोरी शक्कर ले लीजिए और एक कटोरी ही मलाई लीजिएगा। तो ये हो गई बेसन के केक की सामग्री, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ, एक नजर डाल दीजिएगा। बेसन कितने बोली थी मैं, एक कटोरी। फिर मैदा, ये भी एक कटोरी। सूजी आधी कटोरी, एक कटोरी नारियल कसा हुआ, जिसको हम नारियल का बुरादा भी कह सकते हैं। फिर आप लीजिए एक चौथाई चम्मच वनीला एसेंस, दो चम्मच शहद, बेकिंग पाउडर लीजिए एक चम्मच, कुछ कटे हुए मेवे ले लीजिए आवश्यकता के अनुसार, और एक कटोरी शक्कर लीजिएगा, एक कटोरी ही लेनी है मलाई की। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए, तब तक के लिए आपको एक गीत सुनाएंगे, उसके बाद बेसन का केक कैसे बनाया जाता है वो भी जरूर सिखाएंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रहा है बेसन का केक। बेसन का केक की सामग्री आप सभी को लिखवा चुकी हूँ, फिर भी एक नज़र डाल दीजिएगा, कहीं छूट गया हो तो आप नोट कर लीजिए। बेसन, मैदा, सूजी, कसा हुआ नारियल, वनीला एसेंस, शहद, बेकिंग पाउडर, कटे हुए मेवे, चीनी और मलाई। आइए अब बनाने का तरीका भी आपको सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, शक्कर को पीस लीजिए और फिर मलाई को अच्छी तरह फेंटिए। अब आप मलाई और शक्कर जो पीसी हुई है ना, इन दोनों को मिला करके हल्के हल्के हाथों से फिर से फेंटिए। अब आप मैदा, बेसन और सोडा तीनों को छलनी से छान लीजिए और अब इस मिश्रण में वनीला एसेंस डालिए। बेसन, मैदा, सूजी में एसेंस का मिश्रण डाल करके अच्छी तरह से फेंटिए। इसके अंदर आप कटे हुए मेवे मिला दीजिए, केक पार्ट पर चिकनाई लगा दीजिए और मैदा छिड़क करके मिश्रण डालिए और सारा मिश्रण डाल करके फिर 45 मिनट तक बेक करिए। तो इस तरह बेसन का केक हमारा तैयार हो चुका है। पुनः विधि को दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। केक बाहर से हम लाते हैं, बहुत महंगे महंगे आते हैं और कहते हैं कि भाई हर महंगी चीज़ हर एक के बजट में संभव नहीं होती और इच्छाएं तो सभी रखते हैं। बच्चे की बर्थडे आती है, घर में माता पिता की बर्थडे या किसी का भी जन्मदिन आता है तो ऐसी इच्छा होती है कि भाई केक काटे, केक लावे, बच्चों को केक खिलाए, लेकिन क्या करें, बजट से बाहर है हमारा सारा खर्चा। तो फिर करना भी है, शौक भी पूरा करना है, बजट भी देखना है, तो फिर यही अच्छा तरीका है कि आप घर पर ही केक बनाइए ताकि बजट में भी रहेगा और अपने शौक को भी पूरा कर सकेंगे और बच्चे, बुजुर्ग इन सभी को भी आप खुश रख सकेंगे, है ना। तो इस तरह आप केक बना सकते हैं, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। पुनः मैं विधि को दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और अच्छी तरह बनाइएगा। शक्कर को आप पीस लीजिए, ठीक है, या फिर पीसी हुई शक्कर भी ले सकते हैं। अब आप मलाई को फेंटिए, ठीक है, मलाई को फेंट ली, अब इसमें पीसी हुई शक्कर मिला दीजिए और फिर दोनों को मिला करके फिर से हल्के हाथों से फेंटिए। फेंटने के बाद अब आप मैदा, बेसन और सोडा इन सभी को आप साथ में ही मिक्स करके छलनी में छान लीजिए। एक एक का नंबर लीजिए ताकि तीनों ही अपने आप मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर अब इस मिश्रण में वनीला एसेंस डालिए। किस में छाना आपने, जो हमने बेकिंग पाउडर और शक्कर ये सब मिक्स किया ना, इसी के अंदर मलाई फेटी थी ना, मलाई के अंदर शक्कर पीसी हुई डाली, इसी के अंदर आपको सोडा, बेसन और मैदा छानना है, ठीक है, ताकि मैं अच्छी तरह बता दूं आप लोगों की भूल ना पड़े। फिर इस मिश्रण में वनीला एसेंस डालिए, ठीक है। बेसन, मैदा, सूजी में एसेंस का मिश्रण डाल दिया, अब आप फिर से अच्छी तरह फेंटिए इन सभी को और फिर लास्ट में

नहीं, आपको और भी तरीका बताएंगे हम, बहुत सारे तरीके बताते रहते हैं केक बनाने के, तो कोई अलग तरीका बताएंगे जिससे आप बिना ओवन के भी केक बना सकते हैं। लेकिन आज जो मैंने तरीका सिखाया है वो ओवन होगा तो ही बना सकेंगे। तो चलिए, बेसन का केक तैयार हो चुका है। अब आप लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप केक रखिए और पूरी सब्जी जो भी बनाई है वो भी रख दीजिएगा थाली में, तुलसी पत्र और जल के स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए। ऊपर से स्वच्छ कपड़े को ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित, बच्चों सहित आनंद लीजिएगा बेसन के केक का और साथ ही साथ एक गीत का। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।

निसगगा रेगमगा मबबा मबदना बदनी निधनी छदा सनीदा बमगर समोरे दाता सोनेले मोरी मोरे दाता गमदनी सनीदा बगमबा मगर छदा सरेगा गरेगा।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। देखिए, खूबसूरती निखारती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब जो भी खूबसूरत होना चाहते हैं एक्सरसाइज जरूर करिएगा। और हर कोई यही चाहता है कि भाई मैं अच्छी दिखूं, सुंदर दिखूं, तो बस थोड़े से आलस्य को त्याग करके एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आप फिट एंड फाइन रहेंगे। पर आपको एक्सरसाइज ऐसे नहीं कि एक दिन किया, दो दिन किया, चार दिन छोड़ दिया, वो नहीं, आपको रेगुलर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर रेगुलर आप करते हैं तब तो आप अच्छी बात है। बाकी आप कहेंगे उषा जी ने बोला एक्सरसाइज करेंगे तो सुंदर हो जाएंगे, चार दिन, दस दिन या एक महीना तो हमने किया, कोई सुंदर ही नहीं हुए तो फिर से हमने तो छोड़ दी, तो भाई ये आप करोगे तो मैं इसकी गारंटी नहीं लेती हूँ, ठीक है ना। आप रेगुलर करेंगे, रोज करेंगे, तो आप सचमुच स्वस्थ भी रहेंगे और स्फूर्तिवान भी बने रहेंगे, ठीक है ना। और कहते हैं कि सबसे बड़ी खुशी जब मिलती है तब हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं।

तो इसमें बहुत जनों की भी राय है, जैसे कि शोधकर्ताओं ने भी एक्सरसाइज करने और न करने वाली महिलाओं के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि एक्सरसाइज करने वाली महिलाएं शेप में रहने के साथ साथ ही ज्यादा मजबूत खुद को महसूस करती है। फिर दूसरी ओर देखा, एक्सरसाइज न करने वाली महिलाएं अपनी बॉडी शेप और लुक को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं रहती। दोनों ही तरह की सोच का असर महिलाओं के मूड और चेहरे की निखार पर पड़ता है। मेरी प्यारी बहनों, एक्सरसाइज करने वाली बहनें ज्यादा सकारात्मक और खुश होती है। रोजाना ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग से त्वचा की रंगत बढ़ती है, ठीक है ना। क्या क्या फायदे है वो मैं आपको बता रही हूँ। दरअसल इस दौरान क्या होता है, दिल तेजी से पंप करता है और रक्त संचार बढ़ता है। ऐसे में त्वचा तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचता है, जो शरीर के लिए काफी फायदा करता है, मददगार होता है। तो एक्सरसाइज करते समय जो पंपिंग होती है, जो शरीर में उस समय जो एक्सरसाइज होती है अंदर से हमारे शरीर की, सचमुच बहुत ही फायदेमंद है। जरूर आप करिएगा। और एक्सरसाइज के अलावा अन्य गतिविधियां जिससे रक्त संचार बढ़ता है, त्वचा को स्वस्थ रखने में फायदेमंद होती है, वो भी आपको मैं बता रही हूँ। एक्सरसाइज से तो फायदा है ही, लेकिन साथ ही साथ किन किन चीजों से फायदे हैं वो भी आप जानेंगे। अच्छी नींद, देखिए अच्छी त्वचा के लिए पर्याप्त नींद भी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करने से नींद भी अच्छी आती है। नींद के दौरान शरीर कुछ ऐसे हार्मोन का स्त्राव करता है जो उत्तकों को सुधारने या फिर उन्हें फिर से बनाने का काम करता है। और भी आप जानेंगे एलोवेरा, एलोवेरा जेल त्वचा को साफ करने के साथ ही पोषण भी देता है। रात में सोने से पहले ये जेल लगाइए और सुबह उठ करके धो लीजिए इस, और ये आप झाइयों पर भी लगा सकते हैं, तो इससे भी चेहरा चमक उठेगा और फायदा ही फायदा। एक्सरसाइज के साथ साथ ये भी आप कर सकते हैं। फिर आप देखिए आलू, विटामिन सी से भरपूर आलू प्राकृतिक ब्लीच की तरह काम करता है। आलू को पीस करके पेस्ट बनाइए और पूरे चेहरे पर लगा करके 30 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं, यह सूर्य की रोशनी से भी राहत देता है, ठीक है ना। तो कितने सारे फायदे हैं एक्सरसाइज के साथ साथ। एक्सरसाइज करते हैं साथ ही साथ ये भी नुस्खे आजमाते हैं तो सचमुच सुंदरता भी बढ़ती है स्किन की, और स्फूर्ति भी आती है, स्वस्थ भी रहते हैं, फिट भी रहते हैं, फायदे ही फायदे हैं। तो जरूर आप एक्सरसाइज करिए। तो ये आपको सामान्य जानकारी दी गई है, ध्यान रखिएगा। और अब आपको फिर से सुना देते हैं गीत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, बहुत ही अच्छे घरेलू नुस्खे दिए हैं, जरूर आप ध्यान रखिएगा। और अगर इस तरह की बीमारी है तो इन नुस्खों को जरूर आजमाइएगा। खुशनुमा जीवन में सविता जी के साथ बहुत ही अच्छी बातें हुई है। श्रेष्ठ कर्म करेंगे और तो प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी, और कर्म तो करने ही है, इसलिए हमेशा कर्म प्रधान बने रहिएगा और कर्म करते रहिए, फल ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। और नए नए व्यंजन में आपको बेसन का केक बनाना सिखाया है तो ज़रूर बना करके खाइएगा। और सामान्य जानकारी भी बहुत ही अच्छी मिली है आप सभी को, एक्सरसाइज करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे और खूबसूरती भी निखरेगी। और जानने योग्य बात आपको बता रही हूँ, तन और मन में संतुलन बना सकता है योग। योग का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन अर्थात योग बनाना है। योग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुद्रा, ध्यान और श्वसन संबंधी अभ्यास की आवश्यकता होती है। योग की क्रियाओं में जब तन, मन और आत्मा के बीच योग बनता है तब आत्मिक संतुष्टि, शांति और चेतना का अनुभव होता है। इसके अलावा योग शारीरिक और मानसिक रूप से भी फायदेमंद है। आज के अनमोल वचन इस प्रकार है, सर्व का सहयोग लेने के लिए पहले स्वयं सहयोगी बनना पड़ता है। अब मैं आपको होली पर एक प्यारा सा गीत सुनाऊंगी, आप लेंगे गीत का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घणी खमा सा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की श्रृंखला जीना इसी का नाम है, इसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम जब कोई व्यक्ति की या किसी का भी हम जीवन देखते हैं और उनके जीवन को गहराई उनसे जानते हैं, ऐसा लगता है कि क्या जिया है इन्होंने, काश हम भी ऐसे जी पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ ऐसी प्रेरणादायी अनुभवों के साथ आज हमारे साथ हैं बाला साहेब अप्पा घोरपाड़े भाई जी। आप शांतिवन ब्रह्मा कुमारीज की जो हेडक्वार्टर्स है उस परिसर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक योगी जीवन जीते हुए कार्य करना, क्या सन्यासी कोई कार्य कर सकता है? अगर कार्य करने वाले हैं या कोई प्रोफेशनल वर्क अगर संभालते हैं, क्या वो सन्यासी बन सकते हैं? आखिर सन्यास का मतलब क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे मन में, तो इन सारे सवालों की उलझनों को आज हम सुलझेंगे और कई सारी नई जानकारियां आज हम जानेंगे आज की इस बातचीत में। चलिए स्वागत करते हैं बाला साहेब भाई जी को। भाई साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जीना इसी का नाम है। नमस्कार।
1: थैंक यू। नमस्कार
0: जी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका लौकिक जो परिवार है, आपका लौकिक जो जन्म है, वो कहाँ पे हुआ और वो शुरुआत जीवन की कहाँ से हुई, और संक्षिप्त में आपके परिवार और ये सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे।
1: तो बहुत अच्छा आपने पहला क्वेश्चन किया। वैसे हमारा जो लौकिक गांव है वो महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा फेमस है
0: जी,
1: सारे विश्व के अंदर, जहाँ एयरपोर्ट भी है, वहाँ से ही 10-12 किलोमीटर शिरडी शिंगनापुर हाईवे, वहाँ एक छोटा सा गांव है, वह हमारा जन्म हुआ 1970 में, और उसी गांव में हमारी पढ़ाई भी हुई, प्राइमरी और हाई स्कूल 10वीं तक। उसके बाद वहाँ से 8 किलोमीटर हमारा कॉलेज था, वहाँ हम उस समय साइकिल पर ही जाते थे, 7 किलोमीटर था। तो हमने बीए इकोनॉमिक्स करने के बाद EMA में एडमिशन लिया, 1 पार्ट किया, और उसके बाद हम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर समर्पित हो गए।
0: भाई साहब, उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी लौकिक परिवार की अपनी अपनी पढ़ाई तो कही आपने, आपके माता पिता क्या करते थे और आप धार्मिक परिवार से थे?
1: हाँ जी, हमारे माता पिता खेती करते हैं, आज भी हमारे घर में खेती है, और धार्मिकता कहेंगे तो बचपन से ही हमारे मम्मी पापा भी धार्मिक प्रवृत्ति या धर्म को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले थे, इसलिए हमें भी ईश्वर के प्रति आस्था थी
0: जी। तो वो कौन सा मोमेंट रहा आपको इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो राजयोग मेडिटेशन है इसका परिचय हुआ, और आपके परिवार में सिर्फ आप ही इस राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं या अन्य सदस्य भी करते हैं?
1: तो सबसे पहला ये मोमेंट रहा कि जब मैं 10वीं में था,

0: तब मुझे शिव के मंदिर में हम हर सोमवार को दर्शन करने के लिए जाते थे, शिव की हम पूजा करते थे। और आज भी हमारे गांव के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं शिव को मानने वाले हैं, तो हम भी सोमवार के दिन जाते थे मंदिर में, बेलपत्र चढ़ाते थे। और एक था कि ईश्वर के प्रति मुझे कि मन में बचपन से था, जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा में था, तो ईश्वर एक होना चाहिए। भले साईं बाबा शिरडी साईं बाबा नज़दीक है, फिर भी मन में कभी ये नहीं आया कि ईश्वर है, क्योंकि वो भी कहते सबका मालिक एक है। और मैं हमारे टीचरों को भी पूछता था कि घर में जैसे चित्र होते हैं, देवियों को आठ आठ हाथ दिखाते हैं, या जैसे हम देखते हैं कि त्रिमुख दिखाते, ब्रह्मा को तीन मुख दिखाते, तो मन में क्वेश्चन होता था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान को तो एक ही मुख है, किसी को भी आठ आठ हाथ नहीं, तो ये कैसा हो सकता है, ऐसे कोई देवता हो सकते हैं, मन में क्वेश्चन होते। तो मैं टीचरों को भी पूछता था कि ईश्वर आखिर का है, ये मेरे मन में एक बचपन से ही क्वेश्चन था। देहधारी कोई भी ईश्वर नहीं हो सकता है, वो एक ही होना चाहिए, ये मेरी बचपन से ही मन में एक संकल्प था
1: जी।
0: और जब हम शिव के मंदिर में गए तो वहाँ प्रदर्शनी लगी हुई थी, अपनी जो 7 दिन की यहाँ प्रदर्शनी होती है इस विद्यालय के अंदर, तो उसके अंदर मैंने पहले ही आत्मा का चित्र देखा, उसके बाद में परमात्मा का देखा। और एक एक जैसे मैं चित्र पढ़ता गया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये कोई अलग चीज़ है, ये जो नॉलेज है ये कोई अलग है। आत्मा के बारे में हम गीता में भी सुनते थे, क्योंकि मैंने ग्रंथ भी पढ़ा था, ज्ञानेश्वरी भी पढ़ी थी, तो 2nd जो अध्याय है भगवद गीता का, उसमें आत्मा के बारे में पूरी नॉलेज दी हुई है, श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। लेकिन एक होता है कि उसकी आत्मा की जानकारी रहना, और दूसरा होता है कि उसकी महसूसता होके उसका अनुभव होना। और ये अनुभव नहीं था कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन जैसे मैंने ये प्रदर्शनी पढ़ी तो मुझे क्लिक हुआ कि ये कोई सत्य है। परमात्मा के जब गुण मैंने पढ़े तो ये जो गुण है इस विश्व में किसी भी मनुष्य आत्मा में नहीं हो सकते, तब मुझे परफेक्ट निश्चय हुआ कि इसको हम भगवान कह सकते हैं, सुप्रीम सोल, जिसको अन्य धर्मों के अंदर डिवाइनिटी, सुप्रीम सोल ऐसे भिन्न भिन्न नाम दे देते हैं, चाहे मुस्लिम लोग उसको अल्लाह कहेंगे, या जैसे क्रिश्चियन लोग मोमबत्ती जलाते हैं, जापानीज लोग देखेंगे तो लाइट को मानते हैं, मतलब इस विश्व को चलाने वाली कोई लाइट है, सत्ता है, ये हमारा निश्चय हो गया। और मुझे किसी ने बताया नहीं, बस मैंने पूरी प्रदर्शनी पढ़ लिया और मैंने कहा कि ये ज्ञान एकदम परफेक्ट है, क्योंकि अभी तक हमने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर सब तरह के सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई की थी, लेकिन उससे हटकर ये था, क्योंकि आज तक किसी ने भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज नहीं बताया। वह मैथमेटिक्स, साइंस, जैसे और भी सब्जेक्ट होते, अलग अलग सब्जेक्ट होते, साइकोलॉजी होता है, फिलासफी, मुझे फिलासफी भी था, इसका जो आंसर है ना कहीं भी नहीं मिलता था, इस बात का कि ईश्वर कहाँ रहता है
1: जी,
0: या आप कौन है वास्तविक, इसका भी कोई भी परिचय नहीं देता था। हर एक अपने आप को यही समझता है कि मैं फलाना हूँ, फलानी कास्ट का हूँ, फलाने धर्म का हूँ, फलाने घर में मेरा जन्म हुआ है, मेरा ये स्टेटस है, मैं ये सर्विस करता हूँ, हर एक ऐसा परिचय देता है। तो वास्तविक ये जो मैं आत्मा हूँ, बस ये जो परिचय है बहुत अच्छा लगा कि मैं और कोई नहीं है, शरीर भिन्न है और मैं आत्मा भिन्न हूँ और परमात्मा एक है। ये दो चीज़ें मुझे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर परफेक्ट और सत्य मालूम हुई। बाकी जो भी परमात्मा बताएगा वो सत्य ही होगा, ये मेरा पूरा पूरा निश्चय हो गया
1: जी। तो आपके परिवार में आप अकेले ही इस ज्ञान को समझा है, या फिर आपकी आपके भाई बहने, माता पिता, उनको भी इस बात पे निश्चय हुआ?
0: अभी तो माता पिता नहीं है, लेकिन जब मैं ज्ञान में आया तो उन लोगों को मैंने बताया, तो वो लोग भी बड़े, उनको अजीब लगता था, उनका कहना था कि इतने संत होके गए, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर माउली, साई बाबा, ईश्वर के लिए उन्होंने इतनी तपस्या किया, उनको भगवान नहीं मिला। और आप कहते हैं कि शिव बाबा, उनके कन्फ्यूजन में ये भी था कि ये कौन सा बाबा है, क्योंकि शिव बाबा तो दिखाई देता नहीं, बाकी बाबा दिखाई देते हैं, तो ये भी एक कन्फ्यूजन था कि बाबा को दिखाए कैसे। तो फिर मैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझाता था कि फूल का सुगंध तो दिखाई देता नहीं है, हवा दिखाई देती नहीं, ऐसी एक सूक्ष्म शक्ति आई इस संसार में कि जो इन आँखों से नहीं दिखाई देती लेकिन है, ये तो मानना पड़े, शक्ति आई इस संसार में कि जो इन आँखों से नहीं दिखाई देती लेकिन है, ये तो मानना पड़ेगा, हवा है मानना पड़ेगा, फूल में सुगंध आता है आपको तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब व्यक्ति चला जाता है तो इसमें कोई चैतन्यता थी इसलिए तो आप गए थे ना, वो चला गया, कौन चला गया मैं बताता था तो वो चुप रह जाते थे, उनको इसके आंसर नहीं आते थे। तो मुझे ये ज्ञान इतना परफेक्ट हुआ था कि 7 डेज मेरा किया नहीं किसी ने, लेकिन कल पहले जैसे क्लिक हुआ होगा कि मैं इस ज्ञान को दूसरों को बताने में मैं इतना मतलब ये करता था कि ये सत्य है और आप मानते क्यों नहीं। उस समय हमारे यहाँ स्वाध्याय का चलता था, पांडुरंग शास्त्री आठवले फेमस था उस समय, 87-88 की बात है, वो लोग भी गीता को मानते हैं। तो मैं उनको क्वेश्चन करता था कि आप गीता को मानते हैं, गीता को हाथ में लेते हैं, लेकिन गीता में जो कहा हुआ है गीता की कहाँ तक मानते हैं, उसमें कहाँ तक आप चलते हैं, कहते तो सभी है लेकिन उन बातों को आप लोग कहाँ तक मानते हैं। तो ये मैं उनको क्वेश्चन करता था लेकिन किसी से भी मुझे आंसर नहीं मिलते थे। तो मुझे बहुत बड़ा एक नशा चढ़ जाता था कि अरे ये ज्ञान इतना सत्य है, किसी भी एंगल से कोई मुझे कुछ भी क्वेश्चन करे तो मैं उसको प्रूव करके देता था। तो ये बड़ा एक नशा था। फिर हमारे माता पिता मधुबन तो आके गए, 2-4 बार पिताजी आके गए, लेकिन जैसे ज्ञान योग की धारणा है जैसे हमारी रेगुलरिटी हो वो नहीं करते थे, लेकिन बाद में सभी सपोर्ट हो गए, हमारी भाभी हो भाई हो सब मधुबन आके गए, लौकिक जो संबंधी है बहुत बड़ा परिवार है, कुछ आके भी गए, लेकिन जैसे रेगुलर है वो मैं ही इतने बड़े परिवार से निकला हूँ।
1: जी, आपके कितने भाई बहने हैं?
0: मेरे से बड़ा एक भाई है और छोटी बहन है, मैं बीच वाला हूँ। अच्छा। और उनकी शादियाँ हो गई है, वो अपने अपने संसार में सेटल है और हम बीच में सेफ रह गए।
1: तो उनको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरा भाई कुछ अलग जीवन जी रहा है, मुझे भी इस बात को समझना है?
0: नहीं, उनको पूरा सपोर्ट है उन लोगों का और बहुत गौरव है उनको। हमारे पिताजी भी 3 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, और उनको भी मेरे जीवन के प्रति बहुत एक सम्मान था, एक रिगार्ड भी उनको बहुत था ज्ञान के प्रति। और हमारे वैसे लौकिक घर में जैसे सेंटर जैसे माहौल होता था बहनों का आना जाना, और आज भी 2012 में हमारे वहाँ घर में 6 इंचार्ज आए थे, सिल्वर जुबली थी हमारी, तो बड़ी बड़ी बहनें आई थी, तो भाभी भी हमारी बहुत, वो बचपन से उनको आध्यात्मिकता है, भाभी को ग्रंथ पढ़ना, स्वामी समर्थ का वो करते हैं, तो पूरा ऐसा मतलब जैसे उनका रोल नहीं हुआ होगा लेकिन पूरा सपोर्ट है, मानते भी है बाबा को, पूरा बाबा का कमरा भी घर में बना हुआ है, पूरा जैसे ऐसे नहीं कहेंगे लेकिन जैसे ये धाराओं में चलने के लिए कोई ऐसी बात बन जाएगी तो इस पर भी वो चलेंगे।
1: भाई साहब ये बताइए कि वो कौन सा पल था जब आपको लगा कि हाँ मुझे समर्पित होना है, क्योंकि 10वीं कक्षा में आपने इस ईश्वरीय ज्ञान का परिचय तो लिया, आपको निश्चय भी हो गया ये सत्य ज्ञान है जो आप जीवन में ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप जब MA इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अचानक से ये क्या हो गया कि आप अपने सब कुछ छोड़ के मत बना गए हैं जीवन समर्पित करने?
0: वो जो मोमेंट है वो बहुत बड़ा विचित्र था जी। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि जब मैंने ये एग्जाम ही नहीं दिया तो हमारे क्लास में जो आज भी याद करते जो क्लासमेट है हमारी, लड़कियाँ थी ज़्यादा, तो उनको बड़ा शौक लगा कि ये किसने क्या किया, एग्ज़ाम भी नहीं दिया और ये माउंट आबू निकल गया, तो उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि तुम इसमें तो है शुरू से, क्योंकि मैं सोमवार के दिन कॉलेज में लास्ट ईयर में मौन रखता था पूरे साल, और उसका प्रभाव इतना हुआ कि एक दिन लास्ट में सोमवार के दिन ओरल एग्ज़ाम आई, तो यूनिवर्सिटी से जो टीचर आए मैडम ने कहा इसको अगर मौन तोड़ेंगे तो हमको पाप लगेगा, तो सभी की एग्ज़ाम हो गई तो वो मेरे लिए खास रुक गया। और मंगलवार के दिन उन्होंने सुबह मुझे बुलाया तो उन्होंने यही क्वेश्चन किया, जैसे आपने कहा कि भाई इस एज में आपको ये कोई उम्र है आपकी करने की अध्यात्म, ये जो है सारे 60 साल के बाद 50 साल के बाद करना चाहिए ये सारा, तो वो यही क्वेश्चन करते रहा। लेकिन मुझे ज्ञान का इतना कूट कूट कर भरा हुआ था कि मुझे कोई भी क्वेश्चन करे तो मैं हार नहीं मानता था कि नहीं इसको प्रूव करके ही देना है, चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान हो उसको ये नॉलेज नहीं है, दुनिया का नॉलेज है, लेकिन परमात्मन वाले जो

0: उपासनीय पूज्य बड़ा नशा था, तो सर भी सुनते रहते थे। और पता नहीं अचानक मुझे जब ये हुआ कि थोड़े से बचपन में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या जो क्रांतिकारी होके गए देश के लिए, क्योंकि मेरे जन्म कुंडली में ये भी बताया कि 3-4 जन्म जो देश के लिए आपके बलिदान हुए, ब्राह्मण ने जन्म कुंडली में बताया था। तो मुझे एक 4 दीवार के अंदर बंधना या किसी देहधारी से बंधना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसा सोशल वर्क करें या देश के लिए हम सेवा करें। लोग मिलिट्री में जाते हैं, अपनी जान की परवाह न करते हुए बलिदान करते हैं, तो वो संस्कार मेरे अंदर था कि हम क्यों नहीं विश्व के लिए सेवा करें। और जब इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर हमने विश्वव्यापी संगठन को देखा कि इसकी जो शाखा है पूरे विश्व के अंदर 140 कंट्रीज में है, ये कोई हद नहीं, ये बेहद में है। और इसको चलाने वाला भी स्वयं निराकर सुप्रीम सोल है कि जिसने ये संस्था स्थापन की है, इसका कोई गुरु नहीं है। तो ये जब ध्यान में आया कि ये स्वयं, आज भी कई लोग हमें पूछते हैं कि या यहाँ आते हैं तो ये चलता कैसा है, लोगों को घर के अंदर 4 लोग होते हैं तो उनको उस फैमिली को चलाने के लिए टेंशन आता है, खर्चा चलाने के लिए इकोनॉमी करेंगे, ये करेंगे, या कई लोग आके हमको पूछते हैं कि भाई ये चलता कैसे है। तो वास्तविक उन लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि एक परमात्मा के लाखों बच्चे, जिस परमात्मा के लाखों बच्चे हो, जैसे लौकिक में बच्चे कमाने वाले होते हैं, तो यहाँ जो भी अपनी कमाई है उन कमाइयों को इकोनॉमी करके इतना बड़ा जो यज्ञ है वो चलता है। और इसमें विशेष हम यही लोगों को सुनाते हैं कि जो भी अपने जीवन के अंदर की जो बुराई थी पहले जीवन में, वो सारा खर्चा आपका बच गया है। और हम लोगों का खर्चा है क्या है, उनको हम ये बताते कुछ भी खर्चा नहीं, खान पान शुद्धि है, न कोई होटल में जाना है, न कोई घूमना है, न फिरना है, तो ये इकोनॉमी से ये इतना चलता है। तो सब बातें जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर बहुत यूनिक लगी, बहुत अच्छी लगी। और ये ज्ञान जो है एक व्यक्तित्व या एक देवता बनाने वाला ज्ञान है, ये पक्का निश्चय हुआ, इसलिए हम सेवा में लग गए।
1: जी, तो जब आप मधुबन में आ गए हैं, वो कौन सा साल था समर्पित हुए जब आप?
0: समर्पित जब मैं हुआ तो 91 में मैं एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, 6 महीना हुआ था। तो वैसे ज्ञान में आने के बाद मैं 2-3 बार हर साल छुट्टियों में हम सेवा में आए, पांडव भवन में सेवा किया, हिस्ट्री हॉल में जो वहाँ पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल है उसमें सेवा किया, दादी के पास भी सेवा किया। 2-3 साल कॉलेज लाइफ में सेवा करते थे, लेकिन 91 में या शांतिवन में ये बनना, खेती थी सारी यहाँ, तो यहाँ एक भाई थे भोपाल भाई के साथ में, महादेव भाई करके, उन्होंने 94 में शरीर छोड़ा। तो उन्होंने शांतामणि दादी को कहा ऊपर, तब शांतामणि जो हमारी दादी थी वो सेवादारी संभालती थी, इंचार्ज थी, तो उनको कहा कि इसको घर में खेती, इसको अनुभव है, या गाय भी थी, जाठोली डिपार्टमेंट हुआ, गाय का गोठा था और पूरी खेती थी। और बाबू भाई उस समय खेती में थे, जो आज टेलीफोन एक्सचेंज में, वो भी खेती में थे। तो जब हमको कहा कि आप नीचे आ जाओ या ज़रूरत है, तो हम आ गए। उन्होंने कहा कि आप छोड़ दो पढ़ाई, तो एग्ज़ाम देना था, उन्होंने बोले छोड़ दो अभी, तुम समर्पित हो जाओ। तो पता नहीं हमें भी क्या हुआ कि चलो जीवन बलिहार करना, एक धक से करना, कोई सोचना नहीं, तो हम समर्पित हो गए, मतलब रह गए सेवा में। 3-4 साल खेती किया और फिर उसके बाद किचन में आए, तो तब से लेके अभी हम किचन में ही।
1: जैसे आपने इतनी पढ़ाई की है और अभी जब किचन में सेवा कर रहे हैं, या आपको जब शुरुआत में जो बुलाया गया पढ़ाई छोड़ के खेती करने के लिए, आपको एक पल के लिए ऐसा नहीं लगा कि मैं तो पढ़ाई करके अच्छा ऑफिसर बन सकता था, पढ़ाई करते तो मैं हो सकता है संस्था में भी एक अच्छे पोजीशन में रह सकता था, मुझे जाके खेती बाड़ी करने के लिए मैं पढ़ाई छोड़ दूँ?
0: नहीं, मुझे एक था कि या जैसे हमारी टोली किचन में आत्म प्रकाश भाई है, सूरज भाई, ये सारे ग्रेजुएट ही है लोग, जैसे हमारे साथ भी जितने भी हैं, मैं ये बताना चाहूँगा किचन में जितने भी लोग हैं सब पढ़े लिखे हुए, ऐसा कोई नहीं कि जो अनपढ़ है जिसको आता नहीं, तो ये तो भगवान ने विशेषता दी है कि हम लोगों को किचन में रखा है। एनीवन जितने भी डिपार्टमेंट इंचार्ज या है किचन में, सब ग्रेजुएट, सब पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे घर के, ये भी है कि सबके घर में अच्छा है, मैं काफ़ी लोगों के वहाँ गया हुई हूँ, तो ऐसा कोई नहीं कि जिसको कुछ कमी थी और वो यहाँ आ गया, ऐसा कोई भी नहीं, सब लौकिक परिवार में संपन्न थे। हाँ, ये बुद्धि में था कि जो हमारे बड़े हैं वो भी इतने पढ़े लिखे हुए हैं और वो जब किचन में सेवा कर रहे हैं। और मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट जो सेवा मैं समझता हूँ कि भाग्य बनाने की किचन डिपार्टमेंट है, जहाँ भगवान की मुरली के अंदर भी आता है कि रोटी पकाना भी आना चाहिए, बर्तन मांजना भी आना चाहिए, भोजन बनाना भी आना चाहिए। तो बाद में ये तो मीडिया वगैरह इलेक्ट्रॉनिक जब चीज़ें निकली तब ये सेवा बढ़ गई। नहीं तो यज्ञ की स्थापना में शुरू में अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो जो हमारी दादियाँ बन गई उन्होंने हर प्रकार की सेवा की, जो
1: कर्मणा सेवा,
0: सब कर्मणा सेवा सब की हुई है। तो इसमें कोई बॉडी कॉन्शियस की बात नहीं थी। हमें तो नशा था कि चलो खेती का काम है तो हम यहाँ खेती कर रहे, घर में भी खेती अनुभव था, गाय का दूध निकालते थे, खेती करते थे। और जैसे कहते कि एक बार प्रण ले लिया, व्रत ले लिया, ले लिया, उसको वापिस क्यों लेना है, तो ये पक्का निश्चय था।
1: बहुत सुंदर भाई साहब, जैसे आप अभी समर्पित हुए हैं 91 से आप यहाँ पे मधुबन में हैं, और 91 में तो काफ़ी वो संस्थापक जो प्रजापिता ब्रह्मा है उनके साथ जो कराची से आए हुए जो दादियाँ हैं, काफ़ी लोग तो दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी को तो जानते हैं, लेकिन आप तो और भी बहुत सारी दादियों के साथ पालना लिए हैं, एक आध्यात्मिक जीवन की आपकी एक लंबी यात्रा रही है। तो जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इस जर्नी में आपने सीखा और आप आपकी व्यक्तित्व को ऐसा गढ़ा है, जो हो सकता है अगर आप लौकिक दुनिया में होते तो आप इन चीज़ों को कभी सीख नहीं पाते हैं, तो फिर वो क्या चढ़ती कला थी आपकी?
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा था कि जो हमारे साथी है जो लौकिक पढ़ाई करके आज प्रोफेसर है, टीचर है, 2-3 महीने पहले ही मुझे बुलाया था, जो हमारे क्लासमेट थे, हमारे क्लास में ज़्यादा कन्याएं थी, और वो अभी भी हंसती है कि तुम इतना पक्का था, हमने बहुत कोशिश किया तुम्हारा मौन तोड़ने का। और वो आज भी उन पलों को याद करती आपस में कि ये ब्रह्म कुमारी में पता नहीं इसके बुद्धि में इतना, कि हम उसी समय समझते थे कि ये लौकिक दुनिया में रहेगा नहीं, ये इस जीवन में समर्पित हो जाएगा। लेकिन वो आज भी कहते हैं कि जो आज हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास नहीं। तो उनको सब कुछ होने के बाद भी आध्यात्मिकता के बिना जीवन अधूरा है, ये आज भी वो लोग हमें स्वीकार करते हैं कि निजी संपत्ति आध्यात्मिकता है और इसी से ही आप सुख शांति का अनुभव कर सकते। जैसे आपने ये जो क्वेश्चन किया, तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर सबसे पहले हमारे अंदर जो चेंजेस आया उस पढ़ाई और इस पढ़ाई के अंदर हमने जो फर्क महसूस किया कि वहाँ हम एक डिग्री के लिए या कुछ अपना बिजनेस या कुछ पदवी ले लेते हैं कि कुछ हमारी इनकम बड़ी हो, उसके लिए हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये जो पढ़ाई है वास्तविक जब जीवन में इसको हमने फॉलो किया तो सबसे पहले हमारे अंदर जो एक इंडिविजुअल, मुझे भी गुस्सा जल्दी आ जाता था, कोई अगर गलत करता था, असत्य कोई बोलता था, झूठ बोलता था, तो मुझे कंट्रोल नहीं होता था। तो ये मेरे स्वयं के जीवन के अंदर, जैसे कई लोगों को भी अभी भी होता होगा कि तुरंत गुस्सा आ जाता है, कई रॉन्ग चीज़ देखते हैं, सहन नहीं होता है। तो सबसे पहले मेरा ये चेंजेस आया कि मैंने शांत रखना सीख लिया कि हर एक व्यक्ति यूनिक है और वह अपना अपना पार्ट बहुत अच्छी तरह से प्ले कर रहा है। जैसे फिल्म आप देखते हैं 3 घंटे की स्टोरी होती है, तो हर एक का जो पार्ट, जिसको जो रोल दिया है वो रोल निभा रहा है, तो उसमें हम क्वेश्चन नहीं उत्पन्न करते हैं। इसी तरह इस ज्ञान के आधार से एक समझ मिल गई कि हर एक का रोल है और वो बहुत अच्छी तरह से प्ले कर रहा है, इसलिए मुझे क्वेश्चन करके परेशान नहीं होना है, तनाव उत्पन्न नहीं करना है, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है। तो ये मेरे स्टॉप हो गए। दूसरी एक प्राप्ति की, जैसे इस ज्ञान के आधार से मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं 12वीं में था तो एक उसमें इकोनॉमिक्स के 4 पेपर थे, तो उसमें मुझे 100 में से 100 मार्क्स मिले थे एक पेपर में। तो मेरा पेपर टीचर ने सब स्टूडेंट को दिखाया था, कोई भी मिस्टेक नहीं थी। तो मैं क्या करता था कि ये जो पढ़ाई है, विशेष सुबह अमृत वेले के बाद स्टडी करता था और कॉलेज जाने के पहले उसको पढ़ के जाता था मैं, तो वो पूरा बुद्धि में फिट बैठ जाता था। कॉलेज में भी टीचर पढ़ाते थे और पहले स्टडी करके जाता था। तो ये एक मैंने फायदा देखा कि हमारे जीवन के अंदर इस ज्ञान का ये फायदा है कि मन की एकाग्रता एक बढ़ती है, और मन की एकाग्रता के साथ साथ जो हमारा अचीवमेंट चाहे कोई भी टारगेट हम रखते हैं तो उसको बहुत ईजी हम प्राप्त करते कम समय में। अगर मेडिटेशन जीवन में न हो तो वहाँ लंबा काल लगता है और मेहनत लगती है, लेकिन मेडिटेशन का ये फायदा मैंने देखा मेरे पढ़ाई में। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जबकि मेरा लास्ट ईयर में भी सेकंड नंबर था कॉलेज में, तो ये प्राप्ति इतनी हुई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा जो यम यही था कि नहीं, इस जीवन को ही जीना है, और कोई भी एक लक्ष्य को आप सामने रख के अगर उस पर फोकस करते हैं तो निश्चित आपका जीवन महान हो जाता है। तो इस ज्ञान में आने के बाद अनेक प्राप्तियां हुई, अंदर की गुण और शक्तियों का विकास हुआ, अपनी क्वालिटीज़ को बाहर आने का मौका मिला, जैसे भाषण करना। इन इवन मैं इतना सीख गया कि झाड़ू पोछे से लेकर आप भाषण तक कहीं भी हमें डाल दो तो हम फिट बैठ जाते, वहाँ करके रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक प्राप्ति मिली। तो ये हमने लाइफ में ऐसा प्रोग्रेस किया है।
1: बहुत सुंदर। मतलब आप बचपन में जिन शास्त्र या फिर ग्रंथों को आप जो पढ़ते थे उसकी आध्यात्मिक रहस्य, क्योंकि आपने आध्यात्मिक ज्ञान को समझा है, तो उसके द्वारा वो क्या कहना चाहते हैं, वो जीवन में किस प्रकार से प्रभाव करते हैं, और जीवन को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। जिस सुख शांति की तलाश है हर एक इंसान को आज के समय में, वो ज्ञान कहाँ से कैसे मिलता है, आप उसको बहुत ही सरल शब्दों में मीडिया के माध्यम से सभी तक पहुँचाते हैं। ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं भाई जी। आज आप हमारे बीच में आई हैं और हमारे रेडियो मधुबन की श्रोताओं को लौकिक पढ़ाई के साथ साथ जब आध्यात्मिक पढ़ाई हमारे जीवन में आती है तो जीवन कैसे निखरता है, और आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें एक्सेलेंस से कैसे आती है, ये बहुत सुंदर तरीके से आपने हमें बताया। और ना सिर्फ हम प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं, लेकिन एक परिवार भी आपस में मिलजुल करके रहना, बड़ों को आदर करना, उनसे हमेशा सीखने की भावना रखना, बहुत सुंदर बातें हैं भाई जी। थैंक यू सो मच, आप आज हमारे बीच में आए हैं, आपकी जीवन के उन चंद पलों को जो बहुत ही प्रेरणादायी है, उन पलों को हमारे साथ शेयर किया, शुक्रिया आपको।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम जीना इसी का नाम है, और इस कार्यक्रम में आप उनके अनुभव सुन रहे थे। बालू भाई जी का आप शांतिवन में किचन है, स्पेशल फूड बनाते हैं, आप उस किचन का देखभाल करते हैं, और अनेक आत्माओं के स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने में आपका अपना एक योगदान रहता है। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ और एक नए व्यक्तित्व और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।
2: नमस्ते मित्रों, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण, और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हाँ छोले भटूरे, अरे वाह आज फिर से मजा आ जाएगा आज खाने में तो। तू बता तू क्या लाया टिफिन में?
1: मैं तो बिस्किट और नमकीन।
0: बिस्किट और नमकीन? तू तो रोज यही लाता है, तेरे पापा को खाना नहीं बनाना आता क्या?
1: माँ को आता था बहुत अच्छा, पर अब माँ नहीं है ना।
0: अरे यार मेरा टिफिन तू खा, मेरा टिफिन तेरा टिफिन है और मेरी माँ तेरी माँ है और मैं हूँ ना तेरे साथ हमेशा।
2: माँ वो एहसास है जो हमेशा रहता है, हर रिश्ते में ममता समा सकती है। दिल खोल कर प्यार बांटे ताकि कोई भी दिल माँ के प्यार से वंचित ना रहे। हर माँ को और उस माँ को जिन्हें माँ कहकर नहीं पुकारा जाता, उन्हें रेडियो मधुबन विश करता है अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे मध्य एक ऐसी एक्सपर्ट हाजिर हैं जो 11 इयर्स यानी कि 11 साल की छोटी उम्र से आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीते आ रहे हैं। लगभग 51 साल से आप राजयोग ध्यान मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप मुंबई से आए हैं, तो मुंबई के सेलिब्रिटीज हो या फिर आम जनता हो या व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हो या यूथ हो या बच्चे हो, सबको आप इंस्पायर करती आ रही है इतने वर्षों से। लगभग 40 साल से आप सेंटर पे रहते हुए लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि क्रीना दीदी जी आज हमारे मध्य पधारे हैं जीवन रोशनी इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आइए उनसे हम जानेंगे जो बहुत ही जरूरी विषय है आज के समय में कि हम एकाग्र नहीं रह पाते कई बार, तो एकाग्रता क्या है, फोकस्ड कैसे रहें, और कई बार हम चाहते हैं फोकस रहना लेकिन हम अटेंशन ही नहीं दे पा रहे हैं। तो अटेंशन क्या है, फोकस क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है या दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इस बारे में आज प्रकाश डालेंगे आदरणीय क्रीना दीदी जी। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
4: आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुभाश्री जी।
3: थैंक यू।
4: मुझे बहुत खुशी है कि मैं रेडियो मधुबन के लिए कुछ ना कुछ अपनी छोटी छोटी सेवाएं भी दे सकूं।
3: जी थैंक यू। तो दीदी आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार सोशल मीडिया का ज़माना भी है, हम इंटरनेट भी यूज़ करते हैं, AI को लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, कई बार हम सही इस्तेमाल करते हुए भी उससे बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि AI के कारण या इंटरनेट के कारण हम अपने अटेंशन स्पैन घटा रहे हैं और फोकस नहीं रह पा रहे, क्या कहना चाहेंगे?
4: बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल मीडिया और AI का उपयोग तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और हम देख रहे हैं कि जितना व्यक्ति इंटेलिजेंट इवन छोटेपन में होता है वो जल्दी से इसको ग्रास्प कर रहा है और बहुत बहुत ही उसका यूज़ कर रहे हैं। अभी कैसे क्या यूज़ कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, वो तो हर एक की अपनी चॉइस है, पर बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि फोकस या अटेंशन स्पैन जो है वो कोई बाहरी वस्तु के कारण कम हो रहा है ऐसा नहीं है
3: जी।
4: लेकिन जो उसका प्रभाव अलग अलग हमारे मन और बुद्धि पर पड़ता है, कई बार उनसे हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं
3: जी,
4: या व्यक्ति थोड़ा वीक है अपने नेचर में और जितनी भी परिस्थितियाँ आती है उन सब के प्रभाव में आता जाता है, ही गेट्स अफेक्टेड, तो फिर उसके थॉट लेवल पे बहुत ज़्यादा विचार करना शुरू कर देता है। और उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि सब विचार पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव का तो स्पीड ही बहुत ज़्यादा होता है और वेस्टेज जो थॉट्स के होते हैं वो तो खुद को भी पता नहीं पड़ता है, इतना वेस्टेज होता है
3: जी।
4: तो जब इतना सारा क्लाउडेड हो जाता है ना मन और बुद्धि का जो स्पेस है वो, तो उसके कारण वो ज़्यादा लंबे समय तक एक बात पर केंद्रित अपने मन बुद्धि को नहीं कर सकता है, क्योंकि पीछे से उसके थॉट्स उसको इंटरफेयर कराते रहते हैं
3: जी,
4: खुद के। तो जितना इंटरफेरेंस ज्यादा होगा हर एक बात से उसको कुछ और याद आता है तो डिस्ट्रैक्ट होता जाता है, तो नेचुरली उसका अटेंशन स्पैन कम होगा
3: जी,
4: फोकस नहीं रहेगा। ऐसा मैं समझती हूँ, क्योंकि बाहर के तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, लेकिन हमको उसको यूज करना है। जितने भी साइंस ने हमको साधन दिए हैं वो सब यूज करने के लिए दिए हैं
3: जी,
4: तो हम उस पे दोष न डाल के अपने ऊपर अटेंशन ज्यादा दे कि मेरी जो मन की स्थिति है वो ये सब यूज करते समय कैसी है
3: जी,
4: और उस पर अगर हम ध्यान देकर के अपने आप में थोड़ा एनर्जाइज अपने को करेंगे और बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि मनुष्य की बुद्धि इतनी वंडरफुल बनी हुई है कि वो जल्दी से बना अपना फोकस तोड़ सके। पर आज ऐसा हो गया है
3: जी। तो ये सब यूज करते हुए हम कैसे मन को एकाग्र रखें, और आपने कहा कि यूज़ करना भी है, इन्फॉर्मेशंस भी हमें चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, तो अगर इन्फॉर्मेशंस या नॉलेज नहीं होगा तो हम शायद कम्पीट नहीं कर पाएंगे
4: जी। सही, प्रैक्टिकल फील्ड में देखो तो ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल उसके बिना जो कई सिस्टम्स हैं वो आउटडेटेड हो गए हैं, तो इसलिए जिसकी प्रायोरिटी होती है तो उसको तो हेल्प लेना ही पड़ेगा व्यक्ति को। लेकिन अगर आपको अपना फोकस मेंटेन

0: क्योंकि जैसे टेलीविजन होता है ना, टेलीविजन आप ऑफ करो तो क्या होता है पता है, पूरी लाइट ऐसे पॉइंट पे आके फिर ब्लैकआउट हो जाता है.
1: जी जी राइट.
0: और जब टीवी चालू भी होता है तो हमको नहीं मालूम पड़ता, लेकिन एक पॉइंट से ही पूरा पिक्चर एनलार्ज होता है.
1: राइट.
0: वही सिस्टम हमारे अंदर है. तो क्योंकि हम उसको मिस कर रहे हैं, आजकल कई लोगों को वो टेलीविजन की टेक्निक भी भूल गए हैं.
1: जी
0: उनको लगता है कि हाँ टीवी चालू हो गया, टीवी बंद हो गया. पर ये टेक्निक होती है, कोई भी चीज में कोई जब विजन पे आती है तो वो पॉइंट से इमर्ज होती है.
1: जी
0: ऐसे ही अगर हम प्रैक्टिस करें कि हम पहले जहां से भी निकले वहां से सारे थॉट्स को मर्ज करके एक केंद्र बिंदु पर ला ले, क्या सीखा हमने उससे
1: जी,
0: और फिर थोड़ा उसको डीप साइलेंस में ले जाए कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर दूसरी परिस्थिति की ओर जाए. और ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका अटेंशन स्पैन जरूर बढ़ेगा और आपको जो डिस्ट्रैक्शंस है वो कम महसूस होंगे.
1: जी, कई बार जैसे मेडिटेशन में हम बैठते हैं तो वही थॉट्स चलते हैं जो हमने देखा, जो इन्फॉर्मेशंस हमने कलेक्ट किया, तो फिर हम फोकस नहीं रह पाते,
0: नहीं कर पाते.
1: तो ये धीरे धीरे होगा करते करते.
0: ये चीज करना जरूरी है जब भी मेडिटेशन में भी बैठो. ये तो हम एक्टिविटी में बैठने की बात कर रहे थे, पर अगर प्योरली मेडिटेशन में भी बैठते हो तो यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट मेडिटेटिंग. आपको पहले हर चीज बाहर की मर्ज करके एक पॉइंट पर आपको आ जाना है, भले वो पॉइंट ऑफ लाइट हो, पॉइंट जहां पर सारी रेज मिल गई है, सब कुछ आपकी बाहर की दुनिया समेट ली है. आपको उस पे आना पड़ेगा और ऐसी पोजीशन पे आप उसमें आएंगे कि वो सेकंड आप सब कुछ भूल जाएंगे.
1: ओके, तो वो क्या टेक्निक से कैसे समेटेंगे अगर मन बार बार बाहर की ओर जा ही रहा है या फिर कुछ और बातें मन में चल रही है, तो क्या बात करेंगे हम मन से?
0: तो जब आप मेडिटेशन में बैठे या एक एक्टिविटी पूरी की, तो आप पहले उस एक्टिविटी को रिवाइज करके कि भाई मैंने ये किया, मैं वहां गई थी, मैं वहां मिली, मैंने ये ब्रेकफास्ट खाया, मैंने ये कार्य किया, उस सब को याद करते हुए पूरा जैसे अंदर ले रहे हैं आप कि अब मैं थोड़े समय के लिए इससे भी फ्री हो रही हूँ, ब्रेकफास्ट जो खाया उससे भी फ्री हो रही हूँ, ये भाई से मिली वो उससे भी फ्री हो रही हूँ, ये कार्य कर लिया उससे भी फ्री हो रही हूँ, अब मैं उनमें नहीं हूँ. अपने मन को कहना है, अपने को समझाएं कि अब मैं उन सब में नहीं हूँ, मैं सब से फ्री हो गई हूँ.
1: मन को हम ऐसे
0: समझाएं उसको, इसको वो मार्ग दिखाएं कि ये सब अभी अगर इसके बारे में सोचोगे तो आप डाइवर्ट हो जाओगे,
1: तो प्रेजेंट में आ जाओगे.
0: हाँ, तो जब प्रेजेंट पल में कैसे आएंगे, जब ये सारे पास्ट की चीजों को आप मर्ज कर देंगे. जैसे समझो कपड़ों का फैलावा है कमरे में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब आपका कोई फ्रेंड आ रहा हो या कोई ऐसा कुछ भी कार्य नेक्स्ट इस कमरे में होने वाला हो, तो आप सारे कपड़े समेट कर घड़ी करके आप कबाट के अंदर रख देंगे ना.
1: जी,
0: पहले वो क्लियर करेंगे ना, तभी आप दूसरे को एंटरटेन करेंगे रूम में. तो आपको वो विस्तार डिस्टर्ब करेगा
1: जी,
0: और आपको लगेगा कि सामने वाला आएगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा
1: जी.
0: तो आप पहले उसको समेट लेते हैं. ऐसे ही हर बात को, जहां से भी आप आए, जिसके लिए भी आए, एक सेकंड के लिए सब समेट लो कि अब उसका कोई कनेक्शन नहीं है जो मैंने किया पास्ट का, कितना भी इम्पोर्टेंट कार्य क्यों ना हो, पर अब वो नहीं है. अब मैं प्रेजेंट में कहां पर हूं और मुझे इसी के बारे में सोचना है. तो सबसे पहले अंदर सब समेट कर मैं केवल एक पॉइंट हूँ.
1: जी,
0: हम अपने आप में ही फोकस है. मैं पॉइंट हूँ, मैं जहां भी अपनी लाइट को स्प्रेड करूंगी ना, एनर्जी को भेजूंगी, वहां का कार्य होगा.
1: जी,
0: तो अगर मैंने उसमें भी 10 जगह एनर्जी भेजी तो फिर कितना वेस्ट हो जाएगा एनर्जी.
1: जी,
0: क्योंकि वो दूसरे 9 कार्य तो होने नहीं है.
1: बिल्कुल,
0: अभी एक ही कार्य होना है, तो फिर वो एक ही कार्य के लिए मुझे एनर्जी भेजनी है, तो एकदम फ्रेश आउटलुक भी मिलता है.
1: ओके, तो कई बार हम अपने आप के साथ भी युद्ध करते रहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट में आ जाओ, प्रेजेंट में आ जाओ, बट हम आ भी नहीं पाते हैं.
0: प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जितना प्रैक्टिस करेंगे वो चीज का, तो आप वापस अपनी उस स्थिति पर आ सकते हो ना।

0: मुमकिन नहीं है।
1: तो ये लाइफ के हर सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है,
0: हर सिचुएशन के लिए। और दूसरा, रात को सोने से पहले,
1: ओके,
0: ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, रात को सोने से पहले भी जैसे आप पैर धुलाई करते हो, हाथ धुलाई करते हो, ब्रश करते हो, बाकी सब चीजें रख देते हो
1: जी,
0: हाँ, फिर यू चेंज योर क्लोथ्स, ये सब आप करते हो ना प्रक्रिया
1: जी,
0: क्यों क्यों करते हो? क्योंकि आपको एक माइंडसेट तैयार करना है कि अभी मेरा दिन पूरा हो गया, अब मुझे सोना है। कई लोग प्रेयर करते हैं ताकि उनको लगता है कि बाय द एंड ऑफ द डे ये सबसे अच्छा काम करेगा, कि मेरे को पूरे दिन के जो प्रभाव से मुक्त करेगा, इसलिए वो प्रेयर करते हैं। ग्रैटिट्यूड के लिए कई लोग करते हैं रात को सोने से पहले, ये सब फिजिकल एक्टिविटी है।
1: ओके जी,
0: वैसे ही आपके सारे दिन की दिनचर्या को आपको अंदर समेट लेना है, ये हम भूल गए हैं। अब भूली हुई चीज जब वापस करने को कोई बोले तो तकलीफ होती है, बार बार फिजिकल चीजें ही याद आती है
1: जी,
0: और अपने को लगता है कि फिर टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेंटली हम करते हैं उसके लिए बहुत कम टाइम चाहिए।
1: फिजिकली
0: जो करते हैं, नहीं, रात को सोने से पहले की बात है, कार्य कर जो फिजिकली करना है उसमें टाइम लगेगा, जैसे ब्रश करना है या हाथ पैर धोने हैं या कपड़े बदलने हैं, लेकिन मेंटली जो आपको एक्टिविटी करनी है सब कुछ समेटने के लिए सुबह से लेकर रात तक, वो तो कुछ सेकंड में भी हो सकता है
1: जी,
0: इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो रात को सोने से पहले भी ये पॉइंट तक वापस समेट लो, ये बहुत जरूरी
1: जी।
0: माना हमेशा समझो कि हर चीज एक स्पार्क से शुरू होती है, हर चीज
1: स्पार्क से शुरू होती है,
0: स्पार्क से शुरू होती है, स्पार्क पे ही एंड होती है। तो हम अपने लिए ये चीज भूल गए।
1: राइट जी। तो बच्चों की बात पूछना चाहूंगी कि जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो बार बार मन भटकता है, तो वो स्पार्क कैसे लाएं कि हम फिर से वापस पढ़ाई पे आए?
0: जी, तो उनको एक सेंटेंस अपने लिए निर्धारित करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को
1: जी,
0: और वो सेंटेंस उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद वापस रिपीट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम अ वेरी स्टूडियस पर्सन
1: जी,
0: या माय इंटेलेक्ट इज रेडी टू ग्रास्प, जो भी सेंटेंस है
1: जी,
0: मेरी बुद्धि पढ़ाई को ग्रहण करने के लिए तैयार है, बस इतना बोलना है मन में, लेकिन ये पढ़ाई के बीच में 10 बार बोलना है
1: जी, पढ़ाई के बीच में
0: 10 बार। उसका इम्प्रेशन बुद्धि पे पड़ता है और बुद्धि उस बात को ग्रास्प करती है,
1: अगर मैं पढ़ाई में सही नहीं हूँ तो भी ओके,
0: तो भी धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो बुद्धि आपको मदद कर रही है और मन भी साथ दे रहा है कि आप वो अटेंशन स्पैन को बढ़ा सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए भी। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग आपको याद आ रहा है जो आपके लिए और इंटरेस्टिंग है, या समझो आपको बार बार ये आ रहा है पर ये किस काम की पढ़ाई है, किस काम की पढ़ाई है, मैं कर तो रही हूँ, एग्जाम ही देना है बस, और कुछ नहीं होगा इसका, जितना उसके लिए नेगेटिव वेस्ट थॉट्स करेंगे तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट होगा और कहीं और जाएगा। तो आपने जब कहा कि नहीं, मेरी बुद्धि अभी ग्रास्प करने के लिए तैयार है, तो वो बुद्धि कैच कर लेती है और आपको मदद करती है कि जो कर रहे हैं उसी में ग्रास्पिंग आपका बढ़ जाता है। तो आपकी मन और बुद्धि ही आपका पूरा एनर्जी जो है, कहाँ पर आपको ले जाना है, गाइड करना है, डायरेक्ट करना है, वो मदद करती है। लेकिन आज हम यही दो बातों को बहुत जल्दी भूल गए हैं, क्योंकि हमारी जो हैबिट्स है, हमारा जो नेचर है, वो ही जो बन गया है वो ही डिस्ट्रैक्ट कर लेता है
1: जी,
0: वो ही डिस्ट्रैक्ट करता है कि नहीं
1: जी। तो जैसे आप हैबिट्स की बात कर रहे हैं और सोमान की बात भी आपने कही कि आप स्टूडियस हो, ये आप बार बार प्रैक्टिस करो तो आपकी बुद्धि भी स्वीकार करने लगेगी और शायद यूनिवर्स भी साथ देता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या दिन में कई बार हम ओवरथिंकिंग भी कर लेते हैं, तो ये भी हमें डिस्ट्रैक्ट करती है ओवरथिंकिंग? मान लीजिए किसी ने कुछ कहा तो हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं, तो जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी कहना चाहेंगे कि हम अपने आप से तो बोल रहे हैं कि हम स्टूडियस हैं लेकिन टीचर ने ये कह दिया कि तुम तो गधे हो, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, तो फिर ये ओवरथिंकिंग करने लगता है
0: जी। और ओवरथिंकिंग जो करता है उसका एजुकेशन पे असर भी पड़ता है और उसकी इंटरेस्ट कम हो जाती है
1: जी।
0: तो इतना वीक हम न बन जाएं जो हम अपने आगे के रास्ते को ही ब्लॉक करें। उसके लिए आपको पहले से ही इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा कि लोग अपना ओपिनियन देते रहेंगे। और मुझे बहुत छोटेपन से ही इसका अनुभव मिलता रहेगा, मेरे पापा, मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन, फिर मेरी फ्रेंड, मेरे टीचर, सब अपना अपना ओपिनियन देंगे, है ना। और पहले क्या होता है, हम बहुत फ्रेजाइल होते हैं, हम हर एक पे ट्रस्ट रखते हैं, हमको लगता है हर एक मेरे लिए है, यू नो, और सबके ओपिनियंस फिर धीरे धीरे घर कर जाते हैं
1: जी।
0: तो उसमें आप अपनी आइडेंटिटी को लूज करने का पूरा चांस अपने आप को दे देते हो
1: जी।
0: भले सब ओपिनियन दे, आपको केवल अपने ऊपर फोकस करके देखना है कि सचमुच ये मेरी गलती है या इस प्रकार से भी चीज की जाती है, या इनका ओपिनियन है पर मुझे अभी भी इस बात का जो मैंने किया उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि मैंने जो बोला वो बिल्कुल राइट है, तो चेक करने का। अगर आपको लगे कि नहीं, ओपिनियन बेटर है मेरे विचारों से, तो वो ओपिनियन स्वीकार करे और आगे बढ़े। पर हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, समटाइम्स आपका कॉन्फिडेंस भी काम कर जाता है ना। तो इसीलिए आपको बहुत अनबायस्ड रह करके डिसीशंस लेने होंगे। चेक करो, क्या मेरी ये मिस्टेक हुई है, मुझे इस मिस्टेक को करेक्ट करना है, मेरे से ये मिस्टेक नहीं हुई है लेकिन सामने वाले का ओपिनियन है, तो मुझे इसी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है। है तो आपकी जीवन
1: जी,
0: है तो आपकी आइडेंटिटी बनाने की बात है ना, तो वो आपको ही डिसीशन अल्टीमेट लेना पड़ेगा
1: जी। तो ये
0: फिर आपका ओवरथिंकिंग नहीं होगा। अगर छोटेपन से ये गाइडेंस दी जाए
1: जी,
0: है ना
1: जी,
0: जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गिर गया तो हम जमीन को ऐसे मारते हैं, कहते देखा इसकी भूल है, इसकी भूल है, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति फिर दूसरों को दोष देने लगता है, वो बच्चा आगे चल के भी
1: जी।
0: लेकिन अगर उसको समझाया जाए कि कोई बात नहीं, देखो तो दूसरी बार इधर ध्यान से चलना तो नहीं होगा, वो भी पॉजिटिवली बोल सकते है ना
1: जी,
0: तो फिर वो उस रीति से समझेगा कि मुझे चलते समय ये ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन अगर हमने कहा अरे तुम गिर गए, तुम गिर गए, अरे बहुत लगा क्या, हाँ चोट लगी, देखो मैं ऐसे कर, तो फिर वो पैम्परिंग से वो ज्यादा वीक हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके हैं एक छोटे बच्चे को समझाने के लिए, और फिर वही संस्कार आगे चल करके बच्चा भी प्रदर्शित करता है। तो ओवर थिंकिंग तब होता है जब आपने कुछ रॉन्ग गाइडेंस दे दी और फिर वो उसी रीति से चलता रहा, तो आगे चल के वो लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में हमेशा ओवरथिंक करेगा, क्योंकि वो खुद अपनी एनालिसिस नहीं करता है
1: जी। तो आजकल हम मल्टीटास्किंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो क्या ये प्रोडक्टिव होता है या इससे हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कम होता है?
0: नहीं, मल्टीटास्किंग से कंसंट्रेशन कम होने का कोई मार्जिन वैसे नहीं है, पर अगर आपका ढंग जो है वो हर चीज को अधूरा छोड़ के दूसरे पर जाना, या समझो आपका डेलीगेशन ठीक नहीं है, आपके डिसीशन ठीक नहीं है, तो नेचुरली फिर जो होगा उसके रिपरकेशन में, उसके लिए आपको ओवरथिंकिंग पे ले जा सकता है।
1: मल्टीटास्किंग को आप कैसे देखते हैं? मान लीजिए मैं गाना सुनते सुनते खाना खा रही हूँ, या फिर मैं कुछ और करते हुए अपना ऑफिस का काम कर रही हूँ, वो मल्टीटास्किंग होता है साथ साथ में दो चार चीजें करने में, या फिर कैसे मल्टीटास्किंग करते हुए भी फोकस रह सकते हैं?
0: द रियल सेंस ऑफ मल्टीटास्किंग माना कि व्यक्ति ऑफिस भी संभाल रहा है, घर के बच्चों का भी देख रहा है, और साथ में कोई सोशल वर्क भी कर रहा है, साथ में कोई डोनेशन का कार्य भी कर रहा है,
1: मतलब बैलेंस करके चल।
0: हाँ, मल्टीटास्किंग वो नहीं है कि मैं गीत सुनते हुए अपना स्टडी कर रही हूँ, दैट इज नॉट कॉल्ड मल्टीटास्किंग। दैट इज योर इंटरेस्ट कि आपको कुछ आवाज चाहिए ऐसी जिससे आप कॉन्सेंट्रेट कर सको, वो अलग बात है। माना आप हॉबी और आपके टास्क को मिक्स कर रहे हो टू मेक द एटमोस्फियर लाइट और व्हाटएवर
1: जी,
0: है ना। कोई जोर जोर से बोल के पढ़ता है, वो मन में नहीं पढ़ पाता है क्योंकि उसको वही ज्यादा बोलना भी चलता है और पढ़ना भी हो रहा है, वॉकिंग भी हो रही है
1: जी जी,
0: तो ऐसे भी लोग करते हैं, बट दैट इज नॉट मल्टीटास्क.
1: ओके,
0: दैट इज मिक्सिंग योर वेज एंड मीन्स ऑफ डूइंग थिंग्स विद वन एक्टिविटी. बाकी मल्टीटास्किंग माना कि एक व्यक्ति बहुत सारे कार्य बाहर अंदर उस सामाजिक रूप से कर रहा है
1: एंड ही फाइंड्स टाइम. एक टाइम में एक ही चीज करना है, मतलब ऑफिस के टाइम में ऑफिस का काम है.
0: डिपेंड्स, अगर आप एफिशिएंट हो, आप ओवर थिंकिंग में नहीं जा रहे हो, आप इफेक्टिव हो हर कार्य के लिए, तो व्हाई नॉट.
1: ओके,
0: आपके टैलेंट पर है.
1: जी, तो ये चेक करना है कि आप कैसे कर रहे हो.
0: पोटेंशियल तो हर एक में होता है. आप कई बार पोटेंशियल यूज ही नहीं करते, कई बार आपको अवेयरनेस ही नहीं है अपने पोटेंशियल के बारे में.
1: तो कैसे चेक करें कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल्स हैं?
0: ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती है जब आपको वो अवेयरनेस आती है.
1: ओके,
0: आती है तो उस समय अगर आप अवेयर हो कि इस परिस्थिति ने मेरे पोटेंशियल्स को बाहर निकाले, तो इट इज गुड नो इफ यू कैन एक्नॉलेज. बाकी तो परिस्थितियां लोगों को आती ही है,
1: वो अनुभव
0: फिर
1: अगर बना रहता
0: है. फिर अगर थोड़ी नेगेटिव टाइप की परिस्थिति भी आती है कभी कभी, कभी पॉजिटिव भी आती है. परिस्थिति परिस्थिति है
1: जी,
0: उसमें आपने कैसे अपने पोटेंशियल्स को यूज किया वो आपके ऊपर है
1: जी. दीदी, जब मन भारी या दुखी हो तब फोकस को कैसे वापस लाया जाए?
0: जी, मन भारी या दुखी हो तो उस समय पहले तो उसको लाइट करना पड़ता है. लाइट, क्योंकि आप अपना कार्य अपनी जिम्मेवारी नहीं छोड़ सकते हैं
1: जी,
0: और छोड़ना भी नहीं चाहिए. अगर एक बार छोड़ने की आदत पड़ गई ना, तो छोटी छोटी बातों में आप छोड़ते रहोगे
1: जी.
0: फिर आप कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के योग्य नहीं बन सकते. तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले जो चीज आपको लाइट करती है, जैसे आपको कोई संगीत है, फ्लूट प्लेइंग है, या आपको कोई गार्डन में जाके रिलैक्स होना अच्छा लगता है, या कोई वर्कआउट कर लेता है, कोई वॉक पे चला जाता है, यू नो कईयों के कई मेथड्स होते हैं. तो जो हर एक को सूट हो, अगर वो थोड़ा अपने को लाइट कर देना, तो फिर अपनी जिम्मेवारी पे वापस आ सकते हैं. तो ये लाइट होने के समय में वो ओवरथिंकिंग को साथ में नहीं लेता है, बिकॉज उसकी जो आदत है ना कि मैं पार्क में जाता हूँ तब मेरा ओवरथिंकिंग नहीं होता है. देखा हुआ है, उसका अनुभव है. इसलिए अगर वो भारी हुआ तो वो सीधा पार्क में जाएगा
1: जी,
0: और सचमुच ही वो चीज उसको मदद करती है लाइट वापस होने के लिए. माना वो थोड़े समय के लिए वो जगह से, वो सिचुएशन से निकल के एक ऐसी जगह जाता है जहां उसको अनुभव है अंदर कि वो लाइट रहता है. वो कर ऐसे करते जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे जो बड़े हैं, दादियां हम जिनको बोलते हैं, तो एक दादी गुलजार जी है, तो उनको एक बार प्रश्न किया था किसी ने कि जब आपका मन भारी है, आपका मूड ऑफ है, और कोई क्लास के लिए आता है, तो क्या आप क्लास में जा पाओगे? तो दादी ने बोला, जाना तो है क्योंकि जिम्मेवारी है, लेकिन उसके पहले थोड़ा मेडिटेशन रूम में जाके अपने आप को हल्का कर, अच्छी बातें कहकर, भगवान से अच्छी बातें कर करके अपने को हल्का कर दो, गीत बजा दो, एक कमेंट्री बजा दो, भले वो बैठे जो आए हैं वो, उसकी चिंता मत करो. और जैसे आपको फील हो कि अभी हो गया है, आप जाओ वहां, बहुत ब्यूटीफुल क्लास हो जाए. उल्टा, यू नो, अ डिफरेंट एक्सपीरियंस,
1: क्योंकि आप अपने रोल को मना भी नहीं कर रहे हो,
0: नहीं,
1: और आप जा भी रहे हैं और भगवान से बात करके जाएंगे तो हेल्प तो मिलेगी.
0: हाँ, जरूर. या आप साइलेंस में चले गए, या आप बिल्कुल अपने को हल्का छोड़ दिया रिलैक्स करके मेडिटेशन रूम में, और फिर जाओ, तो आप एक नए व्यक्ति ही हो, समझो पास्ट से.
1: बिल्कुल, तो ऐसे हर किसी के घर में एक छोटा सा मंदिर या फिर भगवान की फोटो जरूर होता है, तो आप उसके सामने जा करके अपनी बात कह के जा सकते हैं जी. तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि ध्यान की अवधि के बारे में, कि क्या ज्यादा जरूरी है, लंबे समय तक ध्यान बनाए रखना या कम समय में गहराई से फोकस रहना?
0: ओके, शुरू तो कम समय से ही होता है, और वो कम समय जैसे 5 मिनट या 10 मिनट में आपको कितना टाइम ध्यान लगा, वो इम्पोर्टेंट है
1: जी,
0: है ना. तो वो प्रैक्टिस की अगर नोट की जाती है, तो धीरे धीरे आप अपनी अवधि को बढ़ाते हुए देखते जाएंगे
1: जी.
0: लेकिन आपने नोट ही नहीं किया, आपने एक चार्ट मेंटेन ही नहीं किया, तो एक संस्कार बन जाएगा कि भाई मेरे से तो लंबा टाइम का नहीं होता है, मेरा तो 10 ही मिनट इनफ है, मेरा तो 20 मिनट ही इनफ है। तो वो आपने क्या किया, आपने प्रगति के लिए चार्ट नहीं बनाया, पर आपने अपना एक नेचर बना दिया। फिर आपको कंसंट्रेशन केवल 10 मिनट या 20 मिनट लगेगा, फिर कोई 1 घंटा बिठा देगा ना, तो आपका नहीं। तो वी डोंट हैव टू क्रिएट अ पर्टिकुलर संस्कार, पर हमें चार्ट रख के अपनी अवधि को भी बढ़ाना है, अपने फोकस को भी बढ़ते हुए अनुभव करना है। दिस इज द मोस्ट सिस्टमैटिक वे, है ना।
1: ओके, आपको चेक करते हुए अपने आप को धीरे धीरे,
0: नॉट जस्ट मेकिंग अ नेचर के भाई हाँ मैंने देखा है मैं 10 मिनट बैठती हूँ ना तो मेरा ध्यान बहुत अच्छा होता है, तो ये नेचर बना दिया। योगी होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, स्टूडेंट होता है, उसको कई बार पूरी रात पढ़ना पड़ता है
1: जी, राइट,
0: और कई बार दिन में 1 ही घंटा पढ़ना होता है। तो वो ऐसा नहीं कह सकता कि आज मैं पूरी रात नहीं पढ़ सकता हूँ, उसको पढ़ना होगा। तो वो एक ही प्रकार का संस्कार नहीं बनाता है,
1: फ्लेक्सिबिलिटी
0: भी लाता है, और रोज से प्रैक्टिस से अपनी अवधि भी बढ़ाता है कभी कभी, और देखता है कि कितना फोकस रहा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि दीदी, जैसे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, तो ये देखते देखते क्या हमारे अटेंशन स्पैन पर भी असर पड़ता है कि हम भी जो भी काम करते हैं उसमें हम फोकस नहीं रह पाते, 10 मिनट भी नहीं या 5 मिनट के बाद हमारा ध्यान भटक जाता है?
0: थोड़े समय पहले मैंने देखा था कि वेस्ट के टीवी में बहुत जल्दी एड्स और आती है और एकदम फास्ट फास्ट मूव होती है, उतनी स्पीड में इंडिया में नहीं होता था। इंडिया में आप पूरा एड लाइक देख पाते थे अच्छी तरह से, जबकि वेस्टर्न टीवी में बिल्कुल फास्ट होता था
1: जी।
0: तो मुझे भी सोच चलती थी कि ये लोग इतना फास्ट क्यों करते हैं। तो मुझे एक जगह पता चला कि क्योंकि वहाँ उनकी दिनचर्या भी इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट लाइफ है उन लोगों की, कि अब उनको लंबा स्लो सुनने को ही नहीं होता है। इसीलिए वो लोग ज्यादा इन्फॉर्मेशन फास्ट फास्ट फास्ट रीलों में देते हैं, ऐसा पता चला
1: जी।
0: और फिर यहाँ भी हम देखते हैं कि अभी थोड़ा फास्ट कर दिया है हर चीज, और छोटे छोटे बनाते हैं। क्यों छोटे छोटे? अरे आजकल कोई लंबा देख नहीं पाता है, इसे छोटा ही बनाने का, वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग का है
1: जी।
0: जितना हमारा ओवर थिंकिंग बढ़ता है ना, तो नेचुरली अटेंशन स्पैन कम हो जाता है।
1: ओके, तो मूल कारण ओवर थिंकिंग।
0: हाँ जी, इट इज नॉट कि दिस इज मोर इफेक्टिव देन दैट। आप एक लेक्चर भी सुनो 1 घंटे का, बहुत इफेक्टिव होता है
1: जी।
0: और उसका ही एक छोटा रील देखो, वो भी इफेक्टिव रहता है।
1: हाँ, क्योंकि आजकल लोग एंजॉय देखते हैं।
0: यू कैन एंजॉय बोथ, पर कई लोग ऐसे हैं जो लंबा नहीं सुन सकते।
1: ये सबके लिए लागू नहीं होता।
0: हाँ, सबके लिए लागू नहीं होता। बाकी अगर आपका अटेंशन है, फोकस बराबर है, तो आप दोनों एंजॉय करें।
1: राइट जी,
0: इररिलेटिव ऑफ द स्पैन
1: जी,
0: है ना। जो भी है, आपका इंटरेस्ट बराबर होगा और आप हर चीज को बराबर सुनेंगे
1: जी। तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, और दीदी ने प्रैक्टिस की बात कही है।
0: हाँ,
1: तो जरूर आप उस प्रैक्टिस करते
0: करते केवल नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं हो।
1: हाँ, तो उसको चेक भी करना चाहिए हमको। हाँ, कि कैसे
0: ओवर थिंकिंग जिसमें कम होगा ना, वो दोनों एंजॉय करेगा
1: जी।
0: जिसमें ओवर थिंकिंग ज्यादा है ना, तो पेशेंस कम है।
1: ओके, तो पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है फोकस रहने में
0: जी।
1: तो आजकल धैर्यता ज्यादा कम हो रही है,
0: धीरज कम हो रहा है,
1: धीरज कम हो रहा है। तो
0: और जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड है, बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, इसलिए कोई गोल गोल बात भी करेगा ना, वो भी नहीं पसंद करता है। डायरेक्ट सॉल्यूशन बताओ ऐसे कहते हैं,
1: डायरेक्ट बात करो, घुमा फिरा के मत करो,
0: घुमा फिरा के मत करो, क्योंकि लोग में धीरज ही नहीं है सुनने की
1: जी।
0: अभी कोई कह रहा था
1: जी
0: कि होम्योपैथी दवा तो बहुत अच्छी है,
1: स्लो
0: लेकिन
1: है।
0: स्लो है, माना पहले वो सारी दूसरी दवाओं का असर बंद करता है, फिर उसकी असर होती है, तो लोग तंग हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई इसके असर ही नहीं है बीमारी पर, ऐसे होता है।
1: होता है। तो अब हम शारीरिक बात करते हैं, क्या हमारे जो दिनचर्या है, तो स्लीप है, स्लीप साइकिल है, फूड है, एक्सरसाइज है, इसका भी एकाग्रता पर असर पड़ता है?
0: एक्टिविटी तो आप बहुत कर सकते हो, स्ट्रेंथ भी उतनी शरीर को दी गई है कि आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर सकते हो। तो एक्टिविटी में भले कितना भी हो, हाँ उतना भी नहीं हो कि जो आपका स्ट्रेंथ ही नहीं है और फिर भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, वैसा नहीं, पर मैक्सिमम आपको जितना होता है आप कर सकते हो।

0: अगेन जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है ना, आपकी एटीट्यूड्स है, उसमें आपके विचार है, आपके नेचर है, आपका वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, ये जो सारी चीजें ना, अगर वो बैलेंस्ड नहीं है ना उन एक्टिविटीज के साथ, तो उसमें आप देखेंगे कि आप एक्टिविटीज कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट इतना जल्दी से सब जगह नहीं मिल रहा है, या आप थक जाते हो, या आप बर्डन फील करते हो।
1: तो जितना हो सके
0: इनसाइड एंड आउटसाइड का बैलेंस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो भले आप कितनी भी एक्टिविटी करो
1: जी। तो क्या हम क्या खाते हैं उसका भी असर पड़ता है?
0: हाँ, खाते हैं उसका असर पड़ता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि एज इज द फूड सो इज योर माइंड, माना जो खाना खाएंगे, जहाँ खाएंगे, जितना खाएंगे, जैसा खाएंगे, जिस रीति से खाएंगे, तो उसका असर मन पर पड़ता है। तो ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है
1: जी।
0: तो खाना भी अगर आप धीरज से खाते हैं, बराबर च्यू करके खाते हैं, अच्छी जगह, अच्छे वाइब्रेशन में खाते हैं,
1: टाइम पर
0: खाते हैं, अच्छी क्वालिटी वाला खाते हैं, और जिसमें आपका मन भारी ना हो जाए, ऐसा फूड खाते हैं, तो आपको मदद मिलेगी जरूर
1: जी। हाँ। और लंबे समय तक हम बैठ करके काम करते हैं सिस्टम के सामने, तो उस समय हमारे ध्यान को कैसे हम बनाए रखें?
0: लंबे समय तक बैठने पर एक ही प्रॉब्लम आता कि आपको एक पेन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी को एक ही सिचुएशन में रखना आजकल के नॉर्मल लोगों का करना बहुत डिफिकल्ट है। पहले हमारे संत करते थे, ऋषि मुनि करते थे, घंटों एक ही पोजीशन में बैठ के उनकी तपस्या होती थी और उनको कुछ नहीं होता था, ऐसे ही खड़े होके चले जाते थे। पर अभी जो हमारा बॉडी बना है ना, उसमें एक ही प्रकार का काफी समय तक रहना, जैसे खड़ा रहना, जैसे मॉल में हम देखते हैं ना, कितने घंटे, 12 घंटे व्यक्ति खड़ा ही रहता है
1: जी।
0: और अगर एक ही जगह खड़ा रहे तो क्या हालत होगी उसकी? ऐसे एक ही जगह सिस्टम के आप बैठे हो, तो उसके लिए कहा जाता है कि आपको कभी खड़ा होना है, कभी पांव को हिलाना है, कभी हाथ को, कभी कमर ट्विस्टिंग करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है
1: जी।
0: ऐसे ही आपको कभी कोई प्लेजेंट म्यूजिक भी सुनना चाहिए, या आप अच्छी बातें जो आपको रिलैक्स करती है, लाइट करती है, ऐसी अच्छी बातें भी आप देखो। मींस यू शुड फीड योर माइंड एट दैट टाइम विद वेरी पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, वेरी एनर्जाइजिंग थॉट्स और एक्टिविटी।
1: जो
0: अगर ऐसा करते हैं तो आपका बैलेंस अच्छा रहेगा। बाकी तो डेफिनेटली एक ही पोजीशन में अगर आप बैठे हो तो आपका अटेंशन स्पैन कम होने वाला है,
1: तो बीच बीच में आपको
0: उठके या आप कोई एक्टिविटी दूसरी करो, या आप कुछ फन एक्टिविटी अपने लिए करो, जिससे क्या होता है थोड़ी एक्सरसाइज भी करने की जरूरत है, तो आपका अटेंशन स्पैन अच्छा ही रहेगा
1: जी। जिस जगह पे हम काम करते हैं कई बार हमें डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ता है, चाहे वो चीज वस्तु हो, जैसे आप मॉल की बात कह रहे थे, तो वैरायटीज ऑफ कस्टमर्स आते हैं, तो उनकी व्यवहार से भी हम कई बार परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें तो स्माइल करनी है
0: जी।
1: और हम अपने साथ वालों के साथ रहना ही पड़ेगा
0: जी।
1: और मैनेजमेंट कैसा भी हो, हमें सैलरी की जरूरत है, तो हमें उनकी भी बातें सुन करके काम करना है
0: जी।
1: तो कई बार व्यक्ति दुखी होने के बावजूद भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है
0: जी,
1: और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे आई थिंक वो डिस्ट्रैक्शन मोड पे चला जाता है।
0: हाँ हाँ।
1: तो उस एनवायरमेंट में रहते हुए भी, उस जगह में रहते हुए भी कैसे अपने आप को बचाए रखें?
0: राइट। इसमें ना अगर हम ऐसा देखें कि ये सब एक्टर्स है अलग अलग, और वो अलग अपना अपना रोल बजा रहे हैं, इनको ये रोल दिया गया है, इनको ये रोल दिया गया है, अलग अलग प्रकार का। हाँ, तो एक है जो एक्चुअली किसी कस्टमर को कन्विंस करने के लिए खड़ा ही नहीं है, वो कम बात करता है, दिखाता है, कस्टमर को लेना है तो लेगा, नहीं तो चला जाएगा। एक जन है वो बहुत अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग वे में बात करता है और इनको ना थोड़ा इंस्पायर करता है कि ये लेंगे, तो वो एक नहीं चार चीजें लेके जाता है। तो हर एक अपना रोल बजा रहा है, ऐसे नेचर वाइज भी हर एक का रोल होता है। अब समझो कि जो सुपीरियर है उसको ये भाई पसंद आता है जो बातें करके एक से चार करता है, तो फिर उसका व्यवहार वो शांत वाले के साथ कैसा होगा? थोड़ा कम होगा ना, कम होगा, ही विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट द अदर पर्सन। पर अगर वो समझे कि नहीं, ऐसे भी लोग जरूरी है मॉल में, सभी ऐसे होंगे तो नहीं, हर एक अलग अलग होते हैं एंड दे आर डूइंग द ड्यूटी बट इन डिफरेंट स्टाइल्स, ऐसे अगर हम अपनी सोच को बदले कि भाई इस व्यक्ति को गुस्सा क्यों आ रहा है, वो मेरा इंसल्ट क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे उसके नेचर को समझे कि इसका नेचर क्या है, वो कौन सी चीज से डिस्टर्ब होता है, तो हम अगर समझेंगे तो हम कुछ अपने अंदर पॉजिटिव चेंज भी ला सकते हैं, नॉट टू प्लीज हिम बट टू मेक आवर सेल्व्स मोर इफेक्टिव
1: जी,
0: है ना।
1: तो वो सब देखते हुए भी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है,
0: धीरे धीरे ऐसा रिजल्ट आएगा,
1: रिजल्ट आएगा, क्योंकि
0: जब तक आपने एक्सेप्टेंस नहीं है ना तब तक रिजल्ट नहीं आएगा।
1: जी जी बिल्कुल, तो एक्सेप्ट करना बहुत
0: बहुत जरूरी है कि भाई एवरीबॉडी इज प्लेइंग देयर ओन रोल,
1: भले वो
0: तो मैं किसी का रोल नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन मैं अपने रोल को मोर इफेक्टिव बना सकती
1: हूँ, और मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मेरा नेचर अगर कि मैं मुझे बात करने नहीं आती है,
0: जी जी कोई बात नहीं,
1: वो
0: डोंट कंपेयर,
1: कंपेयर
0: किसी से कंपेयर भी करने की जरूरत नहीं, वो अपना रोल बजा रहा है, मुझे अपना रोल बजाना।
1: अगर मैनेजर कंपेयर किया तो,
0: मैनेजर कंपेयर करे तो सुन लो, फिर देखो कि मैं कौन सी चेंज अपने में ला सकती हूँ, और अगर ला सकते हो तो वेरी गुड है, बैलेंस करने के लिए।
1: अगर बाकी आप करने
0: की, अगर आपने फोर्सिबली अपने में चेंज लाया तो वो न कस्टमर पर इफेक्टिव होगा न आपको अच्छा लगेगा,
1: क्योंकि वो नेचुरल नेचर नहीं है।
0: नेचुरल चेंज अपने में आना चाहिए, तो भले कोई कुछ भी बोले पर अपने को फोर्स नहीं करना है अपने ऊपर, है ना। अगेन फोर्स करेंगे तो फिर आपका विचार बदलता रहेगा अंदर, तो सामने जो आ रहे हैं उनसे डील करने में आपकी जो खुलापन होता है, ओपन माइंडनेस होती है, वो नहीं होगा, वो डिस्टर्ब करेगा वातावरण को और भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि जब आसपास के लोग डिस्टर्ब करते हैं तो शांत रहकर काम कैसे करें, घर में भी, घर में मान लीजिए सब मेंबर्स के साथ हमारा नहीं बनता है कई बार, क्योंकि विचार अलग अलग होते हैं, तो कैसे शांत रखें अपने आप को और काम भी करें।
0: देखिए शांत रहना ये चुप रहना अलग होता है।
1: ओके जी,
0: कोई चुप हो जाते हैं
1: लेकिन अंदर चलता रहता है चीज़ें,
0: चुप हो जाते हैं और कोई भी बात करने को इग्नोर करते हैं, ज्यादा टाइम बाहर चले जाएंगे जब वो व्यक्ति होता है जिसके साथ नहीं जमता ऐसे, तो वो थोड़ा आर्टिफिशियल हो जाता है और वो हो सकता है वाइब्रेशन के कारण और भी प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो आपको ये देखना है कि जितना उसका फील्ड है उतना मेरा भी फील्ड है और दूसरे का भी फील्ड है, पर ये फील्ड में हमको कैसे रहना है, है ना। तो अगर उसने गुस्सा किया और मैं भी गुस्सा कर रही हूं और बार बार ये चीज हो रही है, तो वातावरण में कौन से इमोशन फैलेंगे, नेगेटिव
1: नेगेटिव,
0: है ना, तो दुख का वातावरण बढ़ेगा। तो ऐसा करना है कि जो लोग पॉजिटिव है घर में वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा दे
1: जी, ओके।
0: सामने वाले को चेंज करने की एक्सपेक्टेशन में ना जिए कि इसका गुस्सा कब कम होगा तब घर में शांति होगी, नहीं, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते जाओ और जब बोलना ही है तब बोलो, बैलेंस से हर कार्य करो
1: जी,
0: है ना। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सामने वाले का गुस्सा भी कम होता जा रहा है। इसी को मेडिटेशन भी कहा जाता है। मेडिटेशन माना अपने माइंड के लेवल से आप कार्य कर रहे हो, केवल हाथ से नहीं, केवल मुख से नहीं, लेकिन माइंड के लेवल को भी आप इसमें ट्रेन कर रहे हो कि जो मन है वो दूसरे तीसरे चौथे डिस्ट्रैक्टिव विचारों में न जाए
1: जी,
0: ऊपर अटेंशन में रख रहे हो और उसको एनर्जी को आप मोबिलाइज कर रहे हो और आप उसमें भी एक अच्छा विचार रख करके कर्म कर रहे हो, जिसको हम कर्म योगी स्टेज बोलते हैं।
1: तो ये अटेंशन सदैव रख सकते हैं हम अपने ऊपर?
0: नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट होता है,
1: धीरे धीरे
0: धीरे धीरे स्टार्ट होता है, कोई भी चीज ABCD से ही होता है। तो ये धीरे धीरे स्टार्ट होगा,
1: लेकिन जैसे 24 घंटा हम अपने ऊपर अटेंशन रख सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए?
0: मे बी नॉट, पर जितना भी आप कर सकते हो ना तो उतना भी थोड़ा बहुत रिजल्ट तो जरूर आएगा
1: जी,
0: है ना। और कभी कभी ना नेचुरल परिस्थितियां भी रिजल्ट को चेंज कर देती है। कई बार उसी व्यक्ति का इतना जोरदार ऐसी परिस्थिति आती है कि वो व्यक्ति एकदम रियलाइज करने लगता है, पछतावा करने लगता है और अपने आप को बदल देता है। आपने भले खाली एनर्जाइज किया पॉजिटिविटी को, पर वो परिस्थिति ऐसी आ गई जो वो व्यक्ति चेंज हो जाता है। तो कोई ना कोई रीति से रिजल्ट जरूर आती है।
1: जी
0: जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू एनर्जाइज्ड पॉजिटिवली कि सामने वाला बदल गया, नहीं, अलग अलग रीति से,
1: क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं,
0: कर
1: अपने मानसिक शांति या फिर डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए।
0: और आपने अपने घर के लिए भी किया ना,
1: घर के लिए भी किया,
0: ऐसा थोड़ी एक ही व्यक्ति को टारगेट करके करते हो, पूरे घर के लिए भी किया, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन तो सदा रहेगा ही रहेगा। उस व्यक्ति का जब भी चेंज होना होगा, जैसे भी होना होगा, वो हो जाएगा। पर नेगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं बनना है अपने,
1: जी,
0: तो वो घर को पॉजिटिव नहीं बनाएगा, इतना तो अटेंशन दे ही सकते,
1: तो
0: माना अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा बार बार कि नहीं, मुझे अपना रोल बजाना है, मुझे अपना रोल बजाना है। और अगर हो सकता है उस समय मैं शांत रहूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस व्यक्ति का सुन रही हूं या मैं उस व्यक्ति को गलत रीति से मान दे रही हूं, नहीं, पर उस समय मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। इट्स योर ओन डिसीजन, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीबडी एल्स, समझे ना।
1: जब आपको लगता है कि बोलने से फायदा भी नहीं है और बात बढ़ेगी भी, तो नहीं बोलना।
0: जी जी,
1: ओके। तो कई बार हम गलत जगह पर भी ना कह देते हैं डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, तो क्या ये सही है या कहाँ पे नो बोलना है, कैसे पता करें हम?
0: अभी क्या है कि बहुत ज्यादा नो भी तो कोई सुन नहीं सकता है, है ना। तो नो की जगह अगर आपको दूसरा कोई मेथड आता है, कोई दूसरे रास्ता आता है, तो आप वो उनको पूछ सकते, राय ले सकते कि मैं इस रीति से करूं या मैं ये कार्य करूं इसकी जगह, आप ऐसा ऑप्शन दो
1: जी।
0: तो एटलीस्ट वो व्यक्ति ना तो नहीं सुनेगा। कभी कभार कोई चीज के लिए आपको ना बोलना पड़ेगा, तो आप सॉरी बोल के बोलेंगे, लेकिन हमेशा ना बोलेंगे वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है
1: जी।
0: तो उसको थोड़ा टर्न करके, एक ऑप्शन दे करके आप बोलो तो बेटर रहता है
1: जी।
0: बाकी ना बोलना कोई गलत बात नहीं है।
1: जब आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं या वो करने से आप ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, तो तब आप
0: गलत बात बिल्कुल नहीं है, कभी कभी ना बोलना भी
1: सीखना पड़ता है। और क्या बीच बीच में जब हम छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं तो हम ज्यादा फोकस रहता है?
0: छोटे छोटे ब्रेक्स माना किस प्रकार?
1: हम
0: चाय पीने जाएंगे ऐसे?
1: हाँ, चाय पीने जाएंगे या फिर घर का काम बहुत ज्यादा है एक साथ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा बैठ जाए अपने साथ बैठे, ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स लेना चाहिए?
0: बहुत ज्यादा नहीं, पर लेना जरूरी है, बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि आपके करने की अवधि इतनी लंबी हो जाएगी ना
1: जी,
0: तो हो सकता है आपका कार्य ही पूरा ना हो, पर ब्रेक्स लेना जरूरी है,
1: पॉज होना
0: जरूरी है।
1: ओके।
0: कभी बॉडी को भी रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है, ओवरडू कोई भी चीज को कभी नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: जैसे कोई समझो कोई मंदिर पे जा रहा है और मंदिर पर चढ़ने के लिए लगभग 700 सीढ़ी है, तो वो 100 सीढ़ी चढ़ के 2 मिनट अगर बैठेगा रिलैक्स होने के लिए, तो वो कोई भगवान नाराज नहीं हो जाएगा? फिर वो एनर्जी इकट्ठा करता है और 150 सीढ़ी चढ़ जाता है
1: जी।
0: तो ब्रेक किस लिए आप ले रहे हैं?
1: ताकि आप थोड़ा और फास्ट मूव कर सको
0: और अपने को एनर्जाइज कर सको
1: जी।
0: बाकी जो ब्रेक लेता है बार बार और फिर थोड़े ही पास में आके कहता अब मैं मंदिर में तो नहीं जा सकता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, तो उसने क्या किया, ब्रेक नहीं ली लेकिन वहां भी अपनी एनर्जी को यूज की
1: जी।
0: ब्रेक लेना माना एनर्जी को कंजर्व करना ताकि आगे के लिए आप ऐड कर सको
1: जी,
0: तो ब्रेक अच्छी है
1: जी। बिल्कुल। और अभी तो वक्त हो गया है कि यहाँ से हम विदा लें आपसे, लेकिन जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे एक दो क्वेश्चंस कि बार बार आजकल हम मोबाइल चेक करते हैं नोटिफिकेशंस और ये सब, तो प्रैक्टिकली कैसे हम बदल सकते हैं इस आदत को?
0: देखिए, उधर आता है मोबाइल में, डू यू वांट टू अलाउ नोटिफिकेशन और नॉट, तो अगर वो आता है और आपको नहीं चाहिए तो उसी समय ना बोल दो, है कि नहीं
1: जी।
0: आप अलाउ भी करते हो और फिर आप नोटिफिकेशंस को कैंसिल करने में टाइम गवाते हो, है कि नहीं
1: जी।
0: तो इतना तो पहला डिसीजन वो पूछता ही है कि आपको अलाउ करना है कि नहीं करना है। तो जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम जाता है, तो पहले से ही आप उसको डिसाइड कर लो कि मुझे नहीं चाहिए। दूसरा कि कई बार कई लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं, क्या हो जाता है, फोन फुल हो जाता है।
1: Yes, हम डिलीट भी नहीं करते हैं चीजें, कुछ
0: फुल हो जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको डिलीट करते रहना पड़ेगा
1: और अटेंशन भी देख के डिलीट करना पड़ेगा।
0: हाँ जी, अटेंशन देख के भी डिलीट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा इस इंस्ट्रूमेंट्स का, आज का साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स का, ये थोड़ा ज्यादा ही मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि मैं कभी नहीं कैंसिल करती थी कुछ भी, तो एक बार क्या हुआ, मुझे एक फोन से दूसरे फोन में सब ट्रांसफर करना था, तो आप नहीं मानेंगे, एक पूरा दिन तक भी ट्रांसफर नहीं हो रहा था। फिर वो भाई ने समझाया मुझे कि देखिए आप तो ओपन भी नहीं कर रहे हैं कई व्हाट्सएप, तो आपने क्यों रखा है, क्योंकि आपने ओपन भी नहीं किया, उस जगह लेता जा रहा है और अब यहाँ के लिए वो टाइम लगा रहा है
1: जी।
0: या तो आपको मेरे को ओपन करके देना पड़ेगा सब, तभी थोड़ा जल्दी होगा। तो मैंने देखा सचमुच वेस्ट था इतना सारा। तो ये बिगिनिंग से हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जो पूरी नॉलेज नहीं है ना मोबाइल की, तो वो फिर ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लेते हैं ना, तो उसकी थोड़ी नॉलेज ग्रास्प करना बहुत जरूरी है, ताकि आप उसको इफेक्टिवली यूज कर सको।
1: लाइफ भी ऐसी है,
0: लाइफ भी ऐसी है, अंडरस्टैंडिंग जितनी ज्यादा होगी इफेक्टिवनेस उतना ज्यादा होगा, तो आपका अटेंशन स्पैन भी बेहतर ही रहेगा
1: जी।
0: तो आज तो लाइफ भी कभी कभी मेस में होती है,
1: राइट। तो कौन से नोटिफिकेशंस ऐसे हैं लाइफ में जो हमें बंद रखना चाहिए?
0: एक तो गॉसिप,
1: ओके,
0: गॉसिप तो जरूर, बैक बाइटिंग।
1: और डिलीट क्या करना चाहिए?
0: ना यही जो है,
1: ये नोटिफिकेशन बंद है और इसी को डिलीट
0: भी करना है,
1: पास्ट के हैं तो मैसेजेस।
0: हाँ, फिर दूसरा, दूसरों पर इल्जाम लगाना, दोष डालना, भले आपका भूल, तो ब्लेम गेम भी एक चीज है जो हमको नहीं रखनी चाहिए। फिर तीसरा, कोई को दुश्मनी हम क्यों बनावे, ऐसा ख्याल ही आपके अंदर क्यों आता है कि ये मेरा दुश्मन है, तो वहीं पर अपने एक्शंस को पहले से थोड़ा कंट्रोल करो, कि मुझे जरूरी नहीं है किसी को दुश्मन बनाना, भले दोस्त कम हो, पर किसी को दुश्मन बनाना ये तो मेरी डायरेक्टरी में होना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ कुछ है चीजें। दूसरा, कि जितना हो सके मुझे शांति से कार्य करना है, मैं गुस्सा क्यों होती हूँ, क्रोध में क्यों आती हूँ, ये तो मेरी एनर्जी पूरी ये हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है इसमें, क्रोध करने में। तो अंडरस्टैंडिंग कि भाई कौन सी चीज मुझे आगे बढ़ा रही है, कौन सी चीज मुझे रोक रही है, तो ऐसी सब नोटिफिकेशंस को हमें पहले से अगर नहीं डाले, डाउनलोड ही नहीं करे, या तो डिलीट करते जाए,
1: वो एप्लीकेशन ही ना रहे हैं।
0: हाँ, क्योंकि वो तो ऑफकोर्स अपना फोकस बहुत अच्छा रहेगा लाइफ में, और ऐसे नहीं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है हमारे सामने जिनका फोकस बहुत अच्छा रहा, भले उनके कितने भी जेलिसी वाले दुश्मन बने, उन्होंने क्या क्या उनके साथ किया, उनको वो मैटर नहीं करता है, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया वही मैटर करता है। और ये लोग बहुत फोकस्ड लोग थे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी है, बहुत फोकस्ड थे, जैसे मदर टेरेसा है, वो अपने जमाने में बहुत फोकस्ड थी
1: जी,
0: है ना, खुद ही अपना जीवन निर्माण किया और खुद ही उसको सस्टेन भी करती रही
1: जी।
0: उसके बाद भले वो ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी किया हो, लेकिन उनके होते समय तो काफी मना फोकस्ड रही। ऐसे हमारे कई राजा महाराजाओं की फैमिलीज है जिसमें काफी फोकस्ड रूप से उन्होंने राज्य भी किया और भारत को दुश्मनों से बचा के रखा, तो भले उनकी फैमिलीज थी, सब कुछ था, लेकिन काफी फोकस्ड लोग थे, उनका क्लियर थिंकिंग, फोकस्ड माना क्लियर थिंकिंग,
1: क्या करना है क्या नहीं करना है,
0: क्या नहीं करना है, बहुत क्लैरिटी होती है उनके थॉट्स में। ऐसे तो बहुत एग्जांपल्स है, संत ज्ञानेश्वर का भी एग्जांपल है, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट। ऐसे कई संत भी रहे हैं हमारे भारत में और पूरे विश्व में भी, ऐसे कई लोग, जैसे अब्राहम लिंकन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहा अमेरिका का, उसका भी काफी फोकस था, कितना कुछ वो डिफीट हो रहा था तो भी उसने अपना रास्ता ही नहीं छोड़ा। और एंड में जब से वो 60 साल का हुआ, तब अमेरिका ने सामने से बोला कि हमको आपके जैसे प्रेसिडेंट की जरूरत है
1: जी।
0: तो देखो कैसे वो अपने टारगेट पे पहुंच गया ना। तो ऐसे कई लोग फोकस्ड है और उन्होंने हमें सिखाया है, ये तो क्या है कि हमने सीखना ही बंद कर दिया है
1: जी,
0: सीखना बंद किया तो फिर आप कैसे अपनी लाइफ को गुजार रहे हो, कैसे पर, और फिर गलत एग्जांपल्स ले लेके उसको फॉलो करते जा रहे हैं, तो फिर कैसे फोकस्ड रहेंगे।
1: अपने लक्ष्य को भी रिवाइज करना है, कि
0: करना चाहिए,
1: अगर मैं देख भी रही हूँ कुछ तो क्यों देख रही हूँ, मुझे क्या करना है,
0: मुझे क्या मिलना है इसमें से, वो जरूर देखना चाहिए। कोई भी चीज मिलती है ना आपको सामने से, तो उसके तीन प्रश्न पूछो। पहला प्रश्न पूछो, क्या ये मेरे लिए यूजफुल है? फिर दूसरा प्रश्न पूछो कि क्या ये आगे चल करके मेरी प्रगति करेगा? और तीसरा है, कि क्या मेरा इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे कुछ कुछ प्रश्न पूछ के आप उस बात को पहले एनालाइज करो
1: जी,
0: और फिर वो कार्य करो तो आप फोकस्ड रहेंगे।
1: राइट, बिल्कुल। तो अगर आपको एक लाइन में बताना हो डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे पावरफुल मंत्र क्या है?
0: पावरफुल मंत्र यही रहेगा कि आई एम हियर टू रीच माई ओन डेस्टिनेशन फ्रॉम माई ओन फ्री विल।
1: ओके,
0: आई एम हियर टू रीच माई डेस्टिनेशन विच इज क्रिएटेड फ्रॉम माई ओन फ्री विल।
1: जी, मेरी इच्छाओं से ही मेरे को अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। बिल्कुल, इसे हम जरूर याद रखेंगे। दीदी, अभी वक्त हो गया विदा लेने का, तो आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: इसमें यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू मुझे समय देने के लिए, अपने विचारों को बांटने के लिए आप सबके साथ, और मुझे लगता है कि आप लोग भी इस पर अपने थॉट्स कंट्रीब्यूट करेंगे और हर एक कुछ अपनी लाइफ का थोड़ा एक एनालिसिस करेंगे, जैसे एक मिरर सामने रखते हुए अपनी पूरी जीवन यात्रा को देखेंगे, और आगे ये भी समझो कि हर एक के अंदर वो फोकस है ही है।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच। युवाओं के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं अनेक बातें हैं, अनेक टॉपिक्स हैं, और आप सभी भी अपनी बातें शेयर करते हैं, और हम कभी म्यूज़िक तो कभी जिंदगी के बारे में तो कभी करियर के बारे में अनेक अनेक मुद्दों के बारे में बातचीत करते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे स्पेशल मुझे लगता है एपिसोड वो होता है जब कोई युवा अपने अनुभव को हमारे साथ बांटते हैं, अपने सफ़र को हमारे साथ शेयर करते हैं, और उनको सुन के हमें भी महसूस होता है कि कहीं मेरा सफ़र भी ऐसा ही तो नहीं, या मैं कुछ कर सकती हूँ, या कुछ और रिलेटेबल बात हमें मिल जाती है। और कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं पर हम पूछ नहीं पाते। आजकल तो वैसे गूगल है, एआई है, बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन दोस्तों अनुभव से जो सीखने को मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। और आज हमारे साथ हमारे एक युवा साथी जुड़ गई हैं। जी हाँ, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रह्मानी राजकुमार रावी जी, जो कि एक सॉफ्टवेयर टेस्टर हैं। और दोस्तों, जितना एक ये प्रोफेशन साउंड कर रहा है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहले ब्रह्मानी जी का हम स्वागत करते हैं और फिर जानेंगे इस करियर के बारे में भी। ब्रह्मानी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच,
0: आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आप यहाँ पर आए। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, कुछ अगर हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में बताएं, मतलब आपने क्या पढ़ाई की है या आप क्या करते हैं, कुछ अपने शब्दों में बताएं।
1: जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड मेरा इंट्रोडक्शन मैं कुछ इस तरह से दे सकती हूँ कि मेरा नाम है ब्रह्मानी और करंटली मैं सॉफ्टवेयर टेस्टर हूँ वोडाफोन इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस में। एंड इससे पहले मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, और साथ में मैंने बीए भी किया है वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन में। और अभी जॉब चल रही है, काफ़ी कुछ नया नया सीखने को मिलता रहता है।
0: दैट्स वंडरफुल। मतलब सीखना तो कभी नहीं रुकता ना लाइफ में। और आजकल तो हम जानते हैं टेक्नोलॉजी भी कितनी फास्ट इवॉल्व हो रही है, तो लर्निंग भी उतनी फास्ट होती आती है।
1: हाँ जी, अभी अगर मैं कहूँ तो कॉर्पोरेट में अगर आप हैं तो एवरी डे इज़ अ न्यू लेसन। आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ नया पढ़ना ही पड़ता है। सो बस ऐसे ही चल रहा है।
0: मतलब होमवर्क स्कूल और कॉलेज के बाद ख़त्म नहीं होता।
1: जी,
0: जॉब में भी करना पड़ता है।
1: जी,
0: अच्छा ब्रह्मानी जी, सबसे पहले अगर शुरुआत से शुरू करें, सबसे आपने क्यों सिलेक्ट किया, आपने अपनी पढ़ाई का जो रास्ता है वो कैसे चुना, अगर उसके बारे में कुछ बताएं।
1: जी, तो बचपन में मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मेडिकल फील्ड में जाऊंगी। मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता थी डॉक्टर्स की लाइफ, बट धीरे धीरे जैसे मुझे पता चला कि नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है डॉक्टर बनना, और शायद अगर मैं मेडिकल कर रही होती तो अभी भी पढ़ाई चल ही रही होती।
0: एंड बहुत पढ़ना पड़ता है,
1: तो मुझे लगा कि थोड़ी इजी लाइफ चूज कर लेते हैं।
0: इजी तो नहीं होगी वैसे, मुझे लगता है।
1: जी, ये बात मुझे कॉर्पोरेट में आने के बाद पता चली।
0: बाद में पता चला।
1: जी,
0: मेहनत तो उतनी है
1: बिल्कुल
0: हर करियर में। तो आपको इंटरेस्ट कैसे आया कि मैं ये करूं?
1: तो जब इनिशियली मैंने सोच रखा था मेडिकल करना है, बट फिर लगा कि नहीं, थोड़ा एज आई सेड कि ईजी लाइफ चूज़ करनी है। फिर मैंने पॉलीटेक्निक करने का डिसीजन लिया। मैं पेरेंट्स ने एक्चुअली, उन्होंने भी सजेस्ट किया कि हाँ ये अच्छा ऑप्शन है। तो फर्स्ट ईयर तो मेरा ऐसे ही गया कि नहीं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं नहीं करना चाहती हूँ। बट जैसे ही फर्स्ट ईयर के

0: बट बस गॉड की हेल्प साथ में.
1: वंडरफुल. मतलब सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर आप पॉलिटेक्निक के बारे में बताएं, क्या होता है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें.
0: जी, सो पॉलिटेक्निक आप दो तरीके से कर सकते हैं. या तो आप 10th के बाद फर्स्ट ईयर से ज्वाइन कर सकते हैं पॉलिटेक्निक, इट्स अ 3 ईयर्स कोर्स. या फिर आप 12th के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर में ज्वाइन कर सकते हैं, तो फिर इट्स अ 2 ईयर्स कोर्स. एंड पॉलिटेक्निक इज प्री इंजीनियरिंग.
1: अच्छा.
0: मतलब जो भी इंजीनियरिंग के आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो आप पहले ही पॉली में मोस्टली कवर कर चुके होंगे. पॉलीटेक्निक को डिप्लोमा भी कहते हैं लोग. सो ऐसा हो जाता है ना कि अगर आप इंजीनियरिंग से पहले पॉलिटेक्निक चूज कर रहे हैं तो आपको एक थोड़ा सा पुशअप मिल जाता है कि नहीं, आपको जो करना है आगे उसकी आपको पहली अंडरस्टैंडिंग आ जाती है. कि जैसे कोडिंग है, जैसे C++ लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज. तो जहाँ मैंने देखा इंजीनियरिंग में मेरे फ्रेंड जिस चीज़ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे वो चीज़ मुझे पहले से आती थी. तो विच हेल्प मी अ लॉट इन इंजीनियरिंग. कि हाँ, वहाँ जाके मुझे बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ा. हाँ, बस एक बार ब्रश अप करनी थी चीज़ें एंड बाकी फिर हो गया.
1: क्या बात है, आप जितना आसानी से बोल रहे हैं उतनी आसानी से तो नहीं हुआ होगा. मतलब इतने अच्छे से आप बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे वॉक पे निकले हैं, उतना ही आसान है. लेकिन डेफिनेटली आपका राज ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि कैसे, मतलब आपने इतना स्कोर कैसे किया, क्या आपने ऐसा किया, किस तरह से पढ़ाई के, क्या कोई नियम बनाए थे, शेड्यूल बनाया था, क्या किया था?
0: मेरा नियम शेड्यूल ऐसा था कि जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ, मैं बचपन से ही ज्ञान परिवार में हूँ. एंड बचपन से मुझे आदत थी स्कूल टाइम से ही कि मैं अमृत वेला या सुबह 5 बजे तक से पहले उठ जाऊँ और तब से मैं पढ़ाई शुरू करूँ.
1: अच्छा.
0: तो मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते ही साथ पहली जो चीज़ पढ़ो या देखो तो वो आपके माइंड में एकदम प्रिंट हो जाती है. उसे कोई निकाल नहीं सकता. सो मेरा स्टडी का ये एक फंडा था कि मैं सुबह उठ के पढ़ाई कर लूँ और फिर मुझे दिन भर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी.
1: वाओ, मतलब आप सुबह सुबह ही तैयारी कर लेते थे अपनी.
0: जी,
1: वंडरफुल. लेकिन जो टॉपर्स होते हैं यूजुअली हम देखते हैं उनका शेड्यूल इतना टाइट होता है कि उनको टाइम ही नहीं होता कुछ और करने का, बाहर जाना है, खेलना है या फिर कोई हॉबीज हैं. आपको टाइम मिलता था या कैसा होता था?
0: टू बी ऑनेस्ट, टाइम निकालना पड़ता था. थोड़ा डिफिकल्ट होता था, लेकिन आई थिंक कि अगर आप पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई करते रहोगे तो एक पॉइंट के बाद आने के बाद आपको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा. तो इट्स बेटर कि आप पढ़ाई भी करो, एक प्रॉपर टाइम पढ़ाई को दो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, और उसके बाद में आप अपना जो भी काम करना चाहें, कोई हॉबीज़ हैं, कहीं खेलना है या कुछ भी है तो आप कर सकते हैं, विच इज़ ईजिली मैनेजेबल. फिर जब एक बार पढ़ाई कम्प्लीट हो जाती है, सारे होमवर्क सारे असाइनमेंट्स कम्प्लीट हो जाते हैं, फिर आप फ्री हैं, आपको जो करना है, इट्स योर फ्री विल.
1: ओके, मतलब आपने जारी रखा, आपकी पढ़ाई भी जारी रखी और आपने अपना जो हॉबीज़ है या कुछ और करना है वो भी जारी रखा, किसी चीज़ को छोड़ा नहीं. कई बार हम देखते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स का प्रेशर इतना होता है, स्ट्रेस इतना हो जाता है कि हम ब्लैंक होने लगते हैं, फिर जो पढ़ा वो एकदम से याद नहीं आता या फिर एंग्जाइटी हो जाती है बहुत. हर कोई कह रहा होता है कि एग्ज़ाम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, तुम क्या करने वाले हो, पूछ रहे होते हैं हर कोई हमसे कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या करोगे आगे. तो कई बार वो प्रेशर भी होता है, तो आपको कभी ऐसा लगा?
0: प्रेशर तो फील होता है क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस होता है और बहुत कम टाइम होता है कवर करने के लिए. मेरा ऐसा ही रहा है बचपन से कि अगर मैं कर रही हूँ पढ़ाई तो आई ट्रस्ट माई सेल्फ कि हाँ, मैं अच्छे से तो कर ही रही हूँ. बस उसके बाद जब भी मुझे लगता था कि नहीं, थोड़ा एंग्जाइटी फील हो रहा है कि व्हाट इफ माई पेपर डजंट गो वेल, तो मैं बस अपनी आंखें बंद करती थी, आई टेक डीप ब्रीथ एंड बस भगवान को याद करो, उनसे थोड़ी पावर्स लो, थोड़ी एनर्जी लो एंड फिर वापस लग जाओ.
1: ओके, और ये इसने आपको मदद की?
0: जी, इसने मुझे बहुत मदद की थ्रू आउट माई एजुकेशन. ये तरीका मेरे बहुत काम आया है.
1: क्या बात है, बताइए. इतना सिंपल है फिर भी हम सोचते हैं कि शायद भगवान को याद करना, ये सब करना बहुत मुश्किल होगा या लंबा होगा, टायरिंग हो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मतलब वो जैसे आप बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है आपने दिल से किया.
0: जी, है ना. अगर देखा जाए तो

0: प्रॉब्लम पहाड़ जितनी बड़ी भी हो सकती है, और अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल एक कॉटन बॉल भी हो सकता है। सो ये सब हमारा पर्सपेक्टिव है, हम प्रॉब्लम को किस तरीके से अडाप्ट करना चाहते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं प्रॉब्लम तो है लेकिन हम इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे, तो हम डेफिनेटली इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आर माइंड इज़ कैपेबल ऑफ ब्रिलियंट थिंग्स।
1: क्या बात है, क्या बात है। और दोस्तों, मुझे लगता है ये सुन के आपको एक हिम्मत और एक नई उम्मीद तो मिली ही होगी, क्योंकि मुझे तो फील हो रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा खुद को चार्ज करना है। भाई, फ़ोन की बैटरी भी चार्ज करते हैं तो अपनी क्यों ना करें, है ना भाई। तो कैसे करना है वो भी उन्होंने बताया, बहुत आसान तरीका है, और ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि उन्होंने 100% मार्क्स भी स्कोर किए। और सिर्फ मार्क्स ही नहीं, उन्होंने वो नॉलेज भी कमाई और वो आगे भी बढ़े उसको लेके। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस सुना रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सुना रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम एक छोटे से ब्रेक की ओर लौट कर आएंगे, और ब्रह्मानी हमारे साथ हैं, उनसे और भी कुछ जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधरा इधरा इधरा, क्या पहुँचा दोगे हैं? कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं, अहम कार्यक्रम है युवा मंच। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई हैं ब्रह्मानी, जो कि एक सॉफ्टवेयर टेस्टर है। और अभी तक हमने उनकी जर्नी के बारे में जाना कि कैसे उन्होंने पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करी और उसमें 100% स्कोर भी किया, और किस तरह से वो सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं और जहाँ थोड़ा सा भी स्ट्रेस आए उसको फटाफट दूर भगाने की ट्रिक भी उनके पास है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई। ब्रह्मानी, फिर कैसे आगे बढ़ी, मतलब आपको फिर लगने लगा कि ये अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि पहले तो थोड़ा डाउट था ना?
4: जी, पहले डाउट था, लेकिन उसके बाद जब स्कोर देखा, मार्क्स देखे, फिर लगा कि नहीं, ये तो सही जा रहा है, तो आगे प्रोसीड करना चाहिए। बट फिर कोविड आ गया एंड उसके बाद इंजीनियरिंग में जाने की बहुत एक्साइटमेंट भी थी, लेकिन जब कोविड के टाइम पे हमें सबको क्वारंटाइन रहना पड़ता है, घर में रहना पड़ा था, तो फिर ऐसा बहुत बोर लग रहा था कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था। मतलब घर बैठे पढ़ाई भी नहीं हो रही थी ठीक से, ऑनलाइन क्लासेस में इतना मज़ा नहीं आ रहा था। बट इवेंचुअली वो चीज़ें ख़त्म हो गई और फिर हम जब कॉलेज गए एंड वहाँ जाके भी मैंने यही ट्राई किया कि मैं अपना स्कोर जो पहले था मैं उसे ही बनाए रखूं। और थैंक्स टू गॉड उन्होंने काफ़ी हेल्प किया और मेरा इंजीनियरिंग का भी जर्नी काफ़ी अच्छी रही और स्कोर भी बहुत अच्छा रहा।
3: तो जब आप इंजीनियरिंग करने गए तो वहाँ कुछ आपको ऐसा नहीं लगा नया माहौल है या नया कुछ है या फिर एकदम से, या आपको वैसे ही लगा जैसे चल रहा था?
4: आई गेस मुझे इतना न्यूनेस फील नहीं हो रहा था क्योंकि मैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में मुझे एडमिशन मिल गया था, क्योंकि मैंने ये डिप्लोमा कर रखा था। तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया डिप्लोमा में पहले ही बता दी जाती हैं, पढ़ा दी जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें जब आ रही थी सामने तो इट वॉज़ ईजी कि चलो ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। मैंने पुराने नोट्स सारे वही लेके गई थी कॉलेज फर्स्ट डे पे और मैं उन्हीं को रेफर करते करते फिर मैंने क्लासेस की। बहुत सारे चैलेंजेस ये थे कि जैसे पॉलिटेक्निक में एक फर्स्ट डे से कुछ एक अलग बन गया था, एक क्या कहते हैं, एक इमेज बन गई थी टीचर्स के सामने, क्योंकि मैं फर्स्ट डे से ही वहाँ पे प्रेजेंट थी। लेकिन यहाँ ऐसा था कि जो हमारी बैच थी वो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर से आ रहे थे और मैंने डायरेक्ट सेकेंड ईयर से ज्वाइन किया था। तो मुझे टीचर्स से तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स थे तो उनके साथ थोड़ा सा मिक्सअप होने में थोड़ा टाइम लग गया। जी, तो बट धीरे धीरे मिक्सअप होते गए और फिर इंजीनियरिंग भी कंप्लीट हो ही गई आखिर।
3: हाँ, क्योंकि वो लोग एक साल साथ थे तो ऑलरेडी उनकी दोस्ती हो चुकी थी, आपस में एक दूसरे को बेहतर जान चुके थे, है ना, जेल हो चुके थे। आप एकदम नए थे तो वो
4: शुरू में थोड़ा से फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट भी होती थी, लेकिन बट धीरे धीरे वो चीज़ें
3: फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स
4: बन गए।
3: मतलब थोड़ा पेशेंस रखते हैं तो वो भी हो जाता है।
4: जी,
3: ओके। तो कैसे फ्रेंड्स बने, कुछ अपने फ्रेंड्स के बारे में बताइए।
4: पहली चीज़ तो किसी दो स्टूडेंट को जोड़ने के लिए होती है असाइनमेंट्स, ग्रुप असाइनमेंट्स। तो ऐसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स पहले शुरू हुए, फिर धीरे धीरे सबसे बात शुरू हुई, फिर पहचान होने लगी, फिर धीरे धीरे सबके इंटरेस्ट पता चले कि कौन क्या करना चाहता है। अगर किसी को जॉब करनी थी, किसी को MBA करना है आगे, तो ऐसी चीज़ें फिर पता चली और फिर बस एक दूसरे की हेल्प करते गए पढ़ाई में। अब मेरा ऐसा था कि मुझे इस पॉइंट पे आने के बाद मुझे ये वाले कोर्स में बहुत मजा आ रहा था क्योंकि काफी पढ़ चुकी हूँ इस बारे में, तो अच्छा लग रहा था कि हाँ यही चीजें पढ़ने को मिल रही है. तो आई वॉज दैट पॉइंट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट जिससे लोग नोट्स मांगते हैं कि नहीं हमें नोट्स दे दो.
3: एक ऐसा स्टूडेंट जरूर होता है कि टीचर की बात समझ में आए ना आए उससे जरूर जाके समझते हैं, नोट्स के लिए पूछते हैं फिर.
4: तो बहुत बार मुझे टीचर्स लोग कहते थे कि तुम्हारी वजह से हमें क्लास में आना पड़ता है, नहीं तो बाकी लोग तो बंक कर रहे होते हैं.
3: आप बंक नहीं करते थे?
4: मैं बंक नहीं करती थी एंड अगर कभी कर भी रही होती हूँ तो पेरेंट्स को बता देती थी कि मम्मा मैं क्लास बंक करने जा रही हूँ, तो मॉम भी कहते थे कि हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल.
3: हाँ कभी कभी थोड़ा थोड़ा इट्स ओके,
4: कभी कभी चलता है. तो ऐसे ऐसे सबसे फ्रेंडशिप होने लगी और फिर टीचर्स के भी गुड बुक्स में आ गए धीरे धीरे
3: धीरे धीरे. हाँ गए तो मतलब वहाँ भी आपका ये स्कोर और ये जारी रहा, जैसे आप पॉलिटेक्निक में अच्छा स्कोर कर रहे थे
4: जी,
3: वैसे वो कंटिन्यू किया?
4: हाँ जी
3: आपने.
4: तो वैसे ही स्कोर चलते रहा और इंजीनियरिंग फाइनल ईयर पे भी मुझे 9.3 का CGPA आया. तो
3: बहुत हार्ड है उतना लाना. बहुत बड़ी बात है आई थिंक उसको अचीव कर पाना. बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो उतना कर पाते हैं, मतलब वो तो टॉप मोस्ट में आ गए आप.
4: थैंक्स टू गॉड.
3: हाँ थैंक्स टू गॉड. और आपकी कंसिस्टेंसी भी है, आपकी वो क्षमता को भी आपने पूरी तरह यूज़ किया
4: जी.
3: इट्स वंडरफुल. सो इंजीनियरिंग ख़त्म हुई तो आपको भी फिर या कैंपस इलेक्शंस भी होते हैं या फिर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है कुछ और करना है, तो कुछ कन्फ्यूजन था या पूरा क्लियर था?
4: लास्ट फाइनल एग्ज़ाम्स के पहले ही हमारे कैंपस आने शुरू हो गए थे. सो मैंने भी काफ़ी कंपनीज में अप्लाई किया, इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन अभी जो उस कंपनी में मैं हूँ मेरा इंटरव्यू वहीं क्लियर हो गया कैंपस में. सो तब मुझे लगा कि हाँ ठीक है लेट्स गो विद द फ्लो, अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, मिल रही है तो इस चांस को खोना नहीं चाहिए. तो फिर मैंने ऐसे कंपनी ज्वाइन कर ली एंड उसके बाद मतलब एग्ज़ाम्स हुए, अच्छे मार्क्स आ गए, फिर पुणे शिफ्ट हो गए, कंपनी ज्वाइन कर ली.
3: वहाँ आपको ज्वाइनिंग मिली पुणे?
4: हाँ जी पुणे में.
3: ओके. कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है, अगर आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहें क्या कैसी होती है लाइफ?
4: इन माय वर्ड्स, एक होता है स्टूडेंट वाला फेज होता है. आपको लगता है कि नहीं हम जॉब करेंगे तो भी यही फेज रहेगा, सिमिलर ही होगा, क्या ही करना है, जो नॉलेज ली है उसी को इम्प्लीमेंट करनी है. नॉलेज ली और इम्प्लीमेंट करना तो है लेकिन वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार होती है जिसे अगर आप उसे क्रैक करना आपको आ गया तो फिर इट्स ईजी फॉर यू, लेकिन अगर वो नहीं कर पाए तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है. जैसे हमें जो थ्योरी मिलती है वो बहुत बेसिक होती है, लाइक हाँ वो तो बहुत इजी होती है अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन हम जैसे किसी कंपनी में जाते हैं और वहाँ पे जो हमें प्रैक्टिकली करना पड़ता है हमारे नॉलेज को इम्प्लीमेंट, वो होता है बिजनेस के साथ एक्सपोजर. तो वहाँ पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती है जो इनिशियली तो आपको समझ ही नहीं आएगी. लाइक जब मैं पहले दिन ऑफिस गई एंड समवन वाज सेइंग कि आज वो ओ ओ ओ है,
3: ओके
4: विच इज आउट ऑफ ऑफिस, सो दे आर ऑन लीव. सो ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जो इनिशियली तो बिल्कुल ही सर के ऊपर से जाते थे. बट एक महीना तो कैसे भी लगता ही है किसी भी स्टूडेंट को एक एम्प्लॉय बनने में.
3: ये बहुत अच्छी आपने एक्चुअली टर्म यूज की, क्योंकि तब तक हम स्टूडेंट होते हैं और उसके बाद एम्प्लॉय बनते हैं तो वो ट्रांजिशन एकदम नहीं हो जाता,
4: नहीं होता,
3: जॉब मिलते ही नहीं हो जाता कि ऑफर लेटर आया और हम बन गए, ऐसा नहीं होता. तो एक और सवाल है मेरा आपसे कि जब हम इंटरव्यूज देते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो युवा साथी सुन रहे होंगे या जो भी लिसनर्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगी इससे, क्योंकि इंटरव्यू देने के पहले जब हम नए होते हैं, हमने इंटरव्यू कभी नहीं दिया होता तो समझ में नहीं आता कि कैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, कपड़ों का ध्यान रखें, बोलें, कैसे जवाब दें, आता है वो सवाल वही बोलें, जो नहीं आता है उसको गैस करें नहीं करें, या क्या लिखे रेज्यूमे में ऐसा जो हमें अलग दिखाए, या क्या ऐसे अलग जवाब दें. तो आपने क्या कुछ तैयारी की थी या इंटरव्यू कैसे क्रैक किया उसके बारे में कुछ बताएं?
4: सो रेज्यूमे की अगर बात करें तो आई थिंक आपको ऑनेस्टली जो आपको आता है वही लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जॉब में जाके तो फंस जाएंगे.
3: डेफिनेटली.
4: तो मैंने वही लिखा जो मुझे आता था, जो प्रोजेक्ट्स मैंने किए थे मैंने उनको अच्छे से रीड किया. मेरी जो भी थीसिस थी कि मैंने एग्जैक्टली पूरा वर्ड बाय वर्ड जो था मैंने सब वो अच्छे से रीड किया और वही एक्सप्लेन किया इंटरव्यूज़ में. और दूसरी चीज़ ये होती है, जैसे मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे से किसी भी इंटरव्यूअर की बहुत एक्सपेक्टेशन होगी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके.
3: ओके.
4: तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैंने काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड किया था एंड उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ में उस चीज़ को आंसर किया. और मैं कह सकती हूँ कि बस इंटरव्यू में अगर आप जब भी अपीयर करने जा रहे हो तो खुद को शांत रखने की कोशिश करो, क्योंकि okay. बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ स्क्रीन के सामने तो हाँ हम स्माइल कर रहे हैं, दिख रहे हैं प्रॉपरली, लेकिन नीचे हाथ स्वेट हो रहे होते हैं,
3: पैर भी कांप रहे होते हैं,
4: तो बस ऐसे सिचुएशन में आपको अगर नहीं आ रहा है कुछ, कहीं आप अटक रहे हो, तो जस्ट टेक अ फ्यू सेकेंड्स और आस्क फॉर अ फ्यू सेकेंड्स कि I'm just not able to recall. And फिर आप वापस उस आंसर को बोलने की कोशिश करो, क्योंकि इंटरव्यूअर भी वो चीज़ जानता है, वो भी कभी इसी फेस से गुजरा है.
3: ये भी बात सही है. उन्होंने भी कभी अपना पहला इंटरव्यू ज़रूर दिया होगा.
4: बिल्कुल.
3: तो मतलब टाइम देना है, पेशेंस रखना है. क्या मतलब वो सिचुएशन कैसी होती है, मतलब वो कमरा कैसा लगता है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, या फिर वो आपको जज कर रहे होते हैं आप कैसे बैठे हो, कैसे बोल रहे हो, या सिर्फ आंसर सुन रहे होते हैं, क्या होता है उस वक्त?
4: हाँ, दोनों चीज़ें होती है. हमारा वो फिजिकली भी हमें जज कर रहे होता है कि हमने कैसे, हम क्या पोस्चर में बैठे हैं, हमारे जेस्चर्स क्या हैं, और हमारी बॉडी लैंग्वेज को बहुत बहुत बारीकी से नोटिस करते हैं. प्लस वो लोग हमारी नॉलेज भी देखते हैं. तो नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग उस सिचुएशन को इजी वे मिले.
3: ओके.
4: ठीक है, इट्स जस्ट एन इंटरव्यू, हुआ तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो वो आखिरी कंपनी नहीं है.
3: ये बात याद रखनी है.
4: बिल्कुल
3: बिल्कुल. तभी वो कॉन्फिडेंस हमारे पोस्चर में दिखेगा जब हम कॉन्फिडेंट होंगे एक्चुअली.
4: जी.
3: कभी कभी हम कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, हम अंदर से नहीं है, तो वो कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, है ना, तब तक दिखाओ जब तक नहीं होता, पर अंदर से आप लाएंगे तो अपने आप रिफ्लेक्ट होगा.
4: जी.
3: वंडरफुल. तो अगर मान लीजिए लोग हमें नोटिस कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो हमें क्या मतलब शॉर्ट में आंसर दे के ख़त्म करना चाहिए, या क्या मतलब करना चाहिए एग्जैक्टली? अपनी हॉबीज़ के बारे में भी क्या पूछते हैं, या सिर्फ नॉलेज जज करते हैं, क्या?
4: मुझे तो हॉबीज़ नहीं पूछी गई थी, मुझे सिर्फ नॉलेज के बारे में पूछा गया. एंड मेरा वर्चुअल इंटरव्यू हुआ था, मैं वॉक इन नहीं गई थी. तो सबसे पहले तो एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब होते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद होता है फिर टेक्निकल राउंड्स होते हैं या ग्रुप डिस्कशंस होते हैं.
3: अच्छा, ग्रुप डिस्कशन भी हुआ था?
4: हाँ जी, ग्रुप डिस्कशंस भी हुआ था. एंड ग्रुप डिस्कशंस में वो लोग एट द टाइम आपको एक टॉपिक देंगे जिसपे आपको प्रोज या कॉन्स बोलने हैं, एंड वो आई गेस 15 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स का टाइम होता है आपके पास सोचने का.
3: बस 15-20 सेकेंड.
4: हाँ जी. कि क्या क्या बोलना है, या क्या बोल सकते हैं इस टॉपिक पे, क्या पॉइंट रख सकते हैं. तो हाँ, बाकी लोगों के आंसर्स को देखते देखते अपना थोड़ा आंसर तोड़ मरोड़ के बस बोल देना होता है. बस एक चीज़ ये है कि कहीं भी आपको जो लग रहा है कि ये सही हो सकता है लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है. अगर आपको लग रहा है कि ये सही है तो आप सही बोल दो, भले आप गलत हो, लेकिन गलत भी कॉन्फिडेंस से बोलो.
3: ओके. कॉन्फिडेंस इज द की.
4: यस,
3: कॉन्फिडेंस जरूर रखना है. लेकिन जैसे जीडी हो रहा है तो और भी लोग बोल रहे हैं एक के बाद एक के, तो कहाँ अपनी जगह निकाल के बोलना है, वो कैसे डिसाइड करें?
4: जैसे ऐसा कर सकते हैं कि जब एक बंदा प्रोज बोल रहा है और उसके ख़त्म होते ही आपको वो चीज़ बोल देनी है कि आई डू नॉट एग्री विथ यू, या दिस इज़ नॉट व्हाट आई थिंक कि ये ऐसी होनी चाहिए ये चीज़, या कुछ और होना चाहिए. तो ऐसे आप उस चीज़ में एंटर कर सकते हैं किसी भी डिस्कशन में.
3: मतलब एक धीरे से सटली आप उसको कहें कि मैं आप सहमत नहीं हूँ उस बारे में,
4: जी
3: मुझे ये लगता है,
4: जी
3: फिर अपनी ओपिनियन रखें.
4: हाँ जी.
3: है ना, ऐसा भी नहीं है कि बहुत अग्रेसिव हो जाना है कि नहीं ये आप गलत बोल रहे. और या फिर बहुत धीरे अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि नहीं मुझे लगता है ऐसे, धीरे भी अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, जैसा आपने बोला गलत भी बोले कॉन्फिडेंस से बोले
4: जी.
3: ओके अच्छा, जैसा आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि स्टूडेंट को एम्प्लॉय बनने में एक महीना लगता है ना, तो क्या कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं जो आपको लगता है आपको मदद करती हैं एक अच्छे एम्प्लॉय बनने में या वो कंपनी में सेटल होने में वहाँ पे, है ना, वो क्या स्किल्स होती हैं?
4: सबसे पहली स्किल है किसी भी कंपनी में जाने के बाद कि आप उस एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर सको. आपको आदत नहीं होती है कि आप ऑलमोस्ट 8-9 आवर्स स्क्रीन के सामने बैठो और सिर्फ काम करते रहो काम करते रहो. तो पहले तो एनवायरनमेंट को अडाप्ट करना होता है. दूसरी चीज़, हर कंपनी में सब अच्छे नहीं होते, सब बुरे नहीं होते,
3: राइट.
4: तो बहुत बार फैमिली लाइक बिहेवियर भी होता है वहाँ पे, और बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं, वी डोंट एग्री विथ यू, यहाँ आप गलत हो. और अगर आप जूनियर हो तो आपको ये चीज़ें बहुत बताई जाती है कि नहीं नहीं, आप तो गलत ही हो.
3: ये सुनने को बहुत मिलता है,
4: बहुत मिलता है. और स्टार्टिंग के डेज में तो बहुत ज़्यादा. सो यहाँ पे दी ओनली थिंग यू हैव टू डू इज आपको सहन शक्ति लानी है अपने अंदर. इस चीज़ को बहुत लेट गो करके चलना है. क्योंकि अगर ये आप एक टोकरा सर पे उठा के चलोगे तो टिल दी डे यू रिटायर आप यही सब उठा के चलते रहोगे,
3: थक जाएंगे.
4: तो इसीलिए अगर कोई कुछ कह रहा है तो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, हमें सीखना है और ये सीखने के लिए मुझे इस फ्लो से तो जाना ही पड़ेगा.
3: इससे गुजरना ही है आपको
4: जी,
3: ये नदी पार करनी ही है उस ओर पहुंचना है तो
4: जी.
3: ओके, तो मतलब सहन शक्ति को बढ़ाना है और सुनना है, सीखना है. ये माइंडसेट के साथ हम जाएं वहाँ पे कि गलती तो होगी मुझसे, या नहीं भी हुई तो मुझे कोई गलत समझेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है
4: जी.
3: खुद को थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, समझाना
4: को पड़ेगा. बहुत समझाना पड़ता है. लाइक मेरे इनिशियल डेज में मैं ऑफिस गई हूँ और मुझे ये बोला जाता है नहीं नहीं अभी तो तुम नहीं हो तो तुम्हें हम मीटिंग्स में इन्वॉल्व नहीं करेंगे. तो मेरे माइंड में बहुत थॉट्स चलने लग गए कि अगर मुझे मीटिंग्स में इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि हो क्या रहा है. बट देयर इज़ ऑलवेज वन पर्सन इन एनी कंपनी जो आपको पूरा बताता है कि इस कंपनी का फ्लो क्या चल रहा है या इसके बिजनेस प्रोसेसेस कैसे चलते हैं. सो मेरे भी टीम में ऐसे 2-3 लोग थे कि जिन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, भले वो मुझे डांटते थे कुछ नहीं सीखने पे या कुछ अवॉइड करने पे, लेकिन हाँ उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की पूरे प्रोसेस को सीखने के लिए.
3: वंडरफुल. तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको बोल रहा है तो आप बुरा मान जाएं या दुखी हो जाएं, कोई ना कोई आपको वो भी मिलेगा जो आपको मदद करेगा
4: जी,
3: है ना. ओके ग्रेट. तो आपको सीखते जाना है, डिमोटिवेट नहीं होना है. और खुद को क्या आप मतलब क्या लर्निंग भी कॉन्स्टेंट, जैसे आपने कहा ना अंतर है प्रैक्टिकल, तो उसके लिए क्या हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा किया, कुछ पढ़ा, कुछ कोर्सेज में भी या ऑनलाइन, क्या कुछ ऐसा किया आपने जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी बढ़े?
4: जी मैंने जब मेरा मैं पहली जो टीम में थी वहाँ हम ETL टेस्टिंग करते थे जिसका मतलब है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड.
3: ओके,
4: सो ये सब पूरा क्लाउड पे होता है वर्क एंड बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है. तो एक दो बार तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैंने कुछ कुछ डेटा गलत लोड कर दिया एंड बिजनेस के पास जब वो गया तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, बट ठीक है, माई मैनेजर हैंडल्ड इट वेल.
3: ओके,
4: बट हाँ ये चीज़ मैं बहुत मुझे एक वेबसाइट है ट्यूटोरियल्स पॉइंट या गीक्स फॉर गीक्स या फिर स्टैक ओवरफ्लो, तो ये वेबसाइट्स ने मुझे बहुत हेल्प की मुझे न्यू नॉलेज या न्यू कोई भी टर्मिनोलॉजी सीखने के लिए.
3: ओके, एक बार फिर से वेबसाइट बता सकते हैं?
4: हाँ जी, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, गीक्स फॉर गीक एंड स्टैक ओवरफ्लो.
3: ओके, तो इन वेबसाइट्स पे क्या मिलेगा हमें ऐसा जो हमें मदद करेगा?
4: जैसे मुझे SQL के बारे में थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड करना था तो मैं हर वेबसाइट पे गई एंड मैंने SQL रिलेटेड क्वेश्चंस, SQL रिलेटेड जॉब में जो भी आती हैं प्रॉब्लम्स वो मैंने वहाँ से अंडरस्टैंड की. तो इन वेबसाइट्स ने मुझे काफ़ी हेल्प किया जो बिजनेस में क्या हो सकते हैं SQL के इम्प्लीमेंटेशंस, तो वो मुझे यहाँ से काफ़ी समझ आया.
3: ओके, तो मतलब हमें अपने को अपडेटेड रखना है
4: जी
3: नॉलेज में.
4: बिल्कुल.
3: और सीखते जाना है
4: जी.
3: और अगर कभी ऐसा लगे कि हमें मतलब ये तो मुझे आता नहीं है, तो क्या करें?
4: जब आपको ऐसा लगे कि आपको ये आता नहीं है, तो मैं तो क्या करती हूँ, अपनी कंपनी वेबसाइट पर जाती हूँ. वहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड होती है, कि बिज़नेस क्या रिक्वायरमेंट रखता है कंपनी के आगे. तो मैं उस वेबसाइट पर जाती हूँ और एक बार गो थ्रू करती हूँ कि जो मेरा प्रोजेक्ट है उसकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है.
3: अच्छा, उसको आप और समझते हैं?
4: उसको मैं और समझती हूँ, और फिर उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे इसमें और क्या एनहांस करना है. और कहीं अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो हमारे मैनेजर्स जो होते हैं, हम उनकी भी हेल्प ले सकते हैं. हमें लगता है कि नहीं, ये तो सिर्फ बोनस डिस्कस करने के लिए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. वो हमें पढ़ाई में भी हेल्प करते हैं.
3: हेल्प करते हैं, वो आपको गाइड भी कर सकते हैं
4: जी.
3: तो उसके लिए हेल्प आपको मांगनी होती है, पूछना भी पड़ता
4: है ना? पूछना भी पड़ता है. आगे से आपको अपना एक क्वेश्चन डालना ही पड़ेगा हमेशा. अगर आपको कुछ सीखना है तो यू हैव टू कम टू दैट ग्राउंड.
3: दैट इज़ वेरी ट्रू. तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, कोई आके आपको सिखाए उसका वेट नहीं करना है.
4: नहीं करना है,
3: हमें पूछना है.
4: क्योंकि कॉरपोरेट में आपको खुद से आके कोई कुछ नहीं सिखाएगा. अगर आप आइडल बैठे हो किसी डेस्क पे, तो आप 9 आवर्स आइडल ही बैठे हो. अगर आपको कुछ जानना है, सीखना है, तो आपको पूछना ही पड़ेगा.
3: आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं
4: जी,
3: उनको पूछना है आपको
4: जी
3: ना, और सीखना है. वंडरफुल. लास्ट मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी ब्रह्मानी, क्योंकि कोई भी बच्चे जब कुछ करते हैं तो उनके घर वालों का भी उसमें रोल ज़रूर होता है, भूमिका ज़रूर होती है. तो आपके घर वालों की क्या उसमें भूमिका रही, या वो आपको क्या कहते थे, किस तरह से वो आपको एग्ज़ाम्स को या चीज़ों को देखने को कहते थे?
4: ओके, सो बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत फोर्स नहीं किया कि आप नहीं पढ़ाई करते रहो, करते रहो, करते रहो. नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि अपनी एफिशिएंसी बनाए रखो, लेकिन आपको जितना इजीली हो रहा है वैसे ही करो.
3: ओके.
4: अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो टेक अ ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं है. आप बस शांत रहो और आप जितना कर सकते हो उतना करो. हाँ, ये है कि थोड़े अच्छे परसेंटेज रखना ताकि आगे फ्यूचर अच्छा रहे, जॉब अच्छी मिले एंड ऑल. बट मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे बचपन से.
3: ओके.
4: एंड मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जैसे मैंने पॉलिटेक्निक की थी, तो बीच में एक ऐसा फेज आ गया था कि मेरे एक सब्जेक्ट में बैक लग गई थी. एंड मुझे बहुत बुरा लगा कि
3: आप इतने अच्छे स्टूडेंट
4: कि मैं अच्छे स्टूडेंट रह चुकी हूँ और फिर मेरी बैक नहीं लगनी चाहिए थी. तो उस सिचुएशन में भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि इट्स ओके, इट हैपेंस, और ठीक है, दोबारा अपियर करेंगे एग्ज़ाम के लिए, इट्स नॉट अ बिग डील. ये लास्ट एग्ज़ाम नहीं था, और भी एग्ज़ाम्स हैं, और इससे लाइफ ख़त्म नहीं हो गई है.
3: ये बच्चों को बताना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है
4: जी,
3: है ना? क्योंकि अंडर प्रेशर उतना अच्छा परफॉर्मेंस शायद नहीं कर सकते जितना आप जब कॉन्फिडेंट होते हैं तब कर सकते हैं. और कॉन्फिडेंस माता पिता के, घर वालों के सपोर्ट से बहुत बढ़ता है
4: जी,
3: है ना? उनका विश्वास है हमारे ऊपर. या ये एग्ज़ाम ही सिर्फ आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, ये कितनी अच्छी बात है. एक्चुअली आपने भी कहा था ये कंपनी भी कोई ऐसी आखिरी कंपनी नहीं है कि आपको जॉब्स नहीं मिलेंगे. तो आप आगे बढ़िए और यही अप्रोच रखिए, पर मेहनत पूरी करनी है उसके लिए.
4: बिल्कुल
3: ना, ऐसा नहीं कि अरे देखा जाएगा
4: जी,
3: वो फिर गड़बड़ जाती है. तो बहुत अच्छा लगा प्रमाणी आपसे बात करके, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने जानी, और स्किल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार से हमारी जर्नी चलती है. कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हम अकेले, हमें मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मुझे इतना सुनना पड़ रहा है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं. तो बाकी लोग तो लगता है कि आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन देखिए प्रोसेस सभी के साथ सेम है
4: जी,
3: है ना?
4: हर कोई किसी ना किसी पॉइंट में उनकी लाइफ में ऐसे फेज़ में ज़रूर आता है जब उन्हें लगता है कि नहीं यार, मैं तो एकदम लोएस्ट लेवल पे हूँ, मुझे कुछ नहीं आता. बट आपको बने रहना है,
3: बने रहना है.
4: जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आप कुछ हासिल ही नहीं कर पाओगे. अगर आप सोच के बैठ गए कि नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा. बट अगर आप एक थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करोगे तो गॉड विल डेफिनेटली हेल्प.
3: अच्छा, जो आपने बताया था कि जैसे आप बीच बीच में भगवान को याद करते हैं या उनसे पावर्स लेते हैं, तो कैसे करते हैं वो, क्या हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा बताएंगे क्या करना है उसके लिए?
4: पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बता रही हूँ कि मैं तो क्या करती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि स्ट्रेस आउट हो रही हूँ या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ रही है, कुछ नहीं, थोड़ी सी डीप ब्रीथ लेनी है, आंखें बंद रखो या ओपन रखो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिशियली आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कि आपका जो ब्रीथिंग है उस पर आपको आपकी नज़र डालनी है कि मेरी ब्रीथिंग कैसे जा रही है. एंड धीरे धीरे उस ब्रीथिंग को स्लो करना है,
3: कॉन्सेंट्रेट करना है
4: ब्रीथिंग पे. और फिर उसके बाद आपको ये फील करना है कि आप सेल्फ में कौन हो.
3: ओके.
4: हर पर्सन जो होता है, इसके अंदर एक एनर्जी होती है, एक सोल होती है. तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है, सोल रियलाइजेशन करना है, तभी आप गॉड रियलाइजेशन कर सकते हो.
3: ओके.
4: तो जब आप खुद को जान जाओगे तो आप परमात्मा को भी जान जाओगे. बस खुद में आना है और फिर गॉड से बस जुड़ना है कि गॉड प्लीज़ आप अपनी जो भी पावर्स हैं वो आप मेरे अंदर फ्लो करिए, जिससे मुझे हर डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उससे डील करने की शक्ति मिले.
3: ओके. और फिर आपको वो पावर्स महसूस होती हैं आप में आती हुई?
4: जी.
3: ओके.
4: वो पावर्स महसूस होती है.
3: इट्स वंडरफुल. तो मुझे लग रहा है इसमें बहुत टाइम भी नहीं लग रहा है ना, और बहुत जल्दी यू कैन डू इट. बट थोड़ा टाइम खुद को देना चाहिए.
4: थोड़ा टाइम नहीं, बहुत टाइम खुद को देना चाहिए. क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम खुद से अगर आप जोड़ रहे हो तो वो आप ही उस चीज़ का सोल्यूशन हो. अगर प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि आप ही प्रॉब्लम हो किसी चीज़ का, तो सोल्यूशन भी आप ही हो.
3: राइट. प्रॉब्लम अगर आपको लग रहा है आपसे जुड़ी है, तो सोल्यूशन भी आप ही के पास है दोस्तों. और अगर हम सोच रहे हैं ये करने से सब कुछ ठीक होगा, अपने ऊपर ध्यान देने से, अपने ऊपर हम काम जब फील करेंगे, अपने आप को कराएंगे, तब बाहर की चीज़ें और आसान होती हैं ना. इट्स द अदर वे राउंड. हमें लगता है बाहर चीज़ें ठीक होंगी तो मैं ठीक होंगी, पर आपने जैसा बताया मैं ठीक हूँ तो बाहर की चीज़ें ठीक होंगी.
4: जी.
3: वंडरफुल. बहुत अच्छा लगा ब्रह्मानी आपसे बात करके. आपने समय निकाला, हमारे साथ अपने अनुभव शेयर किए. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस.
4: थैंक यू सो मच.
3: तो दोस्तों, फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का, और 6 बजे आप सुन पाएंगे अगला कार्यक्रम उड़ान, जो कि लेकर आएंगे आरजे मोना जी. और दोस्तों, युवाओं तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाइएगा. अगर आपको कभी भी लग रहा है ना कि ये आप नहीं कर पा रहे, तो आप कोशिश अपनी जारी रखिए, क्योंकि सोल्यूशन भी आप ही के पास है. और ये कोई आखिरी मंजिल, आखिरी एग्जाम या आखिरी कंपनी नहीं है. जीवन में और बहुत कुछ बाकी है, बस आगे बढ़ते रहना है. इसी के साथ लेते हैं इजाजत. रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शुक्रवार की शाम भी बिताने आ गई हूं। आप लोगों के लिए कहानी, कविता, सवाल और मजेदार कुछ तथ्य भी लेकर आने वाली हूँ आज की इस शाम में। तो आज हमारे साथ बन के रहना, सुनते रहना, मुस्कुराते रहना। आज विशेष दिन है। देवेंद्र द्वारकानाथ ठाकुर के पुत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन। जी हाँ, और ये थे पिता रविन्द्रनाथ ठाकुर के। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देवेंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर। बड़ी ईमानदारी के साथ जीवन, शालीनता, विद्वत्ता, श्रेष्ठ चरित्र और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान देने वाले टैगोर फैमिली में ही हुआ था। ये ब्रह्म समाज के सदस्य भी जरूर थे जिनका जन्म 1843 में हुआ। उसके साथ साथ एक्चुअली इनका जन्म 15 मई 1817 में हुआ और 19 जनवरी 1905 में इनका देहांत हुआ। इनके पुत्र रविन्द्रनाथ ठाकुर सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे। भारत में समाज सुधारक के रूप में ये पूरा परिवार इन्हें जानता था। शिक्षा को हर घर में पहुंचाना इनका विशेष उद्देश्य था। तभी तो 20 बीघा जमीन शांति निकेतन को इन्हीं के परिवार ने दे दी और विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना इसी जगह पर हुई। समाज सुधारक, धर्म सुधारक के रूप में, शिक्षा प्रचार के रूप में ये जाने जाते थे, विशेष इनका पूरा परिवार। साथ ही साथ एक और व्यक्तित्व जिनको हम याद करते हैं, उनके कहते ना बलिदान को याद करते हैं, बात कर रहे हैं हम सुखदेव की। पंद्रह मई 1907 पंजाब में बलिदान के लिए जाने जाने वाले सुखदेव का जन्म हुआ। सेंट्रल जेल लाहौर के आसपास के क्षेत्र में और भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी बने सुखदेव। इनका जन्म 15 मई को ही हुआ था लुधियाना पंजाब में। उनके पिता का नाम था राम लाल थापर। जी हाँ, व्यवसाय के लिए बहुत जाने जाते थे और इनका व्यवसाय फैसलाबाद पाकिस्तान में था। माता रल्ला देवी काफी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। भगत सिंह के ये सबसे पक्के दोस्त थे। सन 1990 में हुए जलियांवाला बाग के भीषण नरसंहार के कारण देश में भय और उत्तेजना का वातावरण बन गया। इस समय सुखदेव सिर्फ 12 वर्ष के थे। पंजाब के प्रमुख नगरों में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। स्कूलों तथा कॉलेजों में तैनात ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय छात्रों को सैल्यूट करना पड़ता था, लेकिन सुखदेव ने तो दृढ़तापूर्वक ऐसा करने से मना कर दिया। हाँ, और उसकी खामियाना उनको जरूर भुगतनी पड़ी, लेकिन वो डरे नहीं। यहाँ लाहौर में नेशनल कॉलेज से दोस्तों लालायपुर के सनातन धर्म हाई स्कूल से मैट्रिक पास करके सुखदेव ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ पर सुखदेव की मुलाकात भगत सिंह से हुई। दोनों एक ही रास्ते के पथिक थे। शीघ्र ही दोनों का परिचय और गहरी दोस्ती में बदल गया। दोनों को अत्यधिक कुशाग्रता, बुद्धि की कुशाग्रता के साथ साथ देश प्रेम भरपूर था। तात्कालीन समस्याओं को वो समझते थे और उससे जूझना वो जानते थे। इसीलिए इतिहास का नया पन्ना, नया अध्याय चालू करने में उनका पूर्ण सहयोग था। और दोस्तों, इसके साथ साथ आज का सवाल है, कौन से मुगल शासक को रंगून में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा उन्हें डिपोर्ट अर्थात उन्हें बंधक बनाकर वहां पर भेजा गया था? कौन से मुगल सम्राट को रंगून में ब्रिटिश साम्राज्य ने उन्हें बंधक बनाकर भेजा था? ए शाहजहां को, बी बहादुर शाह जफर को, या फिर सी अकबर को? सही जवाब सिर्फ एक है। देना आप 9414151415 पर। सुनते रहो, मुस्कुराते।

0: मेरा रंग दे बसंती चोला माहिर रंग दे। पुनः दोस्तों आज का सवाल, वो मुगल शासक जिन्हें रंगून में ब्रिटिश सरकार ने डिपोर्ट कर दिया था अर्थात बंधक बनाकर भेजा था, आपके सामने ए शाहजहां को, बी बहादुर शाह जफर को या फिर सी अकबर को। सही जवाब छटपट दीजिए 9414151415 पर दीजिए। चलिए दोस्तों छोटी सी कहानी सुना देते हैं आज की इस उड़ान में।
1: स्वागत है आपका नीलम घाटी में, जहां परिंदे सिर्फ उड़ते नहीं बल्कि जादुई कुदरत की हिफाजत करते हैं। नीलम घाटी का बाजार जंगल का दिल था। यहाँ हर चीज ताजा और जादुई मिलती थी। मिट्ठू तोता ये पूरे जंगल में मशहूर था। इसके पास फूलों के रस के रसगुल्ले और शहद की बर्फी मिलती थी।
2: आइए आइए, ताजा फूलों के रस के रसगुल्ले, जो एक बार खाए उड़ना भूल जाए और बस स्वाद में खो जाए।
1: बबली गौरैया, बबली के पास ऐसी ताजा हरी सब्जियां थी जो रात में जुगनू की तरह चमकती थी। शेरू मोर, शेरू ऊंचे पेड़ों से जादुई नीलम सेब और रसीले आम तोड़कर लाता था। बाजार की हलचल से दूर एक पुराने चिनार के साए में बसता था नूरी और शानू का छोटा सा आशियाना, एक ऐसा घर जो उम्मीदों के धागों से बुना गया था।
3: थक गए होंगे ना? आज तो महाराज केसरी के दरबार में बहुत भीड़ रही होगी।
4: हाँ नूरी, महाराज ने आज घाटी के दूसरे छोर तक संदेश भिजवाया था। पंख जवाब दे रहे हैं, पर क्या करें, जिम्मेदारी जो ठहरी।
3: तुम फिक्र मत करो, थोड़ा आराम कर लो। आज मैं भी मिट्ठू

0: की दुकान पर देर तक रुकी थी। चाशनी एकदम गाढ़ी और खुशबूदार बनी थी। मिट्ठू भाई बहुत खुश हुए। देखो, उन्होंने बच्चों के लिए ये मीठे दाने दिए हैं।
1: तुम कितनी मेहनत करती हो नूरी, सुबह बाजार में काम, फिर घर का ख्याल। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या मैं तुम्हें वो सुख दे पा रहा हूँ जिसकी तुम हकदार हो।
0: शानू, सुख बड़े महल में नहीं, इस छोटे से आशियाने की शांति में है। मेरा बस एक ही सपना है, जब हमारा नन्हा बच्चा इस अंडे से बाहर आए तो उसे एक सुरक्षित और प्यार भरी घाटी मिले, जहां उसे किसी शिकारी का डर ना हो।
2: सुना तुमने, ये कैसी आवाज थी?
1: शायद हवा का शोर होगा। तुम सो जाओ, मैं पहरा दे रहा हूँ।

0: बचाओ, कोई बचाओ। महाविनाश, मेरे बच्चे, मेरे सपने, कोई सब ले गया।
1: क्या हुआ बबली, ठीक से बताओ।
2: आज सुबह मैं सुबह की ओस लेने गई थी, जब लौटी तो मेरे तीन सुंदर नीले अंडे, वे गायब थे। एक भी तिनका नहीं टूटा है, कोई निशान नहीं, पर अंडे कहीं नहीं है।
3: ये कोई साधारण चोरी नहीं है, चोर इतना शातिर है कि उसने घोंसले को छुआ तक नहीं।

0: अभी ये चोरी का खौफ थमा भी नहीं था
1: मुझे कि अगले ही दिन
0: कोमल कोयल के घर से भी दो अंडे गायब हो गए, बिल्कुल वैसे ही बिना किसी निशान के।
2: शेरू, मिठाई बनाने का मन ही नहीं कर रहा, कोई अब रसगुल्लों की तरफ देखता तक नहीं।
3: हाँ मिट्ठू, सब डरे हुए हैं। अपने बच्चों के अंडे बचाना ही अब सबसे बड़ा व्यापार बन गया है।
4: नीलम घाटी के इतिहास में ऐसी कायरतापूर्ण चोरी कभी नहीं हुई। ये सिर्फ अंडों की चोरी नहीं है, ये हमारी घाटी की सुरक्षा और शांति पर हमला है।
5: महाराज, कोई निशान तक नहीं मिला, चोर जैसे हवा में ही गायब हो गया।
3: हाँ महाराज, अब तो अपने घोंसलों को मजबूत करने में ही सारा वक्त चला जाता है।
6: इसलिए मैं ऐलान करता हूँ, जो भी इस शातिर और अदृश्य चोर को रंगे हाथों पकड़ेगा उसे घाटी का रक्षक बनाया जाएगा और उसे राजमहल के शाही बाग में रहने का अधिकार मिलेगा, जहां उसे कभी किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा।
7: महाराज को प्रणाम, मुझे सब ग्रेगरी कहते हैं। मैं दूर दूर के जंगलों से अंडों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करता हूँ।
8: अंडों का डॉक्टर? पर डॉक्टर अंडों की क्या मदद कर सकता है, वे तो अभी बच्चे ही नहीं बने।
7: यही तो आपकी गलती है छोटी बहन, अंडे सबसे नाजुक होते हैं। मेरे पास एक खास सुरक्षा कवच है, इसे अंडों पर लगाओ और चोर उन्हें कभी देख ही नहीं पाएगा।
8: ग्रेगरी की बातों ने पूरी घाटी में एक नई उम्मीद जगा दी। क्या यह अजनबी सच में मददगार था या वो इस चोरी के पीछे का असली खिलाड़ी था, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
7: घबराइए मत, ये जादुई सफेद पाउडर आपके अंडों को एक अदृश्य दीवार से ढक देगा। चोर पास आएगा पर उसे कुछ दिखेगा ही नहीं।
9: शानू, तुमने देखा? शानू, ये डॉक्टर मुझे जरा भी ठीक नहीं लग रहा। वो पाउडर तो छिड़क रहा है लेकिन चुपके से हर उस घोंसले पर एक लाल निशान भी बना रहा है जहां उसने पाउडर डाला है। ये डॉक्टर है या कोई डाकू?
10: नूरी, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। देखो तो, बेचारा कितनी दूर से आया है और महाराज का खास मेहमान है। वो शायद अपनी याददाश्त के लिए निशान लगा रहा होगा ताकि उसे पता रहे कि किन अंडों की सुरक्षा हो चुकी है।
9: नहीं शानू, मेरी ममता कह रही है कि ये निशान सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि पहचान के लिए है। वो शायद रात के अंधेरे में इन्हीं निशानों को ढूंढते हुए वापस आएगा।
10: डरो मत नूरी, कल सुबह जब सब सुरक्षित रहेंगे तो तुम्हारा यह शक खुद ब खुद दूर हो जाएगा।
0: शानू ने नूरी को समझा तो दिया पर नूरी का दिल मानने को तैयार नहीं था। क्या नूरी का शक सही था? क्या वो लाल निशान मौत का पैगाम थे?
8: जब पूरी नीलम घाटी मीठे सपनों में खोई थी तब अंधेरे के साए में कोई जाग रहा था। नूरी की आंखें बंद जरूर थी पर उसका मन बेचैन था।

मेरा शक सही था। वो पाउडर सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उन घोंसलों को चिन्हित करने के लिए था जिन्हें वो रात में लूटने वाला था।

0: मुझे सबको बताना होगा, लेकिन सावधानी से। अगर गैरी को पता चला कि मैंने उसे देख लिया है तो वो भाग जाएगा।
1: रक्षक ही बख्शत निकला। नूरी ने चोर को देख तो लिया था, लेकिन क्या वह उसे रंगे हाथों पकड़वा पाएगी या गैरी एक बार फिर अंधेरे में गायब हो जाएगा।
0: महाराज क्षमा करें, पर बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो गैरी डॉक्टर नहीं बल्कि वही शातिर चोर है। मैंने उसे रात के अंधेरे में उन घोंसलों को लूटते देखा है जहां उसने दिन में लाल निशान लगाए थे।
2: अगर वो रक्षक बनकर भक्षक बना है तो उसे सजा भी वैसी ही मिलेगी। शानू, तुम अपने घोंसले के पास छिप जाओ। नूरी, तुम निगरानी करो। जैसे ही वो हमला करे, हम उसे चारों तरफ से घेर लेंगे।

0: अभी हमला।
1: महाराज ये क्या, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था।
2: सेवा नहीं, तुम हमारी मासूमियत का फायदा उठा रहे थे। देखो तुम्हारी थैली में क्या है।
3: ग्रेगरी, तुमने नीलम घाटी का विश्वास तोड़ा है। तुम्हारी चालाकी आज नूरी की समझदारी के आगे हार गई।
4: जब रक्षक ही चोर बन जाए तो नूरी जैसी सतर्क निगाहें ही घाटी को बचाती हैं। बुराई का अंत नजदीक था।
5: नीलम घाटी के निवासियों, आज हम उस खौफ से आजाद हैं जिसने हमारी नींद उड़ा दी थी। चालाक ग्रे गैरी को हमेशा के लिए घाटी से बाहर निकाल दिया गया है।
6: नूरी बेटी इधर आओ।
5: जैसा कि मैंने वादा किया था, जो चोर को पकड़ेगा वही घाटी का रक्षक कहलाएगा। नूरी ने न केवल अपनी सतर्कता से चोर को पहचाना बल्कि अपनी सूझबूझ से उसे रंगे हाथों पकड़वाया भी।
7: नूरी, तुमने सिर्फ अंडे नहीं बचाए, तुमने हमारी मुस्कान और भरोसा वापस दिलाया है।
8: मुझे तुम पर यकीन था नूरी, तुम्हारी शक भरी निगाहों ने ही सच को देख लिया।
9: महाराज केसरी घोषणा करते हैं कि नूरी अब से राजमहल के सुरक्षित और शाही बाग में रहेगी। नूरी और शानू एक साथ उड़ते हुए उस सुंदर बाग की तरफ जाते हैं जहां अब कोई खतरा नहीं है।
4: नीलम घाटी एक बार फिर गूंज उठी। सबको समझ आ गया कि असली सुरक्षा किसी बाहरी पाउडर में नहीं बल्कि अपनों के बीच की सतर्कता और एकता में होती है।
10: बिल्कुल, अपनों के बीच रहते हुए हम सुरक्षित महसूस करते हैं और अपनों के साथ रहना अच्छा भी है। अपनों के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन का साथ सदा अपने साथ बनाकर रखिए। आज का पुनः सवाल भी, मुगल शासक जिन्हें रंगून में बंधक बनाकर ब्रिटिश राज्य ने भेजा था, ए शाहजहां को, बी बहादुर शाह जफर को, सी अकबर को, सही जवाब जरूर दीजिए 9414151415 पर दीजिए। अगली गीत आप तक उड़ान।

0: चलिए दोस्तों, बढ़ता चल बढ़ाता चल, जिसे पहनकर वीर शिवा ने माँ का बंधन खोला, जिसे पहन राणा प्रताप वीरों की वाणी बोला, जिसके लिए हटी हमीर ने आन बान को पाला, जिसके लिए रानियों ने अपने को हंसकर दे डाला, झूम रहे सुखदेव राजगुरु भी आज लहर में, नाच उठते ऊपर दोनों हाथ उठाकर, स्वर में ताल मिलाते पैरों में बेड़ी खनका कर, आज ये शहीद सुखदेव और साथी की छोटी सी यानी कविता थी। भारत के महान क्रांतिकारी वीरों में सुखदेव था, पर भगत सिंह और राजगुरु को समर्पित था। 23 मार्च 1931 को देश के स्वतंत्रता के लिए ये तीनों युवा हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनके सर्वोच्च बलिदान को आज भी याद किया जाता है। याद करने के लिए बात अलग ही कुछ कहते हैं। आज लग रहा कैसे जी को कैसी आज घुटन है, दिल बैठा सा चाहता हर सांस आज उन्मन है, बुझे बुझे मन पर ये कैसी बोझिलता भारी है, क्या वीरों की आज कूच करने की तैयारी है। हाँ, सचमुच ही तैयारी है ये आज कूच की बेला, माँ के तीन लाल जाएंगे भगत ना एक अकेला, मातृभूमि पर अर्पित होंगे तीनों फूल ये पावन, मातृभूमि पर अर्पित होंगे तीनों फूल ये पावन, यह उनका त्योहार सुहावन, यह दिन उन्हें सुहावन, फांसी की कोठरी बनी अब इन्हें रंगशाला है, झूम झूम सहागन हो रहा मन क्या मतवाला है, भगत गा रहा आज चले हम पहन बसंती चोला, जिसे पहनकर वीर शिवा ने माँ का बंधन खोला, झन झन झन झन बज रही बेड़ियां ताल दे रही स्वर में, झूम रहे सुखदेव राजगुरु भी आज लहर में, नाच उठते ऊपर दोनों हाथ उठाकर, स्वर में ताल मिलते पैरों की बेड़ी खनकाकर, पुनः वही अलाप रंगे हम आज बसंती चोला, जिन्हें पहन राणा प्रताप वीरों की वाणी बोला, वही बसंती चोला हम भी आज खुशी से पहने, लपटे बन जाती जिसके हित भारत की माँ बहने, उसी अंग में अपने माँ को रंग रंग कर हम झूमे, हम परवाने बलिदानों की अमर शिखाएं चूमे, हमें बसंती चोला माँ तू स्वयं आज पहना दे, तू अपने हाथों से हमको रण के लिए सजा दे, सचमुच सचमुच ही आ गया निमंत्रण लो इनको यह रण का, बलिदानों का पुण्य पर्व यह बन त्योहार मरण का, जल के तीन पात्र समुख रख यम का प्रतिनिधि बोला, स्नान करो पावन कर लो तुम तीनों अपना चोला, झूम उठे यह सुनकर तीनों की अलहन मर्दाने, लगे गूंजने और तीव्र हो उनके मस्त तराने, लगी लहराने कारागृह के एक इंक्लाव की धारा, जिसने भी स्वर सुना वही प्रति उत्तर के हुंकारा। इस खूबसूरत कविता के साथ साथ मैं मोना अगला जो कहानी है वो लेकर जरूर आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह करूंगी कि से नो टू टोबैको।
1: ये है नशे की कहानी।
2: पहला नशा पहला खुमार,
1: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह,
2: किसी की याद सताए शराब पी लेना,
1: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
1: घोड़ी जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
0: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया, तो

0: में पिए या दुख में धुआं उड़ाए। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए
2: श्रीसंत नामक गांव में एक युवक देवनाथ रहता था। उसके माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। देवनाथ शरीर से हट्टा कट्टा व मेहनत करने वाला लड़का था, लेकिन वो बहुत गरीब था। वो बाजार में जाकर मजदूरी करता और उतना ही कमा पाता जितना उसका गुजारा हो पाता।
3: क्या मैं पूरे जीवन यूं ही मजदूरी ही करता रहूंगा? क्या ये सब हमारी किस्मत में ही लिखा है?
4: क्या हुआ भाई, किस सोच में पड़ गए? अभी तो बहुत से बोझ उठाने हैं।
3: अरे भाई, वो देखो व्यापारी कितने ठाट बाट से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। क्या हमारी किस्मत में ये सब नहीं हो सकता?
4: क्या कर सकते हैं भाई, हम सब अपने हालातों से मजबूर हैं।
3: क्या अपने हालातों को बदलना हमारे हाथ में नहीं? मैं भी इन सेठ लोगों की तरह ऐशो आराम से जीना चाहता हूँ।
4: लगता तो नहीं कि ऐसा आराम कभी हमारी जिंदगी में भी आएगा, लेकिन भाई जल्दी ही ये काम समाप्त करो, शाम होने वाली है, फिर घर भी लौटना है।
2: शाम होते ही देवनाथ घर लौटने लगा, लेकिन उसके मन में अभी भी ऐशो आराम से जीने के विचार कौंध रहे थे। गांव के किनारे एक पेड़ की छांव में एक बूढ़ा अक्सर बैठा रहता। वो देवनाथ को बाजार आते जाते रोज देखा करता।
5: मैं इस युवक को प्रतिदिन यहाँ से गुजरते देखता हूँ, परंतु ना जाने इससे क्यों इतना अपनापन लगता है। कितना उदार व शांत लड़का है ये, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई व्यभिचार चल रहा हो इसके मन में।
2: अगली सुबह जब फिर से देवनाथ बाजार की ओर जाने लगा तो उस बूढ़े ने देवनाथ को अपने पास बुलाया।
3: आओ बेटा, आकर मेरे पास बैठो। क्या हुआ बाबा, क्या आपको किसी चीज की आवश्यकता है?
5: नहीं बेटा, मुझे तो नहीं, लेकिन लगता है तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है तुम काफी दिनों से परेशान हो, ऐसी क्या बात है बेटा?
4: बाबा, मैं मजदूर हूँ, सुबह से शाम तक काम करता हूँ, लेकिन अपने सपनों की सच्चाई तक मैं पहुँच नहीं पा रहा। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, इन्हीं सपनों की वजह से मैं बहुत बेचैन रहता हूँ। क्या मेरी तकदीर में यही लिखा है कि मैं सुबह से शाम तक काम करूँ और हासिल कुछ भी ना हो?
5: अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो बेटा।
4: बाबा, मेरे पास चौड़े कंधों के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है, मैं तनक भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ।
5: बेटा, बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सपने देखना और शरीर की ताकत के साथ जीना काफी नहीं है। कल तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक भेद बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा।
4: बाबा, कैसा भेद? एक भेद भला मेरा जीवन कैसे बदल सकता है?
5: बेटा, जब तुम वो भेद जान लोगे तो तुम्हारा जीवन स्वयं ही आसान हो जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा।
4: ठीक है बाबा, तो मैं कल सुबह ही आपके पास आ जाऊंगा।
2: बाबा का धन्यवाद करके देवनाथ अपने घर को चल पड़ा, लेकिन उसे अभी भी उसे बूढ़े की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। अगली सुबह तैयार होकर देवनाथ बाबा के पास आ पहुंचा। वो भेद जानने के लिए बहुत उत्साहित था।
4: प्रणाम बाबा, मैं आ गया, कहिए आप क्या भेद बताना चाहते थे?
5: बेटा, अपने वादे को पूरा करना सफलता का पहला मंत्र है।
4: बाबा, मुझे आपकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, कृपया विस्तार से बताएं।
2: बूढ़ा अपनी जेब से एक पत्थर निकालकर देवनाथ को देते हुए कहने लगा,
5: ये लो बेटा, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये पत्थर जिसके भी पास होता है उसके पास खुशहाली लेकर आता है, उसकी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं।
4: लेकिन बाबा, ये तो एक पत्थर है, इससे बड़े बड़े पत्थर तो मैं हर रोज ढोता हूँ, भला ये पत्थर मेरी किस्मत कैसे बदल सकता है?
5: बेटा ये साधारण पत्थर नहीं है, इसे बस अपने पास रखो। इसे रखने पर तुम्हारे पास बहुत से अफसर आएंगे, बस तुम्हें उन अफसरों को पहचानना है।
4: मुझे तो इस पत्थर के बारे में अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन मैं इसे अपने पास रखकर अपनी किस्मत अवश्य आजमाऊंगा।
2: देवनाथ ने पत्थर अपनी जेब में रखा और बाबा का धन्यवाद करके बाजार की तरफ चल पड़ा। वो महसूस कर रहा था कि उसका आज का दिन बाकी दिनों से भिन्न है। वो बाजार पहुंचा तो उसने देखा कुछ व्यापारी अपने काफिले के साथ आपस में बात कर रहे थे।
5: अरे भाई, हमारे पास व्यापार का सामान तो बहुत है, किंतु इसे ढोने के लिए बहुत ताकतवर मजदूरों की आवश्यकता है।
4: हाँ भाई, वरना हम दूसरे नगर को नहीं पहुँच पाएंगे, व्यापार में हमारा भारी नुकसान हो जाएगा।
5: जाओ इधर उधर देखो, कोई हट्टा कट्टा मजदूर हो तो उसे ढूंढ कर लाओ।
3: ये लोग बड़े व्यापार की बात कर रहे हैं, क्या ये पत्थर ही मेरे लिए मौका लेकर आया है? मुझे चलकर इस मौके का फायदा अवश्य उठाना चाहिए।
2: देवनाथ उन व्यापारियों के पास जा पहुंचा और एक व्यापारी से बोला,
4: हुजूर मैं इसी बाजार में मजदूरी करता हूं और मेहनती भी हूं, क्या आप मुझे अपने काफिले में शामिल कर लेंगे?
5: लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि तुम मेहनती हो या निकम्मे, सच्चे हो या चोर?
4: हुजूर मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं, मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे एक मौका अवश्य देंगे।
5: हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा कि तुम काबिल हो।
4: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर।

0: देवनाथ भी उन व्यापारियों के साथ उनके काफिले में शामिल हो गया। अब वो सब सामान लादकर दूसरे नगर की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर उन्हें राजा के एक आदेश के बारे में पता चला।
1: मंत्रीगढ़ व दरबारी, हम सभी जानते हैं कि हम नक्शे के रहस्य को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। मंत्री जी, हम चाहते हैं कि अब नगर से बाहर के रहस्यवादियों को बुलाकर नक्शे के रहस्य को सुलझाया जाए।
2: जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा।
0: महाराज के आदेश के अनुसार नगर के बाहर के रहस्यवादियों को भी बुलाया गया, लेकिन कोई भी विद्वान, जानकार व ऋषि मुनि उस पहेली को सुलझा नहीं सके।
1: मंत्री जी, बस बहुत हो गया। इस नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमारे खजाने के नक्शे को सुलझा सके।
2: हमें क्षमा करें महाराज, किंतु कोई भी विद्वान व जानकार इस रहस्य को नहीं सुलझा सका।
1: मैं आदेश देता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस नक्शे के रहस्य को समझ पाएगा, उसे मेरी तरफ से बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा।
0: महाराज का आदेश पूरे नगर में फैल गया। बहुत कोशिश के बाद भी कोई उस रहस्य को नहीं सुलझा सका।
3: क्या मुझे भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए? महाराज के आदेश के अनुसार मुझे भी एक बार उस नक्शे को अवश्य समझना चाहिए। क्या पता मैं उससे उत्तीर्ण हो जाऊं।
0: देवनाथ उस पत्थर के बल पर अपनी किस्मत आजमाने महल चल पड़ा तो उसके फटे पुराने कपड़े देखकर सैनिकों ने उसे रोक लिया।
2: अरे अरे रुको भाई, कहां अंदर घुसे चले जा रहे हो?
3: मैं उस नक्शे के पीछे छिपे हुए राज को हल करना चाहता हूँ।
2: तुम्हारा होलिया तो किसी मजदूर के जैसा लगता है। जब बड़े बड़े विद्वान उस रहस्य को नहीं समझ पाए तो तुम किस खेत की मोली हो भाई?
3: भाइयों, कई बार समस्या का हल वहाँ से भी मिल जाता है जहाँ किसी को उम्मीद नहीं होती। आप मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ आपका कोई नुकसान नहीं होगा।
2: चलो ठीक है, अगर तुम इतने विश्वास से कहते हो तो तुम्हें एक मौका अवश्य मिलेगा।
0: सैनिक ने देवनाथ को अंदर जाने की अनुमति दे दी। देवनाथ जब अंदर पहुंचा तो वो महल की शानो शौकत देखकर बहुत आश्चर्यचकित था। वो सामने राजा के पास पहुंच गया। दरबार में उपस्थित सभी लोग बहुत चिंतित थे।
3: प्रणाम महाराज, मैं भी उस नक्शे के रहस्य को सुलझाने में अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ।
1: क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि लोग हमसे मजाक करने आ जाते हैं?
3: महाराज, मैं कोई मजाक की मंशा से नहीं आया हूँ। मेरा अनुरोध है, कृपया मुझे एक अवसर अवश्य दे।
1: अब तुमने इतनी हिम्मत कर ही ली है तो तुम्हें एक मौका अवश्य दूंगा, लेकिन याद रहे, अगर तुम इसमें असफल हुए तो दंडित भी किए जाओगे। लाओ मंत्री जी, वो नक्शा इस युवक के सामने रख दो।
0: मंत्री ने नक्शा लाकर देवनाथ के सामने रख दिया। उस नक्शे को देखते हुए देवनाथ बहुत गहराइयों में खो गया। वो नक्शा बहुत सी रेखाओं से घिरा हुआ था।
3: इस नक्शे में बहुत सी रेखाएं ऊंची नीची है, अर्थात ये पत्थरों व पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऐसा लगता है कि जिस रास्ते से हम काफिला लेकर गुजरे थे उस पत्थर पर भी कुछ ऐसे ही निशान थे।
0: देवनाथ अपने उसी पत्थर को याद करते हुए उस नक्शे को बहुत देर तक समझता रहा। कुछ समय बाद वो अचानक से बोल पड़ा।
3: महाराज, ये खजाने का नक्शा तो नगर के किनारे कोयले की खान के बगल का है जो छोटे बड़े पत्थरों से रंजित है।
1: मंत्री जी, एक सिपाही की टोली कुछ सलाहकारों के साथ इस युवक के द्वारा बताए गए स्थान पर भेज दो। आखिर हमें भी तो पता चले इस युवक की बात में कितनी सच्चाई है।
0: महाराज के आदेश पर देवनाथ द्वारा बताए गए स्थान की खुदाई की गई, तो सचमुच स्थान पर सोने चांदियों से भरे हुए बक्से प्राप्त हुए जिसे दरबार में पेश किया गया।
2: महाराज की जय हो। महाराज, इस युवक की बात सच हुई, हमें उस नक्शे के स्थान से बहुत सा खजाना प्राप्त हुआ है।
1: नौजवान, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इस मुश्किल पहेली को कैसे हल कर दिया जबकि बड़े बड़े विद्वान भी ये नहीं कर सके।
3: महाराज, कई बार हमें चीजों को देखने के लिए नजरिए बदलने की आवश्यकता होती है और उन्हें अपने जीवन के अनुभवों से जोड़ना पड़ता है।
1: मंत्री जी, इस युवक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम स्वरूप दी जाए और महल के उच्च पद में इस युवक की भर्ती की जाए।
0: देवनाथ के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। नगर में चारों तरफ सिर्फ देवनाथ के ही चर्चे थे। देवनाथ को महल में कार्य करते हुए काफी समय बीत गया। एक दिन उसे उन बूढ़े बाबा व अपने घर की याद आने लगी।
3: मैं आज इस स्थान पर खड़ा हूँ, ये सिर्फ उन बूढ़े बाबा की मेहरबानी है, मुझे जाकर उनसे अवश्य मिलना चाहिए।
0: देवनाथ कुछ दिनों के लिए महाराज से आज्ञा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। वो उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां वे बाबा बैठते थे। आज भी वो बूढ़े बाबा वहीं पर बैठे थे।

0: प्रणाम बाबा, क्या आपने मुझे पहचाना?
1: हाँ हाँ बेटा, आखिर तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ।
0: बाबा, आपके दिए हुए इस पत्थर ने मेरी किस्मत बदल दी। मैं आज पास के ही नगर के राज दरबार में कार्यरत हूँ। ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। आपको ये चमत्कारी पत्थर कहाँ से मिला था बाबा?
1: बेटा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो इसकी सच्चाई ये है कि ये भी अन्य पत्थरों की तरह सामान्य पत्थर है। मैंने तो तुम्हें ये सिर्फ एक निशानी के तौर पर दिया था।
0: निशानी के तौर पर? परंतु क्यों बाबा?
1: बेटा, कई बार इंसान के अंदर की खूबियों को बाहर लाने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। बस मैंने भी यही किया। तुम्हें सफलता दिलाने वाला ये पत्थर नहीं, बल्कि तुम्हारा विश्वास और मेहनत थी।
0: आप धन्य हैं बाबा, आपकी ये दी हुई सीख जीवन में मैं कभी नहीं भूलूंगा।
2: देवनाथ ने बाबा का धन्यवाद किया। वह अपने घर में कुछ देर आराम करने के बाद पुनः महल की ओर चल पड़ा।
3: भाग्य का पत्थर भाग्य का कोई अलग पत्थर नहीं था, मेहनत ही भाग्य का पत्थर था। लेकिन विश्वास अपने अंदर जागृत करने की जरूरत थी, और वो किसी ऐसे ही सीधे साधे व्यक्तित्व ने ही उनके अंदर भर दिया। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक गीत और सवाल का जवाब भी। तो चलिए सुन लेते हैं, जिंदगी मौत न बन जाए।

जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारो। और मुगल साम्राज्य के या मुगल एम्परर जो थे, मुगल राजा बादशाह जो थे, जो इन्हें ब्रिटिश सरकार ने रंगून में बंधक बनाकर भेजा था, वो न तो शाहजहां थे न अकबर थे, बल्कि वो बहादुर शाह जफर थे। आज के लिए बस इतना ही। सोमवार को मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए उड़ान कार्यक्रम से कहना चाहूंगी गुड बाय। संडे और सैटरडे आपका अच्छा बीते, और घर इन ऑन एयर इसे सुनना न भूले। आपको समय बता दिया गया है, घर ऑन एयर लाइव होगा और आप इस कार्यक्रम को, इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम के तहत हमें बहुत खुशी मिलता है जब गांव और अंचल और ढाणी ढाणी में जाते हैं, वनांचल क्षेत्र में जाते हैं, तो हमें सबसे मिलने को मौका मिलता है। जिस मौका का चलते सबका बात को सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन हमेशा कोशिश करता है। तो आज खासकर हम डेरी में पहुंचे तो डेरी एक प्रकृति का बसा हुआ गांव है और वहां के जो इतिहास, उस गांव का इतिहास के बारे में हम भलीभांति जानते हैं। एक बार मिले थे, लेकिन आज दोबारा डेरी का गांव का बारे में थोड़ा जानकारी लेने के लिए हमारे पास महान अनुभवी व्यक्तित्व है, तो उनको स्वागत करते हैं ग्रामवासियों की तरफ से। और खासकर रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का भागीदारी हमेशा रहता है और जहाँ भी जाते हैं

0: एक सेकंड में एक इशारा में जब बताते तो सहयोग देते हैं। तो आज डेयरी का विशेषता, डेयरी गांव का विशेषता और खासकर डेयरी का आसपास कौन सा गांव है और वहां का रीति रिवाज संस्कृति का साथ सब चीज़ जानेंगे। लेकिन जो विशेष अनुभव आदर्श आज बताने के लिए हमारा साथ जो अनुभवी है तो उनको स्वागत करते हैं, खासकर सभी ग्रामवासियों की तरफ से, अंचलवासियों की तरफ से और जो पंचायत राज जिसको हम लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं उसी संदर्भ से जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, जो भी ऑफिसर्स हो चाहे जो भी हमारा कार्यकर्मी, तो उनका तरफ से भी सर जी को स्वागत करते। सर आप अपना परिचय दीजिए और खासकर आपका बचपन, पढ़ाई और आपका यहाँ तक पहुँचना इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं, तो आपका वेलकम, आपका इंट्रोडक्शन, आपका परिचय।
1: दोबारा सुनब कलाराम जी, गाँव डेयरी
0: जी जी
1: सिलावर जिला सिरोही। हमारे गांव एक पहाड़ी इलाका में बसा हुआ है और वहां के लोग पैदल चलकर पढ़ाई करते हैं। मतलब 10 किलोमीटर
0: कम से कम
1: 10 किलोमीटर सुरपगला आके फिर यहाँ अवरोड आके फिर पढ़ाई करते हैं। उसमें अधिकतम लोग मतलब 5-6 कर्मचारी पुलिस में उनका चयन हुआ हुआ है और एक एक थानेदार साहब है सकाराम जी, और लोग पहाड़ में होके पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और इसमें 2-3 शिक्षक भी है और एक स्वास्थ्य कर्मी की है सिरोही में, और इस प्रकार की पढ़ाई करते रहे। अभी कॉलेज में भी लोग पढ़ रहे हैं, बड़ी मेहनत करके नई साधन है
0: जी जी।
1: तो भी ऐसे करके पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। और हमारे उधर एक माइस है,
0: क्या
1: माइस सोना
0: ताम माइस
1: पुराने है,
0: खान है सोना का
1: तांबा सोना शीशा जस्ता ये निकलता है वहाँ,
0: तो इसलिए रिचेस्ट मैंने
1: अमीर
0: है
1: वहाँ वहाँ की एरिया और अच्छा इलाका है, वहाँ लोग मेहनत करते हैं और कुछ लोग है वो माइंस में जाते हैं।
0: अभी भी माइंस में जाते हैं?
1: जाते हैं नहीं, हमारे क्या गुजरात पड़ोसी है राज्य है, तो वहाँ पड़ोसी राज्य में जाते हैं।
0: श्रीमान जी आप जैसे बताए आपका गाँव का बारे में और शिक्षा को लेकर इतना जागरूकता है और जिसका चलते हो अपना सर्विस भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सर्विस हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं। इतना आदिवासी एरिया, इतना दूरस्थ जगह है जहाँ कोई साधन पहुँचता नहीं है, इंटरनेट टेलीफोन का इतना कम्युनिकेशन नहीं है, फिर भी जैसे आपने बताया कोई LDC में है, कोई स्कूल में भी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई पुलिस में भी और कोई पिंडवाड़ा में भी पंचायत राज में काम कर रहे हैं, इतना जो अवेयरनेस जागरूकता कैसे हुई इसका राज?
1: राज लोगों में से माँ बापा ने मेहनत करवाई है,
0: माँ बापा ने
1: उसकी मेहनत करवाई है, उनको पढ़ाई है,
0: शिक्षक मैंने अग्रण दिए, शिक्षक को ज़्यादा प्रायोरिटी दिए,
1: हाँ प्रायोरिटी दिए, कैसे भी पढ़े है लेकिन वो पढ़ के फिर आगे बढ़े हैं।
0: अच्छा कैसे भी पढ़कर आगे बढ़े, सबका ही भावना है।
1: हाँ
0: और एक दूसरे को
1: सहयोग
0: भी देते हैं,
1: सहयोग देते हैं
0: एक दूसरे को, देखा ये इनका घर के लड़का ऑफिसर बना तो उसको देखते हैं गांव वाले, तो उनको एक एग्जाम्पल एक सैंपल उसको देख कर लोग भी सीख जाते हैं, नहीं तो बड़े भी उनको प्रेरणा देते हैं, भाई तुम क्या कर रहे हैं, देखो वो लड़का आज आगे बढ़ा, तो पढ़ा लिखा और उनका माँ बाप का बात सुना, बड़ों का बात सुना, तब जाकर वो आज देखो अपना पैर पे खड़े हैं। तो तुम क्यों वंचित रह जाए, इस तरह सलाह देते होंगे,
1: सलाह देते हैं, अब आप भी पढ़ो आगे बढ़ो।
0: तो इस प्रकार गांव का जो डेयरी में किस किस जाति का लोग रहते हैं, समाज वगैरह पढ़ते हैं?
1: सब ST के सब ग्रासिया लोग हैं, नहीं बिल नहीं है, सब ग्रासिया है।
0: डेयरी जो डेयरी ग्राम पंचायत, डेयरी का ग्राम पंचायत है
1: नहीं गांव है,
0: गांव किस गांव पंचायत में डेयरी आता है?
1: ग्राम पंचायत सुरपगला,
0: सुर पगला। अच्छा, जो
1: ग्राम पंचायत सुर पगला आता है।
0: देरी को जाने के लिए कोई आगंतुक जो जाना चाहेंगे, क्योंकि आपका गांव का विशेषता बताया, जैसे वहां पर सोना का खान है,
1: हाँ
0: तो बहुत चीज मटेरियल वहां पर है, तांबा धातु का जो खान है, तो वहां पर मान लीजिए कोई देखने के लिए बा जानकारियां प्राप्त करने के लिए चाहेंगे, तो आबू रोड से देरी तक जाने के लिए किस रास्ता से जाना पड़ेगा?
1: ये आबू रोड अंबाजी वाला मार्ग पकड़ना पड़ेगा, सियावा, सियावा से सुरपगला,
0: ओके,
1: सुरपगला से आगे बॉर्डर है, सापरी बॉर्डर।
0: छपरे का बॉर्डर आएगा,
1: हाँ, सापरी से बॉर्डर पहले अंदर घुसना पड़ता है,
0: बाएं तरफ
1: बाई बाई तरफ
0: सीधा जाएंगे तो
1: सीधा जाएंगे तो अंबाई जाओगे,
0: गुजरात आ जाएगा,
1: हाँ गुजरात बॉर्डर पे आ
0: आ
1: जाएगा,
0: जाए इधर लेफ्ट में जाएंगे गांव
1: तो सीधा डेरी डेरी
0: में।
1: आएगा, डेरी वाला गांव आएगा, तो उसी रास्ते से 5 किलोमीटर आगे
0: मतलब
1: चलना
0: हाईवे,
1: पड़ेगा,
0: मैंने रोड, मेन रोड से देहरी को 5 किलोमीटर अंदर
1: हाँ जाके फिर माइंस आएगी,
0: माइंस आएगा, ओके
1: तो माइंस से फिर वहाँ एक चौकीदार है, तो उसके पूरी जानकारी उस वो
0: रखेगा, इसके
1: रखेगा,
0: बाद अंदर घुसने देगा नहीं तो नहीं।
1: नहीं उसके बाद
0: इसमें
1: अंदर अंदर कुआ है, पूरा अंडरग्राउंड है, पूरा एक एरिया में पूरा अंडरग्राउंड है, उसके अंदर सब अंदर मशीनें लगी हुई है, तो लैनी से अंदर चिड़िया
0: जाना
1: से
0: पड़ेगा,
1: जाना पड़ता है, अंदर बैटरी बैटरी से वो टॉस करना पड़ता है अंदर उजाला, उसके फिर अंदर देखना पड़ता है, 1 किलोमीटर से होता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं श्रीमान जी को, खासकर डेयरी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ जानकारी लेंगे, और कुछ विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत खुशी लग रहा है, क्योंकि कभी कभी इस तरह जानकारियाँ मिलता है, क्योंकि एक दूरस्थ जगह होने के नाते कम जाना होता है और थोड़ा डिस्टेंस भी है, जिसका चलते आज बहुत खुशी का बात है, क्योंकि इतना दूर से आज आपके पास हमारा आसपास जो गतिविधि हो रहा है, हमारा गांव में क्या हो रहा है और हमारा गांव का इतिहास, हमारा गांव का बच्चों का शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवेश को लेकर आज हम तत्पर रहते हैं, क्योंकि हमारा गांव आदर्श तब बनेगा जब हम आदर्श बनेंगे और खासकर जब शिक्षा को लेकर हम हमारा अभिभावक माता पिता तत्पर रहेंगे तो हमारा गाँव सभी गाँव का साथ टक्कर देकर आगे चलेगा, नहीं तो पीछे ही रह जाएगा। इसलिए सभी लोग चाहते हैं हमारा गांव आदर्श बने, गोकुल गांव बने और सभी भाईचारा में एक दूसरे को सहयोग दें। तो इस कार्यक्रम में हमारे पास जो श्रीमान जी उपस्थित हैं तो उनको स्वागत करते हैं पुनः। और खासकर सर आप बताइए, आपका गाँव का जो इतना विशेषता और एक गॉड गिफ्ट जिसको कहते हैं, क्योंकि प्रकृति का देन है जो खान, ये तो हम लोग नहीं बनाए लेकिन पूर्व जन्म का फल हो चाहे हमारा इतिहास हमको कुछ दिलाने के लिए एक खान जहाँ पर भंडार भरपूर है और उसका बदलाव आज हमारा बुद्धि में भी इतना तेज हुई है, क्योंकि वो पैसा जब काम करते तो पैसा मिलता था, अभी तो भले बंद है लेकिन जब चलता था उसमें बहुत पैसा मिलता था, नौकरी मिलता था काम करने के लिए, जिसका चलते बच्चे आज होशियार है और आगे बढ़ रहे, भले वो खान में नहीं सर्विस कर रहे लेकिन बार बार गवर्नमेंट में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे किसी न किसी रूप में सर्विस दे रहे हैं। जैसे आप क्या करते हैं? आपका गांव के बारे में तो सब पता है लेकिन आपका बचपन से लेकर यहाँ तक आपका स्टडी कैसे रहा, किस तरह पढ़ाई करते थे और आपका मम्मी पापा या माँ बापा आई वो क्या करते हैं वो बात बताइए, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसे?
1: मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब थे।

0: और मैं 5 तक तो डेयरी में पढ़ा हुआ हूँ।
1: डेयरी तो में प्राथमिक विद्यालय
0: हाँ,
1: 5 तक।
0: प्राथमिक विद्यालय। फिर वहाँ से फिर सियावा हॉस्टल, छात्रावास
1: ओ
0: राजकीय,
1: वेरी गुड। सियावा
0: वहाँ मेरा वो एडमिशन करवाया था। टूटे फटे कपड़े थे उस समय, पैसे नहीं थे माँ बापा के पास।
1: लेकिन आपको पढ़ाई क्या चलते है? हॉस्टल में आने के बाद तो जरूरत नहीं सकते,
0: फिर
1: जो तो गवर्नमेंट देगा।
0: हाँ,
1: हाँ
0: गवर्नमेंट देती थी। उसके बाद 8वीं सियावा तक की थी।
1: तो आप जब एडमिशन किया और आपका साथ और कोई थे आपका
0: और
1: गांव के?
0: मेरे
1: अच्छा
0: नहीं, मेरे काका के छोरे थे, अंकल जी के दो लड़के थे, वो भी दो ही लड़के, वो पुलिस में है अभी। तो
1: हॉस्टल का
0: उसके,
1: फायदा
0: हाँ, उसके पीछे मैं था।
1: फिर
0: उसके बाद फिर 8वीं तक मैंने सियावा तक
1: हॉस्टल
0: सियावा
1: में।
0: किया हॉस्टल। उसके बाद मेरा एडमिशन उन्होंने, दोनों पुलिस वाले भाई हैं, उन्होंने मेरा केविली करवाया।
1: वाह, ये वो हॉस्टल में वहां
0: हाँ,
1: से
0: तो
1: नाइन्थ
0: वहाँ
1: नाइन्थ टेंथ
0: नहीं, 12वीं तक,
1: वो 12 तक के। हाँ
0: तो वहाँ तक 12वीं तक मैं पढ़ा था। उसके बाद फिर कॉलेज में पढ़ा था,
1: क्या बात, वैसा नहीं सोचता था लेकिन ये भी काम दिया। ओके अच्छा
0: बीए सेकंड की थी।
1: अच्छा
0: फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी थी, माँ बाप के पास खर्चा नहीं था इतना।
1: ओके
0: फिर बीए सेकंड करके फिर मैंने शादी कर ली थी। फिर मैं ये संविदा भी लगा था महात्मा गांधी में 2008 में।
1: 2008 में महात्मा गांधी का कुछ था, टेम्पररी टेम्पररी बेसिस था।
0: हाँ, 1200 रुपये दे रहे थे तो उसमें लगा था। उसके बाद धीरे धीरे फिर 2013 में भर्ती खुली थी, तो
1: ओके तो
0: उसमें,
1: पंचायत में लगे थे।
0: हाँ, पंचायत में लगा था, ग्राम पंचायत सुरपगला लगा हुआ
1: सुपर
0: था।
1: ग्राम लगा था। अच्छा
0: तो फिर वहाँ से 2013 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, वापिस 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें एलडीसी का पद मेरे को दिया हुआ।
1: वेरी गुड।
0: बस अभी
1: 2018 से फर्स्ट
0: फिर
1: पोस्टिंग
0: फर्स्ट पोस्टिंग मेरे
1: एलडीसी पंचायत
0: को एलडीसी में पंचायत समिति में रखा था,
1: समिति पिंडवाड़ा।
0: पिंडवाड़ा।
1: ओके
0: उसके बाद फिर मेरा 4 महीने वहीं रखा था। उसके बाद असपुरा, ग्राम पंचायत असपुरा और नागपुरा मेरे को दे रखे, अभी
1: जी।
0: वर्तमान में यही दोनों।
1: नागपुरा और अक्षपुरा दोनों संभाल रहे हैं, क्या
0: हाँ
1: बात है। ये आपका सक्सेस स्टोरी जीवन का जो कहानी होता है ना, किस तरह पहुंचे यहाँ तक, और जो आज अपना एक सक्सेस कामयाब तक पहुंचे, इसमें क्या क्या रुकावट आई, क्या समस्या आई, और उसको आप कैसे दृढ़ता से काम किए।
0: रुकावट तो बहुत आई थी,
1: हाँ गरीबी
0: बहुत गरीबी आई थी, पैसे
1: गरीबी का जैसा आप
0: नहीं
1: बताए थे,
0: थे,
1: हॉस्टल का पहले का जीवन आता थोड़ा गरीबी, उसके बाद
0: पैसे
1: हॉस्टल
0: नहीं
1: थोड़ा,
0: थे माँ बाप के पास, पैसे नहीं थे,
1: लेकिन
0: बहुत स्थिति खराब थी।
1: आपका बुद्धि और हिम्मत।
0: हिम्मत, बुद्धि, बुद्धि और हिम्मत, हिम्मत में नहीं आ रहा कभी, आज
1: अच्छा
0: तक हिम्मत नहीं आ रहा, अभी चलता रहता है, हिम्मत नहीं आता, दुखी तो हो जाता हूँ।
1: लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए। एक
0: हाँ
1: कदम हिम्मत, हमारा एक कदम हिम्मत होगा ना तो 1000 कदम खुला
0: हाँ खुला
1: रहेगा। हम हिम्मत ही
0: रहेगा।
1: नहीं करेंगे तो कोई देने वाला आएगा नहीं, लेकिन आपका हिम्मत था और आपका जो चाचा लड़का
0: हाँ,
1: लोग वो
0: उन्होंने
1: लोग भी
0: उन्होंने मेरे को
1: आपको
0: पढ़ाया,
1: पढ़ाए,
0: उन्होंने मेरे शिक्षा दी, और वो दोनों पुलिस में, एक एमएलए साहब के साथ है,
1: क्या बात।
0: एमएलए विधायक समाराम जी हैं, बॉडीगार्ड। हाँ, एक उसके साथ है, एक है पुलिस लाइन में, एसपी साहब के पास
1: तो
0: है।
1: आपका कभी इच्छा नहीं हुआ हम भी पुलिस लाइन में जाते तो
0: नहीं, मैं
1: आपका
0: गया
1: बॉडी तो ऐसे फिट
0: था, मैं एक बार गया था, मेरी हाइट में कट गया
1: अच्छा
0: था, हाइट नहीं है मेरी।
1: हाइट का चलता है, लेकिन आप
0: हाँ,
1: तो बिल्डर जैसे, बॉडी बिल्डर जैसे लग रहे हैं थोड़ा
0: नहीं,
1: स्टाइल का।
0: उस समय सिंपल थी, अभी
1: अभी तो पूरा नौजवान का
0: तो
1: बच्चा अपना आ जाता
0: ज़्यादा।
1: है,
0: हाँ,
1: लेकिन कोई बात नहीं, समय समय के बाद। और किसी दूसरा नौकरी में आपका कभी इच्छा नहीं था, जैसे रेलवे हो चाहे
0: नहीं,
1: पोस्ट।
0: फॉर्म तो भरवाया था रेलवे में, अहमदाबाद में गया हूँ।
1: ओके ट्राई किए बहुत जगह पे,
0: हाँ, तो वहाँ भी कोई नहीं आया, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था।
1: लेकिन अभी जो खुश राजी हैं, जो नौकरी अभी मिल रहा है, जो कर रहे हैं एलडीसी पोस्ट पे, अभी नागपुरा और हौसपुरा में दे रहे हैं, तो जो दिक्कत आई उसका तो भूल गए, अभी आगे के लिए और क्या लक्ष्य रखें, प्रमोशन हो चाहे कुछ लक्ष्य रखें आगे
0: पढ़ने
1: बढ़ने के लिए। हो
0: के लिए रखा था।
1: सकते हैं काम में आएगा, पढ़ाई लिखाई तो करना, जब तक जिंदा है जब तक जीना है तब तक पढ़ाई करना चाहिए। कोई ना कोई शिक्षा लेने से क्या होगा, आगे हमारा प्रमोशन के लिए काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 90.4।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल। स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं। बहुत अच्छा जानकारियाँ मिल रहा है और सक्सेस स्टोरी जीवन का, जो सबका जीवन में उतार चढ़ाव ऊंचा नीचा आता है, इसको कहते हैं जीवन। जैसे ऊपर नीचे होने से क्या होगा, हमको भी एक सीख मिलता है और उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलता है और आगे बढ़ने के लिए उमंग होता है और हमको देख के दूसरे भी आगे बढ़ सकते हैं। देखो वो लड़का कितना मेहनत किया जाकर यहाँ पर
4: पहुँचा,
3: तो हम तो उससे कम है कि ज़्यादा है। ऐसे हमारे पास समस्या आएगा तो उसको हम एक सैंपल सिंपल और सैंपल मानकर आगे बढ़ सकते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद पुनः उनको स्वागत करते हैं। सर जी, आप जैसे बताए आपका सक्सेस स्टोरी और आपका जो मेहनत और आपका जो हिम्मत आज सबको प्रेरणा का स्रोत बने, सबको प्रेरणा मिले, आपसे कुछ सीख लें, ऐसे आप और आपका गाँव में जो यंग लड़का जो युवा रहते हैं, कभी आपको आपका सक्सेस बा इतना कामयाब तक पहुंचने का राज बा प्रेरणा कभी कभी फेस टू फेस बताते हैं, कोई पूछते हैं तो
4: बताता हूँ।
3: पढ़ाई करने के लिए जैसे
4: पढ़ाई करने के लिए आप भी हमारे तरह
3: आपको बताया, जैसे आपका जो शिक्षित वर्ग,
4: हम भी हमारे जैसे कोई गांव में है, समाज के लोग हैं, लड़के पढ़ते हैं यंग, तो उनको हम बताते हैं कि भाई ऐसा करने से ये होता है, तो उनको हम शिक्षा देते हैं कि आप भी हमारी तरह बनो, हमसे आगे बढ़ो, आप हमसे बड़े बनो। ये हर लोगों को हम समाज के लोगों को हम डेयरी में बताते हैं।
3: ऐसे जो आपसे सलाह लेकर आगे बढ़े, एक दो का आपका गांव का जो युवा लोग का नाम बताएंगे जिसको आप प्रेरणा दिए हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे सलाह लेकर आप?
4: जैसे दो तीन जने हैं उनके
3: बताइए।
4: एक तो चेतन सिंह है, धन्नाराम,
3: चेतन सिंह और धन्नाराम। और कौन सा क्लास में और क्या करते हैं अभी?
4: वो तो बीए कर रहे हैं और अभी उनका सिलेक्शन हुआ है पुलिस में।
3: ओके,
4: अब मेहनत कर रहे हैं वो,
3: मेहनत कर रहे
4: हैं दोनों।
3: तो उनका मम्मी पापा शिक्षित हैं?
4: हाँ,
3: पढ़ा लिखा है। और खासकर आपका जो गाँव के इस तरह समाज सेवा में हो, चाहे पढ़ा लिखा में होशियार कोई लड़की भी होगा?
4: लड़कियाँ भी हैं।
3: तो उनका नाम बताइए।
4: सभी
3: उनका माँ बाप परिवार?
4: परिवार अनपढ़ है,
3: अनपढ़। लेकिन ये पढ़ी लिखी है?
4: पढ़ी लिखी है,
3: बीए
4: कर रही है।
3: क्या बात है, इतना दूरस्थ जगह में एक आदिवासी लड़की बीए तक पढ़ रही है, तो उनको प्रेरणा सब लोग देना चाहिए और जो भी मदद चाहिए तो आप लोग देंगे तो उसका गाँव का नाम होगा, ठीक है ना? क्योंकि एक बड़ा ऑफिसर बनेगी तो गांव का नाम होगा कि नहीं
4: होगा?
3: तो चोकरिया, जितना चोकरियाँ हैं बा बेटियाँ हैं, तो
4: चार पाँच ऐसी है जो बीए कर रही है।
3: क्या बात, इतना दूर से आता हूँ
4: पैदल, वो भी सापरी तक तो पैदल ही आना पड़ता है हमको, 10 किलोमीटर।
3: कोई साधन नहीं?
4: साधन नहीं, उसके बाद फिर हाईवे पे आते हैं अंबाजी आबू रोड वाले, तो वहाँ से साधन हमको मिलते हैं और कॉलेज जाते हैं।
3: जैसे आप भी कॉलेज किए, आप जब बी ए किए ना सेकेंड ईयर बोल रहे थे,
4: पैदल पैदल
3: पैदल आते थे।
4: हाँ,
3: और खासकर पढ़ाई लिखाई में इतना होशियार का वजह क्या है? गांव के जो लड़का बा लड़की इतना पढ़ाई लिखाई जो शिक्षा को अपना हथियार बा अस्त्र मानते हैं, शिक्षा ही सब कुछ, ये चीज़ जो सत्ता मन में बा बुद्धि में भरा हुआ है आपका गाँव के, किसका वजह?
4: मैं तो एक दूसरे को देख के फिर वो करते पढ़ाई करते हैं
3: और
4: तो मैं भी इनके तरह बनूँ।
3: अच्छा अच्छा,
4: इनके तो आगे बढ़ूँ ऐसे करके पढ़ाई करते हैं और माँ बाप भी ध्यान देते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े।
3: अच्छा श्रीमान जी, आप बताइए आपका गांव के जो लोग रहते हैं खासकर कितना आबादी होगा और सबका जीवन शैली,
4: तीन
3: दिनचर्या, उसका जो रोजगार कैसे प्राप्त करते, कहाँ से, खेती पर? नाम
4: खेती में हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात वहाँ जाके ये 2 किलोमीटर पड़ता है, अधिकतम लोग वहाँ जाते हैं
3: गुजरात में जाते हैं। गुजरात
4: माई से पड़ी है, माई से।
3: अच्छा,
4: तो माई से में जाते हैं
3: काम करने के लिए जाते हैं।
4: हाँ, सुबह सुबह निकल जाते हैं, ये 8 बजे निकल जाते हैं।
3: खेती बहुत कम होगा,
4: कम बिल्कुल, वहाँ तो पहाड़ी इलाका है।
3: पहाड़ी इलाका, तो चार तरफ क्या पहाड़ी ही पहाड़ी
4: है? सब पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ।
3: तो क्या होता है वहाँ पे?
4: कोई नहीं होता वहाँ। मक्की होती है बरसात के टाइम में,
3: एक फसल
4: होती है,
3: वो भी बारिश होगा तो।
4: नहीं तो कुछ नहीं।
3: क्या खाते हैं
4: और दूसरा कोई नहीं खाते, क्या खाते हैं? मक्की लेके आते हैं और राशन मिलता है वहाँ से, गेहूँ लेके आते हैं।
3: राशन तो पंचायत तरफ से मिलता होगा?
4: हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, वो लेके आते हैं।
3: तो श्रोता मित्र ग्रामवासी सुन रहे थे अब इसके मान जी को, खासकर डेयरी और डेयरी के आसपास और किस तरह वो अंचल है और बच्चों का जो पढ़ाई, मुझे अच्छा लगा क्योंकि सभी पढ़ाई लिखाई में होशियार है और सर्विस भी कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान कंपटीशन जमाना में फिर भी इतना दूरस्थ जगह में जहाँ पर कोई छोटा सा गाँव है, जहाँ पर इतना जो मीडिया का साधन नहीं, एक बार इंटरनेट का कम्युनिकेशन इतना सुविधा नहीं है,
4: नहीं कोई नहीं,
3: इलेक्ट्रिक का भी इतना कम ही होता होगा, फिर भी पढ़ाई को अपना ध्येय अस्त्र मानकर जो किए हैं, जिसका चलते आज शिक्षित हो चुके हैं और बहुत सारा सर्विस होल्डर है, जिसका चलते एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ते, ये भी बहुत अच्छा बात बात है। लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबनी।

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: नमस्ते ऑल को दिरा मुकाबले पुनः मिलने श्रीमान जी, आज हमें बहुत खुशी का बात बता रहे हैं क्योंकि पर्यावरण समाज की सुरक्षा, महिला का उत्थान और आजीविका के लिए किस तरह हमको स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रगल करना हमारा जीवन में आना ही चाहिए, चाहे युवा हो चाहे बड़े बुजुर्ग हो, तो सबको लेकर हमको चलना है। जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण और पोषण को लेकर हम आज बात करें, तो खासकर आपका जैसे वहाँ पे जैसे जीविका निर्वाह बाहर जाते हैं और कभी कभी खेती एक फसल करते हैं, बाकी समय ये काम धंधा नहीं मिलता तो क्या करते हैं लोग?
1: काम धंधा में तो
0: काम मिल जाता है, कभी बैठते नहीं कोई लोग, कभी कभी बैठते हैं, मैंने कुछ रोजगार बिना बढ़ जाते होंगे। अच्छा, पंचायत लेवल से कुछ काम
1: मिला नरेगा तरफ से
0: मिलता है
1: लेवल जाते
0: हैं। और खासकर जैसे त्यौहार का बारे में थोड़ा बताइए, आपका जो समाज का जो त्यौहार जो मनाते हैं, किस त्यौहार में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? जैसे दिवाली
1: सब त्यौहार मनाए जाते हैं। अच्छा,
0: जैसे
1: होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है।
0: लेकिन घर से समाज का जो मेन पर्व किसको मानते हैं?
1: मैन ये तो सब तीनों ही मानते हैं लोग।
0: हाँ, जो कोई शादी करते हैं, शादी में क्या रीति रिवाज है?
1: शादी में तो सब अलग अलग रीति रिवाज है।
0: अलग रीति रिवाज क्या क्या है?
1: नहीं, रीति रिवाज तो अलग नहीं, एक ही है रीति रिवाज तो।
0: जैसे कोई लड़की मान लीजिए पढ़ा लिखा नहीं है और लड़का पढ़ा लिखा है, फिर पैसा देकर लाना पड़ता है कि पैसा लेन देन करना पड़ता है?
1: लेन देन करते हैं।
0: इच्छा से?
1: हाँ, इच्छा से करते हैं लेन देन।
0: अच्छा, आपने खुशी से?
1: खुशी से,
0: कोई जबरदस्त नहीं, इतना नहीं पड़ेगा ऐसे कुछ है
1: नहीं, कोई दबाव डाल देते हैं ऐसा, कोई कई तरह पैसे देने पड़ेंगे
0: ऐसे बोलते भी हैं?
1: नहीं बोलते हैं, फिर वापिस हमारी जाति में पंचायती करते हैं।
0: अच्छा, पंचायत पटल?
1: पंच पटल करते हैं।
0: पटल का बारे में थोड़ा बताए, पटल क्या होता है?
1: पटल एक गाँव का मुखिया होता है,
0: गाँव का मुखिया,
1: वो कहता है वो करता है।
0: पटेल एक होता है ना, पांच होता है, दस दस एक पटेल होता है,
1: एक पूरे गांव में एक ही पटेल होता है।
0: अच्छा,
1: और उनके बिना हमारे गांव में कुछ नहीं करते।
0: कुछ नहीं मतलब क्या क्या करते?
1: जैसे शादी नहीं करते।
0: ओके, उनका परमिशन चाहिए।
1: नियत है।
0: नियत मतलब क्या है?
1: नियत जब मर जाता है, बारवा
0: नियत,
1: जैसे ये होते हैं
0: मौत, तो उसमें भी जो भी
1: उनको बुलाने पड़ता है।
0: और तीसरा
1: बस इसी में
0: एक मौत हो गया दोनों, और एक त्यौहार जिन गाँव में कोई मेला भरता है।
1: हाँ, मेला भरता है तो उनको पहले पटेल साहब को पूछना पड़ता है।
0: ओके,
1: भाई हमारे गांव में ये कर रहे हैं।
0: अच्छा, ये चीज़ पूरा पटेल का अनुमति से ही
1: आगे चलता है।
0: पटेल का अनुमति से होने से फायदा होता है ना नुकसान होता है?
1: फायदा
0: भी, कभी कभी नुकसान भी होता है।
1: नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है,
0: क्योंकि पटेल साहब का मन पर डिपेंड करता है। हाँ, उसका बुद्धि जैसे वैसे निर्णय देगा।
1: हाँ,
0: क्योंकि उसका बुद्धि पर निर्भर करता है ना, वो मान के थर्ड क्लास का होगा तो थर्ड क्लास देगा, फर्स्ट क्लास होगा तो फर्स्ट क्लास देगा। पटेल हो गया मतलब जैसे सरपंच हो गया, मैंने सरपंच का
1: सरपंच
0: व्यवस्थित और पढ़ा लिखा जानकारी होगा तो अच्छा बताएगा, नहीं तो अच्छा डेवलपमेंट काम नहीं हो पाएगा। तो पटेल साहब का भी
1: ऐसा ही है,
0: व्यक्तित्व पर
1: निर्भर करता है,
0: नहीं तो पूरा फंसेगा गांव वाले, नहीं तो शादी हो जाए मौत, तो डेस्टिन खराब आएगा ना।
1: हाँ,
0: इस तरह कभी कभी खराब देखने को मिलता है।
1: नहीं, कभी कभी मिलता भी तो है,
0: जिसमें नुकसान
1: गलत निर्णय कर देता है तो गलत ही होता है ना,
0: फिर बाद में उसको कुछ
1: फिर बाद में तो क्या होता है, वापिस पंचायती करते हैं ये,
0: फिर दोबारा टाइम टेकिंग पैसा खर्चा,
1: हाँ फिर वो फालतू खर्चा बढ़ जाता है।
0: ओके,
1: ये होता है।
0: पटेल का सिलेक्शन कैसे होता है?
1: गांव वाले, गांव पूरे गांव इकट्ठा होता है, आदमी है महिला सब बाल बच्चे सब इकट्ठा करते हैं, पहले लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर हमारे सुनते हैं कि ये आदमी गांव का मुखिया सही है।
0: ऐसे कॉम्पिटिशन से इलेक्शन में होता है? जैसे
1: ऐसा नहीं
0: होता है।
1: नहीं,
0: जैसे बोला वो क्यों होगा, उनका भाई को दो ऐसे नहीं होगा?
1: नहीं,
0: एक आदमी का नाम आएगा।
1: हाँ,
0: दो नाम नहीं आएगा?
1: नहीं, दो नाम नहीं आते।
0: ओ, तब तो फंस जाते हैं।
1: हाँ, जिसका व्यवहार होता है
0: उसमें क्वालिटी मिलेगा नहीं ना।
1: नहीं,
0: क्वालिटी मीन्स पक्का आदमी नहीं मिलेगा।
1: नहीं,
0: उसका बेटा, उसका खानदान होता है क्या? उसका पिताजी का लड़का ही पिताजी का?
1: हाँ, इसे बढ़ता रहता है खानदानी
0: का। ओ,
1: ये लफड़ा ज्यादा है।
0: ये पटल का बेटा पटल होगा, फिर पटल का बेटा का बेटा
1: बेटा होगा,
0: इसलिए दिक्कत है। लेकिन अभी 21वीं शताब्दी सब होशियार हो चुके, पढ़े लिखे होंगे, ये जो रीति रिवाज मान्यता को अभी तक क्यों फॉलो कर रहे हैं?
1: ये तो पुराने ये आदमी है, पुराने रीति रिवाज चलाते हैं लोग। अब तो पढ़े लिखे युवा है सब, ये तो बंद करना चाहते हैं।
0: क्योंकि ये तो अन्याय है ना,
1: अन्याय।
0: जैसे बाल्य विवाह था, सत्यदाह प्रथा था, ये सब क्या जिसका था? उस समय के लिए ठीक था,
1: ठीक था,
0: वर्तमान समय के लिए वो काम नहीं करेगा ना। अभी कोई सत्यदाह प्रथा करेगा, उसका स्वामी शरीर छोड़ेगा मौत में, उसका बीबी को डालेंगे तो कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगी सत्यदाह प्रथा में।
1: नहीं, अब तो बहुत परिवर्तन हो गया है।
0: अच्छा, बाल विवाह तो बंद हो चुका है, पटल का जो अभी जो रीति
1: अभी ये चल रहा है,
0: ये भी तक
1: लगभग बंद हो जाएगा ये भी,
0: क्योंकि उसका बेटा दारू पिया होगा और उसको पटल हम बनाएंगे तो वो दारू वाला भी सपोर्ट करेगा। करेगा कि नहीं
1: करेगा? करेगा।
0: जहाँ भट्टी खोलेगा तो मद भट्टी जो होता है ना, दारू भट्टी, तो वो दारू पीता तो अपना डेस्ट उसका तरफ देगा कि नहीं? क्योंकि नहीं, तो दारू बंद हो जाएगा। तो ये चीज नहीं होना चाहिए ना?
1: नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अपने आदमी सही आदमी चुनना चाहिए।
0: हाँ, ये बात मेरा कहने मतलब
1: सही आदमी चुनना चाहिए।
0: बदल चुका है,
1: समय बदल चुका, सही आदमी को चुनना चाहिए, उसके बाद उसको पटल बनाना चाहिए।
0: जी जी, तो ये सिर्फ डेरी का बा सुरपगला का बात नहीं, जो भी हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासी सुन रहे, इस तरह कभी कभी जो रीति रिवाज जो पटल का जो खानदानी चल रहा है, इसमें हम लोग का नुकसान कभी होता है तो कभी फायदा भी होता है। तो अभी समय को देखते हुए, सम्मान देते हुए, हम अपना हक अधिकार को और एक न्याय पाने के लिए जो युक्तियुक्त जो जेन्युइन चीज होना चाहिए, तो सबका कल्याण उसमें समाया हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारा कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए और अचानक आए, कोई प्रिपरेशन नहीं, अचानक अगर मिले तो डेरी का इतिहास और डेरी का रीति रिवाज संस्कृति का साथ साथ तो जो बच्चों का पढ़ाई में इतना उमंग जो लेते हैं, बढ़ चढ़ कर शिक्षा प्रति ध्यान देते, ये सबके लिए प्रेरणा का मार्ग बनेगा और हमें खुशी है इस तरह कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। और क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? कैसे लगा आपको?
1: बस बहुत बढ़िया लगा।
0: शुरू में तो आप डर रहे थे, क्या बोलू क्या नहीं,
1: कभी बोला नहीं, बोला नहीं है कभी।
0: अभी कैसा लगा?
1: नहीं, अब तो ठीक लगा।
0: तो कभी सोचा नहीं होगा हम भी रेडियो में कभी बोलेंगे, लेकिन आज मौका मिला और मौका को फायदा लिए। तो जाते जाते सभी की तरफ से आपको धन्यवाद। आप सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: क्वालिटी ऑफ हेल्थ। जब हम हेल्थ के बारे में कहते हैं तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स जिस पर हमको ध्यान देना होगा। नंबर वन इज एक्सरसाइज, और ये बहुत बहुत जरूरी है कि हर दिन हम सुबह उठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। आप कहेंगे सर वेयर इज द टाइम टू डू एक्सरसाइज। इसे एक बार भगवान से इंटरव्यू लिया गया और भगवान से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया, आपको मनुष्यों को देखकर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या लगता है? और मालूम है भगवान का जवाब क्या था? God's beautiful answer was, the thing that surprises me the most about these human beings, they invest their complete health to gain wealth. And after many, many years, they have to reinvest their complete wealth to regain health. कहा जाता है, जान है तो जहान है। और बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा समय अपने लिए निकालें to do some exercise. अच्छा, अब एक्सरसाइज तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च कहता है कि एक्सरसाइज करते समय आप किस मानसिक अवस्था से आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अब लोग सुबह उठकर जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन अगर कोई गुस्से से वॉकिंग कर रहा है तो इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हो अगर आप बहुत खुशी से करते हो तो उसका जो इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत रिमार्केबल होता है। इसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कुछ एक एक्सरसाइज को डिवाइस किए गए विच आर कॉल्ड एज साइको फिजिकल डायनेमिक एक्सरसाइजेस। साइकी मीन्स माइंड और फिजिकल मीन्स शरीर, और इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। तो कुछ एक एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा विच इज बीन डिवाइस्ड बाय डॉक्टर गिरीश पटेल, अ वेरी फेमस साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम बोरीवली बॉम्बे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे। तो सभी स्ट्रेट होकर, अलर्ट होकर बैठे, रेडी ऑल ऑफ यू। अच्छा अच्छा, सबसे पहले आपको ये बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ करना है। अच्छा, कैसे करना है? जब मैं कहूंगा वन, तो आप जोरदार ताली बजाना और महसूस करना कि आप उस सुप्रीम सर्जन जो ईश्वर है उनको टच कर रहे हो। और जब मैं कहूंगा टू, तो महसूस करना है कि उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस उतर उतर कर आप तक पहुंच रहे हैं। करेंगे सभी? हाँ, चलिए। ओके, हियर वी गो। वन टू, खुशी से करना, आपके चेहरे में मुस्कुराहट भी होनी चाहिए, ठीक है? ओके, एक और बार करेंगे। वन टू कर। अच्छा, जैसे आप उस सुप्रीम सर्जन को टच करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे जो शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं डिजीजेस होने का कारण क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, राइट? और जैसे ये टॉक्सिन्स शरीर से फ्लश आउट हो जाती है, वी बिकम डिजीज फ्री। लेकिन आजकल देखा गया है शरीर से ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे मन में होते हैं, स्ट्रेस, फियर, टेंशन, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। ऐसे एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज मुझे अच्छा लगता है, और वो है जब मैं कहूंगा वन, तो आप महसूस करना कि अगर आपके शरीर में और मन में अगर टॉक्सिन्स है तो जब मैं कहूंगा वन, तो आप इस तरीके से उसको झटक दो, और जब मैं कहूंगा टू, तो उसको थोड़ा धक्का मार के बाहर फेंक, ठीक है? बहुत खुशी से, बहुत आनंद से करना। चलो वन टू, थोड़ा धक्का मार दो। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और बार वन, हाँ टू, करो करो करो। या फ्रेंड्स, ये जो रोड में जो गाड़ियां चलती है उसमें हम पेट्रोल यूज करते हैं, और जो एरोप्लेन जो हवा में चलती है उसमें भी हम फ्यूल यूज करते हैं। अच्छा बताइए फ्रेंड्स, ये दोनों क्वालिटी ऑफ फ्यूल कौन सा अच्छा होगा इफ यू कंपेयर बोथ? राइट आंसर, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस, यस, द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। उसी तरह द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स डाउन टू हेल्थ इज हम अपने शरीर में किस प्रकार का फ्यूल डाल रहे हैं, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ आवर डाइट। अब प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार का भोजन स्वीकार करें। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है दिस ह्यूमन सिस्टम इज मेंट फॉर प्योर वेजिटेरियन फूड, दिस ह्यूमन सिस्टम इज नॉट मेंट फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। अब नॉन वेजिटेरियन फूड से क्या प्रॉब्लम्स है उसके तो हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो हमारा क्वालिटी ऑफ डाइट क्या होना चाहिए? प्योर वेजिटेरियन फूड के साथ साथ जरूर भोजन के पहले जरूर सलाड को लीजिए। ओके, ईट लॉट ऑफ स्प्राउट्स, फ्रूट्स, जूसेस। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है बहुत शक्तिशाली बन जाती है। साथ साथ में एक और बात पे ध्यान खिंचवाना चाहता हूँ। कहा जाता है जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाता है। इसे मैं आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप भोजन बना रहे हैं तो बहुत खुशी और आनंद से भोजन बनाइए। अगर आपने बहुत गुस्से से भोजन बनाया, यही हमारा जीवन है क्या, जिंदगी भर हम भोजन बनाते रहें? अगर इस एटीट्यूड से भोजन बनाया तो जो भी आपका हाथ का बनाया भोजन खाएंगे तो उनके भी विचार जो होंगे वो डामाडोल हो जाएंगे। राइट। भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि बहनें ही भोजन बना सकते हैं, आप भी तो थोड़ा हेल्प कर सकते हो ना, तो एक बार ट्राई करके देखना, है ना। जब बहन भोजन बना रहे हैं तो बहुत किचन में जाना, बहुत प्रेम से एक दो टमाटो कट करके देखना और बहन के चेहरे को देखना, उनका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल जाएगा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इमोशंस, ओके। यू नीड टू हेल्प एवरीवन। जैसे मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया है कि जब भी मेरे फैमिली मेंबर्स इफ दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू कुक फूड, मैं कहता हूं मैं आज के दिन भोजन बनाता हूं। एंड टेक कुकिंग एज योर हॉबी। जैसे आज भी आप देखो मंदिर में जाते हो, आपको प्रसाद मिलता है ना, भले थोड़ा सा प्रसाद क्यों ना हो, लेकिन उसका महत्व बहुत होता है क्योंकि वो ईश्वर की याद में वो भोजन बनाया गया है। ऐसे जब आप भोजन बनाते हो तो ईश्वर के अच्छे अच्छे गीत लगाइए, और उनके याद में अगर आप भोजन बनाते हो तो बहुत शक्तिशाली, बहुत

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ गार्डन, जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? एंजॉय द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मींस खुशबू, करेक्ट। अगर हमें जीवन को सचमुच एंजॉय करना है तो एक काम कर सकते हैं, गो वेरी क्लोज टू नेचर, प्रकृति के नजदीक आइए। प्रकृति के जितने नजदीक होते हैं तो उतना फील कर सकते हैं कि हमारा जीवन कितना वंडरफुल है और उसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो आप ऐसा डिसाइड करना कि साल में एटलीस्ट 10-15 दिन आप अपने बिजी लाइफ को निकाल कर गो वेरी क्लोज टू नेचर, गो टू वेरी क्लोज टू माउंटेन्स, गो टू रिवर्स, है ना, नेचुरल फ्लोरा और फौना की तरफ जाइए। लिसन टू द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, जहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, और वहां जाकर अकेले में आप बैठिए एंड स्लोली इंट्रोस्पेक्ट, और वहां के साइलेंस को आप अनुभव करेंगे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, यू विल रियली एंजॉय इट, करेक्ट। अच्छा, नेचर का दो अर्थ होता है, एक होता है नेचर का अर्थ प्रकृति, उसी तरह दूसरा होता है नेचर मींस नेचर ऑफ पीपल। हमें यह समझना है कि जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गुलदस्ता की भी रौनक कब होती है? जब उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। उसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे जिनके अलग अलग नेचर होते हैं। कैन यू एक्सेप्ट देयर नेचर? और अगर आप उनको एंजॉय कर सकते हो, बिलीव मी, लाइफ वुड बिकम रियली वंडरफुल, रियली।
2: महिला स्वयं में है शक्ति, और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: ऐसी ही क्लासिक मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड क्लासिक और बेल आइकन को प्रेस करें।

झाड़ू लगाओ और भरू मैं पानी। पर जब पढ़ने बैठूं मैं कोई कविता कोई कहानी आगे पीछे रो

नाम का नाम कमाऊंगी मैं और दाम के दाम, और दाम के दाम। चढ़े जो बुखार तो लगाऊं, पेनिसिलिन लगे चोट तो लगाऊं, मैं टीटरोइडिन तू एनेसिम्पिनान और अरुमेसिन और किसी को तो ए बी सी विटामिन। सब कुछ करूंगी लेकिन करना पाऊंगी एक काम,

कोई ऑटोग्राफ मांगे, कोई फोटोग्राफ चाहे, कोई पता मेरा पूछे, कोई पीछे पीछे आए। रुक जाए चलते राही, मैं जिधर से आऊं जाऊं, लेकिन लेकिन क्या

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ स्नेह होता है। एक बार माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, और बेटा जो होता है वो मम्मी के पास आता और कहता, मामा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना। मम्मी कहती, व्हाट? लाइक यस। तो मामा को बिल देता है तो मामा उसको देखती है, मालूम बेटा क्या लिखता है? मामा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप 9 रुपीज बिल। मामा आपने बकेट ऑफ पानी को यहाँ से यहाँ उठा के रखने के लिए कहा अनदर 5 रुपीज। मामा आपने छोटी बहन को संभालने के लिए कहा वेरी टेरिफिक जॉब 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि यू आर माई डियर लविंग मम्मी 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट 60 रुपीज बिल। तो मामा ये बिल को देखती है, मुस्कुराती है अपने क्यूट बॉय को देख कर। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, माँ लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे तो रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से ट्यूशन क्लासेस से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट भोजन डिनर बनाकर देती थी, नो चार्ज। और मम्मी नीचे लिखते 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को देखता है, अपनी मम्मी को देखता और कहता है, मामा आई एम वेरी सॉरी, और अपना बिल लेता है, उसको कट करता है और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखता है, मामा पेड इन फुल, मामा पेड इन फुल बट इनडेब्टेड फॉर एवर, जीवन भर में आपका

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें, जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा न करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट्स का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका आलमगीर। सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और सबको प्यार से झुमाते रहिए।

0: 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी, और जिंदगी से प्यार हो तो भाई शायरियां बाहर आती हैं, क्रिएटिविटी बाहर आती है और बहुत सुंदर मोमेंट्स लाइफ के हम क्रिएट कर पाते हैं। वो गाना है ना लव यू जिंदगी का, मुझे कुछ लिरिक्स उसके बड़े ही अच्छे लगते हैं। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय बाय। इतना आसान होता अगर हाय कहना जो अच्छा लगे और बाय कहना जो बुरा लगे, कितना अच्छा होता ना दोस्तों। चलिए इसे और अच्छा बनाते हैं और लाइफ में शामिल करते हैं, क्योंकि ये बात है एकदम प्रैक्टिकल। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट्स यानी कि कल्पना जी ग्लोबल अस्पताल से, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरुषि जी।
0: और हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनिधि जी भी, जो कि रेडियो मधुबन के जाने माने आरजे भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि जी, कल्पना जी, बहुत अच्छा लग रहा है वापस लव यू जिंदगी कार्यक्रम में आप दोनों से मिलके।
0: जी, और पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे थॉट्स को रेगुलेट करने के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई थी कि किस तरीके से अपने आप को व्यक्त करना बहुत जरूरी है, थॉट्स रेगुलेशन कैसे बेनिफिशियल है हमारे लिए, वो भी हमने समझा था। एक सवाल जरूर आता है, क्योंकि जब बात आती है ना कि क्या हम सच में थॉट्स रेगुलेट कर सकते हैं, तो कई बार जब लोगों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप होते हैं, अलग हो जाते हैं रास्ते, लेकिन वो थॉट पीछा ही नहीं छोड़ता या वो व्यक्ति बार बार याद आता रहता है, तो ऐसे में अगर कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जो थॉट्स रेगुलेट कर पाए और वापस वहीं ना जाए बार बार, तो बड़ा फायदेमंद होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? श्रीनिधि जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में?
2: मैं समझता हूँ ये बहुत ही एप्ट विषय है, एक ऐसा विषय है जिस पर अनेक फिल्में बन चुकी हैं।
0: बिल्कुल।
2: पिछले रोज कोई मेरे को ये बात सुना रहा था कि भाई एक फिल्म में यही घटना होती है कि लड़का और लड़की दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, और जिनके साथ उनका ब्रेकअप हुआ होता है वो लोग आपस में शादी कर रहे होते, तो इनको लगता है कि भाई हम इनको भूल नहीं पा रहे और ये शादी करने के लिए ऑलरेडी मूव ऑन कर गए। तो ये अक्सर देखने को मिलता है कि जो लोग अपने जीवन की धारा या अपने विचारों को बदल कर आगे बढ़ चुके हैं, उनके आगे बढ़े हुए चीज पर भी कई लोगों को तकलीफ हो सकती है कि इतने जल्दी आगे कैसे बढ़ गए, मूव ऑन कैसे कर। और वो शायद इसलिए तकलीफ में है क्योंकि उनसे वो खुद चीज नहीं हो पा रही है, वो खुद मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग अंग्रेजी में ये जो शब्द इस्तेमाल करते हैं मूव ऑन कर देना, यानी आगे बढ़ जाना, यानी इसका मतलब ये नहीं कि वो मूव ऑन कर जाने से आपका ही भला होने वाला है। अगर आप इस मूव ऑन को पीछे कर दे तो मूव बैक हो जाएगा, यानी पीछे। कोई भी व्यक्ति जीवन में पीछे नहीं जाना चाहता, जीवन में हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, और इसलिए भी संबंधों में भी, रिलेशनशिप्स में भी मूव ऑन करना जरूरी है। आपने रिलेशनशिप्स की बात कही, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में है, वो बात समझ में आती। कई बार दोस्तों के साथ भी ऐसा होता है, आप अच्छे दोस्त हैं मगर एक लेवल पर आकर आपको लगता है कि ये बहुत ही टैक्सिंग हो रहा है, या आपको लगता है कि नहीं अब हमें दोस्त बदलने की जरूरत है, या ऐसा लगता है कि भाई इसके लिए तो हमेशा मेरे को ही करते रहना पड़ता है और मुझे इन रिटर्न जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलता है। तो ऐसे समय पर लोग दोस्तों से भी मूव ऑन कर जाते हैं, दे चूज न्यू फ्रेंड्स। नए लाइफ में आप गए हैं, जीवन में आगे बढ़े हैं, या आपकी नौकरी चेंज हो गई है, या आपका कोर्स बदल गया है, अब आप कॉलेज से आगे की लाइफ में आ चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए, आपके नए दोस्त मिल गए हैं। अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि जो ग्रेजुएशन का मेरा दोस्त था, ग्रेजुएशन के दौरान वो मेरे से जितना टाइम स्पेंड कर रहा था, अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन में, हालांकि वो डिफरेंट कोर्स कर रहा है और मैं डिफरेंट कोर्स कर रहा हूँ, दोनों की अलग अलग दिशाएं हैं, दो अलग अलग चीजें हम पढ़ रहे हैं, अब भी हम एक दूसरे के साथ उतना ही टाइम स्पेंड करें शायद ये संभव नहीं है।

0: ये जानना जरूरी है कि जीवन के सफर में हर एक के स्टेशन अलग अलग हैं। हम में से कई लोग पूरे सफर साथ चलें ये उम्मीद पाल कर बैठे तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो। और ये भी जानना जरूरी है कि हम सभी हम सफर हैं और हम जब तक एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, एक दूसरे के इस सफर में हैं, तब तक हम स्वीट मेमोरीज क्रिएट करें, सफर को अच्छा बनाने की कोशिश करें, एक दूसरे के लिए ये सफर सुहावना हो, सहूलियत भरा हो, इसकी कोशिश हम कर सकते हैं। कब इस ट्रेन की गाड़ी में किसका स्टॉप आएगा और कहाँ किसको उतरना होगा नहीं पता है,
1: नहीं पता।
0: और किसी ने दार्शनिक विचारधारा रखते हुए बात कही है कि स्टेशन आना और गाड़ी से उतर जाना इसका मतलब मौत ही नहीं है, वो व्यक्ति मर गया या उस व्यक्ति का देहांत हो गया ही नहीं है। कभी कभार व्यक्ति उस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर जाते हैं या किसी भी कारणवश हो सकता है, क्या शायद वो फिजिकल डिस्टेंसेस की वजह से हो सकता है। इसलिए बहुत बार लोग कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है लोगों के लिए, क्योंकि उस तरीके का इंटरेक्शन नहीं है। और इसकी वजह से अगर व्यक्ति किसी और व्यक्ति को चुन लेता है तो ये नहीं सोचना है कि इसमें आपकी गलती है, मगर साथ साथ ये भी सोचना है कि हम पॉजिटिवली हमें भी मूव ऑन करने की जरूरत है, क्योंकि हम सभी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो बार बार ये जो थॉट्स आते हैं कि हाँ मतलब वो मेरे को छोड़ के क्यों चले गए, मेरे में ही कमी थी, पता नहीं वो क्या चाहते थे मेरे से, मैंने इतना दिया फिर भी उनको, ये क्वेश्चंस नहीं पूछना है। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके मन में और मैं समझता हूँ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हम बीती हुई बातों पे चिंतन नहीं करना है। कहा जाता है कि बीती को चितो नहीं, यानी बीती की चिंता नहीं करनी। और बीती हुई बातों की अगर हम चिंता करते हैं तो हिंदी में और संस्कृत में ये बात कही जाती है, चिंता चितयोर मध्ये बिंदु मात्रेण अंतरम, यानी चिंता और चिता के बीच में एक बिंदु मात्र का अंतर है। अगर आप चिता शब्द लिखते हैं और उसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं तो चिंता बन जाती है, तो दोनों एक समान है, सिर्फ इतना ही अंतर रहता है। तो इसलिए बीती हुई बातों की चिंता नहीं करनी है और जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और आगे के लिए हम ये सोच सकते हैं कि कोई बात नहीं, लाइफ की जर्नी है, उनकी भी आगे की यात्रा अच्छी हो, मेरी भी अच्छी हो, उन्होंने इतना समय मेरा साथ दिया, इतना समय उन्होंने मुझे स्नेह दिया, प्यार दिया, कंपेनियनशिप दी, सपोर्ट दिया, मेरे लिए उनके दिल में हमेशा ही अच्छी भावनाएं हैं, मैं हमेशा उनके लिए गुड विशेस और अच्छी चीजें ही भेजूंगा भेजूंगी। और मैं अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए भी आगे की ओर मैं कुछ नया करने के लिए, कुछ नई चीजों को आने के लिए अपने द्वार खुला।
1: ओके कल्पना जी, आपसे भी ये पूछना चाहूंगी, पास्ट में अगर अटक गए हैं, सेम थॉट्स पैटर्न रिपीट हुए जा रहे हैं, पता है कि हो रहा है लेकिन फिर भी उससे हम अपने आप को निकाल नहीं पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो क्या कुछ तरीके हैं जो हम लाइफ में अपना सकते हैं?
2: श्री जी की बातें सुनते हुए मुझे दो गाने याद आ गए जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो
1: किसने जाना
2: जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते,
1: फिर नहीं आते।
2: तो जब उनकी बातें मैं सुन रही थी, मैं सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रही थी अपनी ही लाइफ के ऊपर, और कई सारी बातें मुझे रियलाइज हो रही थी उनकी बातों को सुनते हुए कि लोग हमारे लाइफ में आते हैं। और जब मैं अपने जीवन की तरफ देखती हूँ तो जन्म के साथ जो मेरा सफर शुरू हुआ, तो किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है, एकला चालो रे, शायद रविंद्रनाथ टैगोर की ये बात है। ये हमारा सफर अकेले का सफर है जो जन्म के साथ हमने शुरू किया। जन्म होने के बाद हमारे माता पिता उस सफर में वैसे ही जुड़ गए जैसे कि बिल्कुल शुरू के फर्स्ट लाइन में रनिंग करते समय हमारे साथ बहुत सारे साथी होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे भाई बहन मेरे सफर में जुड़ते गए, मेरा सफर आगे बढ़ा, मैं स्कूल गया तो वहां पर मुझे दोस्त और टीचर मेरे सफर में जुड़ गए, थोड़ी दूर उन्होंने भी साथ दिया, उनके भी साथ को मैंने इंजॉय किया। मेरे पीछे के भाई बहन माता पिता थोड़ा सा पीछे रह गए और मैं आगे अपने दोस्तों के साथ निकल गया। आगे चल के मेरे जीवन में एक लाइफ पार्टनर आया, उस लाइफ पार्टनर के साथ मेरा जीवन शुरू हो गया, परंतु केवल लाइफ पार्टनर ही नहीं मेरे सफर के साथ ही थे, उसके साथ बहुत सारे रिश्ते और जुड़ गए और उन्होंने साथ चलना शुरू किया। धीरे धीरे देखा कि पीछे के रिश्ते धीरे धीरे छूटते गए, आगे के रिश्ते आगे बढ़ते गए, कुछ लोग साथ रहे, कुछ ने साथ छोड़ा। और जीवन का यही सच्चाई है कि हमारे सफर में हम अकेले आगे बढ़ते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं। एक बहुत सुंदर पुरानी कविता है, जो लमाण जाति के लोग होते हैं ना, लमाण जाति के लोग, वो लमाण जाति के लोग किसी एक जगह पर रुकते नहीं है ज्यादा लंबा समय तक। वो अपना सामान अपने जानवरों के पीठ पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह पर सफर करते रहते हैं। हमारे जीवन का भी सफर ऐसा ही है, बहुत सारे लोग जुड़ते रहते हैं, छोड़ भी जाते हैं। अब इसमें ब्रेकअप की जहां तक बात है, वो व्यक्ति मेरे साथ कुछ समय रहा और कुदरतन उसका समय आया साथ छोड़ने का। वैसे ही मेरा कोई रिलेटिव, नजदीकी रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, बेटा, उनकी अचानक डेथ भी हो सकती है। वो दुख भी ब्रेकअप से कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि एक व्यक्ति आपको हमेशा के लिए छोड़कर गया। ब्रेकअप के बाद तो हमें पता होता है कि वो व्यक्ति जिससे हमने प्यार किया वो कहीं है और खुश है, इस बात की हमें खुशी होती है। लेकिन जो व्यक्ति हमें हमेशा के लिए छोड़कर जाता है, उसके दुख को भी ओवरकम करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्त हमारे छोड़कर चले जाते हैं तो वो भी ट्रॉमा हमारी लाइफ में हम आगे लेके चलते हैं। तो क्या ऐसे समय पर हम मूव ऑन, जो कहा श्री जी ने, वो एक फंडा अपने साथ, यादें लेकर हम आगे बढ़े, ना कि ये सोचे कि वो व्यक्ति ही मेरे साथ हो सकता है, उस व्यक्ति के साथ बुनी हुई यादें लेकर मैं आगे बढ़ूं, शिक्षाएं मैं लेकर आगे बढ़ूं, सफर तो मेरे अकेले का ही है जो मुझे अकेले ही तय करना है।
1: लेकिन हम उन्हें मिस भी कर रहे होते हैं सफर में, उनके साथ जो हम, अब मान लीजिए सिंपल चीजें हैं, आइसक्रीम खाने गए तो फिर अकेले गए तो फिर वो व्यक्ति याद आ जाता है, या फिर कोई और मोमेंट्स में हम अकेला खुद को फील करते हैं, किसी ने हमारी केयर करी होती है, बहुत ध्यान रखा होता है तो वो याद आ जाता है, या उसने कुछ चीजें गिफ्ट की होती
2: है। जी, मुझे आपको सुनते हुए ऐसे लग रहा है मैं बच्चों को सुन रही हूँ। नहीं, आइसक्रीम खाते समय मुझे याद आता है। बिल्कुल बिल्कुल याद आता है, जिनके साथ हमने समय बिताया क्यों हम उनको भूले, उन्हें भूलना नहीं है। यही मैंने कहा कि उनके साथ बुनी हुई अच्छी अच्छी यादें हम अपने साथ लेके जाए, तो हमारी यादों में तो वो है ना, उन्हें भुलाया तो नहीं जा सकता है, बट अच्छी अच्छी यादें हमें जो एंटरटेन करेगी। ये पॉसिबल तो नहीं है, समझो कि किसी माँ का एक बेटा अमेरिका में है, उनका प्यार कम नहीं होता है, वो हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं लेकिन साथ नहीं है, फोन से या किसी और तरीके से वो कनेक्ट करते हैं। कोरोना में कई बार हमें मिलने को नहीं मिला कई लोगों से, बट उनकी दूरियां हमने महसूस नहीं की, वो हमारे पास थे, दूसरे कमरे में थे, 15-15 दिन हम नहीं मिले।
1: बिल्कुल ऐसा हुआ है।
2: सो ये हमें अपने आप को सिखाना होगा कि सफर तो मेरा अकेले का है, साथ में बहुत खूबसूरत यादें हैं और उन यादों के सहारे मुझे आगे बढ़ना है।
1: तो यादों के सहारे आगे बढ़ना है, और मूव ऑन का भी हमने कॉन्सेप्ट समझा, जो हम बहुत आम भाषा में यूज करते हैं, जैसे दोस्त कहते हैं लेट्स मूव ऑन यार, अब तुम बहुत हो गया, मूव ऑन करो, या फिर इस जनरेशन में कई बार मानते हैं मूव ऑन इतनी बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं आराम से, लाइफ बहुत बड़ी है, उसे एंजॉय करना है तो मूव ऑन करना ही होगा। लेकिन जब हम थॉट्स रेगुलेशन के टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक सवाल आता है, मैंने किसी को कहते हुए एक्चुअली सुना था कि जब मैं, मतलब वो व्यक्ति शायद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुना रहे थे, और वो 11th class या 12th class में होंगे, और उन्होंने बोला कि मैं अपनी चीजों में, हर चीज में रेगुलेशन पसंद नहीं करता, बिकॉज इट ब्लॉक्स माय क्रिएटिविटी। अगर मैं उसको रैंडम जाने नहीं दूंगा थॉट्स को, या फिर लोगों को, या रैंडम एक्सपीरियंसेस नहीं करूंगा, तो मेरी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाएगी, मेरी लाइफ कोई जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
0: जब कल्पना जी बात कह रहे थे तो मुझे ये लाइन याद आई कि दूरियों का मतलब फासले नहीं हुआ करते, मगर ये एक सिंपल सी लाइन में कितनी खूबसूरत सी बात कह दी गई है कि सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस होने की वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि ये फासले हैं या हम बहुत जुदा जुदा हैं, इसका मतलब ये नहीं। और इसीलिए जब आप मूव ऑन कर भी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, इसका मतलब आप किसी से दूर जा रहे हैं या फिर आप उनको भूल जाना चाहते हैं। इसके लिए एक बहुत सुंदर शेर की लाइन याद आती है कि याद रखना ही सब कुछ नहीं है मोहब्बत में, भूल जाना भी बड़ी बात। यानी हम लोग ये सोचते हैं कि हम यही सोचते आए हैं कि मोहब्बत का मतलब ये है कि हम हमेशा उनको याद रखें, हमेशा उनकी यादें हमें सतानी चाहिए, और हो सकता है बॉलीवुड में ऐसे गाने बने हुए हैं, तुझे याद न मेरी आए किसी से अब क्या कहना, अब ऐसे गाने सुनकर आपको लग रहा होगा कि हाँ हाँ ये तो एक्चुअल मोहब्बत तो ये है, मगर कवियों ने बहुत सुंदर तरीके से न सिर्फ ठीक है फिल्मों के हिसाब से गाने बनाए गए, क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से कवियों को बोला गया था कि ऐसे गाने बनाओ, तो जावेद अख्तर साहब जैसे लोगों ने ऐसे गीत लिख दिए, मगर उन्होंने मार्मिक गीत भी लिखे हैं तो तार्किक गीत भी लिखे हैं, उन्होंने हमें समझानी देने वाले गीत भी लिखे हैं कि हम सही तरीके से अपने लाइफ को लीड कर सकें, उसके लिए भी हमें पॉजिटिव इंस्पिरेशन उन्होंने दिए हैं। और ये शेर व शायर यही काम करती है जहां पर हमको पता चलता है कि मोहब्बत के मायनों को समझें। ठीक है, एक व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, देयर इज नो डाउट अबाउट, बट उसका एक टाइम फ्रेम है, वो हमारे लाइफ का सिर्फ इतने ही चंक का हिस्सा बन सकते थे, अब वो किसी और के लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं या उनकी आगे की जर्नी कहीं और लिखी हुई है, ये समझना आवश्यक है। बट मैं वो आइसक्रीम खाते हुए याद आए, अच्छी बात है याद आए, बट वो याद आएंगे तो हमें उदास नहीं होना है, उन यादों को आते समय याद दिलाना है अपने आप को पॉजिटिवली कि वाह इतना समय उन्होंने मेरे साथ आइसक्रीम खाया, नहीं अच्छी बात है ये लम्हात तो मैंने साथ में गुजारे और सुंदर पार्ट है मेरे लाइफ का, इट इज अ ब्यूटीफुल मोमेंट इन माय लाइफ एंड आई सेलिब्रेटेड एंड आई एक्नॉलेज कि हाँ ये बहुत ही खूबसूरत समय रहा है मेरे लिए। अब वो जिस की भी जिंदगी में है लेट्स अज्यूम, तो उनके लिए भी वो इतनी ही खुशियां दे, उनके लिए भी वो इतने खूबसूरत पल हो, ये दुआएं हैं मेरी। अगर वो कहीं और चल चुके हैं या समझ लें अब वो देहांत हो गया, फिजिकल बॉडी के रूप में वो हमारे साथ नहीं है, तो उनकी यात्रा जहां कहीं पर भी हो वहां पर भी उनकी यात्रा अच्छी हो, वहां पर भी वो खुशियां ही बांटें, उनको खुशियां मिले, ये दुआएं मैं कर सकता हूँ। उसकी एवज में अगर मैं सैड हो जाऊं, हाय मेरे साथ तो आइसक्रीम खाया पता नहीं अब मैं अकेले आइसक्रीम खा रही, तो आप अपने लिए भी पेन क्रिएट कर रहे हैं और हो सकता है शायद उनके लिए भी पेन क्रिएट कर रहे हैं। और ये शायद भले कर्म के जो चीज है हम फिलोसफी में सुनते हैं आप उसके हिसाब से उस पर विश्वास रखें या ना करें, बट इन दिस मोमेंट आप क्योंकि उस चीज को पॉजिटिवली नहीं देख रहे हो, आप अपने लिए पेन क्रिएट कर रहे हो, इसलिए मूव ऑन करना जरूरी है कि आप अपने पेन को खुद क्रिएट कर रहे हैं,
1: खुद क्रिएट कर रहे हैं।
0: तो ये मेरे हाथ में है कि मैं अपने दर्द पर मरहम लगाना चाहता हूँ या फिर उस दर्द को खुरेदना चाहता हूँ बार बार, तो ये सेल्फ इंफ्लिक्टिंग हार्म है, मैं अपने आप को हार्म करता हूँ तो ये चीज होता है। अक्सर घाव जब भर रहे होते हैं तो जब घाव सूखता है चमड़ी सूखती है वहां पर तो खुजली होती है और जितना आप जाएंगे उतना वो घाव फिर से खून बहने लगता है उससे, इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं जब इलाज करते हैं तो चिकित्सा कर्मी कहते हैं कि आपको स्क्रैच नहीं करना है,
1: नहीं करना है,
0: उसके ऊपर मरहम लगाइए, अगर आपको स्किन ड्राई होता है तो स्क्रैचिंग होता है तो इसके लिए आप मरहम लगाइए, उस पर तेल लगाइए या कोकोनट ऑयल लगाइए, मॉइस्चराइजर, ये बोला जाता है, ये हमारे मन के लिए भी है, हम फिजिकल इंजुरीज के लिए तो ऐसा करते हैं, बट अगर आपको मन के ऊपर भी ऐसे घाव हैं तो उसके लिए भी मरहम लगाना आना चाहिए और ये चीज सीखना पड़ेगा। और सेल्फ रेगुलेशन की जब आप बात कर रहे हैं ये इसी प्रकार का हीलिंग है, हम उन थॉट्स को क्रिएट करें जो हमें राहत दे, ऐसे विचारों को क्रिएट नहीं करें जो हमें और आहत करें, और आहत देना या राहत देना ये हमारा ही अपना मन कर रहा है, इसलिए रेगुलेशन करना बहुत आवश्यक है। अगर आप अनचेक्ड छोड़ देते हैं अपने मन को, जैसे आप कह रहे थे बहुत सारे लोग आर्टिस्टिकली अपने एक्सप्रेशंस को देने के लिए कहते हैं कि नहीं हम रेगुलेट नहीं कर सकते, हमें अनचेक्ड रहने की जरूरत है, अनचेक्ड रहने की जरूरत तब है जब आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, मगर आप जब अपने जीवन के इन चीजों को डील कर रहे हैं वहां पर अगर आपके मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं तो वहां रेगुलेट करने की जरूरत है। और कवियों ने यही चीज की है, जो ये शेर व शायरियां मैंने अभी सुनाई है आपके सामने, ऐसा नहीं है कि उनके ब्रेकअप्स नहीं, उनके ब्रेकअप्स को भी उनने पॉजिटिव तरीके से उसके लिए चीजें लिखी, तो यहाँ ये बात पता चलती है कि वो क्रिएटिव जीनियस अपने मन के विचारों की दिशा को सकारात्मक ओर ले चले। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरे भाई का लड़का है मेरा भतीजा, और मैं अक्सर ये बात एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, मेमोरी पावर अच्छी है, और वो इस लाइन को बार बार याद करता है, वो बोलता है इफ यू हैव गुड मेमोरी यू शुड हैव गुड मेमोरीज, अगर आपकी स्मरण शक्ति अच्छी है तो आपके अंदर स्मृति में अच्छी चीजें होनी चाहिए, जीवन में दुर्घटनाएं भी घटती हैं मगर अगर आप उसे याद करते रहेंगे बार बार तो वही चीज आपकी स्मृति पटल पर अंकित रहेगी, और जो चीज मैं बार बार करता हूँ वही आदत बन जाती है, वो छप जाती है, इसलिए अच्छी चीजों की आदत डालें, अच्छे विचारों की आदत डालें, अच्छे विचारों को बार बार रिपीट करें, यही सेल्फ रेगुलेशन है, नकारात्मकता से थोड़ा दूर हो जाएं, इतना ही तो करना है।
1: बहुत सुंदर लाइन है, मुझे लगता है याद रहेगी, इफ यू हैव गुड मेमोरी यू शुड हैव गुड मेमोरीज, तो वो अच्छी यादों को जीना जरूरी है, लेकिन उदासी के साथ नहीं, एक सेटिस्फेक्शन के साथ कि यू हैव एंजॉयड दैट, आपने वो समय भी एंजॉय किया, आगे भी करेंगे, अभी भी करेंगे. बहुत सुंदर, और मुझे लगता है बहुत नटशेल में आपने ये बात समझा दी है. कल्पना जी, क्योंकि हमारा जाने का भी समय हो रहा है इस एपिसोड से, तो मैं चाहूंगी कि कोई आपको क्लोजिंग रिमार्क या कोई ऐसी बात आप जो ऐड करना चाहें इसमें, साथ साथ क्या कुछ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्रैक्टिकली मेडिटेशन के माध्यम से जो हमें हेल्प करे इस सिचुएशन में.
2: श्री जी की बातें सुनते हुए मुझे कुछ बातें याद आ रही थी. सो मेरी एक फ्रेंड से मैं मिली, सो उसने मुझे कहा कि माई लाइफ माई चॉइस, जो मेरा जीवन है मेरे जीवन की चॉइसेस भी मेरी अपनी होनी चाहिए. सो मैंने बोला कैसे? सो कहा कि मेरे लाइफ में जो भी लोग आते हैं मैं उनको वेलकम करती हूँ, और जो जाते हैं उनको कह भीड़ कम हो गई, जिनकी मेरे जीवन में आवश्यकता नहीं थी वो मेरे जीवन से चले गए. सो आओ तो वेलकम, जाओ तो
1: भीड़ कम.
2: हाँ, आवश्यकता नहीं है, कोई और जुड़ जाएगा. सो यस, लास्ट में हम यही याद रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं कि मेरा जीवन मेरी चॉइसेस होनी चाहिए, और मेरी चॉइसेस में जैसे कि श्री जी के भतीजे ने कहा कि अगर मेरी मेमोरी अच्छी है तो मेरी मेमोरीज में अच्छी बातें होनी चाहिए, अच्छी मेमोरीज होनी चाहिए. सो दिस इज वंडरफुल, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और मैं इसे याद रखूंगी और अपने साथ लेकर चलूंगी. आइए 1 मिनट के लिए हम रुक जाते हैं, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं आज के सेशन पर, और जो कुछ बातें हमने की जरा उनको हम रिवाइज करते हैं, रिवाइंड करते हैं कि बहुत सारी सुंदर बातें निकली. हमने ब्रेकअप के बारे में बात किया, ब्रेकअप के बाद कैसे मूव ऑन करना है उसके बारे में बात किया, एंड देन रिश्तों में कैसी नई ताजगी लानी है उसके बारे में हमने अच्छे अच्छे विचार किए, मेमोरीज जो हमें साथ ले जानी है, जो लोग आते हैं उनको कैसे अपने लाइफ में ऐड करना है, और जो जाते हैं उनको कैसे गुड बाय कहना है. तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर कोई मेरे रिश्ता टूट जाता है या कोई ऐसी डेथ हो जाती है, मेरे अपनों की मृत्यु हो जाती है, सो एक बहुत सुंदर अभ्यास है कि ऐसे समय पर हम एक गुड बाय लेटर बहुत प्यारा सा उनको लिखें, चाहे वो किसी की मृत्यु भी हुई है, चाहे कोई रिश्ता भी टूट गया है या ब्रेकअप भी हुआ है, तो एक बहुत सुंदर गुड बाय लेटर लिख के उनसे मिले, प्यारा सा लिखा हुआ लेटर उनको दे, खुद पर्सनली उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट करे, और उनको बहुत खुशी से अलविदा कहे. अलविदा कहे. आज सुबह मैंने किसी को अलविदा कहा. एक सिस्टर आए थे इसराइल से, जहां पर अभी युद्ध चल रहा है, वो यहाँ काफी समय रहे और अब जाते समय उनको दुख हो रहा था इस स्थान को छोड़कर जाते वक्त. सो जाना तो पड़ेगा ही, परंतु अलविदा कहना बहुत जरूरी है. सो अलविदा दोस्तों, आप भी अपने जीवन में खुश रहे, आबाद रहे, न बिसरे न याद रहे. ये कहावत है, न बिसरे न याद रहे. धन्यवाद दोस्तों.
1: बहुत सुंदर कहावत, बहुत सुंदर कविताएं और बहुत सुंदर इंग्लिश की कोटेशन. मुझे लगता है सब कुछ आज हमने बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में समझा, और अगर उसे याद रखें या अपने पास लिखकर भी रख लेना, तो एट मोमेंट जब हम ये चीजें भूल जाती हैं, हमें ट्रैक पे ले आएंगी ये वापस. एंड ये जो कॉन्वर्सेशन है, जितनी प्रैक्टिकल होती है उतनी आर्टिस्टिक भी होती है आप दोनों के साथ, वो बड़ा ही मजा आता है सुनने में, और याद करने में भी आसान हो जाता है. तो इन सभी बातों के लिए, हमारे साथ हमें गाइड करने के लिए, हमें हेल्प करने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद.
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि ये जो लव यू जिंदगी कार्यक्रम में हम हर एक अपनी जिंदगी को आसान बनाने के सफर में है, और हम एक दूसरे का सफर आसान बनाए, बेहतर बनाए, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं.
1: बिल्कुल, और जिंदगी को बहुत ही प्यार से अगर कहना है, सच्चे दिल से कहना है कि लव यू जिंदगी, प्यार है मुझे तुमसे, तो इस कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा, रेडियो मधुबन के साथ जरूर बने रहिएगा. फिलहाल लेते हैं इजाजत, रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।

अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।

0: 19वीं सदी के आखिरी तीन दशकों और 20वीं सदी के पहले दशक में भारत को साम्राज्यवादी वर्चस्व और एंग्लो ईसाई औपनिवेशिक शासन से आजाद कराने के लिए अंतिम संघर्ष की नींव रखी जा रही थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वर्ष 1875 में वंदे मातरम के जरिए देश को एक शक्तिशाली मंत्र दे दिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धारा में प्रवाहित होते हुए इस गीत वंदे मातरम ने 150 वर्षों से भी अधिक समय तक राष्ट्र के भाग्य को गढ़ने का कार्य जारी रखा। भिकाजी कामा और बिंदु घोष, सिस्टर निवेदिता, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के हृदय में ये एक ज्वाला के रूप में धधकता रहा और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। 1908 में महाराष्ट्र के अमरावती में एक सभा को संबोधित करते हुए महान स्वतंत्रता सेनानी अरविंदो घोष ने भी वंदे मातरम गीत की महिमा की।
1: मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि यह गीत वंदे मातरम भारत के सभी हिस्सों में बेहद लोकप्रिय हो गया है। इसे बार बार गाया जा रहा है। इस राष्ट्रगीत को ही मैं अपने भाषण का विषय बना रहा हूं। यह गीत केवल एक राष्ट्रगीत नहीं है, जैसा कि यूरोपीय राष्ट्र अपने गीतों को मानते हैं। यह असीम शक्ति से परिपूर्ण एक पवित्र मंत्र है। यह मंत्र हमें आनंद मठ के रचयिता द्वारा प्रदान किया गया है, जिन्हें एक प्रेरित ऋषि भी कहा जा सकता है। यह मंत्र कोई मनगठन तो रचना नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन मंत्र का पुनरुद्धार था, जो एक व्यक्ति नवकिशन की गद्दारी के कारण लगभग विलुप्त हो गया था। बंकिम चंद्र के इस मंत्र को उनके अपने समय में उचित सराहना नहीं मिली थी। तब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा समय अवश्य आएगा जब संपूर्ण भारत इस गीत के गायन से गूंज उठेगा, और उस भविष्य वक्ता के वचन चमत्कारिक रूप से सत्य सिद्ध हुए। उस समय इस गीत का वास्तविक अर्थ इसलिए नहीं समझा गया क्योंकि तब लोगों में सच्ची देशभक्ति का अभाव था। उस समय की देशभक्ति का अर्थ केवल इतना ही था कि भारत को इंग्लैंड और अन्य देशों की छाया बना दिया जाए। ऐसे देश जिनकी शानो शौकत और वैभव ने इस मातृभूमि की संतानों की आंखों को चकाचौंध कर दिया था। उस काल के तथाकथित देशभक्तों भले ही भारत के शुभचिंतक रहे हों, लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसे लोग नहीं थे जो भारत से सच्चा प्रेम करते हों। जो व्यक्ति अपने माँ से सच्चा प्रेम करता है, वो कभी भी उसकी कमियों पर दृष्टि नहीं डालता। वो कभी भी अपनी माँ को एक अज्ञानी, अंधविश्वासी, पतित अथवा जर्जर स्त्री मानकर उसका तिरस्कार नहीं करता।
0: वीर सावरकर के लिए भी वंदे मातरम एक जोशीला क्रांतिकारी गीत था, जो स्वतंत्रता सेनानियों के बीच एक अभिवादन के रूप में प्रयोग किया जाता था। वो देशभक्ति का एक प्रतीक, समझौता चाहने वालों के लिए चेतावनी और एक ऐसा मंत्र था जिसने संघर्ष की ज्वाला प्रज्वलित की। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में मैडम भिकाजी कामा ने सावरकर और उनके साथियों को प्रतिनिधित्व करते हुए पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। सावरकर, कामा और श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किए गए इस ध्वज पर वंदे मातरम शब्द प्रमुखता से अंकित थे, जो सावरकर पर इस गीत के गहरे प्रभाव को दर्शाता था।
2: दीदी, आपने मुझे अनेक वीर सेनानियों के किस्से सुनाए, लेकिन अब तक श्यामजी वर्मा के बारे में कुछ बताया नहीं है। वे कौन थे?
3: ओहो बन्नो, पहले तो तुम्हारी प्रशंसा करनी होगी।
2: क्यों क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया?
3: अरे मेरी प्यारी बहना, तुम्हारी लगन और जिज्ञासा की तारीफ करना चाहती हूँ। कि तुम कितना ध्यान पूर्वक इस ऐतिहासिक कथा को सुन रही हो। श्याम जी कृष्ण वर्मा ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने न केवल देश विदेश में अंग्रेजों से मुक्ति का वातावरण बनाया बल्कि क्रांतिकारियों की एक पूरी पीढ़ी का मार्गदर्शन भी किया। इसमें विनायक सावरकर से लेकर मदन लाल ढींगरा तक एक लंबी श्रृंखला है, इसलिए उन्हें क्रांति गुरु भी कहते थे। हो भी क्यों ना, जब जन्म ही क्रांति के बीच हुआ था।
0: वो 1857 का साल था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। 10 मई को दिल्ली से 40 मील उत्तर पूर्व में मेरठ के गैरिसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। धीरे धीरे उसकी आग बढ़ती जा रही थी। ये लपटें गुजरात के अहमदाबाद, सौराष्ट्र, सूरत, गोधरा, नांदेड़ एवं दाहोद जैसे शहरों तक भी पहुंच चुकी थी। तभी अक्टूबर के महीने में कच्छ जिले के मांडवी गांव के संस्कृत विद्वान श्री कृष्ण वर्मा के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो और कोई नहीं, श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। पिता संस्कृत के विद्वान थे तो माँ गोमती देवी भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के अनुरूप जीवन शैली में रची पसी थी। आरंभिक शिक्षा गांव में होने के बावजूद बालपन में ही श्याम जी को संस्कृत का अद्भुत ज्ञान हो गया था। उन्होंने घर में ही भारतीय वाङ्मय के संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया। जब वो 11 वर्ष के थे तब माँ उन्हें सदा के लिए छोड़कर चली गई। दादी ने देखभाल की। स्कूल की पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा के लिए श्याम जी मुंबई चले गए। वहां विल्सन कॉलेज में उनका दाखिला हुआ। धीरे धीरे यहां भी उनकी कुशाग्र बुद्धि और संस्कृत के ज्ञान की खूब चर्चा होने लगी।
4: श्याम जी, तुम तो संस्कृत के बड़े विद्वान हो। इन दिनों मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती आए हुए हैं, उनसे मिलने नहीं चलोगे?
5: हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलूंगा।
0: ये साल 1875 की घटना है, जब श्याम जी की भेंट स्वामी दयानंद सरस्वती से हुई। उनके प्रवचन सुनने के बाद आर्य समाज की विचारधारा ने उन्हें काफी प्रभावित किया। वो आर्य समाज द्वारा किए जा रहे वेदों के भाष्य अनुवाद से जुड़ गए। स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य बनने के बाद श्याम जी ने पूरे देश में उनकी शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए दौरे किए। काशी में उनका भाषण सुनकर काशी के पंडितों ने उन्हें पंडित की उपाधि दे दी। ऐसी उपाधि पाने वाले वो पहले कैर ब्राह्मण थे। इसी वर्ष लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रमुख मोनियर विलियम भारत आए थे। वो ऐसे संस्कृत विद्वानों से मिलना चाहते थे जो अंग्रेजी भी जानते हों। उनकी मुलाकात युवा श्याम जी से हुई।
6: आप तो अद्भुत है, संस्कृत का इतना ज्ञान, मैं स्तब्ध हूँ। आप लंदन क्यों नहीं आते, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में?
5: मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ, बहुत खर्च होगा।
6: आप एक बार घर वालों से विचार विमर्श कर लीजिए, फिर मुझे जवाब दीजिएगा।
0: श्याम जी की पत्नी भानुमती के पिता एक बड़े व्यापारी थे। भानुमती ने अपने पिता से बात की।
7: पिताजी, लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा हासिल करने का आमंत्रण मिला है।
5: किसे मिला है?
7: आपके दामाद जी को मिला है।
5: अच्छा, फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया है?
7: वो इस दुविधा में है कि कैसे जाएंगे, बहुत खर्चा आएगा और वो कहां से होगा। फिर भी मोनियर जी ने सोच समझ कर जवाब देने को कहा है।
5: ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूं, लेकिन श्याम जी को बुरा तो नहीं लगेगा?
7: मैं उन्हें समझा लूंगी।
0: इस तरह भानुमती के पिताजी ने श्याम जी कृष्ण वर्मा को लंदन भेजने की व्यवस्था की। साल 1878 में वो इंग्लैंड चले गए। लंदन में कुछ दिन मोनियर के सहायक के रूप में काम करने के बाद 1879 में उन्होंने बीए करने के लिए बालियोल कॉलेज में प्रवेश लिया। पढ़ाई के साथ वो निजी स्तर पर संस्कृत का अध्ययन भी निरंतर करते रहे। बीए के पश्चात उन्होंने एमए और बारेट लॉ की पढ़ाई पूरी की। लंदन में रहकर ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय थे। उनकी नियुक्ति ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापक के पद पर हो गई थी। ऑक्सफोर्ड में वो संस्कृत के साथ भारतीय छात्रों को गुजराती और मराठी भी पढ़ाया करते थे। प्राध्यापक के रूप में कार्य करते हुए श्याम जी ने वकालत की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने बर्लिन कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 7 साल लंदन में रहने के उपरांत साल 1885 में वो भारत लौट आए और मुंबई में वकालत शुरू की।
2: वाह दीदी, श्याम जी की कहानी तो बड़ी दिलचस्प लग रही है। आगे क्या हुआ बताओ ना।
3: थोड़ा धैर्य रखो बन्नो, बताती हूँ। श्याम जी ने वकालत शुरू कर दी थी, लेकिन अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर हो रहे जुर्म उन्हें विचलित कर रहे थे।
2: फिर क्या हुआ दीदी?
3: श्याम जी को वो सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके सामने कोई विकल्प भी नहीं था। वे वकालत छोड़कर मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर रतलाम चले गए।
0: रतलाम पहुंचने के बाद श्याम जी रियासत के दीवान बन गए। कुछ दिन वहां रहने के उपरांत साल 1893 में वो राजस्थान के उदयपुर चले गए। वहां राज्य काउंसिल के सदस्य बने। उदयपुर में 3 वर्ष रहने के बाद जूनागढ़ गए और वहां के दीवान का पद संभाला। परंतु जूनागढ़ में तैनात एक अंग्रेज से विवाद हो गया। उनके मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति नफरत पैदा हो गई। वो नौकरी से इस्तीफा देकर मुंबई वापस लौट गए और वकालत शुरू कर दी। श्याम जी एक संवेदनशील और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति समर्पण भी अटूट था। उन्होंने हर कदम पर भारतीयों का अपमान देखा था, इसलिए उनके स्वाभिमान रक्षा के लिए श्याम जी ने समाज को जागृत करने का संकल्प किया। सबसे पहले अपने साथी वकीलों का एक समूह बनाया और ऐसे भारतीयों के समर्थन में मुकदमा लड़ना आरंभ किया जिन पर पुलिस अत्याचार करती थी और बिना किसी अपराध के जेल में ठूस देती थी।
3: जानती हो बन्नो, ये साल 1898 की बात होगी। पुणे के प्लेग गवर्नर कमिश्नर रैंड की चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, बाद में फांसी भी दे दी गई, लेकिन उसकी गूंज पूरे देश में फैल गई। उन्हीं दिनों तिलक जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनको श्याम जी अपना आदर्श मानते थे।
2: श्याम जी वर्मा को बड़ा धक्का लगा होगा ना दीदी, उन्होंने कुछ किया नहीं इस पर?
3: ऐसा हो सकता था क्या? श्याम जी और वकीलों के समूह ने तिलक जी की गिरफ्तारी के विरोध के अलावा चापेकर बंधुओं पर मुकदमा चलाने के तरीके पर गहरी आपत्ति जताई थी, क्योंकि चापेकर बंधुओं पर चला मुकदमा एक औपचारिकता था। वकीलों के समूह ने महाराष्ट्र कांग्रेस से भी आपत्ति दर्ज कराने का आग्रह किया। कांग्रेस ने आवेदन तो दिया, पर विरोध के लिए खुलकर आगे ना आ सकी। उन्हीं दिनों स्वामी श्रद्धानंद मुंबई आए। श्याम जी की उनसे भेंट हुई और संघर्ष की योजना बनी।
8: क्यों ना देश भर के उन संघर्षशील नौजवानों को संगठित किया जाए जो अपने स्तर पर अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र अभियान चला रहे।
9: हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है।
8: ठीक है, फिर मैं बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र की यात्राओं पर निकलता हूँ और युवा क्रांतिकारियों से संपर्क करने का प्रयास करता हूँ।
0: योजना के तहत श्याम जी निकल पड़े। और उन्हें अपने मकसद में सफलता भी मिली। पंजाब के क्रांतिकारियों का बंगाल और महाराष्ट्र से संपर्क बना और इसमें श्याम जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन श्याम जी के मन में कुछ और भी चल रहा था। वो लंदन में रह रहे भारतीय नौजवानों का स्वाभिमान जगाना चाहते थे, जिन्हें अंग्रेजों का अपमान सहने की आदत पड़ चुकी थी। इसलिए उन्होंने दोबारा से लंदन लौटने का निर्णय लिया।
2: दीदी, अब क्या होगा? श्याम जी तो फिर विदेश चले गए।
3: ओ मेरी प्यारी बन्नो, अब वे पहले वाले श्याम जी नहीं रहे थे। इस बार लंदन वे देश के स्वतंत्रता संग्राम के एक सिपाही की तरह गए थे।
2: वो कैसे दीदी?
3: समझाती हूँ। श्याम जी विदेश में रहने वाले युवाओं में देश प्रेम की लौ जागृत करना चाहते थे, इसलिए लंदन में उन्होंने तीन काम आरंभ किए। पहला, वहां रहने वाले सभी भारतीयों को एक सूत्र में पिरोने का। दूसरा, लंदन में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का। और तीसरा, भारतीयों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक समाचार पत्र निकालने का।
0: श्यामजी कृष्ण वर्मा ने साल 1905 के फरवरी महीने में लंदन में द इंडियन होम रूल सोसाइटी नाम के एक संस्था का गठन किया। श्याम जी इसके संस्थापक अध्यक्ष बने और इस केंद्र को नाम दिया इंडिया हाउस, जो 65 क्रॉमवेल एवेन्यू हाईगेट में स्थित था। इसे एक छात्रावास का रूप दिया गया था, जिसमें 25 छात्रों को रहने की व्यवस्था थी। औपचारिक उद्घाटन 1 जुलाई को सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन के हेनरी हाइंडमैन द्वारा हुआ। इस अवसर पर दादा भाई नारोजी, लाला लाजपत राय, मैडम कामा, लंदन पॉजिटिव सोसाइटी के शिस्वनी और हैरी, एस आर राणा, विनायक दामोदर सावरकर, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और लाला हरदयाल उपस्थित थे। इंडिया हाउस का सारा खर्च श्याम जी स्वयं उठाते थे। देखते ही देखते ये भारतीयों की सभा संगोष्ठियों और क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रेरणा केंद्र बन गया। यहाँ होने वाली सभाओं में भारत की स्वतंत्रता पर खुलकर बातें होती। गांधी जी से लेकर भगत सिंह, गोखले भी यहाँ रुके। आगे चलकर अनेक क्रांतिकारी नौजवान श्याम जी के शिष्य बने, जिनमें मदन लाल ढींगरा और वीर सावरकर उनके प्रिय शिष्यों में थे। सावरकर ने श्याम जी के मार्गदर्शन में ही 1857 की क्रांति पर पुस्तक लेखन आरंभ किया था। इसके साल भर बाद ही भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित अनेक आंदोलनकारी बंदी बना लिए गए। खबर इंडिया हाउस भी पहुंची, सभा बुलाई गई, जिसमें अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी प्रतियां समाचार पत्रों को भी भेजी गई। इसके साथ ही श्याम जी ने विभिन्न देशों और नगरों में जाकर संगोष्ठियों में भाग लेना आरंभ किया। वो अब अंग्रेज सरकार के विरोध में खुलकर बोलने लगे थे। होलबोर्न टाउन हॉल में आयोजित यूनाइटेड कांग्रेस ऑफ डेमोक्रेट्स की संगोष्ठी में जोरदार भाषण दिया।
10: भारतीय स्वाभिमान को जगाना होगा, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह स्वतंत्र कराना होगा।

0: इंडिया हाउस इंडियन होम रूल संगठन की स्थापना के अलावा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम का अखबार भी शुरू किया, जिसकी कॉपियां पूरे यूरोप में भेजी जाती थी। उनके लेख आयरिश, जिनेवा और फ्रांस के कुछ समाचार पत्रों में छपने लगे। इंग्लैंड के समाचार पत्रों में उनकी गतिविधियों की आलोचना होने लगी। ब्रिटिश सरकार विरोधी लेखों को लेकर श्यामजी अंग्रेजों के निशाने पर आ गए, साथ में उनका इंडिया हाउस भी। सीक्रेट सर्विस के एजेंट उन पर नजर रखने लगे। उन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। इस कारण श्यामजी ने इंडिया हाउस की जिम्मेदारी वीर सावरकर को सौंपी और खुद पेरिस के लिए निकल गए। ये साल 1907 की बात होगी। हालांकि अंग्रेज सरकार ने उन्हें वहां भी परेशान करना नहीं छोड़ा। तब श्याम जी ने फ्रांसी राजनेताओं से संपर्क बनाना शुरू किया और वहीं से पूरे यूरोप के भारतीय क्रांतिकारियों को एकजुट करने, उनको मदद करने, कई भाषाओं में अखबार छपवाने आदि में मदद करने लगे। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक सीक्रेट समझौते के चलते उन्हें पेरिस भी छोड़ना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले श्यामजी स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा के लिए निकल गए।
1: क्या जेनेवा में वे भारतीय क्रांतिकारियों की मदद कर पाए?
2: क्या कहूं बन्नो, समय साथ नहीं दे रहा था उनका और ना अंग्रेज पीछा छोड़ रहे थे। जेनेवा में भी उन पर थोड़ी बहुत पाबंदियां थी, फिर भी जितना संभव था वे यूरोप में सक्रिय भारतीय क्रांतिकारियों की मदद करते रहे।
0: विश्वासघात क्या होता है, इसका आभास श्याम जी को नहीं था। जब तक कि उन्हें ये पता नहीं चला कि जिस प्रो इंडिया कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर ब्रीस से वो सबसे ज्यादा बातचीत करते थे, वो एक ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट थे। उधर मदनलाल ढींगरा ने जैसे ही भारत के सचिव वाइली की हत्या की तो इंडिया हाउस अंग्रेजी सरकार के निशाने पर आ गया। आखिरकार 1910 में इसे बंद कर दिया गया। फिर 30 मार्च 1930 का वो काला दिन आया जब जिनेवा में भारत के वीर सपूत श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जीवन की अंतिम श्वास ली। उनकी मौत पर लाहौर की जेल में बंद भगत सिंह और उनके साथियों ने शोक सभा रखी, जबकि वो खुद कुछ दिनों के मेहमान थे।
1: दीदी, क्या उनका शव जनेवा से भारत आ पाया?
2: बन्नो, श्याम जी को एहसास हो चला था कि उनकी अंतिम घड़ी कभी भी आ सकती है, इसलिए मरने से पहले उन्होंने जनेवा की सेंट जॉर्ज सिमेट्री में 100 साल तक अपनी अस्थियां सुरक्षित रखने की फीस भर दी थी। बाद में उनकी पत्नी की अस्थियां भी उसी सिमेट्री में रखी गईं। उन्हें आशा थी कि जब भी देश स्वतंत्र होगा तो देशभक्त उनकी अस्थियां भारत ले आएंगे। 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन किसी को श्याम जी की अस्थियां भारत वापस लाना याद नहीं रहा। आखिरकार 22 अगस्त 2003 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनेवा की धरती से श्याम जी और उनकी पत्नी भानुमती की अस्थियां भारत मंगवाई। मुंबई से उनके जन्म स्थान मांडवी तक भव्य जुलूस निकाला गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अस्थि कलश लाया गया। इतना ही नहीं, श्याम जी के जन्म स्थान पर एक भव्य स्मारक क्रांति तीर्थ का निर्माण भी कराया गया। उस परिसर के श्याम जी कृष्ण वर्मा कक्ष में उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखा गया। ये स्थल वैसा ही बना जैसे कि श्याम जी कृष्ण वर्मा का लंदन में इंडिया हाउस होता था। 13 दिसंबर 2010 को इस मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित किया गया। कच्छ जाने वाले सभी देशी विदेशी पर्यटकों के लिए मांडवी का ये क्रांति तीर्थ एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है।
0: श्याम जी कृष्ण वर्मा का एकमात्र स्वप्न था स्वतंत्र भारत, जहां हर नागरिक स्वाभिमान से जी सके। अपने राष्ट्रवादी विचारों से उन्होंने न सिर्फ देश बल्कि विदेश में रह रहे भारतीयों के हृदय में क्रांति की लौ जगाई, जबकि खुद उनके हृदय में वंदे मातरम गीत एक अग्नि की तरह धधकता रहा, उनके जज्बे को बल देता रहा। उस एक ध्वनि ने पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा। वो केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत के आत्मगौरव, स्वाधीनता और एकता का शाश्वत प्रतीक है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे देश के एक अन्य वीर सपूत से। तब तक सुनते रहिए एक गीत एक नारा और एक और इतिहास रचती कहानी के साथ। जय भारत, वंदे मातरम।

आशियाना में आज के कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करेंगे और घरेलू नुस्खे भला कैसे भूल सकते हैं जरूर देंगे। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो नए नए व्यंजन जरूर सिखाएंगे। पेन और डायरी लेकर के तैयार रहिएगा, सामान्य जानकारी भी देंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और आज का विचार इस प्रकार है, अपनी संपत्ति का भी त्याग के साथ उपभोग करिए। अपनी संपत्ति का भी त्याग के साथ उपभोग करिए। आज के विचार का विस्तार इस प्रकार है, जैसे मिलावट करने से सोना खोटा हो जाता है, उसी प्रकार बेईमानी भ्रष्ट आचरण की मिलावट से व्यक्ति भी खोटा हो जाता है। खरा वही है जो अंतरात्मा की आवाज पर ईमानदारी की कमाई से संतुष्ट है। किसी का छीन कर झपट कर नहीं, बल्कि अपनी संपत्ति का भी त्याग के साथ उपयोग करिए। किसी के धन को लालची दृष्टि से मत निहारिए। किसी को महल में रहने की इच्छा हो, ये बुरी बात नहीं है, परंतु वह आज से ही महल खड़ा करने का कार्य आरंभ कर दे। दूसरे के बने बनाए महल को लोभ की दृष्टि से न देखे, यही त्याग का भाग्य जमा होता है। और अपनी संपत्ति का भी अगर हम त्याग करके उपभोग करते हैं तो वो संपत्ति भी जैसे एक रुपया है, फिर भी उससे हमारा गुजारा चल सकता है, चल जाता है और सदैव हम संतुष्ट रहते हैं। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करिएगा और जितने हमारी आमदनी है उससे हमेशा संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। और एक गीत अब आपको सुनाएंगे, फिर आगे चलेंगे आशियाना के कार्यक्रम का और भी आगे बढ़ाएंगे। एक गीत के बाद तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: Hello, I'm Alexander, diplomat from Russia, and you are listening FM Radio Madubar. Keep listening and keep smiling. You can also tune radiomadyuban.in on internet, even Russia, even everywhere.
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं घरेलू नुस्खे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में रोगों का प्रभाव पड़ता ही रहता है। हम छोटी मोटी बीमारियों का इलाज स्वयं कर सकते हैं, पर थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे नुस्खे देने जा रही हूँ दम्मे के रोगियों के लिए। आप क्या करेंगे, तुलसी की 10 पत्तियों के साथ वासा बोले तो अड़ूसा के भी आप 10 पत्ते ले लीजिए और 10 पत्ते तुलसी के। फिर आप 250 मिलीलीटर पानी में अच्छी तरह उबालिए और इसका काढ़ा तैयार कर लीजिए, ठीक है। फिर ये काढ़ा 21 दिन तक सुबह सुबह खाली पेट पीना है। इससे दम्मा में काफी राहत मिलेगी, ठीक हो जाएगा दम्मा। पुनः दोहरा रही हूँ, इस नुस्खे को ध्यान से सुनिएगा, दम्मे के रोगियों के लिए है। तुलसी की 10 पत्तियां और वासा अड़ूसा के भी 10 पत्ते, इन दोनों को 250 मिलीलीटर पानी में अच्छी तरह उबालिए। उबाल करके इसका काढ़ा बना दीजिए। फिर इस काढ़े को छान करके सुबह सुबह खाली पेट पीना है 21 दिन लगातार। इससे दमा ठीक हो जाएगा। अब अगला नुस्खा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। मौसम के अनुसार खांसी होती है ना, उसके लिए तो मौसम के अनुसार खांसी होती है, उसके लिए आप लीजिए सेंधा नमक की लगभग 5 ग्राम की डली, ठीक है। इसको आप चिमटे से पकड़िए और चिमटे से पकड़ करके आप गैस पर या तवे पर गरम कर लीजिए। जैसे हम पापड़ी सेकते ना चिमटे से पकड़ के, पापड़ी, इसी तरह आप सेंधा नमक की डली को सेकिए और जब ये डली लाल हो जाए ना, तो गरम गरम डली को तुरंत आप आधा कप पानी में डुबो दीजिए। डुबा करके फिर से तुरंत निकाल दीजिए, ठीक है। ये नमकीन गरम पानी को एक ही बार में पी जाइए, एक ही घुट में। ऐसा नमकीन पानी सोते समय लगातार 2-3 दिन पीने से खांसी, विशेष करके जो बलगम वाली होती है ना, उसमें काफी आराम मिलेगा। फिर आप नमक की डली को सुखा करके रख लीजिए और फिर अगले प्रयोग में आप इस तरह यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल है ना नुस्खा। पुनः दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मौसम के अनुसार खांसी होती हो तो आप सेंधा नमक की लगभग 5 ग्राम की डली को चिमटे में पकड़ करके आग पर आप सेकिए, या फिर तवे पर भी आप सेक सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, डली एकदम लाल हो जानी चाहिए। फिर इतनी गर्म डली को आधा कप पानी में तुरंत डालिए और डालते ही निकाल दीजिए। और इस गर्म पानी को, नमक वाले पानी को, आप एक ही घूट में पी जाइए। इससे ये पानी आपको 2-3 दिन रात को सोते समय पीना है। इससे विशेष करके जो बलगम वाली खांसी होगी उसमें तो राहत मिलेगी ही, साथ ही साथ मौसम के अनुसार होने वाली खांसी पर भी कंट्रोल हो जाएगा और खांसी की तकलीफ ठीक हो जाएगी, ठीक है। फिर इस नमक को आपको सुखा देना है, अगले प्रयोग में फिर से इस नमक को आप यूज कर सकते हैं। और लास्ट नुस्खा भी आप ध्यान से सुनिएगा। गला बैठ जाता है कितनी ही बार, है ना, तो गला बैठ जाता है तो इस कंडीशन में आप मुलेठी के चूर्ण को पान के पत्ते में रखकर खाइए। इससे बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है। या फिर आप सोते समय 1 ग्राम मुलेठी के चूर्ण को मुख में रख करके देर तक चबाते रहे और वैसे ही मुंह में रख करके सो जाइए, ठीक है। सुबह ही सुबह आप देखेंगे कि गला साफ हो जाएगा, गले का दर्द, अगर सूजन भी होगा तो उसमें भी आराम मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा नुस्खा है, ध्यान से सुनिएगा। पुनः दोहरा रही हूँ, बार बार गला बैठ जाता है तो आप मुलेठी के चूर्ण को पान के पत्ते में रख कर खाइए। इससे बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है। या फिर आप सोते समय 1 ग्राम मुलेठी के चूर्ण को मुख में रख करके कुछ देर हल्के हल्के चबाते रहिए, फिर वैसे ही चबाते चबाते सो जाइए, ठीक है। सुबह सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह, गला तो साफ हो गया, गले का दर्द भी ठीक हो गया, जो सूजन थी वो भी ठीक हो गई। तो इस तरह ये नुस्खे बहुत ही लाजवाब है और आप आजमा सकते हैं और महंगे भी नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना, और साइड इफेक्ट भी नहीं होते इसके। तो चलिए, ये तो हुए घरेलू नुस्खे, अब फिर से सुना देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए खुशनुमा जीवन की बातें करते हैं। सविता जी हमारे साथ बने हुए हैं। सविता जी आपका अपने घर में स्वागत है।
2: उषा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, रेडियो मधुबन का भी थैंक्स, और बहुत अच्छी बातें आप कह रही थी, कविता बहुत सुंदर लगी मुझे, जरा एक बार फिर से दोहराइए।
1: ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा
2: जी,
1: कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को
2: जी,
1: अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना
2: होगा। देखिए बात अभी आपने जो की कि अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ेगा, तो इस पर एक कहावत मुझे भी याद आ गई
1: जी, बिल्कुल।
2: पुराने जमाने में कहते थे खुद ही मरने से स्वर्ग प्राप्त होगा, किसी और के मरने से हमको स्वर्ग नहीं प्राप्त होगा, यदि हमें स्वर्ग प्राप्त करना है तो खुद ही मरना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, अगर अपने रास्ते में हमें उजाले करने हैं, अपने लक्ष्य तक हमको पहुंचना है, तो ये जान लीजिए कि हमको खुद ही मेहनत करनी होगी।
1: तो मरने के नाम से मरने के नाम से दो लाइनें फिर से मुझे याद आ रही है सविता जी,
2: फरमाइए।
1: देखिए नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती,
2: वाह,
1: नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती, मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता।
2: वाह वाह, देखिए जिसे तैरना आता है वो सागर को पार कर लेगा
1: जी, और ठीक उसी तरह परिस्थितियां कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती
2: जी,
1: परिस्थितियां
2: कभी भी
1: हमारे लिए समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती है सविता जी जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता,
2: उसका रास्ता ही नहीं मालूम होता है कि हम कैसे निपटें, तब हमें लगता है कि रुई भी जैसे लगता है राय भी पहाड़ बन गई है
1: जी, बिल्कुल।
2: और कुछ लोग ऐसे होते हैं आप देखिए बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में पहाड़ को
1: राय बना देते हैं।
2: हाँ तो ये सब जो बातें हैं कहने का तात्पर्य इन तीनों चारों जो अभी हम लोगों ने बातें की तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सबसे यही निकलता है कि बिना मेहनत के आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल सविता जी,
2: कई बार लोग कहते हैं कि मेरे भाग्य में नहीं था, मेरे भाग्य खराब हैं, या कर्म को कोसते हैं, भाग्य को कोसते हैं, लेकिन अपने कर्मों की तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए इसे कहा गया कर्म प्रधान है और कर्म ही पूजा है। पूजा हम कर रहे हैं, कई बार देखिए होता है हमारे जीवन में हम बोलते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, ये किया, या पूजा पाठ भी बहुत करते हैं तो उससे हमें भगवान दे देगा लेकिन कहा गया कि कर्म करना, जो हम कर्म करेंगे वही वास्तविक पूजा होती है और उसी से ही हमको फल की प्राप्ति होती है। जीवन में कितने भी अंधेरे क्यों ना आ जाएं, दीपक सच में हमें ही जलाना पड़ेगा। जैसे घर में अगर लाइट नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, हर कमरे को रोशन करने के लिए मोमबत्ती खुद ही जलाएंगे
1: जी।
2: अब कमरे तो अपने आप रोशनी करेंगे नहीं, उसे हमें ही करना पड़ता है। तो उषा जी बहुत अच्छी बात लगी मुझे ये बात कि हाँ मेहनत हमें करना पड़ेगा और जीवन के अंधेरों से घबराना नहीं है बल्कि उससे लड़ना पड़ेगा।
1: लेकिन सविता जी आजकल हम देखते हैं कि लोग बाग मेहनत से कतराते हैं और देखते हैं कि वो कहते हैं ना कि राम नाम जपना पराया माल अपना
2: जी,
1: ये वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं।
2: हाँ, क्योंकि उनके मन में ये है ना कि रोशनी तो हमें पूरी चाहिए
1: जी,
2: पर दीपक जलाना भी ना पड़े और दीपक बन के जलना भी ना पड़े। देखिए दीपक में कितना परिश्रम करता है दीपक, खुद जल के दूसरों को रोशनी देता है।
1: बिल्कुल
2: ना, तो दूसरों की खुशी के लिए हमें अपनी खुशी की कई बार कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है, तब जाकर हम दूसरों के लिए भी दीपक बन पाते
1: जी।
2: और हमारी जो सोच है, समझ है, या हमारे जो कर्म है वो संसार के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। और जब हम स्वयं ही कहते हैं कि कई बार कहते घर का दीपक घर में ही आग लगा दे
1: हमारी देखते हम हाँ। अक्सर देखते हैं अपनी इन्हीं आंखों से कि ऐसा भी हो रहा है समाज में,
2: क्या है? हम सोचते हैं हम बहुत समझदार हैं और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें हमारा फायदा तो होता है, ये सत्य है, लेकिन जो हमारे चारों तरफ का माहौल होता है, हमारे आसपास के लोग होते हैं, चाहे फैमिली में हो या हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ हो या पास पड़ोस में, उनको नुकसान पहुँचाते रहते हैं
1: जी।
2: मैंने देखा है कई बार कई लोगों को, बहुत अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उन्हें दुनिया की नॉलेज होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, सारी नॉलेज सिर्फ अपने तक ही रखते हैं, मतलब अपने लिए ही उसका उपयोग है
1: जी.
2: और दूसरों को मिसगाइड करते रहते हैं, है ना. और कई बार देखिए घर में ही घर का नुकसान ही कर डालते हैं कई लोग, तो घर के दीपक से घर का ही नुकसान हो जाता है. और कई बार देखिए आप कि जो दीपक होते हैं घर में भी उजाला करते हैं और बाहर भी उजाला करते हैं
1: जी.
2: तो वैसा ही दीपक बनना है हमें.
1: बिल्कुल सविता जी. बाकी कहते हैं कि हम दूसरों को ठगते हैं लेकिन घर में ही हम ठगे जाते हैं
2: कई बार होता है. हाँ
1: होता है, हमारे बच्चे ही हमें धोखा देते हैं फिर.
2: और दीपक भी उषा जी कई तरीके के बताए गए हैं दुनिया में, जैसे कुल दीपक कहा गया जो कुल को, कुल के नाम को रोशन करे. कई होते हैं दीपक आशाओं के दीपक, जो हमारे मन में इच्छा है, संकल्प है, भाई हमारी ये इच्छा पूरी हो. दुनिया में न जाने कितने लोग कितने प्रकार की आशाओं के दीपक जगा के बैठे हुए हैं. तो यदि हमारी इच्छाओं के दीपक, आशाओं के दीपक अच्छे से जल रहे हैं तो हमें भी खुशी होती है और उससे दूसरों को भी प्रकाश मिलता है. और कई बार हमारे द्वारा दूसरों की इच्छाएं पूरी होती है, आशाएं पूरी हो जाती हैं, तो ये भी एक प्रकार का दीपक जलाया जाता है ना. आशाओं के दीपक है, देखिए कुल दीपक है, उम्मीदों के दीपक है, ऐसे सब जलाते रहते हैं. और इसी दीपक की बात से याद आ रही उषा जी कि हमारे देश भारतवर्ष में बहुत बड़ा त्यौहार दिवाली मनाई जाती है
1: जी,
2: है ना. तो ये इसी का मतलब इसी का एक प्रतीक है
1: जी.
2: कि खुशियों के दीपक जलाना, उम्मीदों के दीपक जलाना, सफलता के दीपक जलाना. तो ये दीपक के रूप में जो कहा गया है कि हाँ भाई दीपक बहुत सुंदर, देखने में भी बहुत सुंदर प्रतीत होता है, तो उसकी जो रोशनी होती है वो बहुत आकर्षण मूर्त होती है, आकर्षित करती है दुनिया को.
1: बिल्कुल सविता जी. पर बात चल रही थी कर्म की, कि कर्म किए बिना कहते हैं कि भोजन भी हमारे सामने आता है लेकिन हाथ से कोए को तो तोड़ना ही पड़ेगा तभी मुंह में रखेंगे और मुंह में जाएगा. बाकी भोजन आ गया सीधा बना बनाया और हम मेहनत ना करें तो वो थाली भी चली जाएगी.
2: तो वही हाल है ना, दीपक तो जला लिया लेकिन उसमें तेल ही नहीं डाला हमने तो वो बुझ जाएगा. कर्म ही नहीं किया, एक बार तो जला लिया. और जब कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा. तो जीवन में कर्म करना अति आवश्यक है और कर्म ऐसा होना चाहिए उषा जी जो कि महानता, महान बन जाए, पूजनीय बन जाए, गायन योग्य बन जाए. कर्म तो दुनिया में तमाम लोग करते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, कुछ विकर्म करते हैं, कुछ सुकर्म करते हैं, है ना. लेकिन जो कर्मों का महत्व है, बहुत श्रेष्ठ कर्म हमें करने चाहिए.
1: कर्म का भी ज्ञान होना चाहिए कि हमें किस तरह के कर्म करने हैं जिससे हम भी खुश रहे और हमारे जो आस पास है, हमारे जो संपर्क में आते हैं वो भी सदैव खुश रहे. तो कर्म हमेशा अच्छे ही करने हैं. अच्छे कर्मों के द्वारा स्वयं भी खुश रहेंगे, औरों को भी खुश रख सकेंगे. बाकी तो दुखों का तो कहते हैं कि विस्तार बहुत है, लेकिन कर्म सदैव श्रेष्ठ करने हैं और कर्म करना ही है, कर्म से भागना नहीं है. तो चलिए सविता जी और भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो सुना देते हैं एक गीत. सुनते
3: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन.
4: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है. इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है.
3: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए.
1: क्या खूब लिखा है किसी ने, गांव को गांव ही रहने दो साहब, क्यों शहर बनाने में तुले हुए हो. क्या खूब लिखा है किसी ने, गांव को गांव ही रहने दो साहब, क्यों शहर बनाने में तुले हुए हो. गांव में रहोगे तो माता पिता के नाम से जाने जाओगे और शहर में रहोगे तो मकान नंबर से पहचाने जाओगे. तो ये थोड़ी सी सविता जी मेरे को याद आ गई थी ऐसे ही कॉमेडी शायरी, तो मैंने सुना दी.
2: बहुत अच्छी बात कही.
1: क्योंकि अपने सविता जी, अपने क्या टॉपिक का नाम ही है खुशनुमा जीवन. कोई भी बात कहो लेकिन खुशी वाली होनी चाहिए,
2: खुशी से
1: और उससे खुश, हाँ उससे खुश रहने चाहिए सुनने वाले भी और हम बोलने वाले भी.
2: और जो अभी आपने सुनाई ये बात हमारी पीछे वाली बात से मिलती जुलती है.
1: बिल्कुल मिलती जुलती
2: है. जैसे उन्होंने क्या कहा कि अगर हम गांव में रहेंगे तो माता पिता के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि माता पिता का नाम होता है वहाँ पे, उनकी जन्मभूमि होती है, उनके कर्म होते हैं, जिस वजह से हमारी भी पहचान बनती है.
1: जी बिल्कुल.
2: और शहर में हमारी पहचान तो होती नहीं, हम क्या हो जाते, मकान नंबर से जाने जाता. और दूसरा, जब हम कर्म ऐसे करेंगे तो शहर में भी हमारा नाम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है.
1: बिल्कुल.
2: लेकिन यह है कि कर्म का महत्व गांव में भी बताया गया है और शहर में आके व्यक्ति वो इतने अच्छे नहीं कर पाता, क्योंकि जीवन ऐसा बन जाता है भाग दौड़ का, एक मशीनी जीवन हो जाता है उषा जी, और पत्थर जैसा हो जाता है. कई बार आप देखो एक अपार्टमेंट में रहने वाले अगल बगल क्या हो रहा है उनको नहीं पता होता, लेकिन गांव में ऐसा होता है उषवन?
1: नहीं, पूरे गांव का पता होगा कि फलानी जगह कौन रहते हैं, अरे वो रहते हैं, और यहाँ अपने बाजू में कौन रहता है वो भी नहीं पता शहरों में।
2: जीवन में क्या बीत रहा है ये भी नहीं पता होता है।
1: जी बिल्कुल।
2: और गांव में आप देखो कई पीढ़ियों तक की बातें लोगों एक दूसरे को बताते हैं कि उनके परिवार के लोग ये थे वो थे ऐसे थे वैसे थे, या आते जाते दरवाजे से भी गुजरते हैं तो दुआ सलाम होती रहती है, राम राम होती रहती है।
1: बिल्कुल होती है।
2: लेकिन यहाँ तो कोई किसी की शक्ल ही नहीं देख पाता।
1: यहाँ पर तो ऐसा होता है सविता जी के साथ में भी, वो भी अपने घर से बाहर निकले, हम भी हमारे घर से बाहर निकले, लेकिन नजरे मिल गई तो भी ऐसा लग जाता है कि अरे क्यों मिली, चलो अपने रास्ते। इस तरह का माहौल भी है शहरों
2: मतलब
1: में।
2: वो चीजें खत्म हो रही हैं शहर से, और इतनी भागम भाग और सुख शांति, और आप देखो क्या कहते हैं कि मतलब बिल्कुल अजीब सा माहौल। मुझे गांव बहुत पसंद है उषा जी, बचपन से।
1: चलिए सविता जी, गांव पसंद है तो क्यों ना अपन आबू के आसपास बहुत सारे गांव है, आपको मैं जरूर घुमा के लाऊंगी।
2: नहीं घुमा है मैंने थोड़ा बहुत, लेकिन कभी कभी मुझे, मैं आपको दिल की बात बताती हूँ, सच बात, आप रेडियो में मेरे दिल की भावना जो एकदम सच्चाई से कह रही हूँ। एक बार मैं इधर गई थी गाँव की तरफ ऐसे किसी काम से, तो मैंने देखा वहाँ पे कि जो गांव के लोग थे आदिवासी बच्चे थे उषा बहन, वो इतना अच्छा खेल कूद रहे थे पूरे मतलब खेतों में इधर उधर, अपने जानवरों को भी चरा रहे थे और बड़े मजे से खेल रहे थे
1: जी।
2: तो और कहां कहां उन्होंने अपनी झोपड़ियां बना रखी थी, और मतलब कहीं पहाड़ पर थोड़ा ऊंचाई होती ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़, थोड़े थोड़े ऊंचे पहाड़ रहते वहां जी, पर जी, एक जी। नीचे कोई कहीं कोई कहां, और अलग अलग झोपड़ी पास पास में सटके नहीं बनी थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। जानते हैं क्यों अच्छी लगी? मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब हम शहर में जमीन खरीदने जाते हैं तो कितना नाप जो कितना सारा पैसा देकर हम लोग छोटे छोटे से फ्लैट खरीदते हैं या जमीन खरीदते हैं, और उसी में ना एकदम दड़बे में कबूतर खाने में सब रहते हैं। कई बार तो एक परिवार में कई लोगों को रहना पड़ता है ना उषा जी। और आप ये देखेंगे कि वहां पे मैंने देखा कि कोई नाप जोक नहीं, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक है ऐसा लग रहा था, और प्रकृति का पूरा सुख उठा रहे थे, हवा भी अच्छी धूप भी अच्छी, बच्चे खुलकर खेल रहे थे, उन्हें कहीं किसी गार्डन की जरूरत नहीं, किसी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं कि हम बच्चों को कहां खेलने भेजें, और आराम से एक झोपड़ी के बगल दूसरी झोपड़ी नहीं थी, आराम से फैल फैल के मजे से रह रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
1: बिल्कुल सविता जी,
2: देखो इनको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते और कितने आराम से प्रकृति का पांचों सुख ले रहे हैं
1: जी।
2: प्रकृति के पांचों तत्वों का सुख मिल रहा
1: है। कहते हैं शहरों में कितने भी भाग दौड़ करो फिर भी आधी ही मिलती है, और गांव में आप थोड़ा सा भी भाग दौड़ करोगे मेहनत करोगे आपको पूरी मिल जाएगी।
2: हाँ।
1: क्योंकि प्रकृति तो नेचुरल वहाँ होती ही है, और शहरों में तो हम देखते हैं कि फ्लैट लेते हैं तो नीचे व्यवस्था देखते हैं, अच्छा यहाँ पर झूला है कि नहीं है, अच्छा यहाँ पर रोशनी किधर से आएगी, यहाँ पे बगीचा है कि नहीं है, वो कितना देखना पड़ता है, और हर चीज की कीमत चुकाई जाती है,
2: मिलती ही नहीं है। मैंने देखा कई बार जिनके पास बहुत पैसा हो भले थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं ऐसी जगह अपना घर बना ले, लेकिन ज्यादातर लोगों को आप देखो खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं वो इतनी चीजें नहीं उनको मिल पाती, धूप के लिए तरसना होता है, बच्चे छोटे छोटे से कमरों में बालकनी में ऐसे खेलते रहते, उनको जगह नहीं मिल पाती। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यही सोचती थी कि वास्तव में गांव बहुत अच्छी चीज होती है।
1: गांव का अलहड़ जीवन, बच्चों का शारीरिक विकास, ये सब बहुत होता है, क्योंकि खुले मैदान में आप जितना चाहो दौड़ो भागो गाओ नाचो कोई भी खेल खेलो आप
2: जीवन में,
1: बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं।
2: उनको देखने में अच्छा लगता है, बच्चे उनके साथ खेलते रहते दौड़ते रहते, मुझे अच्छे लगते हैं जानवर।
1: लेकिन सविता जी हम बात कर रहे थे कर्म की कि कर्म करने से लोग आजकल क्या थोड़े से कतराते हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ी मेहनत में काफी कुछ मिल जाए इसके लिए फिर लोग विकर्म करना शुरू कर देते हैं।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और कर्म तो कर ही रहे हैं, कर्म तो बल्कि पहले से ज्यादा ही हो रहे हैं आप देखिए, और कई तरीके से लोग कर रहे हैं, लेकिन प्राप्तियां नहीं हो पा रही, जितना हम प्राप्ति चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रही। इसी बात को तो मैंने कहा कि देखिए जो गाँव में रहने वाले लोग वो इतना दिमाग नहीं लगाते, इतना कर्म दुनियावी तौर पे नहीं करते, लेकिन आप देखिए उन्हें वो सब कुछ मिल रहा है, घर भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही, शांति भी मिल रही, हाँ दिखावा नहीं होता उनके पास
1: जी।
2: कम कपड़ों में, कम खाना पीने में, कम मतलब भौतिक चीजें नहीं है उनके पास, ज्यादा विलासपूर्ण चीजें जिसे कहेंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा बहुत सुख शांति लगी।
1: कहते हैं कि हम अच्छा शहरों में भले कितनी मेहनत करके कितने पैसा खर्च करके सारी सुविधाओं को खरीद लेते हैं, फिर भी गांव में जाकर के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम खाली है।
2: हाँ बहुत, हाँ उनके सामने लगता है। और देखिए हम जो बाहर बहुत कर्म कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ टेंशन भी आ रहा है, तनाव भी हम लेके आ रहे हैं अपने जेब में, तनाव भी, और पैसे के लिए तो बहुत ज्यादा ही मतलब संसार जैसे एकदम कहां से कहां जा रहा हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो संसार में के दुख को, वो कर्म जो है वो दुख को कम नहीं कर पा रहे, बल्कि आप देखिए दुख को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए कर्म के भी दो प्रकार हैं, कर्म करना है हमें तो विकर्म करें या सुकर्म करें। तो अगर आप सुकर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो आप देखिए आपको सुख की प्राप्ति होगी। और अच्छे कर्म का फल आप जानते हैं क्या होता है, और बुरे कर्म का फल भी रामायण और महाभारत उदाहरण है हमारे सामने।
1: तो सविता जी कहने का भाव यही है कि कर्म करेंगे तो ही फल की प्राप्ति होगी
2: जी।
1: कर्म नहीं करेंगे तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए कर्म करिए। लेकिन कहते हैं कि कर्म करने के बाद फल ऊपर वाले पर छोड़ देना है, क्योंकि हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम तो हमको मिलना ही है, उसके फल की प्राप्ति तो होनी ही है। इसलिए ऐसा नहीं कि भाई हमने 2 घंटे मेहनत की और हमको 8 घंटे के पैसे मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। जितना समय आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। बाकी ज्यादा कमाने के चक्कर में कोई भी विकर्म नहीं करना है, नहीं तो कहते हैं कि वो हिसाब किताब की लिस्ट में चला जाता है। फिर थोड़े समय हम पूर्व जन्मों के पुण्य के खाते की वजह से या पुण्य कर्मों की वजह से हम खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर जब हम विकर्म करते हैं वो भी तो जमा होता है और इसकी भोगना फिर भोगनी पड़ती है, तब काफ़ी तकलीफ होती है, काफ़ी कष्ट सहने पड़ते हैं, दुख होता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करिए और जितना मिले उससे खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, और ऐसी ही आदत डालिए कि भाई हम इतने कैपेबल हैं और इस अनुसार हम रह सकते हैं, बाकी योग्यता कम है और हम ज़्यादा की इच्छा रखते हैं तो फिर दुखी होंगे। तो सविता जी समय हो रहा है फिर से एक ब्रेक लेने का
2: जी,
1: तो ले लेते हैं एक अल्पविराम। सुनते रहिए,
2: मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो।

0: Hi, I'm Priyanka Chopra, and I'm truly blessed to share an incredible relationship with my parents. I just wonder, you know, the love, trust, the kind of feeling that you have for your own family. Can you feel like that for anyone and everyone else? Can you treat every single human being that you come across with that same love and trust? Well, that's what the Brahma Kumaris teach you, to treat every single human being that comes across with you with that same kind of feeling, with that same kind of love.
1: क्या खूब लिखा है किसी ने, गांव को गांव ही रहने दो साहब, क्यों शहर बनाने में तुले हुए हो। क्या खूब लिखा है किसी ने, गांव को गांव ही रहने दो साहब, क्यों शहर बनाने में तुले हुए हो। गांव में रहोगे तो माता पिता के नाम से जाने जाओगे, और शहर में रहोगे तो मकान नंबर से पहचाने जाओगे। तो ये थोड़ी सी सविता जी मेरे को याद आ गई थी, ऐसे ही कॉमेडी शायरी तो मैंने सुना दी।
2: बहुत अच्छी बात कही,
1: क्योंकि अपने सविता जी, अपने क्या टॉपिक का नाम ही है खुशनुमा जीवन। कोई भी बात कहो लेकिन खुशी वाली होनी चाहिए,
2: खुशी से
1: और उससे खुश, हाँ उससे खुश रहने चाहिए सुनने वाले भी और हम बोलने वाले भी।
2: और जो अभी आपने सुनाई ये बात हमारी पीछे वाली बात से मिलती जुलती है,
1: बिल्कुल मिलती जुलती
2: है। जैसे उन्होंने क्या कहा कि अगर हम गांव में रहेंगे तो माता पिता के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि माता पिता का नाम होता है वहाँ पे, उनकी जन्मभूमि होती है, उनके कर्म होते हैं, जिस वजह से हमारी भी पहचान बनती है।
1: जी बिल्कुल।
2: और शहर में हमारी पहचान तो होती नहीं, हम क्या हो जाते हैं, मकान नंबर से जाने जाता। और दूसरा, जब हम कर्म ऐसे करेंगे तो शहर में भी हमारा नाम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है
1: बिल्कुल।
2: लेकिन ये है कि कर्म का महत्व गांव में भी बताया गया है, और शहर में आके व्यक्ति वो इतने अच्छे नहीं कर पाता, क्योंकि जीवन ऐसा बन जाता है भाग दौड़ का, एक मशीनी जीवन हो जाता है उषा जी, और पत्थर जैसा हो जाता है। कई बार आप देखो, एक अपार्टमेंट में रहने वाले अगल बगल क्या हो रहा उनको नहीं पता होता, लेकिन गांव में ऐसा होता है उषा?
1: नहीं, पूरे गांव का पता होगा कि फलानी जगह कौन रहते हैं, अरे वो रहते हैं, और यहाँ अपने बाजू में कौन रहता है वो भी नहीं पता, शहरों में
2: जीवन में क्या बीत रहा है ये भी नहीं पता होता है।
1: जी बिल्कुल।
2: और गांव में आप देखो, कई पीढ़ियों तक की बातें लोगों एक दूसरे को बताते हैं कि उनके परिवार के लोग ये थे, वो थे, ऐसे थे, वैसे थे, या आते जाते दरवाजे से भी गुजरते हैं तो दुआ सलाम होती रहती है, राम राम होती रहती है,
1: बिल्कुल होती है।
2: लेकिन यहाँ तो कोई किसी की शक्ल ही नहीं देख पाता।
1: यहाँ पर तो ऐसा होता है सविता जी के साथ में भी, वो भी अपने घर से बाहर निकले, हम भी हमारे घर से बाहर निकले, लेकिन नजरें मिल गई तो भी ऐसा लग जाता है कि अरे नजरे क्यों मिली, चलो हाँ। अपने रास्ते, इस तरह का माहौल भी है शहरों
2: मतलब
1: में।
2: वो चीजें खत्म हो रही हैं शहर से, और इतनी भागम भाग और सुख शांति, और आप देखो क्या कहते हैं कि मतलब बिल्कुल अजीब सा माहौल। मुझे गांव बहुत पसंद है उषा जी, बचपन से।
1: चलिए सविता जी, गांव पसंद है तो क्यों ना अपन आबू के आसपास बहुत सारे गांव है, आपको मैं जरूर घुमा के लाऊंगी।
2: और नहीं, घुमा है मैंने थोड़ा बहुत, लेकिन कभी कभी मुझे, मैं आपको दिल की बात बताती हूँ, सच बात, आप रेडियो में मेरे दिल की भावना जो एकदम सच्चाई से कह रही हूँ। एक बार मैं इधर गई थी गाँव की तरफ ऐसे किसी काम से, तो मैंने देखा वहाँ पे कि जो गांव के लोग थे, आदिवासी बच्चे थे उषा बहन, वो इतना अच्छा खेल कूद रहे थे पूरे, मतलब खेतों में इधर उधर अपने जानवरों को भी चरा रहे थे और बड़े मजे से खेल रहे थे
1: जी।
2: तो और कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी झोपड़ियाँ बना रखी थी, और मतलब कहीं पहाड़ पर थोड़ा ऊंचाई होती ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़, थोड़े थोड़े ऊंचे पहाड़ रहते वहां जी, पर जी, एक जी। नीचे कोई कहीं कोई कहा, और अलग अलग झोपड़ी पास पास में सटके नहीं बनी थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। जानते हैं क्यों अच्छी लगी? मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब हम शहर में जमीन खरीदने जाते हैं तो कितना नाप जो, कितना सारा पैसा देकर हम लोग छोटे छोटे से फ्लैट खरीदते हैं या जमीन खरीदते हैं, और उसी में ना एकदम दड़बे में कबूतर खाने में सब रहते हैं। कई बार तो एक परिवार में कई लोगों को रहना पड़ता है ना उषा जी। और आप ये देखेंगे कि वहां पे मैंने देखा कि कोई नाप चोक नहीं, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक है ऐसा लग रहा था, और प्रकृति का पूरा सुख उठा रहे थे, हवा भी अच्छी, धूप भी अच्छी, बच्चे खुलकर खेल रहे थे, उन्हें कहीं किसी गार्डन की जरूरत नहीं, किसी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं कि हम बच्चों को कहाँ खेलने भेजे, और आराम से एक झोपड़ी के बगल दूसरी झोपड़ी नहीं थी, आराम से फैल फैल के मजे से रह रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था,
1: बिल्कुल सविता जी,
2: इनको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते और कितने आराम से प्रकृति का पांचों सुख ले रहे हैं
1: जी।
2: प्रकृति के पांचों तत्वों का सुख मिल रहा है।
1: शहरों में कितने भी भाग दौड़ करो फिर भी आधी ही मिलती है, और गांव में आप थोड़ा सा भी भाग दौड़ करोगे, मेहनत करोगे, आपको पूरी मिल जाएगी।
2: हाँ।
1: क्योंकि प्रकृति तो नेचुरल वहाँ होती ही है, और शहरों में तो हम देखते हैं कि फ्लैट लेते हैं तो नीचे व्यवस्था देखते हैं, अच्छा यहाँ पर झूला है कि नहीं है, अच्छा यहाँ पर रोशनी किधर से आएगी, यहाँ पे बगीचा है कि नहीं है, वो कितना देखना पड़ता है और हर चीज की कीमत चुकाई जाती है।
2: मिलती ही नहीं है, मैंने देखा कई बार, जिनके पास बहुत पैसा हो भले थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं, ऐसी जगह अपना घर बना ले, लेकिन ज्यादातर लोगों को आप देखो, खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं, वो इतनी चीजें नहीं उनको मिल पाती। धूप के लिए तरसना होता है, बच्चे छोटे छोटे से कमरों में बालकनी में ऐसे खेलते रहते, उनको जगह नहीं मिल पाती। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यही सोचती थी कि वास्तव में गांव बहुत अच्छी चीज होती है।
1: गांव का अलहड़ जीवन, बच्चों का शारीरिक विकास, ये सब बहुत होता है, क्योंकि खुले मैदान में आप जितना चाहो दौड़ो, भागो, गाओ, नाचो, कोई
2: भी
1: खेल खेलो आप, बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं।
2: देखने में अच्छा लगता है, बच्चे उनके साथ खेलते रहते, दौड़ते रहते, मुझे अच्छे लगते हैं जानवर।
1: लेकिन सविता जी, हम बात कर रहे थे कर्म की कि कर्म करने से लोग आजकल क्या थोड़े से कतराते हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ी मेहनत में काफी कुछ मिल जाए, इसके लिए फिर लोग विकर्म करना शुरू कर देते हैं।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और कर्म तो कर ही रहे हैं, कर्म तो बल्कि पहले से ज्यादा ही हो रहे हैं, आप देखिए, और कई तरीके से लोग कर रहे हैं, लेकिन प्राप्तियां नहीं हो पा रही, जितना हम प्राप्ति चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रही। इसी बात को तो मैंने कहा कि देखिए, वो जो गाँव में रहने वाले लोग, वो इतना दिमाग नहीं लगाते, इतना कर्म दुनियावी तौर पे नहीं करते, लेकिन आप देखिए उन्हें वो सब कुछ मिल रहा है, घर भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है।

0: शांति भी मिल रही, हाँ दिखावा नहीं होता उनके पास
1: जी।
0: कम कपड़ों में, कम खाना पीने में, कम मतलब भौतिक चीजें नहीं है उनके पास, ज्यादा विलासपूर्ण चीजें जिसे कहेंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा बहुत सुख शांति लगी।
1: कहते हैं कि हम अच्छा शहरों में भले कितनी मेहनत करके, कितने पैसा खर्च करके सारी सुविधाओं को खरीद लेते हैं, फिर भी गांव में जाकर के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम खाली है।
0: हाँ बहुत, हाँ उनके सामने लगता है। और देखिए हम जो बाहर बहुत कर्म कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ टेंशन भी आ रहा, तनाव भी हम लेके आ रहे हैं अपने जेब में, तनाव भी, और पैसे के लिए तो बहुत ज्यादा ही, मतलब संसार जैसे एकदम कहाँ से कहाँ जा रहा हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो संसार में के दुख को, वो कर्म जो है वो दुख को कम नहीं कर पा रहे, बल्कि आप देखिए दुख को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए कर्म के भी दो प्रकार हैं, कर्म करना है हमें तो विकर्म करें या सुकर्म करें, तो अगर आप सुकर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो आप देखिए आपको सुख की प्राप्ति होगी। और अच्छे कर्म का फल आप जानते हैं क्या होता है, और बुरे कर्म का फल भी, रामायण और महाभारत उदाहरण है हमारे सामने।
1: तो सविता जी कहने का भाव यही है कि कर्म करेंगे तो ही फल की प्राप्ति होगी
0: जी।
1: कर्म नहीं करेंगे तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए कर्म करिए। लेकिन कहते हैं कि कर्म करने के बाद फल ऊपर वाले पर छोड़ देना है, क्योंकि हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम तो हमको मिलना ही है, उसके फल की प्राप्ति तो होनी ही है। इसलिए ऐसा नहीं कि भाई हमने 2 घंटे मेहनत की और हमको 8 घंटे के पैसे मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। जितना समय आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। बाकी ज्यादा कमाने के चक्कर में कोई भी विकर्म नहीं करना है, नहीं तो कहते हैं कि वो हिसाब किताब की लिस्ट में चला जाता है। फिर थोड़े समय हम पूर्व जन्मों के पुण्य के खाते की वजह से या पुण्य कर्मों की वजह से हम खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर जब हम विकर्म करते हैं वो भी तो जमा होता है और इसकी भोगना फिर भोगनी पड़ती है, तब काफ़ी तकलीफ होती है, काफ़ी कष्ट सहने पड़ते हैं, दुख होता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करिए और जितना मिले उससे खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, और ऐसी ही आदत डालिए कि भाई हम इतने कैपेबल हैं और इस अनुसार हम रह सकते हैं, बाकी योग्यता कम है और हम ज़्यादा की इच्छा रखते हैं तो फिर दुखी होंगे। तो सविता जी समय हो रहा है फिर से एक ब्रेक लेने का
0: जी,
1: तो ले लेते हैं एक अल्पविराम। सुनते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो मधुबन।

0: ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई

आशियाना के किचन में आप सभी पधारिए। आज बनाएंगे आशियाना के किचन में बेसन का केक। ठीक है, केक कितने ही तरह के बनाए जाते हैं और बहुत सारे तरीके के आपको सिखा चुके हैं। आज आपको सिखाएंगे बेसन का केक। इसके लिए सामग्री लिखवा रही हूँ। पेन और डायरी तो आप ले ही लीजिए और लिखिएगा एक कटोरी बेसन। ठीक है, फिर लीजिएगा आप एक कटोरी मैदा। अब लीजिए सूजी आधी कटोरी। एक कटोरी नारियल का बुरादा लेना है, मतलब कसा हुआ नारियल। फिर लीजिए एक चौथाई चम्मच वनीला एसेंस, दो चम्मच शहद ले लीजिए, एक चम्मच बेकिंग पाउडर लेना है और कुछ कटे हुए मेवे लेने हैं आपको, एक कटोरी शक्कर ले लीजिए और एक कटोरी ही मलाई लीजिएगा। तो ये हो गई बेसन के केक की सामग्री, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ। एक नजर डाल दीजिएगा, बेसन कितने बोली थी मैं, एक कटोरी। फिर मैदा, ये भी एक कटोरी। सूजी आधी कटोरी, एक कटोरी नारियल कसा हुआ, जिसको हम नारियल का बुरादा भी कह सकते हैं। फिर आप लीजिए एक चौथाई चम्मच वनीला एसेंस, दो चम्मच शहद, बेकिंग पाउडर लीजिए एक चम्मच, कुछ कटे हुए मेवे ले लीजिए आवश्यकता के अनुसार और एक कटोरी शक्कर लीजिएगा, एक कटोरी ही लेनी है मलाई की। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए। तब तक के लिए आपको एक गीत सुनाएंगे, उसके बाद बेसन का केक कैसे बनाया जाता है वो भी जरूर सिखाएंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रहा है बेसन का केक। बेसन का केक की सामग्री आप सभी को लिखवा चुकी हूँ, फिर भी एक नजर डाल दीजिएगा, कहीं छूट गया हो तो आप नोट कर लीजिए। बेसन, मैदा, सूजी, कसा हुआ नारियल, वनीला एसेंस, शहद, बेकिंग पाउडर, कटे हुए मेवे, चीनी और मलाई। आइए अब बनाने का तरीका भी आपको सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, शक्कर को पीस लीजिए और फिर मलाई को अच्छी तरह फेंटिए। अब आप मलाई और शक्कर जो पीसी हुई है ना, इन दोनों को मिला करके हल्के हल्के हाथों से फिर से फेंटिए। अब आप मैदा, बेसन और सोडा तीनों को छलनी से छान लीजिए और अब इस मिश्रण में वनीला एसेंस डालिए। बेसन, मैदा, सूजी में एसेंस का मिश्रण डाल करके अच्छी तरह से फेंटिए। इसके अंदर आप कटे हुए मेवे मिला दीजिए, केक पार्ट पर चिकनाई लगा दीजिए और मैदा छिड़क करके मिश्रण डालिए और सारा मिश्रण डाल करके फिर 45 मिनट तक बेक करिए। तो इस तरह बेसन का केक हमारा तैयार हो चुका है। पुनः विधि को दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। केक बाहर से हम लाते हैं, बहुत महंगे महंगे आते हैं और कहते हैं कि भाई हर महंगी चीज हर एक के बजट में संभव नहीं होती और इच्छाएं तो सभी रखते हैं। बच्चे की बर्थडे आती है, घर में माता पिता की बर्थडे या किसी का भी जन्मदिन आता है तो ऐसी इच्छा होती है कि भाई केक काटे, केक लावे, बच्चों को केक खिलाए, लेकिन क्या करें, बजट से बाहर है हमारा सारा खर्चा। तो फिर करना भी है, शौक भी पूरा करना है, बजट भी देखना है, तो फिर यही अच्छा तरीका है कि आप घर पर ही केक बनाइए ताकि बजट में भी रहेगा और अपने शौक को भी पूरा कर सकेंगे और बच्चे, बुजुर्ग इन सभी को भी आप खुश रख सकेंगे, है ना। तो इस तरह आप केक बना सकते हैं, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। पुनः मैं विधि को दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और अच्छी तरह बनाइएगा। शक्कर को आप पीस लीजिए, ठीक है, या फिर पीसी हुई शक्कर भी ले सकते हैं। अब आप मलाई को फेंटिए, ठीक है, मलाई को फेंट ली, अब इसमें पीसी हुई शक्कर मिला दीजिए और फिर दोनों को मिला करके फिर से हल्के हाथों से फेंटिए। फेंटने के बाद अब आप मैदा, बेसन और सोडा इन सभी को आप साथ में ही मिक्स करके छलनी में छान लीजिए। एक एक का नंबर लीजिए ताकि तीनों ही अपने आप मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर अब इस मिश्रण में वनीला एसेंस डालिए। किस में छाना आपने, जो हमने बेकिंग पाउडर और शक्कर ये सब मिक्स किया ना, इसी के अंदर मलाई फेटी थी ना, मलाई के अंदर शक्कर पीसी हुई डाली, इसी के अंदर आपको सोडा, बेसन और मैदा छानना है, ठीक है, ताकि मैं अच्छी तरह बता दूं आप लोगों की भूल ना पड़े। फिर इस मिश्रण में वनीला एसेंस डालिए, ठीक है। बेसन, मैदा, सूजी में एसेंस का मिश्रण डाल दिया, अब आप फिर से अच्छी तरह फेंटिए इन सभी को और फिर लास्ट में कटे हुए मेवे मिला दीजिए। इन सभी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब केक पार्ट पर आप चिकनाई लगाइए तेल या घी की और उस पर आप थोड़ा सा मैदा छिड़क दीजिए और फिर जो मिश्रण तैयार किया है इसको डालिए और डाल करके 45 मिनट तक बेक करिए। तो ये बेसन का केक तैयार हो चुका है, ठीक है। पर भाई जिसका केक का वो कहते हैं ना ओवन हो वो ही केक बनाना, नहीं तो नहीं बनाना। बहुत सारी चीजें तो क्या बाटी के कुकर में आपको सिखा देती हूँ, लेकिन केक को आप बाटी के कुकर में नहीं बना सकते। इसलिए अगर ओवन है तो आप जरूर बनाइएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको और भी तरीका बताएंगे हम, बहुत सारे तरीके बताते रहते हैं केक बनाने के, तो कोई अलग तरीका बताएंगे जिससे आप बिना ओवन के भी केक बना सकते हैं। लेकिन आज जो मैंने तरीका सिखाया है वो ओवन होगा तो ही बना सकेंगे। तो चलिए बेसन का केक तैयार हो चुका है। अब आप लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप केक रखिए और पूरी सब्जी जो भी बनाई है वो भी रख दीजिएगा थाली में, तुलसी पत्र और जल के स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए। ऊपर से स्वच्छ कपड़े को ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित, बच्चों सहित आनंद लीजिएगा बेसन के केक का और साथ ही साथ एक गीत का। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। देखिए, खूबसूरती निखारती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब जो भी खूबसूरत होना चाहते हैं एक्सरसाइज जरूर करिएगा। और हर कोई यही चाहता है कि भाई मैं अच्छी दिखूं, सुंदर दिखूं, तो बस थोड़े से आलस्य को त्याग करके एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आप फिट एंड फाइन रहेंगे। पर आपको एक्सरसाइज ऐसे नहीं कि एक दिन किया, दो दिन किया, चार दिन छोड़ दिया, वो नहीं, आपको रेगुलर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर रेगुलर आप करते हैं तब तो आप अच्छी बात है। बाकी आप कहेंगे उषा जी ने बोला एक्सरसाइज करेंगे तो सुंदर हो जाएंगे, चार दिन, दस दिन या एक महीना तो हमने किया, कोई सुंदर ही नहीं हुए तो फिर से हमने तो छोड़ दी, तो भाई ये आप करोगे तो मैं इसकी गारंटी नहीं लेती हूँ, ठीक है ना। आप रेगुलर करेंगे, रोज करेंगे, तो आप सचमुच स्वस्थ भी रहेंगे और स्फूर्तिवान भी बने रहेंगे, ठीक है ना। और कहते हैं कि सबसे बड़ी खुशी जब मिलती है तब हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो इसमें बहुत जनों की भी राय है, जैसे कि शोधकर्ताओं ने भी एक्सरसाइज करने और न करने वाली महिलाओं के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि एक्सरसाइज करने वाली महिलाएं शेप में रहने के साथ साथ ही ज्यादा मजबूत खुद को महसूस करती है। फिर दूसरी ओर देखा, एक्सरसाइज न करने वाली महिलाएं अपनी बॉडी शेप और लुक को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं रहती। दोनों ही तरह की सोच का असर महिलाओं के मूड और चेहरे की निखार पर पड़ता है। मेरी प्यारी बहनों, एक्सरसाइज करने वाली बहनें ज्यादा सकारात्मक और खुश होती है। रोजाना ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग से त्वचा की रंगत बढ़ती है, ठीक है ना। क्या क्या फायदे है वो मैं आपको बता रही हूँ। दरअसल इस दौरान क्या होता है, दिल तेजी से पंप करता है और रक्त संचार बढ़ता है। ऐसे में त्वचा तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचता है जो शरीर के लिए काफी फायदा करता है, मददगार होता है। तो एक्सरसाइज करते समय जो पंपिंग होती है, जो शरीर में उस समय जो एक्सरसाइज होती है अंदर से हमारे शरीर की, सचमुच बहुत ही फायदेमंद है, जरूर आप करिएगा। और एक्सरसाइज के अलावा अन्य गतिविधियां जिससे रक्त संचार बढ़ता है, त्वचा को स्वस्थ रखने में फायदेमंद होती है, वो भी आपको मैं बता रही हूँ। एक्सरसाइज से तो फायदा है ही, लेकिन साथ ही साथ किन किन चीजों से फायदे हैं वो भी आप जानेंगे। अच्छी नींद, देखिए अच्छी त्वचा के लिए पर्याप्त नींद भी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करने से नींद भी अच्छी आती है। नींद के दौरान शरीर कुछ ऐसे हार्मोन का स्त्राव करता है जो उत्तकों को सुधारने या फिर उन्हें फिर से बनाने का काम करता है। और भी आप जानेंगे एलोवेरा, एलोवेरा जेल त्वचा को साफ करने के साथ ही पोषण भी देता है। रात में सोने से पहले ये जेल लगाइए और सुबह उठ करके धो लीजिए इस, और ये आप झाइयों पर भी लगा सकते हैं, तो इससे भी चेहरा चमक उठेगा और फायदा ही फायदा। एक्सरसाइज के साथ साथ ये भी आप कर सकते हैं। फिर आप देखिए आलू, विटामिन सी से भरपूर आलू प्राकृतिक ब्लीच की तरह काम करता है। आलू को पीस करके पेस्ट बनाइए और पूरे चेहरे पर लगा करके 30 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं, यह सूर्य की रोशनी से भी राहत देता है, ठीक है ना। तो कितने सारे फायदे हैं एक्सरसाइज के साथ साथ, एक्सरसाइज करते हैं साथ ही साथ ये भी नुस्खे आजमाते हैं तो सचमुच सुंदरता भी बढ़ती है स्किन की और स्फूर्ति भी आती है, स्वस्थ भी रहते हैं, फिट भी रहते हैं, फायदे ही फायदे हैं। तो जरूर आप एक्सरसाइज करिए। तो ये आपको सामान्य जानकारी दी गई है, ध्यान रखिएगा। और अब आपको फिर से सुना देते हैं गीत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, बहुत ही अच्छे घरेलू नुस्खे दिए हैं, जरूर आप ध्यान रखिएगा। और अगर इस तरह की बीमारी है तो इन नुस्खों को जरूर आजमाइएगा। खुशनुमा जीवन में सविता जी के साथ बहुत ही अच्छी बातें हुई है। श्रेष्ठ कर्म करेंगे और तो प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी, और कर्म तो करने ही है, इसलिए हमेशा कर्म प्रधान बने रहिएगा और कर्म करते रहिए, फल ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। और नए नए व्यंजन में आपको बेसन का केक बनाना सिखाया है तो ज़रूर बना करके खाइएगा। और सामान्य जानकारी भी बहुत ही अच्छी मिली है आप सभी को, एक्सरसाइज करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे और खूबसूरती भी निखरेगी। और जानने योग्य बात आपको बता रही हूँ, तन और मन में संतुलन बना सकता है योग। योग का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन अर्थात योग बनाना है। योग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुद्रा, ध्यान और श्वसन संबंधी अभ्यास की आवश्यकता होती है। योग की क्रियाओं में जब तन, मन और आत्मा के बीच योग बनता है तब आत्मिक संतुष्टि, शांति और चेतना का अनुभव होता है। इसके अलावा योग शारीरिक और मानसिक रूप से भी फायदेमंद है। आज के अनमोल वचन इस प्रकार है, सर्व का सहयोग लेने के लिए पहले स्वयं सहयोगी बनना पड़ता है। अब मैं आपको होली पर एक प्यारा सा गीत सुनाऊंगी, आप लेंगे गीत का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घणी खमा सा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की श्रृंखला जीना इसी का नाम है, इसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम जब कोई व्यक्ति की या किसी का भी हम जीवन देखते हैं और उनके जीवन को गहराई उनसे जानते हैं, ऐसा लगता है कि क्या जिया है इन्होंने, काश हम भी ऐसे जी पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ ऐसी प्रेरणादायी अनुभवों के साथ आज हमारे साथ हैं बाला साहेब अप्पा घोरपाड़े भाई जी। आप शांतिवन ब्रह्मा कुमारीज की जो हेडक्वार्टर्स है उस परिसर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक योगी जीवन जीते हुए कार्य करना, क्या सन्यासी कोई कार्य कर सकता है? अगर कार्य करने वाले हैं या कोई प्रोफेशनल वर्क अगर संभालते हैं, क्या वो सन्यासी बन सकते हैं? आखिर सन्यास का मतलब क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे मन में, तो इन सारे सवालों की उलझनों को आज हम सुलझेंगे और कई सारी नई जानकारियां आज हम जानेंगे आज की इस बातचीत में। चलिए स्वागत करते हैं बाला साहेब भाई जी को। भाई साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जीना इसी का नाम है। नमस्कार।
1: थैंक यू। नमस्कार
0: जी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका लौकिक जो परिवार है, आपका लौकिक जो जन्म है, वो कहाँ पे हुआ और वो शुरुआत जीवन की कहाँ से हुई, और संक्षिप्त में आपके परिवार और ये सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे।
1: तो बहुत अच्छा आपने पहला क्वेश्चन किया। वैसे हमारा जो लौकिक गांव है वो महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा फेमस है
0: जी,
1: सारे विश्व के अंदर जहाँ एयरपोर्ट भी है, वहाँ से ही 10-12 किलोमीटर शिरडी शिंगनापुर हाईवे, वहाँ एक छोटा सा गांव है। वह हमारा जन्म हुआ 1970 में, और उसी गांव में हमारी पढ़ाई भी हुई, प्राइमरी और हाई स्कूल 10वीं तक। उसके बाद वहाँ से 8 किलोमीटर हमारा कॉलेज था, वहाँ हम उस समय साइकिल पर ही जाते थे, 7 किलोमीटर था। तो हमने बीए कॉमर्स करने के बाद ईएमए में एडमिशन लिया, 1 पार्ट किया, और उसके बाद हम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर समर्पित हो गए।
0: भाई साहब, उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी लौकिक परिवार की अपनी अपनी पढ़ाई तो कही आपने, आपके माता पिता क्या करते थे और आप धार्मिक परिवार से थे?
1: हाँ जी, हमारे माता पिता खेती करते हैं, आज भी हमारे घर में खेती है। और धार्मिकता कहेंगे तो बचपन से ही हमारे मम्मी पापा भी धार्मिक प्रवृत्ति या धर्म को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले थे, इसलिए हमें भी ईश्वर के प्रति आस्था थी
0: जी। तो वो कौन सा मोमेंट रहा आपको इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो राजयोग मेडिटेशन है इसका परिचय हुआ, और आपके परिवार में सिर्फ आप ही इस राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं या अन्य सदस्य भी करते हैं?
1: तो सबसे पहला ये मोमेंट रहा कि जब मैं 10वीं में था, तब मुझे शिव के मंदिर में हम हर सोमवार को दर्शन करने के लिए जाते थे, शिव की हम पूजा करते थे। और आज भी हमारे गांव के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं शिव को मानने वाले हैं, तो हम भी सोमवार के दिन जाते थे मंदिर में, बेलपत्र चढ़ाते थे। और एक था कि ईश्वर के प्रति मुझे कि मन में बचपन से था, जब मैं 7वीं-8वीं कक्षा में था, तो ईश्वर एक होना चाहिए, भले साई बाबा शिरडी साई बाबा नज़दीक है, फिर भी मन में कभी ये नहीं आया कि ये ईश्वर है, क्योंकि वो भी कहते सबका मालिक एक है। और मैं हमारे टीचरों को भी पूछता था कि घर में जैसे चित्र होते हैं, देवियों को 8-8 हाथ दिखाते हैं, या जैसे हम देखते हैं कि त्रिमुख दिखाते हैं, ब्रह्मा को 3 मुख दिखाते हैं, तो मन में क्वेश्चन होता था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान को तो एक ही मुख है, किसी को भी 8-8 हाथ नहीं, तो ये कैसा हो सकता है, ऐसे कोई देवता हो सकते हैं, मन में क्वेश्चन होते थे। तो मैं टीचरों को भी पूछता था कि ईश्वर आखिर का है, ये मेरे मन में एक बचपन से ही क्वेश्चन था। देहधारी कोई भी ईश्वर नहीं हो सकता है, वो एक ही होना चाहिए, ये मेरी बचपन से ही मन में एक संकल्प था
0: जी।
1: और जब हम शिव के मंदिर में गए तो वहाँ प्रदर्शनी लगी हुई थी, अपनी जो 7 दिन की यहाँ प्रदर्शनी होती है इस विद्यालय के अंदर, तो उसके अंदर मैंने पहले ही आत्मा का चित्र देखा, उसके बाद में परमात्मा का देखा, और एक एक जैसे मैं चित्र पढ़ता गया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये कोई अलग चीज़ है, ये जो नॉलेज है ये कोई अलग है। आत्मा के बारे में हम गीता में भी सुनते थे, क्योंकि मैंने ग्रंथ भी पढ़ा था, ज्ञानेश्वरी भी पढ़ी थी, तो सेकंड जो अध्याय है भगवद गीता का उसमें आत्मा के बारे में पूरी नॉलेज दी हुई है, श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। लेकिन एक होता है कि उसकी आत्मा की जानकारी रहना, और दूसरा होता है कि उसकी महसूसता होके उसका अनुभव होना। और ये अनुभव नहीं था कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन जैसे मैंने ये प्रदर्शनी पढ़ी तो मुझे क्लिक हुआ कि ये कोई सत्य है। परमात्मा के जब गुण मैंने पढ़े तो ये जो गुण है इस विश्व में किसी भी मनुष्य आत्मा में नहीं हो सकते, तब मुझे परफेक्ट निश्चय हुआ कि इसको हम भगवान कह सकते हैं। सुप्रीम सोल, जिसको अन्य धर्मों के अंदर डिवाइनिटी, सुप्रीम सोल ऐसे भिन्न भिन्न नाम दे देते हैं, चाहे मुस्लिम लोग उसको अल्लाह कहेंगे, या जैसे क्रिश्चियन लोग मोमबत्ती जलाते हैं, जापानीज लोग देखेंगे तो लाइट को मानते हैं, मतलब इस विश्व को चलाने वाली कोई लाइट है, सत्ता है, ये हमारा निश्चय हो गया। और मुझे किसी ने बताया नहीं, बस मैंने पूरी प्रदर्शनी पढ़ लिया और मैंने कहा कि ये ज्ञान एकदम परफेक्ट है, क्योंकि अभी तक हमने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर सब तरह के सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई की थी, लेकिन उससे हटकर ये था, क्योंकि आज तक किसी ने भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज नहीं बताया। वह मैथमेटिक्स, साइंस, जैसे और भी सब्जेक्ट होते, अलग अलग सब्जेक्ट होते, साइकोलॉजी होता है, फिलासफी, मुझे फिलासफी भी था, इसका जो आंसर है ना कहीं भी नहीं मिलता था, इस बात का कि ईश्वर कहाँ रहता है
0: जी,
1: या आप कौन है वास्तविक, इसका भी कोई भी परिचय नहीं देता था। हर एक अपने आप को यही समझता है कि मैं फलाना हूँ, फलानी कास्ट का हूँ, फलाने धर्म का हूँ, फलाने घर में मेरा जन्म हुआ है, मेरा ये स्टेटस है, मैं ये सर्विस करता हूँ, हर एक ऐसा परिचय देता है। तो वास्तविक ये जो मैं आत्मा हूँ, बस ये जो परिचय है बहुत अच्छा लगा कि मैं और कोई नहीं है, शरीर भिन्न है और मैं आत्मा भिन्न हूँ और परमात्मा एक है। ये दो चीज़ें मुझे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर परफेक्ट और सत्य मालूम हुई। बाकी जो भी परमात्मा बताएगा वो सत्य ही होगा, ये मेरा पूरा निश्चय हो गया
0: जी। तो आपके परिवार में आप अकेले ही इस ज्ञान को समझा है, या फिर आपके भाई बहने, माता पिता, उनको भी इस बात पे निश्चय हुआ?
1: अभी तो माता पिता नहीं है, लेकिन जब मैं ज्ञान में आया तो उन लोगों को मैंने बताया, तो वो लोग भी बड़े, उनको अजीब लगता था, उनका कहना था कि इतने संत होके गए, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर माउली, साई बाबा, ईश्वर के लिए उन्होंने इतनी तपस्या किया, उनको भगवान नहीं मिला। और आप कहते हैं कि शिव बाबा, उनके कन्फ्यूजन में ये भी था कि ये कौन सा बाबा है, क्योंकि शिव बाबा तो दिखाई देता नहीं, बाकी बाबा दिखाई देते, तो ये भी एक कन्फ्यूजन था कि बाबा को दिखाए कैसे। तो फिर मैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझाता था कि फूल का सुगंध तो दिखाई देता नहीं है, हवा दिखाई देती नहीं, ऐसी एक सूक्ष्म शक्ति है इस संसार में कि जो इन आँखों से नहीं दिखाई देती लेकिन है, ये तो मानना पड़ेगा, हवा है मानना पड़ेगा, फूल में सुगंध आता है आपको तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब व्यक्ति चला जाता है तो इसमें कोई चैतन्यता थी, इसलिए तो आप गए थे ना, वो चला गया, कौन चला गया मैं बताता था तो वो चुप रह जाते थे, उनको इसके आंसर नहीं आते थे। तो मुझे ये ज्ञान इतना परफेक्ट हुआ था कि 7 डेज मेरा किया नहीं किसी ने, लेकिन कल पहले जैसे क्लिक हुआ होगा कि मैं इस ज्ञान को दूसरों को बताने में मैं इतना मतलब ये करता था कि ये सत्य है और आप मानते क्यों नहीं। उस समय हमारे यहाँ स्वाध्याय का चलता था, पांडुरंग शास्त्री आठवले फेमस था उस समय, 87-88 की बात है, वो लोग भी गीता को मानते हैं। तो मैं उनको क्वेश्चन करता था कि आप गीता को मानते हैं, गीता को हाथ में लेते हैं, लेकिन गीता में जो कहा हुआ है, गीता की कहाँ तक मानते हैं, उसमें कहाँ तक आप चलते हैं, कहते तो सभी है लेकिन उन बातों को आप लोग कहाँ तक मानते हैं। तो ये मैं उनको क्वेश्चन करता था, लेकिन किसी से भी मुझे आंसर नहीं मिलते थे। तो मुझे बहुत बड़ा एक नशा चढ़ जाता था कि अरे ये ज्ञान इतना सत्य है, किसी भी एंगल से कोई मुझे कुछ भी क्वेश्चन करे तो मैं उसको प्रूव करके देता था। तो ये बड़ा एक नशा था। फिर हमारे माता पिता मधुबन तो आके गए, 2 साल बाद पिताजी आके गए, लेकिन जैसे ज्ञान योग की धारणाएं जैसे हमारी रेगुलरिटी हो वो नहीं करते थे, लेकिन बाद में सभी सपोर्ट हो गए, हमारी भाभी हो भाई हो सब मधुबन आके गए, लौकिक जो संबंधी है बहुत बड़ा परिवार है, कुछ आके भी गए, लेकिन जैसे रेगुलर है वो मैं ही इतने बड़े परिवार से निकला हूँ।
0: जी आपके कितने भाई बहने हैं?
1: मेरे से बड़ा एक भाई है और छोटी बहन है, मैं बीच वाला हूँ।
0: अच्छा।
1: और उनकी शादियाँ हो गई है, वो अपने अपने संसार में सेटल है और हम बीच में शेप रह गए।
0: तो उनको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरा भाई कुछ अलग जीवन जी रहा है, मुझे भी इस बात को समझना है?
1: नहीं, उनको पूरा सपोर्ट है उन लोगों का और बहुत गौरव है उनको। हमारे पिताजी भी 3 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, और उनको भी मेरे जीवन के प्रति बहुत एक सम्मान था, एक रिगार्ड भी उनको बहुत था ज्ञान के प्रति। और हमारे वैसे लौकिक घर में जैसे सेंटर जैसे माहौल होता था बहनों का आना जाना, और आज भी 2012 में हमारे वहाँ घर में 6 जोन इंचार्ज आए थे, सिल्वर जुबली थी हमारी, तो बड़ी बड़ी बहनें आई थी, तो भाभी भी हमारी बहुत, वो बचपन से उनको आध्यात्मिकता है, भाभी को ग्रंथ पढ़ना, अभी स्वामी समर्थ का वो करते हैं, तो पूरा ऐसा मतलब जैसे उनका रोल नहीं हुआ होगा लेकिन पूरा सपोर्ट है, मानते भी है बाबा को, पूरा बाबा का कमरा भी घर में बना हुआ है, पूरा जैसे ऐसे नहीं कहेंगे लेकिन जैसे ये धाराओं में चलने के लिए कोई ऐसी बात बन जाएगी तो इस पर भी वो चलेंगे।
0: भाई साहब ये बताइए कि वो कौन सा पल था जब आपको लगा कि हाँ मुझे समर्पित होना है, क्योंकि 10वीं कक्षा में आपने इस ईश्वरीय ज्ञान का परिचय तो लिया, आपको निश्चय भी हो गया ये सत्य ज्ञान है जो आप जीवन में ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप जब MA इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अचानक से ये क्या हो गया कि आप अपने सब कुछ छोड़ के मधुबन आ गए हैं जीवन समर्पित करने?
1: वो जो मोमेंट है वो बहुत बड़ा विचित्र था
0: जी।
1: पता नहीं मुझे क्या हुआ कि जब मैंने ये एग्जाम ही नहीं दिया तो हमारे क्लास में जो आज भी याद करते जो क्लासमेट है हमारी लड़कियाँ थी ज़्यादा, तो उनको बड़ा शौक लगा कि ये किसने क्या किया, एग्ज़ाम भी नहीं दिया और ये माउंट आबू निकल गया, तो उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि तुम इसमें तो है शुरू से, क्योंकि मैं सोमवार के दिन कॉलेज में लास्ट ईयर में मौन रखता था पूरे साल, और उसका प्रभाव इतना हुआ कि एक दिन लास्ट में सोमवार के दिन ओरल एग्ज़ाम आई, तो यूनिवर्सिटी से जो टीचर आए मैडम ने कहा इसको अगर मौन तोड़ेंगे तो हमको पाप लगेगा, तो सभी की एग्ज़ाम हो गई, तो वो मेरे लिए खास रुक गया। और मंगलवार के दिन उन्होंने सुबह मुझे बुलाया तो उन्होंने यही क्वेश्चन किया, जैसे आपने कहा कि भाई इस एज में आपको ये कोई उम्र है क्या आपकी करने की अध्यात्म, ये जो है सारे 60 साल के बाद 50 साल के बाद करना चाहिए ये सारा, तो वो यही क्वेश्चन करते रहा। लेकिन मुझे ज्ञान का इतना कूट कूट कर भरा हुआ था कि मुझे कोई भी क्वेश्चन करे तो मैं हार नहीं मानता था कि नहीं इसको प्रूव करके ही देना है, चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान हो उसको ये नॉलेज नहीं है, दुनिया का नॉलेज है लेकिन परमात्मा नॉलेज उसके पास नहीं है, मुझे बड़ा नशा था, तो सर भी सुनते रहते थे। और पता नहीं अचानक मुझे जब ये हुआ कि थोड़े से बचपन में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव या जो क्रांतिकारी होके गए देश के लिए, क्योंकि मेरी जन्म कुंडली में ये भी बताया कि 3-4 जन्म जो देश के लिए आपके बलिदान हुए ब्राह्मण ने जन्म कुंडली में बताया था, तो मुझे एक 4 दीवार के अंदर बंधना या किसी देहधारी से बंधना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ऐसा सोशल वर्क करें या देश के लिए हम सेवा करें। लोग मिलिट्री में जाते हैं अपनी जान की परवाह न करते हुए बलिदान करते हैं, तो वो संस्कार मेरे अंदर था कि हम क्यों न विश्व के लिए सेवा करें। और जब इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर हमने विश्वव्यापी संगठन को देखा कि इसकी जो शाखा है पूरे विश्व के अंदर 140 कंट्रीज में है, ये कोई हद नहीं, ये बेहद में है, और इसको चलाने वाला भी स्वयं निराकर सुप्रीम सोल है कि जिसने ये संस्था स्थापन की है, इसका कोई गुरु नहीं है, तो ये जब ध्यान में आया कि ये स्वयं, आज भी कई लोग हमें पूछते हैं कि या यहाँ आते हैं तो ये चलता कैसा है, लोगों को घर के अंदर 4 लोग होते हैं तो उनको उस फैमिली को चलाने के लिए टेंशन आता है, खर्चा चलाने के लिए इकोनॉमी करेंगे ये करेंगे, या कई लोग आके हमको पूछते हैं कि भाई ये चलता कैसे है, तो वास्तविक उन लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि एक परमात्मा के लाखों बच्चे, जिस परमात्मा के लाखों बच्चे हो, जैसे लौकिक में बच्चे कमाने वाले होते हैं, तो यहाँ जो भी अपनी कमाई है उन कमाइयों को इकोनॉमी करके इतना बड़ा जो यज्ञ है वो चलता है। और इसमें विशेष हम यही लोगों को सुनाते हैं कि जो भी अपने जीवन के अंदर की जो बुराई थी पहले जीवन में, वो सारा खर्चा आपका बच गया है। और हम लोगों का खर्चा है क्या है, उनको हम ये बताते कुछ भी खर्चा नहीं, खान पान शुद्धि है, न कोई होटल में जाना है, न कोई घूमना है, न फिरना है, तो ये इकोनॉमी से ये इतना चलता है। तो सब बातें जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर बहुत यूनिक लगी, बहुत अच्छी लगी। और ये ज्ञान जो है एक व्यक्तित्व या एक देवता बनाने वाला ज्ञान है, ये पक्का निश्चय हुआ, इसलिए हम सेवा में लग गए
0: जी। तो जब आप मधुबन में आ गए हैं, वो कौन सा साल था समर्पित हुए जब आप?
1: समर्पित जब मैं हुआ तो 91 में मैं एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, 6 महीना हुआ था। तो वैसे ज्ञान में आने के बाद मैं 2-3 बार हर साल छुट्टियों में हम सेवा में आए, पांडव भवन में सेवा किया, हिस्ट्री हॉल में जो वहाँ पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल है उसमें सेवा किया, दादी के पास भी सेवा किया। 2-3 साल कॉलेज लाइफ में सेवा करते थे, लेकिन 91 में या शांतिवन में ये बनना खेती थी सारी यहाँ। तो यहाँ एक भाई थे भोपाल भाई के साथ में, महादेव भाई करके, उन्होंने 94 में शरीर छोड़ा। तो उन्होंने शांतामणि दादी को कहा ऊपर, तब शांतामणि जो हमारी दादी थी वो सेवादारी संभालती थी, इंचार्ज थी, तो उनको कहा कि इसको घर में खेती इसको अनुभव है, या गाय भी थी, जाटोली डिपार्टमेंट हुआ, गाय का गोठा था और पूरी खेती थी। और बाबू भाई उस समय खेती में थे, जो आज टेलीफोन एक्सचेंज में, वो भी खेती में थे। तो जब हमको कहा कि आप नीचे आ जाओ या ज़रूरत है, तो हम आ गए। उन्होंने कहा कि आप छोड़ दो पढ़ाई, तो एग्ज़ाम देना था, उन्होंने बोले छोड़ दो अभी, तुम समर्पित हो जाओ। तो पता नहीं हमें भी क्या हुआ कि चलो जीवन बलिहार करना, एक धक से करना, कोई सोचना नहीं, तो हम समर्पित हो गए, मतलब रह गए सेवा में। 3-4 साल खेती किया और फिर उसके बाद किचन में आए, तो तब से लेके अभी हम किचन में ही।
0: जैसे आपने इतनी पढ़ाई की है और अभी जब किचन में सेवा कर रहे हैं, या आपको जब शुरुआत में जो बुलाया गया पढ़ाई छोड़ के खेती करने के लिए, आपको एक पल के लिए ऐसा नहीं लगा कि मैं तो पढ़ाई करके अच्छा ऑफिसर बन सकता था, पढ़ाई करते तो मैं हो सकता है संस्था में भी एक अच्छे पोजिशन में रह सकता था, मुझे जाके खेती बाड़ी करने के लिए मैं पढ़ाई छोड़ दूँ?
1: नहीं, मुझे एक था कि या जैसे हमारी टोली किचन में आत्म प्रकाश भाई है, सूरज भाई, ये सारे ग्रेजुएट ही है लोग, जैसे हमारे साथ भी जितने भी हैं, मैं ये बताना चाहूँगा किचन में जितने भी लोग हैं सब पढ़े लिखे हुए, ऐसा कोई नहीं कि जो अनपढ़ है जिसको आता नहीं, तो ये तो भगवान ने विशेषता दी है कि हम लोगों को किचन में रखा है। एनीवन जितने भी डिपार्टमेंट इंचार्ज या है किचन में, सब ग्रेजुएट, सब पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे घर के, ये भी है कि सबके घर में अच्छा है, मैं काफ़ी लोगों के वहाँ गया हुई हूँ, तो ऐसा कोई नहीं कि जिसको कुछ कमी थी और वो यहाँ आ गया, ऐसा कोई भी नहीं, सब लौकिक परिवार में संपन्न थे। हाँ, ये बुद्धि में था कि जो हमारे बड़े हैं वो भी इतने पढ़े लिखे हुए हैं और वो जब किचन में सेवा कर रहे हैं। और मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट जो सेवा मैं समझता हूँ कि भाग्य बनाने की, किचन डिपार्टमेंट है, जहाँ भगवान की मुरली के अंदर भी आता है कि रोटी पकाना भी आना चाहिए, बर्तन मांजना भी आना चाहिए, भोजन बनाना भी आना चाहिए। तो बाद में ये तो मीडिया वगैरह इलेक्ट्रॉनिक जब चीज़ें निकली तब ये सेवा बढ़ गई, नहीं तो यज्ञ की स्थापना में शुरू में अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो जो हमारी दादियाँ बन गई उन्होंने हर प्रकार की सेवा की, जो
0: कर्मणा सेवा,
1: सब कर्मणा सेवा सब की हुई है। तो इसमें कोई बॉडी कॉन्शियस की बात नहीं थी, हमें तो नशा था कि चलो खेती का काम है तो हम यहाँ खेती कर रहे, घर में भी खेती अनुभव था, गाय का दूध निकालते थे, खेती करते थे। और जैसे कहते हैं कि एक बार प्रण ले लिया, व्रत ले लिया, उसको वापिस क्यों लेना है, तो ये पक्का निश्चय था।
0: बहुत सुंदर भाई साहब, जैसे आप अभी समर्पित हुए हैं 91 से आप यहाँ पे मधुबन में हैं, और 91 में तो काफ़ी वो संस्थापक जो प्रजापिता ब्रह्मा है उनके साथ जो कराची से आए हुए जो दादियाँ हैं, काफ़ी लोग तो दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी को तो जानते हैं, लेकिन आप तो और भी बहुत सारी दादियों के साथ पालना लिए हैं, एक आध्यात्मिक जीवन की आपकी एक लंबी यात्रा रही है, तो जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इस जर्नी में आपने सीखा और आप अपकी व्यक्तित्व को ऐसे गढ़ा है, जो हो सकता है अगर आप लौकिक दुनिया में होते तो आप इन चीज़ों को कभी सीख नहीं पाते हैं, तो फिर वो क्या चढ़ती कला थी आपकी?
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा था कि जो हमारे साथी है जो लौकिक पढ़ाई करके आज प्रोफेसर है, टीचर है, 2-3 महीने पहले ही मुझे बुलाया था, जो हमारे क्लासमेट थे, हमारे क्लास में ज़्यादा कन्याएं थी, और वो अभी भी हंसती है कि तुम इतना पक्का था, हमने बहुत कोशिश किया तुम्हारा मौन तोड़ने का, और वो आज भी उन पलों को याद करती आपस में कि ये ब्रह्म कुमारी में पता नहीं इसके बुद्धि में इतना, कि हम उसी समय समझते थे कि ये लौकिक दुनिया में रहेगा नहीं, ये इस जीवन में समर्पित हो जाएगा, लेकिन वो आज भी कहते कि जो आज हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास नहीं। तो उनको सब कुछ होने के बाद भी आध्यात्मिकता के बिना जीवन अधूरा है, ये आज भी वो लोग हमें स्वीकार करते हैं कि निजी संपत्ति आध्यात्मिकता है और इसी से ही आप सुख शांति का अनुभव कर सकते। जैसे आपने ये जो क्वेश्चन किया, तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर सबसे पहले हमारे अंदर जो चेंजेस आया, उस पढ़ाई और इस पढ़ाई के अंदर हमने जो फर्क महसूस किया कि वहाँ हम एक डिग्री के लिए या कुछ अपना बिजनेस या कुछ पदवी ले लेते हैं कि कुछ हमारी इनकम बड़ी हो, उसके लिए हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये जो पढ़ाई है वास्तविक जब जीवन में इसको हमने फॉलो किया, तो सबसे पहले हमारे अंदर जो एक इंडिविजुअल, मुझे भी गुस्सा जल्दी आ जाता था, कोई अगर गलत करता था, असत्य कोई बोलता था, झूठ बोलता था, तो मुझे कंट्रोल नहीं होता था, तो ये मेरे स्वयं के जीवन के अंदर, जैसे कई लोगों को भी अभी भी होता होगा कि तुरंत गुस्सा आ जाता है, कई रॉन्ग चीज़ देखते हैं, सहन नहीं होता है, तो सबसे पहले मेरा ये चेंजेस आया कि मैंने शांत रखना सीख लिया कि हर एक व्यक्ति यूनिक है और वह अपना अपना पार्ट बहुत अच्छी तरह से प्ले कर रहा है। जैसे फिल्म आप देखते हैं 3 घंटे की स्टोरी होती है, तो हर एक का जो पार्ट, जिसको जो रोल दिया है, वो रोल निभा रहा है, तो उसमें हम क्वेश्चन नहीं उत्पन्न करते हैं। इसी तरह इस ज्ञान के आधार से एक समझ मिल गई कि हर एक का रोल है और वो बहुत अच्छी तरह से प्ले कर रहा है, इसलिए मुझे क्वेश्चन करके परेशान नहीं होना है, तनाव उत्पन्न नहीं करना है, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है, तो ये मेरे स्टॉप हो गए। दूसरी एक प्राप्ति की, जैसे इस ज्ञान के आधार से मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं 12वीं में था, तो एक उसमें इकोनॉमिक्स के 4 पेपर थे, तो उसमें मुझे 100 में से 100 मार्क्स मिले थे एक पेपर में, तो मेरा पेपर टीचर ने सब स्टूडेंट को दिखाया था, कोई भी मिस्टेक नहीं थी, तो मैं क्या करता था कि ये जो पढ़ाई है, विशेष सुबह अमृत वेले के बाद स्टडी करता था और कॉलेज जाने के पहले उसको पढ़ के जाता था मैं, तो वो पूरा बुद्धि में फिट बैठ जाता था, कॉलेज में भी टीचर पढ़ाते थे और पहले स्टडी करके जाता था, तो ये एक मैंने फ़ायदा देखा कि हमारे जीवन के अंदर इस ज्ञान का ये फायदा है कि मन की एकाग्रता एक बढ़ती है, और मन की एकाग्रता के साथ साथ जो हमारा अचीवमेंट है, चाहे कोई भी टारगेट हम रखते हैं, तो उसको बहुत ईजी हम प्राप्त करते कम समय में। अगर मेडिटेशन जीवन में न हो तो वहाँ लंबा काल लगता है और मेहनत लगती है, लेकिन मेडिटेशन का ये फायदा मैंने देखा मेरे पढ़ाई में, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जबकि मेरा लास्ट ईयर में भी 2nd नंबर था कॉलेज में, तो ये प्राप्ति इतनी हुई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा जो यम यही था कि नहीं, इस जीवन को ही जीना है, और कोई भी एक लक्ष्य को आप सामने रख के अगर उस पर फोकस करते हैं तो निश्चित आपका जीवन महान हो जाता है। तो इस ज्ञान में आने के बाद अनेक प्राप्तियाँ हुई, अंदर की गुण और शक्तियों का विकास हुआ, अपनी क्वालिटीज़ को बाहर आने का मौका मिला, ऐसे भाषण करना, इवन मैं इतना सीख गया कि झाड़ू पोछे से लेके आप भाषण तक कहीं भी हमें डाल दो तो हम फिट बैठ जाते, वहाँ करके रहेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी एक प्राप्ति मिली, तो ये हमने लाइफ में ऐसा प्रोग्रेस किया है।
0: बहुत सुंदर। मतलब आप बचपन में जिन शास्त्र या फिर ग्रंथों को आप जो पढ़ते थे, उसकी आध्यात्मिक रहस्य, क्योंकि आपने आध्यात्मिक ज्ञान को समझा है तो उसके द्वारा वो क्या कहना चाहते हैं, वो जीवन में किस प्रकार से प्रभाव करते हैं और जीवन को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। जिस सुख शांति की तलाश है हर एक इंसान को आज के समय में, वो ज्ञान कहाँ से कैसे मिलता है, आप उसको बहुत ही सरल शब्दों में मीडिया के माध्यम से सभी तक पहुँचाते हैं। ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे भाई जी। आज आप हमारे बीच में आई हैं और हमारे रेडियो मधुबन के श्रोताओं को लौकिक पढ़ाई के साथ साथ जब आध्यात्मिक पढ़ाई हमारे जीवन में आती है तो जीवन कैसे निखरता है और आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें एक्सेलेंस से कैसे आती है, ये बहुत सुंदर तरीके से आपने हमें बताया। और ना सिर्फ हम प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं लेकिन एक परिवार भी आपस में मिलजुल करके रहना, बड़ों को आदर करना, उनसे हमेशा सीखने की भावना रखना, बहुत सुंदर बातें हैं भाई जी। थैंक यू सो मच आप आज हमारे बीच में आए हैं, आपकी जीवन के उन चंद पलों को जो बहुत ही प्रेरणादायी है उन पलों को हमारे साथ शेयर किया, शुक्रिया आपको।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम जीना इसी का नाम है और इस कार्यक्रम में आप उनके अनुभव सुन रहे थे। बालू भाई जी का आप शांतिवन में किचन है, स्पेशल फूड बनाते हैं, आप उस किचन का देखभाल करते हैं और अनेक आत्माओं के स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने में आपका अपना एक योगदान रहता है। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ और एक नए व्यक्तित्व और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: नमस्ते मित्रों, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: द्वारा डेयरी का काम का बारे में थोड़ा जानकारी लेने के लिए हमारे पास महान अनुभवी व्यक्तित्व है, तो उनको स्वागत करते हैं ग्रामवासियों की तरफ से। और खासकर रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का भागीदारी हमेशा रहता है, और जहाँ भी जाते एक सेकंड में एक इशारा में जब बताते तो सहयोग देते हैं। तो आज डेयरी का विशेषता, डेयरी गांव का विशेषता, और खासकर डेयरी का आसपास कौन सा गांव है और वहां का रीति रिवाज संस्कृति का साथ सब चीज़ जानेंगे। लेकिन जो विशेष अनुभव आदर्श आज बताने के लिए हमारा साथ जो अनुभवी है, तो उनको स्वागत करते हैं खासकर सभी ग्रामवासियों की तरफ से, अंचलवासियों की तरफ से, और जो पंचायत राज जिसको हम लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं उसी संदर्भ से जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, जो भी ऑफिसर्स हो चाहे जो भी हमारा कार्यकर्मी, तो उनका तरफ से भी सर जी को स्वागत करते। सर आप अपना परिचय दीजिए और खासकर आपका बचपन, पढ़ाई और आपका यहाँ तक पहुँचना, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं, तो आपका वेलकम, आपका इंट्रोडक्शन, आपका परिचय।
1: दोबारा सुनब कलाराम जी, गांव डेरी
0: जी जी
1: तहसीलापुर जिला सिरोही। हमारे गांव एक पहाड़ी इलाका में बचा हुआ है और वहाँ के लोग पैदल चलकर पढ़ाई करते हैं, मतलब 10 किलोमीटर
0: कम से कम
1: 10 किलोमीटर सुरपगला आके फिर यहाँ अवरोड आके फिर पढ़ाई करते हैं। उसमें अधिकतम लोग मतलब 5-6 कर्मचारी पुलिस में उनका चयन हुआ हुआ है और एक थानेदार साहब है सकाराम जी, और लोग पाड़ा में होके पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, और इसमें 2-3 शिक्षक भी है और एक स्वास्थ्य कर्मी की है सिरोही में, और इस प्रकार की पढ़ाई करते रहे। अभी कॉलेज में भी लोग पढ़ रहे हैं, बड़ी मेहनत करके नई साधन है तो भी ऐसे करके पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। और हमारे उधर एक माइस है,
0: क्या
1: माइस सोना
0: ताम
1: पुराने है,
0: खान है सोना का
1: तांबा सोना शीशा जस्ता ये निकलता है वहाँ,
0: तो इसलिए रिचेस्ट
1: अमीर है हाँ वहाँ की एरिया है और अच्छा इलाका है, वहाँ लोग मेहनत करते हैं और कुछ लोग है वो माइस में जाते हैं,
0: अभी भी माइंस में
1: जाते हैं नहीं, हमारे क्या गुजरात पड़ोसी है राज्य है, तो वहाँ पड़ोसी राज्य में जाते हैं।
0: श्रीमान जी आप जैसे बताए आपका गांव का बारे में और शिक्षा को लेकर इतना जागरूकता है और जिसका चलते हो अपना सर्विस भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सर्विस हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं, इतना आदिवासी एरिया इतना दूरस्थ जगह है जहाँ कोई साधन पहुँचता नहीं है, इंटरनेट टेलीफोन का इतना कम्युनिकेशन नहीं है, फिर भी जैसे आपने बताया कोई LDC में है, कोई स्कूल में भी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई पुलिस में भी और कोई पिंडवाड़ा में भी पंचायत राज में काम कर रहे हैं, इतना जो अवेयरनेस जागरूकता कैसे हुई इसका राज
1: लोगों में से माँ बापा ने मेहनत करवाई है,
0: माँ बापा ने
1: उसकी मेहनत करवाई है, उनको पढ़ाई है,
0: शिक्षक मैंने अग्रण दिए, शिक्षक हाँ, ज़्यादा प्रायोरिटी दिए,
1: हाँ प्रायोरिटी दिए, कैसे भी पढ़े हैं लेकिन पढ़ के फिर आगे बढ़े हैं।
0: अच्छा कैसे भी पढ़कर आगे बढ़े, सबका ही भावना है,
1: हाँ
0: एक दूसरे को सहयोग भी देते
1: हैं, सहयोग देते हैं
0: एक दूसरे को, देखा ये इनका घर के लड़का ऑफिसर बना है तो उसको देखते हैं गांव वाले, तो उनको एक एग्जाम्पल एक सैंपल उसको देख कर लोग भी सीख जाते हैं, नहीं तो बड़े भी उनको प्रेरणा देते हैं, भाई तुम क्या कर रहे हैं, देखो वो लड़का आज आगे बढ़ा, तो पढ़ा लिखा और उनका माँ बाप का बात सुना, बड़ों का बात सुना, तब जाकर वो आज देखो अपना पैर पे खड़े हैं। तो तुम क्यों वंचित रह जाए, इस तरह सलाह देते होंगे,
1: सलाह देते हैं अब आप भी पढ़ो आगे बढ़ो।
0: तो इस प्रकार गांव का जो डेयरी में किस किस जाति का लोग रहते हैं, समाज वगैरह पढ़ते
1: हैं, सब ST के
0: ग्रासिया,
1: सब ग्रासिया लोग हैं, नहीं बिल नहीं,

0: सब ग्रासिया है। डेरी
1: तो आप जो डेरी ग्राम पंचायत, डेरी एक ग्राम पंचायत है?
0: नहीं, गांव है।
1: गांव है, किस गांव पंचायत में डेरी आता है?
0: ग्राम पंचायत सुरपगला।
1: सुरपगला, अच्छा। जो
0: ग्राम पंचायत सुरपगला आता है,
1: डेरी को जाने के लिए कोई आगंतुक जो जाना चाहेंगे, क्योंकि आपका गांव का विशेषता बताया, जैसे वहां पर सोना का खान है, तो बहुत चीज मटेरियल वहां पर है, तांबा धातु का जो खान है, तो वहां पर मान लीजिए कोई देखने के लिए बा जानकारियां प्राप्त करने के लिए चाहेंगे, तो आबू रोड से डेरी तक जाने के लिए किस रास्ता से जाना पड़ेगा?
0: ये आबू रोड अंबाजी वाला मार्ग पकड़ना पड़ेगा।
1: ओके।
0: सियावा, सियावा से सुरपगला,
1: सियावा का सुरपगला। ओके।
0: सुरपगला से आगे एक बॉर्डर है, साफरी बॉर्डर।
1: छापरे का बॉर्डर आएगा।
0: हाँ, छापरे से बॉर्डर पहले अंदर घुसना पड़ता है,
1: बाएं
0: तरफ।
1: सीधा जाएंगे तो?
0: सीधा जाएंगे तो अंबाई जाओगे,
1: गुजरात आ जाएगा।
0: हाँ, गुजरात बॉर्डर पे आ जाएगा।
1: इधर लेफ्ट में जाएंगे
0: तो सीधा डेरी, डेरी आएगा, डेरी वाला गांव आएगा, तो उसी रास्ते से 5 किलोमीटर आगे चलना।
1: मेन रोड से 5 किलोमीटर अंदर
0: जाके फिर माइंस आएगी।
1: माइंस आएगा, ओके।
0: तो माइंस से फिर वहाँ एक चौकीदार है,
1: ओके,
0: तो उसके पूरी जानकारी वो
1: रखेगा। इसके बाद अंदर उसने देगा, नहीं तो नहीं?
0: नहीं, उसके बाद अंदर अंदर कुआ है, पूरा अंडरग्राउंड है, पूरा एक एरिया में पूरा अंडरग्राउंड है, उसके अंदर सब अंदर मशीनें लगी हुई है, तो लैनी से अंदर चिड़िया से जाना पड़ता है, अंदर बैटरी से वो टॉस करना पड़ता है, अंदर उजाला, उसके फिर अंदर देखना पड़ता है, 1 किलोमीटर से होता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं श्रीमान जी को, खासकर डेयरी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ जानकारी लेंगे और कुछ विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

0: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत खुशी लग रहा है क्योंकि कभी कभी इस तरह जानकारी मिलता है, क्योंकि एक दूरस्थ जगह होने के नाते कम जाना होता है और थोड़ा डिस्टेंस भी है, जिसका चलते आज बहुत खुशी का बात है क्योंकि इतना दूर से आज आपके पास हमारा आसपास जो गतिविधि हो रहा है, हमारा गांव में क्या हो रहा है और हमारा गांव का इतिहास, हमारा गांव का बच्चों का शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवेश को लेकर आज हम तत्पर रहते हैं, क्योंकि हमारा गांव आदर्श तब बनेगा जब हम आदर्श बनेंगे और खासकर जब शिक्षा को लेकर हम हमारा अभिभावक माता पिता तत्पर रहेंगे तो हमारा गांव सभी गांव का साथ टक्कर देकर आगे चलेगा, नहीं तो पीछे ही रह जाएगा। इसलिए सभी लोग चाहते हैं हमारा गांव आदर्श बने, गोकुल गांव बने और सभी भाईचारा में एक दूसरे को सहयोग दें। तो इस कार्यक्रम में हमारे पास जो श्रीमान जी उपस्थित है तो उनको स्वागत करते हैं पुनः। और खासकर सर आप बताइए, आपका गाँव का जो इतना विशेषता और एक गॉड गिफ्ट जिसको कहते हैं, क्योंकि प्रकृति का देन है जो खान, ये तो हम लोग नहीं बनाए लेकिन पूर्व जन्म का फल हो चाहे हमारा इतिहास हमको कुछ दिलाने के लिए एक खान जहाँ पर भंडार भरपूर है और उसका बदलत आज हमारा बुद्धि में भी इतना तेज हुई है, क्योंकि वो पैसा जब काम करते तो पैसा मिलता था, अभी तो भले बंद है लेकिन जब चलता था उसमें बहुत पैसा मिलता था, नौकरी मिलता था काम करने के लिए, जिसका चलते बच्चे आज होशियार है और आगे बढ़ रहे, भले वो खान में नहीं सर्विस कर रहे लेकिन बार बार गवर्नमेंट में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो चाहे किसी ना किसी रूप में सर्विस दे रहे हैं। जैसे आप क्या करते हैं? आपका गांव के बारे में तो सब पता है लेकिन आपका बचपन से लेकर यहाँ तक आपका स्टडी कैसे रहा, किस तरह पढ़ाई करते थे और आपका मम्मी पापा या माँ बापा आई वो क्या करते हैं वो बात बताएं, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसे?
1: मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब थे और मैं 5 तक तो डेयरी में पढ़ा हुआ हूँ।
0: डेयरी में प्राथमिक विद्यालय?
1: हाँ, प्राथमिक विद्यालय। फिर वहाँ से फिर सियावा हॉस्टल छात्रावास राजकीय, वहाँ मेरा एडमिशन करवाया था। टूटे फटे कपड़े थे उस समय, पैसे नहीं थे माँ बापा के पास,
0: लेकिन आपको पढ़ाई का चलते हॉस्टल में आने के बाद तो फिर
1: गवर्नमेंट देती थी। उसके बाद 8वीं आप सियावा तक की थी।
0: तो आप जब एडमिशन किया और आपके साथ और कोई थे?
1: और मेरे नहीं, मेरे काका के छोरे थे।
0: अच्छा,
1: अंकल जी के दो लड़के थे, वो भी दो ही लड़के वो पुलिस में है अभी,
0: तो
1: उसके हाँ उसके पीछे मैं था।
0: फिर
1: उसके बाद फिर 8वीं तक मैंने सियावा तक सियावा किया हॉस्टल। उसके बाद मेरा एडमिशन उन्होंने, दोनों पुलिस वाले भाइयन उन्होंने मेरा केवली करवाया।
0: वाह, केवल हॉस्टल में?
1: हाँ,
0: वहाँ से वहाँ
1: नहीं 12वीं तक,
0: वो 12वीं तक के। हाँ,
1: तो वहाँ तक 12वीं तक मैं पढ़ा था। उसके बाद फिर कॉलेज में पढ़ा था।
0: क्या बात,
1: बीए
0: भी कर लिया?
1: बीए सेकंड की थी।
0: अच्छा अच्छा,
1: फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी थी, माँ बाप के पास खर्चा नहीं था इतना।
0: ओके,
1: फिर बीए सेकंड करके फिर मैंने शादी कर ली थी। फिर मैं ये संविदा भी लगा था महात्मा गांधी में 2008 में।
0: 2008 में महात्मा गांधी का कुछ था, टेम्पररी?
1: हाँ हाँ हाँ, वो 1200 रुपये दे रहे थे तो उसमें लगा था। उसके बाद धीरे धीरे फिर 2013 में भर्ती खुली थी।
0: ओके, उसमें पंचायत में लगा था?
1: हाँ, पंचायत में लगा था, ग्राम पंचायत सुरपगला लगा था। तो फिर वहाँ से 2013 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, वापिस 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें LDC का पद मेरे को दिया हुआ। बस अभी
0: 2018 से फर्स्ट पोस्टिंग
1: मेरे को LDC में पंचायत समिति में रखा था,
0: पंचायत समिति पिंडवाड़ा।
1: पिंडवाड़ा, उसके बाद फिर मेरा 4 महीने वहीं रखा था। उसके बाद असपुरा, ग्राम पंचायत असपुरा और नागपुरा मेरे को दे रखे। अभी वर्तमान में ये
0: नागपुरा और असपुरा दोनों।
1: हाँ,
0: क्या बात है, ये आपका सक्सेस स्टोरी जीवन का जो कहानी होता है ना, किस तरह आप पहुँचे यहाँ तक और जो आज अपना एक सक्सेस कामयाब तक पहुँचे, इसमें क्या क्या रुकावट आई, क्या समस्या आई और उसको आप कैसे दृढ़ता से काम किए।
1: रुकावट तो बहुत आई थी,
0: हाँ, गरीबी,
1: बहुत गरीबी आई थी, पैसे नहीं थे।
0: तो हॉस्टल का पहले का जीवन आता थोड़ा गरीब, उसके बाद हॉस्टल
1: पैसे नहीं थे, माँ बाप के पास पैसे नहीं थे,
0: लेकिन आता
1: बहुत स्थिति खराब
0: लेकिन
1: थी।
0: आता बुद्धि और हिम्मत।
1: हिम्मत, बुद्धि बुद्धि और हिम्मत, हिम्मत में नहीं आ रहा कभी,
0: अच्छा,
1: आज तक हिम्मत नहीं आ रहा, अभी चलता रहता, हिम्मत नहीं आता, दुखी तो हो जाता हूँ।
0: हिम्मत नहीं आना चाहिए। एक
1: हाँ
0: कदम हिम्मत, हमारा एक कदम हिम्मत होगा ना तो 1000 कदम खुला
1: हाँ खुला
0: रहेगा। हम
1: रहेगा।
0: हिम्मत ही नहीं करेंगे
1: हाँ
0: तो कोई गिरने वाला आएगा नहीं। लेकिन आपका हिम्मत था और आपका जो चाचा लड़का लोग
1: हाँ
0: वो
1: उन्होंने
0: लोग भी
1: उन्होंने मेरे
0: आपको
1: को पढ़ाया,
0: पढ़ाए।
1: उन्होंने मेरे शिक्षा दी, और वो दोनों पुलिस में, एक MLA साहब के साथ है, MLA विधायक समाराम जी बॉडीगार्ड, हाँ एक उसके साथ है, एक है पुलिस लाइन में SP साहब के पास
0: तो
1: है।
0: आपका कभी इच्छा नहीं हुआ हम भी पुलिस लाइन में जाते तो
1: नहीं मैं गया
0: आपका
1: था,
0: बॉडी तो ऐसे फिट
1: मैं एक बार गया था, मेरी हाइट में कट गया था,
0: है। अच्छा,
1: हाइट नहीं है मेरी।
0: हाइट का चलता है, लेकिन आप
1: हाँ
0: तो बिल्डर जैसे, बॉडी बिल्डर जैसे लग रहे हैं पूरा
1: नहीं
0: स्टाइल का।
1: उस समय सिंपल थी, अभी
0: अभी तो पूरा नौजवान के
1: तो
0: बाद थोड़ा कम आ जाता
1: ज़्यादा।
0: है,
1: हाँ
0: लेकिन कोई बात नहीं, समय समय के बाद। और किसी दूसरा नौकरी में आपका कभी इच्छा नहीं था, जैसे रेलवे हो चाहे पोस्ट।
1: नहीं फॉर्म तो भरवाया था रेलवे में, अहमदाबाद में गया हूँ।
0: ट्राई किए बहुत जगह।
1: हाँ तो वहाँ भी कोई नहीं, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था।
0: लेकिन अभी जो खुश राजी हैं, जो नौकरी अभी मिल रहा है, जो कर रहे हैं LDC पोस्ट पे, अभी नागपुर और हौजपुरा में दे रहे हैं, तो जो दिक्कत आई उसका तो भूल गए। अभी आगे के लिए और क्या लक्ष्य रखें, प्रमोशन हो चाहे कुछ लक्ष्य रखें आगे बढ़ने के लिए।
1: बनने के लिए रखा था। हाँ
0: हो सकते हैं काम में आए, अगर पढ़ाई लिखाई तो करना, जब तक जिंदा है, जब तक जीना है तब तक पढ़ाई करना चाहिए। कोई ना कोई शिक्षा लेने से क्या होगा, आगे हमारा प्रमोशन के लिए काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल भाई, स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है, लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है, तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं। बहुत अच्छा जानकारियाँ मिल रहा है और सक्सेस स्टोरी जीवन का, जो सबका जीवन में उतार चढ़ाव ऊंचा नीचा आता है, इसको कहते हैं जीवन। जैसे ऊपर नीचे होने से क्या होगा, हमको भी कुछ सीख मिलता है और उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलता है और आगे बढ़ने के लिए उमंग होता है और हमको देख के दूसरे भी आगे बढ़ सकते हैं। देखो वो लड़का कितना मेहनत किया जाकर यहाँ पर
4: पहुँचा,
3: तो हम तो उससे कम है कि ज़्यादा है। ऐसे हमारे पास समस्या आएगा तब उसको हम एक सैंपल सिंपल और सैंपल मानकर आगे बढ़ सकते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद पुनः उनको स्वागत करते हैं। सर जी, आप जैसे बताए आपका सक्सेस स्टोरी और आपका जो मेहनत और आपका जो हिम्मत आज सबको प्रेरणा का स्रोत बने, सबको प्रेरणा मिले, आपसे कुछ सीख लें, ऐसे आप और आपका गाँव में जो यंग लड़का जो युवा रहते हैं, कभी आपको आपका सक्सेस बा इतना कामयाब तक पहुंचने का राज बा प्रेरणा कभी कभी फेस टू फेस बताते हैं, कोई पूछते हैं तो
4: बताता हूँ।
3: पढ़ाई करने के लिए
4: जैसे पढ़ाई करने के लिए आप भी हमारे तरह
3: आपको बताए, जैसे आपका जो शिक्षित वर्ग,
4: हम भी हमारे जैसे कोई गांव में समाज के लोग हैं, लड़के पढ़ते हैं यंग, तो उनको हम बताते हैं कि भाई ऐसा करने से ये होता है, तो उनको हम शिक्षा देते हैं कि आप भी हमारी तरह बनो, हमसे आगे बढ़ो, आप हमसे बड़े बनो। ये हर लोगों को हम समाज के लोगों को हम डेयरी में बताते हैं।
3: ऐसे जो आपसे सलाह लेकर आगे बढ़े, एक दो का आपका गांव का जो युवा लोग का नाम बताएंगे जिसको आप प्रेरणा दिए हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे सलाह लेकर आप
4: ना, जैसे दो तीन जने हैं उनके
3: बताइए।
4: एक तो चेतन सिंह है, धन्नाराम,
3: चेतन सिंह और धन्नाराम, और कौन सा क्लास में और क्या करते हैं अभी?
4: वो तो बीए कर रहे हैं और अभी उनका सिलेक्शन हुआ है पुलिस में।
3: ओके,
4: अब मेहनत कर रहे हैं वो,
3: मेहनत कर रहे
4: दोनों।
3: तो उनका मम्मी पापा शिक्षित हैं?
4: हाँ,
3: पढ़ा लिखा है। और खासकर आपका जो गाँव के इस तरह समाज सेवा में हो, चाहे पढ़ा लिखा में होशियार कोई लड़की भी होगा,
4: लड़कियाँ भी हैं,
3: तो उनका नाम बताइए।
4: सभी
3: उनका माँ बाप परिवार
4: अनपढ़ है,
3: अनपढ़ लेकिन ये पढ़ी लिखी है,
4: पढ़ी लिखी है, बीए
3: कर रही
4: है, बीए कर रही है।
3: क्या बात है, इतना दूरस्थ जगह में और एक आदिवासी लड़की बीए तक पढ़ रही है, तो उनको प्रेरणा सब लोग देना चाहिए और जो भी मदद चाहिए तो आप लोग देंगे तो उसका गाँव का नाम होगा, ठीक है ना? क्योंकि एक बड़ा ऑफिसर बनेगी तो गांव का नाम होगा कि नहीं
4: होगा,
3: तो छोकरिया जितना छोकरियां हैं बा बेटियां हैं तो
4: 4-5 ऐसी है जो बीए कर रही है।
3: क्या बात, इतना दूर से आता हूँ
4: पैदल, वो भी सापरी तक तो पैदल ही आना पड़ता है हमको, 10 किलोमीटर,
3: कोई साधन नहीं,
4: साधन नहीं। उसके बाद फिर हाईवे पे आते हैं अंबाजी आबू रोड वाले, तो वहाँ से साधन हमको मिलते हैं और कॉलेज जाते हैं।
3: जैसे आप भी कॉलेज किए, आप जब बी ए किए ना सेकेंड ईयर बोल रहे थे,
4: पैदल पैदल
3: पैदल आते थे।
4: हाँ,
3: और खासकर पढ़ाई लिखाई में इतना होशियार का वजह क्या है, गांव के जो लड़का बा लड़की इतना पढ़ाई लिखाई जो शिक्षा को अपना हथियार बा अस्त्र मानते हैं, शिक्षा ही सब कुछ, ये चीज़ जो सबका मन में बा बुद्धि में भरा हुआ है आपका गाँव के, किसका वजह?
4: तो एक दूसरे को देख के फिर वो करते पढ़ाई करते हैं
3: और
4: मैं भी इनके तरह बनूँ।
3: अच्छा अच्छा,
4: इनके तो आगे बढ़ूँ ऐसे करके पढ़ाई करते हैं और माँ बाप भी ध्यान देते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े।
3: अच्छा श्रीमान जी, आप बताइए आपका गांव के जो लोग रहते हैं खासकर कितना आबादी होगा और सबका जीवन शैली
4: तीन
3: दिनचर्या उसका जो रोजगार कैसे प्राप्त करते, कहाँ से, खेती पर ना?
4: खेती में हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात वहाँ जाके ये 2 किलोमीटर पड़ता है, अधिकतम लोग वहाँ जाते हैं
3: गुजरात में जाते हैं, गुजरात
4: माई से पड़ी है, माई से।
3: अच्छा,
4: तो माई से में जाते हैं
3: काम करने के लिए जाते हैं।
4: हाँ, सुबह सुबह निकल जाते हैं, ये 8 बजे निकल जाते हैं
3: काम। खेती बहुत कम होगा,
4: कम बिल्कुल, वहाँ तो पहाड़ी इलाका है।
3: पहाड़ी इलाका, तो चार तरफ क्या पहाड़ी ही पहाड़ी
4: है? सब पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ।
3: तो क्या होता है वहाँ पे?
4: कोई नहीं होता वहाँ, मक्की होती है बरसात के टाइम में,
3: एक फसल
4: होती है,
3: वो भी बारिश होगा तो।
4: नहीं तो कुछ नहीं।
3: क्या खाते हैं
4: और दूसरा कोई नहीं खाते, क्या खाते हैं? मक्की लेके आते हैं और राशन मिलता है वहाँ से, गेहूँ लेके आते हैं।
3: राशन तो पंचायत तरफ से मिलता होगा?
4: हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, वो लेके आते हैं।
3: तो श्रोता मित्र ग्रामवासी सुन रहे थे अब श्रीमान जी को, खासकर डेयरी और डेयरी के आसपास और किस तरह वो अंचल है और बच्चों का जो पढ़ाई, मुझे अच्छा लगा क्योंकि सभी पढ़ाई लिखाई में होशियार है और सर्विस भी कर रहे हैं, क्योंकि बर्तन कंपटीशन जमाना में फिर भी इतना दूरस्थ जगह में जहाँ पर कोई छोटा सा गांव है जहाँ पर इतना जो मीडिया का साधन नहीं, इंटरनेट का कम्युनिकेशन इतना सुविधा नहीं है,
4: इलेक्ट्रिक
3: का भी इतना कम ही होता होगा, फिर भी पढ़ाई को अपना ध्येय अस्त्र मानकर जो किए हैं, जिसका चलते आज शिक्षित हो चुके हैं और बहुत सारा सर्विस होल्डर है, जिसका चलते एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छा बात बताए। लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: नमस्ते ऑल प्रोग्राम का प्रतिपूर्ण में मिलने श्रीमान जी, आज हमें बहुत खुशी का बात बता रहे हैं क्योंकि पर्यावरण, समाज की सुरक्षा, महिला का उत्थान और आजीविका के लिए किस तरह हमको स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रगल करना हमारा जीवन में आना ही चाहिए, चाहे युवा हो चाहे बड़े बुजुर्ग हो, तो सबको लेकर हमको चलना है। जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण और पोषण को लेकर हम आज बात करें, तो खासकर आपका जैसे वहाँ पे जैसे जीविका निर्वाह बाहर जाते हैं और कभी कभी खेती एक फसल करते हैं, बाकी समय ये काम धंधा नहीं मिलता तो क्या करते हैं लोग?
1: काम धंधा में तो
0: काम मिल जाता है, कभी बैठते नहीं कोई लोग, कभी कभी बैठते हैं मैंने कुछ रोजगार भी ना बढ़ जाते होंगे। अच्छा, पंचायत लेवल से कुछ काम
1: कम मिला, नरेगा तरफ से
0: मिलता है
1: लेवल।
0: और खासकर जैसे त्यौहार का बारे में थोड़ा बताइए, आपका जो समाज का जो त्यौहार जो मनाते हैं, किस त्यौहार में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? जैसे
1: सब
0: दिवाली
1: सब त्यौहार मनाए जाते हैं। अच्छा,
0: जैसे
1: जैसे होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है।
0: लेकिन घर से समाज का जो मेन पर्व किसको मानते हैं?
1: मैन ये सब तीनों ही मानते हैं लोग।
0: मान लीजिए कोई शादी करते हैं, शादी में क्या रीति रिवाज है?
1: शादी में तो सब अलग अलग रीति रिवाज है।
0: अलग रीति रिवाज क्या क्या है?
1: नहीं, रीति रिवाज तो अलग एक ही है रीति रिवाज तो।
0: जैसे कोई लड़की मान लीजिए पढ़ा लिखा नहीं है और लड़का पढ़ा लिखा है, फिर पैसा दे कर लाना पड़ता है कि पैसा लेन देन करना पड़ता है?
1: लेन देन करते हैं
0: इच्छा से।
1: हाँ, इच्छा से ही करते हैं लेन देन।
0: अच्छा, अपना खुशी से?
1: खुशी से,
0: कोई ज़बरदस्त नहीं, इतना नहीं पड़ेगा ऐसे कुछ है
1: नहीं, कोई दबाव डाल देते हैं ऐसे, कोई कई इतना पैसे देने पड़ेंगे
0: ऐसे बोलते भी हैं?
1: नहीं बोलते हैं, फिर वापिस हमारी जाति में पंचायती करते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पटल?
1: पंच पटल करते हैं।
0: पटल के बारे में थोड़ा बताएं, पटल क्या होता है?
1: पटल एक गाँव का मुखिया होता है।
0: गाँव का मुखिया
1: वो कहता है, वो करता है।
0: पटेल एक होता है, पांच होता है, दस होता है, एक पटेल होता है।
1: एक पूरे गांव में एक ही पटेल होता है।
0: अच्छा,
1: और उनके बिना हमारे गांव में कुछ नहीं करते।
0: कुछ नहीं मतलब क्या क्या करते?
1: जैसे शादी नहीं करते।
0: ओके, उनका परमिशन चाहिए।
1: हाँ, नियत है।
0: नियत मतलब क्या है?
1: नियत जब मर जाता है, बारवा
0: नियत,
1: जैसे ये होते हैं
0: मौत, तो उसमें भी जो भी
1: उनको बुलाने पड़ता
0: है। और तीसरा
1: बस इसी में
0: एक मौत हो गया दोनों, और एक त्यौहार जैसे गाँव में कोई मेला भरता है।
1: हाँ, मेला भरता है तो उनको पहले पटेल साहब को पूछना पड़ता है।
0: ओके,
1: भाई हमारे गांव में है ये कर रहे हैं।
0: अच्छा, ये चीज पूरा पटेल का अनुमति से ही
1: आगे चलता है।
0: पटेल का अनुमति से होने से फायदा होता है ना नुकसान होता है?
1: फायदा भी,
0: कभी कभी नुकसान भी होता है।
1: नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है,
0: क्योंकि पटेल साहब का मन पर डिपेंड करता है। हाँ, उसका बुद्धि जैसे वैसे निर्णय देगा।
1: हाँ,
0: क्योंकि उसका बुद्धि पर निर्भर करता है ना, वो मान के थर्ड क्लास का होगा तो थर्ड क्लास
1: देगा,
0: फर्स्ट क्लास होगा तो फर्स्ट क्लास देगा। पटेल हो गया मतलब जैसे सरपंच हो गया, मैंने सरपंच का
1: सरपंच
0: व्यवस्थित और पढ़ा लिखा जानकारी होगा तो अच्छा बताएगा, नहीं तो अच्छा डेवलपमेंट काम नहीं हो पाएगा। तो पटेल साहब का भी
1: ऐसा ही है,
0: व्यक्तित्व पर
1: निर्भर करता है,
0: नहीं तो पूरा फंसेगा गांव वाले, नहीं तो शादी हो चाहे मौत, डेस्टिनी खराब आएगा ना।
1: हाँ,
0: इस तरह कभी कभी खराब देखने को मिलता है।
1: नहीं, कभी कभी मिलता भी तो है,
0: जिसमें नुकसान
1: गलत निर्णय कर देता है तो गलत ही होता है ना,
0: फिर बाद में उसको कुछ
1: फिर बाद में तो क्या होता है, वापिस पंचायती करते हैं ये,
0: फिर दोबारा टाइम पैकिंग पैसा खर्च,
1: फिर वो फालतू खर्चा बढ़ जाता है।
0: ओके,
1: ये होता है।
0: पोर्टल का सिलेक्शन कैसे होता है?
1: गांव वाले, गांव पूरे गांव इकट्ठा होता है, आदमी महिला सब बाल बच्चे सब इकट्ठा करते हैं, पहले लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर हमारे सुनते हैं कि ये आदमी गांव का मुखिया सही है।
0: ऐसे कॉम्पिटिशन से इलेक्शन में होता जैसे?
1: ऐसा नहीं
0: होता है।
1: नहीं,
0: जैसे बोला वो क्यों होगा, उनका भाई को दो ऐसे नहीं होगा?
1: नहीं,
0: एक आदमी का नाम आएगा।
1: हाँ,
0: दो नाम नहीं आएगा?
1: नहीं, दो नाम नहीं आते।
0: ओ, तब तो फंस जाते हैं।
1: हाँ, फंस जैसे जिसका व्यवहार होता है
0: उसमें क्वालिटी मिलेगा नहीं ना।
1: नहीं,
0: क्वालिटी मीन्स पक्का आदमी नहीं मिलेगा।
1: नहीं,
0: उसका बेटा, उसका खानदान होता है क्या, उसका पिताजी का लड़का ही पिताजी का?
1: हाँ, ऐसे बढ़ता रहता है खानदानी
0: का। ओ, ये तो
1: ये लफड़ा ज्यादा ये लफड़ा
0: पटल का बेटा पटल होगा,
1: हाँ
0: फिर पटल का बेटा का बेटा
1: बेटा होगा,
0: इसमें दिक्कत है। लेकिन अभी 21वीं शताब्दी सब होशियार हो चुके, पढ़े लिखे होंगे, ये जो रीति रिवाज मान्यता को अभी तक क्यों फॉलो कर रहे हैं?
1: ये तो पुराने ये आदमी है, पुराने रीति रिवाज चलाते हैं लोग, अब तो पढ़े लिखे युवा है सब,
0: हाँ
1: ये तो फिर बंद करना चाहते हैं,
0: क्योंकि ये तो अन्याय है
1: ना, अन्याय।
0: जैसे बाल्य विवाह था, सतीदाह प्रथा था,
1: था
0: ये सब क्या जिसका था, उस समय के लिए ठीक था,
1: ठीक था,
0: वर्तमान समय के लिए वो काम नहीं करेगा ना। अभी कोई सतीदाह प्रथा करेगा, उसका स्वामी शरीर छोड़ेगा मौत में, उसका बीबी को डालेंगे तो कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगी सतीदाह प्रथा में।
1: नहीं, अब तो बहुत परिवर्तन हो गया है।
0: अच्छा,
1: बाल
0: विवाह तो बंद हो चुका है, पटल का जो अभी जो रीति
1: अभी ये चल रहा है,
0: ये भी तक
1: लगभग बंद हो जाएगा ये भी,
0: क्योंकि उसका बेटा दारू पिया होगा और
1: हाँ।
0: उसको पटल हम बनाएंगे तो वो दारू वाला भी सपोर्ट करेगा करेगा कि नहीं
1: करेगा? नहीं करेगा,
0: जहाँ भट्टी खोलेगा तो मद भट्टी जो होता है ना,
1: हाँ।
0: दारू भट्टी, तो वो दारू पीता है तो अपना डेस्ट उसका तरफ देगा, देगा कि नहीं? क्योंकि नहीं तो दारू बंद हो जाएगा,
1: हाँ, हाँ।
0: तो ये चीज नहीं होना चाहिए
1: ना? नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, अपनी आदमी सही आदमी चुनना चाहिए।
0: हाँ, ये बात मेरा कहने का मतलब,
1: सही आदमी चुनना चाहिए,
0: बदल चुका है,
1: हाँ समय बदल चुका, सही आदमी को चुनना चाहिए, उसके बाद उसको पटल बनाना चाहिए।
0: जी जी, तो ये सिर्फ डेरी का सुर पगला का बात नहीं, जो भी हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासी सुन रहे, इस तरह कभी कभी जो रीति रिवाज जो पटल का जो खानदानी चल रहा है, इसमें हम लोग का नुकसान कभी होता है तो कभी फायदा भी होता है। तो अभी समय को देखते हुए, सम्मान देते हुए, हम अपना हक अधिकार को और एक न्याय पाने के लिए जो युक्तियुक्त जो जेन्युइन चीज होना चाहिए, तो सबका कल्याण उसमें समाया हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारा कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए और अचानक आए, कोई प्रिपरेशन नहीं, अचानक जब मिले तो डेरी का इतिहास और डेरी का रीति रिवाज संस्कृति का साथ साथ तो जो बच्चों का पढ़ाई में इतना उमंग जो लेते हैं, बढ़ चढ़ कर शिक्षा प्रति ध्यान देते, ये सबके लिए प्रेरणा का मार्ग बनेगा और हमें खुशी है इस तरह कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। और क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? कैसे लगा आपको?
1: बहुत बढ़िया लगा।
0: शुरू में तो आप डर रहे थे, क्या बोलूँ क्या नहीं,
1: हाँ कभी बोला नहीं, बोला नहीं है कभी।
0: अभी कैसा लगा?
1: नहीं, अब तो ठीक लगा।
0: तो कभी सोचा नहीं होगा हम भी रेडियो में कभी बोलेंगे, लेकिन आज मौका मिला और मौका को फायदा लिया। तो जाते जाते सभी की तरफ से आपको धन्यवाद, आप सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह।
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से।
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड।
1: मिट्टी से नहीं, जज्बातों से।
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

0: बस काए हम।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी, और जिंदगी से प्यार हो तो भाई शायरियां बाहर आती हैं, क्रिएटिविटी बाहर आती है और बहुत सुंदर मोमेंट्स लाइफ के हम क्रिएट कर पाते हैं। वो गाना है ना लव यू जिंदगी का, मुझे कुछ लिरिक्स उसके बड़े ही अच्छे लगते हैं। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय बाय। इतना आसान होता अगर हाय कहना जो अच्छा लगे और बाय कहना जो बुरा लगे, कितना अच्छा होता ना दोस्तों। चलिए इसे और अच्छा बनाते हैं और लाइफ में शामिल करते हैं, क्योंकि ये बात है एकदम प्रैक्टिकल। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट्स यानी कि कल्पना जी ग्लोबल अस्पताल से, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद आरुषि जी।
2: और हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनिधि जी भी, जो कि रेडियो मधुबन के जाने माने आरजी भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि जी, कल्पना जी, बहुत अच्छा लग रहा है वापस लव यू जिंदगी कार्यक्रम में आप दोनों से मिलके।
2: जी, और पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे थॉट्स को रेगुलेट करने के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई थी कि किस तरीके से अपने आप को व्यक्त करना बहुत जरूरी है, थॉट्स रेगुलेशन कैसे बेनिफिशियल है हमारे लिए, वो भी हमने समझा था। एक सवाल जरूर आता है, क्योंकि जब बात आती है ना कि क्या हम सच में थॉट्स रेगुलेट कर सकते हैं, तो कई बार जब लोगों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप होते हैं, अलग हो जाते हैं रास्ते, लेकिन वो थॉट पीछा ही नहीं छोड़ता या वो व्यक्ति बार बार याद आता रहता है, तो ऐसे में अगर कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जो थॉट्स रेगुलेट कर पाए और वापस वहीं ना जाए बार बार, तो बड़ा फायदेमंद होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? श्रीनिधि जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में?
4: मैं समझता हूँ ये बहुत ही एप्ट विषय है, एक ऐसा विषय है जिस पर अनेक फिल्में बन चुकी हैं।
2: बिल्कुल।
4: और पिछले रोज कोई मेरे को ये बात सुना रहा था कि भाई एक फिल्म में यही घटना होती है कि लड़का और लड़की दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, और जिनके साथ उनका ब्रेकअप हुआ होता है वो लोग आपस में शादी कर रहे होते, तो इनको लगता है कि भाई हम इनको भूल नहीं पा रहे और ये शादी करने के लिए ऑलरेडी मूव ऑन कर गए। तो ये अक्सर देखने को मिलता है कि जो लोग अपने जीवन की धारा या अपने विचारों को बदलकर आगे बढ़ चुके हैं, उनके आगे बढ़े हुए चीज पर भी कई लोगों को तकलीफ हो सकती है कि इतने जल्दी आगे कैसे बढ़ गए, मूव ऑन कैसे कर। और वो शायद इसलिए तकलीफ में है क्योंकि उनसे वो खुद चीज नहीं हो पा रही है, वो खुद मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग अंग्रेजी में ये जो शब्द इस्तेमाल करते हैं मूव ऑन कर देना, यानी आगे बढ़ जाना, यानी इसका मतलब ये नहीं कि वो मूव ऑन कर जाने से आपका ही भला होने वाला है। अगर आप इस मूव ऑन को पीछे कर दे तो मूव बैक हो जाएगा, यानी पीछे। कोई भी व्यक्ति जीवन में पीछे नहीं जाना चाहता, जीवन में हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, और इसलिए भी संबंधों में भी, रिलेशनशिप्स में भी मूव ऑन करना जरूरी है। आपने रिलेशनशिप्स की बात कही, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में है, वो बात समझ में आती। कई बार दोस्तों के साथ भी ऐसा होता है, आप अच्छे दोस्त हैं मगर एक लेवल पर आकर आपको लगता है कि ये बहुत ही टैक्सिंग हो रहा है, या आपको लगता है कि नहीं अब हमें दोस्त बदलने की जरूरत है, या ऐसा लगता है कि भाई इसके लिए तो हमेशा मेरे को ही करते रहना पड़ता है और मुझे इन रिटर्न जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलता है। तो ऐसे समय पर लोग दोस्तों से भी मूव ऑन कर जाते हैं, दे चूज न्यू फ्रेंड्स। नए लाइफ में आप गए हैं, जीवन में आगे बढ़े हैं, या आपकी नौकरी चेंज हो गई है, या आपका कोर्स बदल गया है, आप कॉलेज से आगे की लाइफ में आ चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए, आपके नए दोस्त मिल गए हैं। अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि जो ग्रेजुएशन का मेरा दोस्त था, ग्रेजुएशन के दौरान वो मेरे से जितना टाइम स्पेंड कर रहा था, अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन में, हालांकि वो डिफरेंट कोर्स कर रहा है और मैं डिफरेंट कोर्स कर रहा हूँ, दोनों की अलग अलग दिशाएं हैं, दो अलग अलग चीजें हम पढ़ रहे हैं, अब भी हम एक दूसरे के साथ उतना ही टाइम स्पेंड करें, शायद ये संभव नहीं है। और ये जानना जरूरी है कि जीवन के सफर में हर एक के स्टेशन अलग अलग हैं, हम में से कई लोग पूरे सफर साथ चलें ये उम्मीद पाल कर बैठे तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो। और ये भी जानना जरूरी है कि हम सभी हम सफर हैं, और हम जब तक एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, एक दूसरे के इस सफर में हैं, तब तक हम स्वीट मेमोरीज क्रिएट करें, सफर को अच्छा बनाने की कोशिश करें, एक दूसरे के लिए सफर सुहावना हो, सहूलियत भरा हो, इसकी कोशिश हम कर सकते हैं। कब इस ट्रेन की गाड़ी में किसका स्टॉप आएगा और कहाँ किसको उतरना होगा ये नहीं पता। और किसी ने दार्शनिक विचारधारा रखते हुए बात कही है कि स्टेशन आना और गाड़ी से उतर जाना इसका मतलब मौत ही नहीं है, वो व्यक्ति मर गया या उस व्यक्ति का देहांत हो गया ही नहीं है। कभी कभार व्यक्ति उस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर जाते हैं या किसी भी कारणवश हो सकता है, क्या शायद वो फिजिकल डिस्टेंसेस की वजह से हो सकता है। इसलिए बहुत बार लोग कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है लोगों के लिए, क्योंकि उस तरीके का इंटरेक्शन नहीं है. और इसकी वजह से अगर व्यक्ति किसी और व्यक्ति को चुन लेता है तो ये नहीं सोचना है कि इसमें आपकी गलती है, मगर साथ साथ ये भी सोचना है कि हम पॉजिटिवली, हमें भी मूव ऑन करने की जरूरत है, क्योंकि हम सभी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. तो बार बार ये जो थॉट्स आते हैं कि हाँ मतलब वो मेरे को छोड़ के क्यों चले गए, मेरे में ही कमी थी, पता नहीं वो क्या चाहते थे मेरे से, मैंने इतना दिया फिर भी उनको, ये क्वेश्चंस नहीं पूछना है. ये क्वेश्चंस आते हैं आपके मन में, और मैं समझता हूँ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हम बीती हुई बातों पे चिंतन नहीं करना है. कहा जाता है कि बीती को चितो नहीं, यानी बीती की चिंता नहीं करनी. और बीती हुई बातों की अगर हम चिंता करते हैं तो हिंदी में और संस्कृत में ये बात कही जाती है, चिंता चितयोर मध्ये बिंदु मात्रेण अंतरम, यानी चिंता और चिता के बीच में एक बिंदु मात्र का अंतर है. अगर आप चिता शब्द लिखते हैं और उसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं तो चिंता बन जाती है, तो दोनों एक समान है, सिर्फ इतना ही अंतर रहता. तो इसलिए बीती हुई बातों की चिंता नहीं करनी है, और जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और आगे के लिए हम ये सोच सकते हैं कि कोई बात नहीं, लाइफ की जर्नी है, उनकी भी आगे की यात्रा अच्छी हो, मेरी भी अच्छी हो. उन्होंने इतना समय मेरा साथ दिया, इतना समय उन्होंने मुझे स्नेह दिया, प्यार दिया, कंपेनियनशिप दी, सपोर्ट दिया, मेरे लिए उनके दिल में हमेशा ही अच्छी भावनाएं हैं, मैं हमेशा उनके लिए गुड विशेस और अच्छी चीजें ही भेजूंगी. और मैं अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए भी आगे की ओर मैं कुछ नया करने के लिए, कुछ नई चीजों को आने के लिए अपने द्वार खुला.
2: ओके कल्पना जी, आपसे भी ये पूछना चाहूंगी, पास्ट में अगर अटक गए हैं, सेम थॉट्स पैटर्न रिपीट हुए जा रहे हैं, पता है कि हो रहा है, लेकिन फिर भी उससे हम अपने आप को निकाल नहीं पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो क्या कुछ तरीके हैं जो हम लाइफ में अपना सकते हैं?
3: श्री जी की बातें सुनते हुए मुझे दो गाने याद आ गए. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो
2: किसने जाना.
3: जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते,
2: फिर नहीं आते.
3: तो जब उनकी बातें मैं सुन रही थी, मैं सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रही थी अपनी ही लाइफ के ऊपर, और कई सारी बातें मुझे रियलाइज हो रही थी उनकी बातों को सुनते हुए, कि लोग हमारे लाइफ में आते हैं. और जब मैं अपने जीवन की तरफ देखती हूँ, तो जन्म के साथ जो मेरा सफर शुरू हुआ, तो किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है, एकला चालो रे, शायद रविंद्रनाथ टैगोर की ये बात है. ये हमारा सफर अकेले का सफर है जो जन्म के साथ हमने शुरू किया. जन्म होने के बाद हमारे माता पिता उस सफर में वैसे ही जुड़ गए जैसे कि बिल्कुल शुरू के फर्स्ट लाइन में रनिंग करते समय हमारे साथ बहुत सारे साथी होते हैं. उसके बाद धीरे धीरे भाई बहन मेरे सफर में जुड़ते गए, मेरा सफर आगे बढ़ा, मैं स्कूल गया तो वहां पर मुझे दोस्त और टीचर मेरे सफर में जुड़ गए, थोड़ी दूर उन्होंने भी साथ दिया, उनके भी साथ को मैंने इंजॉय किया, मेरे पीछे के भाई बहन माता पिता थोड़ा सा पीछे रह गए और मैं आगे अपने दोस्तों के साथ निकल गया. आगे चल के मेरे जीवन में एक लाइफ पार्टनर आया, उस लाइफ पार्टनर के साथ मेरा जीवन शुरू हो गया, परंतु केवल लाइफ पार्टनर ही नहीं मेरे सफर के साथ ही थे, उसके साथ बहुत सारे रिश्ते और जुड़ गए और उन्होंने साथ चलना शुरू किया. धीरे धीरे देखा कि पीछे के रिश्ते धीरे धीरे छूटते गए, आगे के रिश्ते आगे बढ़ते गए, कुछ लोग साथ रहे, कुछ ने साथ छोड़ा. और जीवन का यही सच्चाई है कि हमारे सफर में हम अकेले आगे बढ़ते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं. एक बहुत सुंदर पुरानी कविता है जो लमाण जाति के लोग होते हैं ना, लमाण जाति के लोग, वो लमाण जाति के लोग किसी एक जगह पर रुकते नहीं है ज्यादा लंबा समय तक, वो अपना सामान अपने जानवरों के पीठ पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह पर सफर करते रहते हैं. हमारे जीवन का भी सफर ऐसा ही है, बहुत सारे लोग जुड़ते रहते हैं, छोड़ भी जाते हैं. अब इसमें ब्रेकअप की जहां तक बात है, वो व्यक्ति मेरे साथ कुछ समय रहा और कुदरतन उसका समय आया साथ छोड़ने का. वैसे ही मेरा कोई रिलेटिव, नजदीकी रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, बेटा, उनकी अचानक डेथ भी हो सकती है, वो दुख भी ब्रेकअप से कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि एक व्यक्ति आपको हमेशा के लिए छोड़कर गया. ब्रेकअप के बाद तो हमें पता होता है कि वो व्यक्ति जिससे हमने प्यार किया वो कहीं है और खुश है, इस बात की हमें खुशी होती है. लेकिन जो व्यक्ति हमें हमेशा के लिए छोड़कर जाता है, उसके दुख को भी ओवरकम करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, दोस्त हमारे छोड़कर चले जाते हैं, तो वो भी ट्रॉमा हमारी लाइफ में हम आगे लेके चलते हैं। तो क्या ऐसे समय पर हम मूव ऑन, जो कहा श्री जी ने, वो एक फंडा अपने साथ यादें लेकर हम आगे बढ़े, ना कि ये सोचे कि वो व्यक्ति ही मेरे साथ हो सकता है, उस व्यक्ति के साथ बुनी हुई यादें लेकर मैं आगे बढ़ूं, शिक्षाएं मैं लेकर आगे बढ़ूं, सफर तो मेरे अकेले का ही है जो मुझे अकेले ही तय करना है।
2: लेकिन हम उन्हें मिस भी कर रहे होते हैं सफर में, उनके साथ जो हम, अब मान लीजिए सिंपल चीजें हैं, आइसक्रीम खाने गए तो फिर अकेले गए तो फिर वो व्यक्ति याद आ जाता है, या फिर कोई और मोमेंट्स में हम अकेला खुद को फील करते हैं, किसी ने हमारी केयर करी होती है, बहुत ध्यान रखा होता है तो वो याद आ जाता है, या उसने कुछ चीजें गिफ्ट की।
3: आरुषि जी, मुझे आपको सुनते हुए ऐसे लग रहा है मैं बच्चों को सुन रही हूँ। नहीं, आइसक्रीम खाते समय मुझे याद आता है। बिल्कुल बिल्कुल याद आता है, जिनके साथ हमने समय बिताया क्यों हम उनको भूले, उन्हें भूलना नहीं है। यही मैंने कहा कि उनके साथ बुनी हुई अच्छी अच्छी यादें हम अपने साथ लेके जाएं, तो हमारी यादों में तो वो है ना, उन्हें भुलाया तो नहीं जा सकता है, बट अच्छी अच्छी यादें हमें जो एंटरटेन करेगी। ये पॉसिबल तो नहीं है, समझो कि किसी माँ का एक बेटा अमेरिका में है, उनका प्यार कम नहीं होता है, वो हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं लेकिन साथ नहीं है, फोन से या किसी और तरीके से वो कनेक्ट करते हैं। कोरोना में कई बार हमें मिलने को नहीं मिला कई लोगों से, बट उनकी दूरियां हमने महसूस नहीं की, वो हमारे पास थे, दूसरे कमरे में थे, 15-15 दिन हम नहीं मिले।
2: बिल्कुल ऐसा हुआ है।
3: सो ये हमें अपने आप को सिखाना होगा कि सफर तो मेरा अकेले का है, साथ में बहुत खूबसूरत यादें हैं और उन यादों के सहारे मुझे आगे बढ़ना है।
2: ओके, तो यादों के सहारे आगे बढ़ना है और मूव ऑन का भी हमने कॉन्सेप्ट समझा, जो हम बहुत आम भाषा में यूज करते हैं, जैसे दोस्त कहते हैं लेट्स मूव ऑन यार, अब तुम बहुत हो गया, मूव ऑन करो, या फिर इस जनरेशन में कई बार मानते हैं मूव ऑन इतनी बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं आराम से, लाइफ बहुत बड़ी है, उसे एंजॉय करना है तो मूव ऑन करना ही होगा। लेकिन जब हम थॉट्स रेगुलेशन के टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक सवाल आता है, मैंने किसी को कहते हुए एक्चुअली सुना था कि जब मैं, मतलब वो व्यक्ति शायद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुना रहे थे और वो 11th class या 12th class में होंगे, और उन्होंने बोला कि मैं अपनी चीजों में, हर चीज में रेगुलेशन पसंद नहीं करता बिकॉज इट ब्लॉक्स माय क्रिएटिविटी। अगर मैं उसको रैंडम जाने नहीं दूंगा थॉट्स को, या फिर लोगों को, या रैंडम एक्सपीरियंसेस नहीं करूंगा, तो मेरी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाएगी, मेरी लाइफ कोई जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग?
4: जब कल्पना जी बात कह रहे थे तो मुझे ये लाइन याद आई कि दूरियों का मतलब फासले नहीं हुआ करते, मगर ये एक सिंपल सी लाइन में कितनी खूबसूरत सी बात कह दी गई है कि सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस होने की वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि ये फासले हैं या हम बहुत जुदा जुदा हैं, इसका मतलब ये नहीं। और इसीलिए जब आप मूव ऑन कर भी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, इसका मतलब आप किसी से दूर जा रहे हैं या फिर आप उनको भूल जाना चाहते हैं। इसके लिए एक बहुत सुंदर शेर की लाइन याद आती है कि याद रखना ही सब कुछ नहीं है मोहब्बत में, भूल जाना भी बड़ी बात। यानी हम लोग ये सोचते हैं कि हम यही सोचते आए हैं कि मोहब्बत का मतलब ये है कि हम हमेशा उनको याद रखें, हमेशा उनकी यादें हमें सतानी चाहिए, और हो सकता है बॉलीवुड में ऐसे गाने बने हुए हैं, तुझे याद न मेरी आए किसी से अब क्या कहना। अब ऐसे गाने सुनकर आपको लग रहा होगा कि हाँ हाँ ये तो एक्चुअल मोहब्बत तो ये है, मगर कवियों ने बहुत सुंदर तरीके से, न सिर्फ ठीक है फिल्मों के हिसाब से गाने बनाए गए क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से कवियों को बोला गया था कि ऐसे गाने बनाओ, तो जावेद अख्तर साहब जैसे लोगों ने ऐसे गीत लिख दिए, मगर उन्होंने मार्मिक गीत भी लिखे हैं तो तार्किक गीत भी लिखे हैं, उन्होंने हमें समझानी देने वाले गीत भी लिखे हैं कि हम सही तरीके से अपने लाइफ को लीड कर सकें, उसके लिए भी हमें पॉजिटिव इंस्पिरेशन उन्होंने दिए हैं। और ये शेर व शायरी यही काम करती, जहां पर हमको पता चलता है कि मोहब्बत के मायनों को समझें, ठीक है एक व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, देयर इज नो डाउट अबाउट, बट उसका एक टाइम फ्रेम है, वो हमारे लाइफ का सिर्फ इतने ही चंक का हिस्सा बन सकते थे, अब वो किसी और के लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं या उनकी आगे की जर्नी कहीं और लिखी हुई है, ये समझना आवश्यक है। बट मैं वो आइसक्रीम खाते हुए याद आए, अच्छी बात है याद आए, बट वो याद आएंगे तो हमें उदास नहीं होना है, उन यादों को आते समय याद दिलाना है अपने आप को पॉजिटिवली कि वाह इतना समय उन्होंने मेरे साथ आइसक्रीम खाया, इतनी अच्छी बात है, ये लम्हात तो मैंने साथ में गुजारे
2: और
4: सुंदर पार्ट है मेरे लाइफ का, इट इज अ ब्यूटीफुल मोमेंट इन माय लाइफ एंड आई सेलिब्रेटेड एंड आई एक्नॉलेज कि हाँ ये बहुत ही खूबसूरत समय रहा है मेरे लिए। अब वो जिस की भी जिंदगी में है लेट्स अज्यूम, तो उनके लिए भी वो इतनी ही खुशियां दे, उनके लिए भी वो इतने खूबसूरत पल हो, ये दुआएं हैं मेरी। अगर वो कहीं और चल चुके हैं या समझ लें अब वो देहांत हो गया, फिजिकल बॉडी के रूप में वो हमारे साथ नहीं है, तो उनकी यात्रा जहां कहीं पर भी हो वहां पर भी उनकी यात्रा अच्छी हो, वहां पर भी वो खुशियां ही बांटे, उनको खुशियां मिले, ये दुआएं मैं कर सकता हूँ। उसकी एवज में अगर मैं सैड हो जाऊं, हाय मेरे साथ तो आइसक्रीम खाया पता नहीं अब मैं अकेले आइसक्रीम खा रही, तो आप अपने लिए भी पेन क्रिएट कर रहे हैं और हो सकता है शायद उनके लिए भी पेन क्रिएट कर रहे हैं। और ये शायद भले कर्म के जो चीजें हम फिलोसफी में सुनते हैं आप उसके हिसाब से उस पर विश्वास रखें या ना करें, बट इन दिस मोमेंट आप क्योंकि उस चीज को पॉजिटिवली नहीं देख रहे हो, आप अपने लिए पेन क्रिएट कर रहे हो, इसलिए मूव ऑन करना जरूरी है कि आप अपने पेन को खुद क्रिएट कर रहे हैं,
2: खुद क्रिएट कर रहे हैं।
4: तो ये मेरे हाथ में है कि मैं अपने दर्द पर मरहम लगाना चाहता हूँ या फिर उस दर्द को खुरेदना चाहता हूँ बार बार, तो ये सेल्फ इंफ्लिक्टिंग हार्म है। मैं अपने आप को हार्म करता हूँ तो ये चीज होता है। अक्सर घाव जब भर रहे होते हैं तो जब घाव सूखता है, जब भी सूखती है वहां पर तो खुजली होती है और जितना आप जाएंगे उतना वो घाव फिर से खून बहने लगता है उससे। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं जब इलाज करते हैं तो चिकित्सा कर्मी कहते हैं कि आपको स्क्रैच नहीं करना है,
2: नहीं करना है,
4: उसके ऊपर मरहम लगाइए। अगर आपको स्किन ड्राई होता है तो स्क्रैचिंग होता है, तो इसके लिए आप मरहम लगाइए, उस पर तेल लगाइए या कोकोनट ऑयल लगाइए, मॉइस्चराइजर, ये बोला जाता है। ये हमारे मन के लिए भी है, हम फिजिकल इंजुरीज के लिए तो ऐसा करते हैं, बट अगर आपको मन के ऊपर भी ऐसे घाव हैं तो उसके लिए मरहम लगाना आना चाहिए और ये चीज सीखना पड़ेगा। और सेल्फ रेगुलेशन की जब आप बात कर रहे हैं, ये इसी प्रकार का हीलिंग है। हम उन थॉट्स को क्रिएट करें जो हमें राहत दे, ऐसे विचारों को क्रिएट नहीं करें जो हमें और आहत करें, और आहत देना या राहत देना ये हमारा ही अपना मन कर रहा है, इसलिए रेगुलेशन करना बहुत आवश्यक है। अगर आप अनचेक्ड छोड़ देते हैं अपने मन को, जैसे आप कह रहे थे बहुत सारे लोग आर्टिस्टिकली अपने एक्सप्रेशंस को देने के लिए कहते हैं कि नहीं हम रेगुलेट नहीं कर सकते, हमें अनचेक्ड रहने की जरूरत है। अनचेक्ड रहने की जरूरत तब है जब आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, मगर आप जब अपने जीवन के इन चीजों को डील कर रहे हैं वहां पर अगर आपके मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं तो वहां रेगुलेट करने की जरूरत है। और कवियों ने यही चीज की है, जो ये शेरो शायरियां मैंने अभी सुनाई है आपके सामने, ऐसा नहीं है कि उनके ब्रेकअप्स नहीं, उनके ब्रेकअप्स को भी उनने पॉजिटिव तरीके से उसके लिए चीजें लिखी। तो यहाँ ये बात पता चलती है कि वो क्रिएटिव जीनियस अपने मन के विचारों की दिशा को सकारात्मक ओर ले चले। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरे भाई का लड़का है मेरा भतीजा, और मैं अक्सर ये बात एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, मेमोरी पावर अच्छी है, और वो इस लाइन को बार बार याद करता है। वो बोलता है इफ यू हैव गुड मेमोरी यू शुड हैव गुड मेमोरीज, अगर आपकी स्मरण शक्ति अच्छी है तो आपके अंदर स्मृति में अच्छी चीजें होनी चाहिए। जीवन में दुर्घटनाएं भी घटती हैं मगर अगर आप उसे याद करते रहेंगे बार बार तो वही चीज आपकी स्मृति पटल पर अंकित रहेगी, और जो चीज मैं बार बार करता हूँ वही आदत बन जाती है, वो छप जाती है। इसलिए अच्छी चीजों की आदत डालें, अच्छे विचारों की आदत डालें, अच्छे विचारों को बार बार रिपीट करें, यही सेल्फ रेगुलेशन है। नकारात्मकता से थोड़ा दूर हो जाएं, इतना ही तो करना है।
2: बहुत सुंदर लाइन है, मुझे लगता है याद रहेगी। इफ यू हैव गुड मेमोरी यू शुड हैव गुड मेमोरीज, तो वो अच्छी यादों को जीना जरूरी है, लेकिन उदासी के साथ नहीं, एक सेटिस्फेक्शन के साथ कि यू हैव एंजॉयड दैट, आपने वो समय भी एंजॉय किया, आगे भी करेंगे, अभी भी करेंगे। बहुत सुंदर, और मुझे लगता है बहुत नटशेल में आपने ये बात समझा दी है। कल्पना जी, क्योंकि हमारा जाने का भी समय हो रहा है इस एपिसोड से, तो मैं चाहूंगी कि कोई आपको क्लोजिंग रिमार्क या कोई ऐसी बात आप जो ऐड करना चाहें इसमें, साथ साथ क्या कुछ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्रैक्टिकली मेडिटेशन के माध्यम से जो हमें हेल्प करे इस सिचुएशन में।
3: श्री जी की बातें सुनते हुए मुझे कुछ बातें याद आ रही थी। मेरी एक फ्रेंड से मैं मिली, उसने मुझे कहा कि माई लाइफ माई चॉइस, जो मेरा जीवन है मेरे जीवन की चॉइसेस भी मेरी अपनी होनी चाहिए। मैंने बोला कैसे? कहा कि मेरे लाइफ में जो भी लोग आते हैं मैं उनको वेलकम करती हूँ, और जो जाते हैं उनको कह भीड़ कम हो गई, जिनकी मेरे जीवन में आवश्यकता नहीं थी वो मेरे जीवन से चले गए। सो आओ तो वेलकम, जाओ तो
2: भीड़ कम,
3: हाँ आवश्यकता नहीं है, कोई और जुड़ जाएगा। सो यस, लास्ट में हम यही याद रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं कि मेरा जीवन मेरी चॉइसेस होनी चाहिए, और मेरी चॉइसेस में जैसे कि श्री जी के भतीजे ने कहा कि अगर मेरी मेमोरी अच्छी है तो मेरी मेमोरीज में अच्छी बातें होनी चाहिए, अच्छी मेमोरीज होनी चाहिए। सो दिस इज वंडरफुल, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और मैं इसे याद रखूंगी और अपने साथ लेकर चलूंगी। आइए 1 मिनट के लिए हम रुक जाते हैं, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं आज के सेशन पर, और जो कुछ बातें हमने की जरा उनको हम रिवाइज करते हैं, रिवाइंड करते हैं कि बहुत सारी सुंदर बातें निकली। हमने ब्रेकअप के बारे में बात किया, ब्रेकअप के बाद कैसे मूव ऑन करना है उसके बारे में बात किया, एंड देन रिश्तों में कैसे नई ताजगी लानी है उसके बारे में हमने अच्छे अच्छे विचार किए, मेमोरीज जो हमें साथ ले जानी है, जो लोग आते हैं उनको कैसे अपने लाइफ में ऐड करना है, और जो जाते हैं उनको कैसे गुड बाय कहना है। तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर कोई मेरे रिश्ता टूट जाता है या कोई ऐसी डेथ हो जाती है, मेरे अपनों की मृत्यु हो जाती है, सो एक बहुत सुंदर अभ्यास है कि ऐसे समय पर हम एक गुड बाय लेटर बहुत प्यारा सा उनको लिखें, चाहे वो किसी की मृत्यु भी हुई है, चाहे कोई रिश्ता भी टूट गया है या ब्रेकअप भी हुआ है, तो एक बहुत सुंदर गुड बाय लेटर लिख के उनसे मिले, प्यारा सा लिखा हुआ लेटर उनको दे, खुद पर्सनली उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और उनको बहुत खुशी से अलविदा कहे, अलविदा कहे। आज सुबह मैंने किसी को अलविदा कहा, एक सिस्टर आए थे इजराइल से जहां पर अभी युद्ध चल रहा है, वो यहाँ काफी समय रहे और अब जाते समय उनको दुख हो रहा था इस स्थान को छोड़कर जाते वक्त। सो जाना तो पड़ेगा ही, परंतु अलविदा कहना बहुत जरूरी है। सो अलविदा दोस्तों, आप भी अपने जीवन में खुश रहे, आबाद रहे, न बिसरे न याद रहे, ये कहावत है, न बिसरे न याद रहे। धन्यवाद दोस्तों।
2: बहुत सुंदर कहावत, बहुत सुंदर कविताएं और बहुत सुंदर इंग्लिश की कोटेशन, मुझे लगता है सब कुछ आज हमने बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में समझा, और अगर उसे याद रखें या अपने पास लिखकर भी रख लेना तो एट मोमेंट जब हम ये चीजें भूल जाती हैं हमें ट्रैक पे ले आएंगी ये वापस। एंड ये जो कॉन्वर्सेशन है जितनी प्रैक्टिकल होती होती आर्टिस्टिक भी होती है आप दोनों के साथ, वो बड़ा ही मजा आता है सुनने में और याद करने में भी आसान हो जाता है। तो इन सभी बातों के लिए, हमारे साथ हमें गाइड करने के लिए, हमें हेल्प करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।
4: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि ये जो लव यू जिंदगी कार्यक्रम में हम हर एक अपनी जिंदगी को आसान बनाने के सफर में हैं, और हम एक दूसरे का सफर आसान बनाए, बेहतर बनाए, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, और जिंदगी को बहुत ही प्यार से अगर कहना है, सच्चे दिल से कहना है कि लव यू जिंदगी, प्यार है मुझे तुमसे, तो इस कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा, रेडियो मधुबन के साथ जरूर बने रहिएगा। फिलहाल लेते हैं इजाजत, रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।

0: 19वीं सदी के आखिरी 3 दशकों और 20वीं सदी के पहले दशक में भारत को साम्राज्यवादी वर्चस्व और एंग्लो ईसाई औपनिवेशिक शासन से आजाद कराने के लिए अंतिम संघर्ष की नींव रखी जा रही थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वर्ष 1875 में वंदे मातरम के जरिए देश को एक शक्तिशाली मंत्र दे दिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धारा में प्रवाहित होते हुए इस गीत वंदे मातरम ने 150 वर्षों से भी अधिक समय तक राष्ट्र के भाग्य को गढ़ने का कार्य जारी रखा। भिकाजी कामा और बिंदु घोष, सिस्टर निवेदिता, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के हृदय में ये एक ज्वाला के रूप में धधकता रहा और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। 1908 में महाराष्ट्र के अमरावती में एक सभा को संबोधित करते हुए महान स्वतंत्रता सेनानी अरबिंदो घोष ने भी वंदे मातरम गीत की महिमा की।
1: मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि यह गीत वंदे मातरम भारत के सभी हिस्सों में बेहद लोकप्रिय हो गया है। इसे बार बार गाया जा रहा है। इस राष्ट्रगीत को ही मैं अपने भाषण का विषय बना रहा हूं। यह गीत केवल एक राष्ट्रगीत नहीं है, जैसा कि यूरोपीय राष्ट्र अपने गीतों को मानते हैं। यह असीम शक्ति से परिपूर्ण एक पवित्र मंत्र है। यह मंत्र हमें आनंद मठ के रचयिता द्वारा प्रदान किया गया है, जिन्हें एक प्रेरित ऋषि भी कहा जा सकता है। यह मंत्र कोई मनगठन तो रचना नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन मंत्र का पुनरुद्धार था, जो एक व्यक्ति नवकिशन की गद्दारी के कारण लगभग विलुप्त हो गया था। बंकिम चंद्र के इस मंत्र को उनके अपने समय में उचित सराहना नहीं मिली थी। तब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा समय अवश्य आएगा जब संपूर्ण भारत इस गीत के गायन से गूंज उठेगा, और उस भविष्यवक्ता के वचन चमत्कारिक रूप से सत्य सिद्ध हुए। उस समय इस गीत का वास्तविक अर्थ इसलिए नहीं समझा गया क्योंकि तब लोगों में सच्ची देशभक्ति का अभाव था। उस समय की देशभक्ति का अर्थ केवल इतना ही था कि भारत को इंग्लैंड और अन्य देशों

0: वो देशभक्ति का एक प्रतीक, समझौता चाहने वालों के लिए चेतावनी और एक ऐसा मंत्र था जिसने संघर्ष की ज्वाला प्रज्वलित की। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में मैडम भिकाजी कामा ने सावरकर और उनके साथियों को प्रतिनिधित्व करते हुए पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। सावरकर, कामा और श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किए गए इस ध्वज पर वंदे मातरम शब्द प्रमुखता से अंकित थे, जो सावरकर पर इस गीत के गहरे प्रभाव को दर्शाता था।
1: दीदी, आपने मुझे अनेक वीर सेनानियों के किस्से सुनाए, लेकिन अब तक श्याम जी वर्मा के बारे में कुछ बताया नहीं है। वे कौन थे?
2: ओहो बन्नो, पहले तो तुम्हारी प्रशंसा करनी होगी।
1: क्यों क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया?
2: अरे मेरी प्यारी बहना, तुम्हारी लगन और जिज्ञासा की तारीफ करना चाहती हूँ कि तुम कितना ध्यान पूर्वक इस ऐतिहासिक कथा को सुन रही हो। श्याम जी कृष्ण वर्मा ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने न केवल देश विदेश में अंग्रेजों से मुक्ति का वातावरण बनाया, बल्कि क्रांतिकारियों की एक पूरी पीढ़ी का मार्गदर्शन भी किया। इसमें विनायक सावरकर से लेकर मदन लाल ढींगरा तक एक लंबी श्रृंखला है, इसलिए उन्हें क्रांति गुरु भी कहते थे। हो भी क्यों ना, जब जन्म ही क्रांति के बीच हुआ था।
0: वो 1857 का साल था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। 10 मई को दिल्ली से 40 मील उत्तर पूर्व में मेरठ के गैरिसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। धीरे धीरे उसकी आग बढ़ती जा रही थी। ये लपटें गुजरात के अहमदाबाद, सौराष्ट्र, सूरत, गोधरा, नांदेड़ एवं दाहोद जैसे शहरों तक भी पहुंच चुकी थी। तभी अक्टूबर के महीने में कच्छ जिले के मांडवी गांव के संस्कृत विद्वान श्री कृष्ण वर्मा के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो और कोई नहीं, श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। पिता संस्कृत के विद्वान थे तो माँ गोमती देवी भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के अनुरूप जीवन शैली में रची पसी थी। आरंभिक शिक्षा गांव में होने के बावजूद बालपन में ही श्याम जी को संस्कृत का अद्भुत ज्ञान हो गया था। उन्होंने घर में ही भारतीय वाङ्मयी के संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया। जब वो 11 वर्ष के थे तब माँ उन्हें सदा के लिए छोड़कर चली गई। दादी ने देखभाल की। स्कूल की पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा के लिए श्याम जी मुंबई चले गए। वहां विल्सन कॉलेज में उनका दाखिला हुआ। धीरे धीरे यहाँ भी उनकी कुशाग्र बुद्धि और संस्कृत के ज्ञान की खूब चर्चा होने लगी।
3: श्याम जी, तुम तो संस्कृत के बड़े विद्वान हो। इन दिनों मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती आए हुए हैं, उनसे मिलने नहीं चलोगे?
4: हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलूंगा।
0: ये साल 1875 की घटना है, जब श्याम जी की भेंट स्वामी दयानंद सरस्वती से हुई। उनके प्रवचन सुनने के बाद आर्य समाज की विचारधारा ने उन्हें काफी प्रभावित किया। वो आर्य समाज द्वारा किए जा रहे वेदों के भाष्य अनुवाद से जुड़ गए। स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य बनने के बाद श्याम जी ने पूरे देश में उनकी शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए दौरे किए। काशी में उनका भाषण सुनकर काशी के पंडितों ने उन्हें पंडित की उपाधि दे दी। ऐसी उपाधि पाने वाले वो पहले गैर ब्राह्मण थे। इसी वर्ष लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रमुख मोनियर विलियम भारत आए थे। वो ऐसे संस्कृत विद्वानों से मिलना चाहते थे जो अंग्रेजी भी जानते हों। उनकी मुलाकात युवा श्याम जी से हुई।
5: आप तो

0: अद्भुत है संस्कृत का इतना ज्ञान, मैं स्तब्ध हूँ। आप लंदन क्यों नहीं आते, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में?
1: मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ, बहुत खर्च होगा।
0: आप एक बार घर वालों से विचार विमर्श कर लीजिए, फिर मुझे जवाब दीजिएगा।
2: श्याम जी की पत्नी भानुमती के पिता एक बड़े व्यापारी थे। भानुमती ने अपने पिता से बात की।
3: पिताजी, लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा हासिल करने का आमंत्रण मिला है।
1: किसे मिला है?
3: आपके दामाद जी को मिला है।
1: अच्छा, फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया है?
3: वो इस दुविधा में है कि कैसे जाएंगे, बहुत खर्चा आएगा और वो कहां से होगा। फिर भी मोनियर जी ने सोच समझ कर जवाब देने को कहा है।
1: ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूं, लेकिन श्याम जी को बुरा तो नहीं लगेगा?
3: मैं उन्हें समझा लूंगी।
2: इस तरह भानुमती के पिताजी ने श्याम जी कृष्ण वर्मा को लंदन भेजने की व्यवस्था की। साल 1878 में वो इंग्लैंड चले गए। लंदन में कुछ दिन मोनियर के सहायक के रूप में काम करने के बाद 1879 में उन्होंने बीए करने के लिए बालियोल कॉलेज में प्रवेश लिया। पढ़ाई के साथ वो निजी स्तर पर संस्कृत का अध्ययन भी निरंतर करते रहे। बीए के पश्चात उन्होंने एमए और बारेट लॉ की पढ़ाई पूरी की। लंदन में रहकर ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय थे। उनकी नियुक्ति ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापक के पद पर हो गई थी। ऑक्सफोर्ड में वो संस्कृत के साथ भारतीय छात्रों को गुजराती और मराठी भी पढ़ाया करते थे। प्राध्यापक के रूप में कार्य करते हुए श्याम जी ने वकालत की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने बर्लिन कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 7 साल लंदन में रहने के उपरांत साल 1885 में वो भारत लौट आए और मुंबई में वकालत शुरू की।
4: वाह दीदी, श्याम जी की कहानी तो बड़ी दिलचस्प लग रही है, आगे क्या हुआ बताओ ना।
5: थोड़ा धैर्य रखो बन्नो, बताती हूँ। श्याम जी ने वकालत शुरू कर दी थी, लेकिन अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर हो रहे जुर्म उन्हें विचलित कर रहे थे।
4: फिर क्या हुआ दीदी?
5: श्याम जी को वो सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके सामने कोई विकल्प भी नहीं था। वे वकालत छोड़कर मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर रतलाम चले गए।
2: रतलाम पहुंचने के बाद श्याम जी रियासत के दीवान बन गए। कुछ दिन वहां रहने के उपरांत साल 1893 में वो राजस्थान के उदयपुर चले गए। वहां राज्य काउंसिल के सदस्य बने। उदयपुर में 3 वर्ष रहने के बाद जूनागढ़ गए और वहां के दीवान का पद संभाला। परंतु जूनागढ़ में तैनात एक अंग्रेज से विवाद हो गया। उनके मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति नफरत पैदा हो गई। वो नौकरी से इस्तीफा देकर मुंबई वापस लौट गए और वकालत शुरू कर दी। श्याम जी एक संवेदनशील और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति समर्पण भी अटूट था। उन्होंने हर कदम पर भारतीयों का अपमान देखा था, इसलिए उनके स्वाभिमान रक्षा के लिए श्याम जी ने समाज को जागृत करने का संकल्प किया। सबसे पहले अपने साथी वकीलों का एक समूह बनाया और ऐसे भारतीयों के समर्थन में मुकदमा लड़ना आरंभ किया जिन पर पुलिस अत्याचार करती थी और बिना किसी अपराध के जेल में ठूस देती थी।
5: जानती हो बन्नो, ये साल 1898 की बात होगी। पुणे के प्लेग गवर्नर कमिश्नर रैंड की चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, बाद में फांसी भी दे दी गई, लेकिन उसकी गूंज पूरे देश में फैल गई। उन्हीं दिनों तिलक जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनको श्याम जी अपना आदर्श मानते थे।
4: श्याम जी वर्मा को बड़ा धक्का लगा होगा ना दीदी? कुछ किया नहीं इस पर?
5: ऐसा हो सकता था क्या? श्याम जी और वकीलों के समूह ने तिलक जी की गिरफ्तारी के विरोध के अलावा चापेकर बंधुओं पर मुकदमा चलाने के तरीके पर गहरी आपत्ति जताई थी, क्योंकि चापेकर बंधुओं पर चला मुकदमा एक औपचारिकता था। वकीलों के समूह ने महाराष्ट्र कांग्रेस से भी आपत्ति दर्ज कराने का आग्रह किया। कांग्रेस ने आवेदन तो दिया, पर विरोध के लिए खुलकर आगे ना आ सकी। उन्हीं दिनों स्वामी श्रद्धानंद मुंबई आए। श्याम जी की उनसे भेंट हुई और संघर्ष की योजना बनी।
6: क्यों ना देश भर के उन संघर्षशील नौजवानों को संगठित किया जाए जो अपने स्तर पर अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र अभियान चला रहे।
7: हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है।
6: ठीक है, फिर मैं बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र की यात्राओं पर निकलता हूँ और युवा क्रांतिकारियों से संपर्क करने का प्रयास करता हूँ।
2: योजना के तहत श्याम जी निकल पड़े और उन्हें अपने मकसद में सफलता भी मिली। पंजाब के क्रांतिकारियों का बंगाल और महाराष्ट्र से संपर्क बना और इसमें श्याम जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन श्याम जी के मन में कुछ और भी चल रहा था। वो लंदन में रह रहे भारतीय नौजवानों का स्वाभिमान जगाना चाहते थे, जिन्हें अंग्रेजों का अपमान सहने की आदत पड़ चुकी थी। इसलिए उन्होंने दोबारा से लंदन लौटने का निर्णय लिया।
4: दीदी, अब क्या होगा? श्याम जी तो फिर विदेश चले गए।
5: ओ मेरी प्यारी बन्नो, अब वे पहले वाले श्याम जी नहीं रहे थे। इस बार लंदन वे देश के स्वतंत्रता संग्राम के एक सिपाही की तरह गए थे।
4: वो कैसे दीदी?
5: समझाती हूँ। श्याम जी विदेश में रहने वाले युवाओं में देश प्रेम की लौ जागृत करना चाहते थे, इसलिए लंदन में उन्होंने तीन काम आरंभ किए। पहला, वहां रहने वाले सभी भारतीयों को एक सूत्र में पिरोने का। दूसरा, लंदन में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का। और तीसरा, भारतीयों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक समाचार पत्र निकालने का।
2: श्यामजी कृष्ण वर्मा ने साल 1905 के फरवरी महीने में लंदन में द इंडियन होम रूल सोसाइटी नाम के एक संस्था का गठन किया। श्याम जी इसके संस्थापक अध्यक्ष बने और इस केंद्र को नाम दिया इंडिया हाउस, जो 65 क्रॉमवेल एवेन्यू हाईगेट में स्थित था। इसे एक छात्रावास का रूप दिया गया था, जिसमें 25 छात्रों को रहने की व्यवस्था थी। औपचारिक उद्घाटन 1 जुलाई को सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन के हेनरी हाइंडमैन द्वारा हुआ। इस अवसर पर दादा भाई नारोजी, लाला लाजपत राय, मैडम कामा, लंदन पॉजिटिव सोसाइटी के शिस्वनी और हैरी, एस आर राणा, विनायक दामोदर सावरकर, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और लाला हरदयाल उपस्थित थे। इंडिया हाउस का सारा खर्च श्याम जी स्वयं उठाते थे। देखते ही देखते ये भारतीयों की सभा संगोष्ठियों और क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रेरणा केंद्र बन गया। यहाँ होने वाली सभाओं में भारत की स्वतंत्रता पर खुलकर बातें होती। गांधी जी से लेकर भगत सिंह, गोखले भी यहाँ रुके। आगे चलकर अनेक क्रांतिकारी नौजवान श्याम जी के शिष्य बने, जिनमें मदन लाल ढींगरा और वीर सावरकर उनके प्रिय शिष्यों में थे। सावरकर ने श्याम जी के मार्गदर्शन में ही 1857 की क्रांति पर पुस्तक लेखन आरंभ किया था। इसके साल भर बाद ही भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित अनेक आंदोलनकारी बंदी बना लिए गए। खबर इंडिया हाउस भी पहुंची, सभा बुलाई गई, जिसमें अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी प्रतियां समाचार पत्रों को भी भेजी गई। इसके साथ ही श्याम जी ने विभिन्न देशों और नगरों में जाकर संगोष्ठियों में भाग लेना आरंभ किया। वो अब अंग्रेज सरकार के विरोध में खुलकर बोलने लगे थे। होलबोर्न टाउन हॉल में आयोजित यूनाइटेड कांग्रेस ऑफ डेमोक्रेट्स की संगोष्ठी में जोरदार भाषण दिया।
8: भारतीय स्वाभिमान को जगाना होगा, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह स्वतंत्र कराना होगा।
2: इंडिया हाउस इंडियन होम रूल संगठन की स्थापना के अलावा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम का अखबार भी शुरू किया, जिसकी कॉपियां पूरे यूरोप में भेजी जाती थी। उनके लेख आयरिश, जिनेवा और फ्रांस के कुछ समाचार पत्रों में छपने लगे। इंग्लैंड के समाचार पत्रों में उनकी गतिविधियों की आलोचना होने लगी। ब्रिटिश सरकार विरोधी लेखों को लेकर श्यामजी अंग्रेजों के निशाने पर आ गए, साथ में उनका इंडिया हाउस भी। सीक्रेट सर्विस के एजेंट उन पर नजर रखने लगे, उन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। इस कारण श्यामजी ने इंडिया हाउस की जिम्मेदारी वीर सावरकर को सौंपी और खुद पेरिस के लिए निकल गए। ये साल 1907 की बात होगी। हालांकि अंग्रेज सरकार ने उन्हें वहां भी परेशान करना नहीं छोड़ा। तब श्यामजी ने फ्रांसी राजनेताओं से संपर्क बनाना शुरू किया और वहीं से पूरे यूरोप के भारतीय क्रांतिकारियों को एकजुट करने, उनको मदद करने, कई भाषाओं में अखबार छपवाने आदि में मदद करने लगे। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक सीक्रेट समझौते के चलते उन्हें पेरिस भी छोड़ना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले श्यामजी स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा के लिए निकल गए।
4: क्या जेनेवा में वे भारतीय क्रांतिकारियों की मदद कर पाए?
5: क्या कहूं बन्नो, समय साथ नहीं दे रहा था उनका और ना अंग्रेज पीछा छोड़ रहे थे। जेनेवा में भी उन पर थोड़ी बहुत पाबंदियां थी, फिर भी जितना संभव था वे यूरोप में सक्रिय भारतीय क्रांतिकारियों की मदद करते रहे।
2: विश्वासघात क्या होता है, इसका आभास श्याम जी को नहीं था, जब तक कि उन्हें ये पता नहीं चला कि जिस प्रो इंडिया कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर ब्रीस से वो सबसे ज्यादा बातचीत करते थे, वो एक ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट थे। उधर मदन लाल ढींगरा ने जैसे ही भारत के सचिव वाइली की हत्या की, तो इंडिया हाउस अंग्रेजी सरकार के निशाने पर आ गया। आखिरकार 1910 में इसे बंद कर दिया गया। फिर 30 मार्च 1930 का वो काला दिन आया, जब जिनेवा में भारत के वीर सपूत श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जीवन की अंतिम श्वास ली। उनकी मौत पर लाहौर की जेल में बंद भगत सिंह और उनके साथियों ने शोक सभा रखी, जबकि वो खुद कुछ दिनों के मेहमान थे।
4: दीदी, क्या उनका शव जनेवा से भारत आ पाया?
5: बन्नो, श्यामजी को एहसास हो चला था कि उनकी अंतिम घड़ी कभी भी आ सकती है, इसलिए मरने से पहले उन्होंने जिनेवा की सेंट जॉर्ज सिमेट्री में 100 साल तक अपनी अस्थियां सुरक्षित रखने की फीस भर दी थी। बाद में उनकी पत्नी की अस्थियां भी उसी सिमेट्री में रखी गईं। उन्हें आशा थी कि जब भी देश स्वतंत्र होगा तो देशभक्त उनकी अस्थियां भारत ले आएंगे। 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन किसी को श्याम जी की अस्थियां भारत वापस लाना याद नहीं रहा। आखिरकार 22 अगस्त 2003 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनेवा की धरती से श्याम जी और उनकी पत्नी भानुमती की अस्थियां भारत मंगवाई। मुंबई से उनके जन्म स्थान मांडवी तक भव्य जुलूस निकाला गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अस्थि कलश लाया गया। इतना ही नहीं, श्याम जी के जन्म स्थान पर एक भव्य स्मारक क्रांति तीर्थ का निर्माण भी कराया गया। उस परिसर के श्याम जी कृष्ण वर्मा कक्ष में उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखा गया। ये स्थल वैसा ही बना जैसे कि श्याम जी कृष्ण वर्मा का लंदन में इंडिया हाउस होता था। 13 दिसंबर 2010 को इस मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित किया गया। कच्छ जाने वाले सभी देशी विदेशी पर्यटकों के लिए मांडवी का ये क्रांति तीर्थ एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है।
2: श्याम जी कृष्ण वर्मा का एकमात्र स्वप्न था स्वतंत्र भारत, जहां हर नागरिक स्वाभिमान से जी सके। अपने राष्ट्रवादी विचारों से उन्होंने न सिर्फ देश बल्कि विदेश में रह रहे भारतीयों के हृदय में क्रांति की लौ जगाई, जबकि खुद उनके हृदय में वंदे मातरम गीत एक अग्नि की तरह धधकता रहा, उनके जज्बे को बल देता रहा। उस एक ध्वनि ने पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा। वो केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत के आत्मगौरव, स्वाधीनता और एकता का शाश्वत प्रतीक है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे देश के एक अन्य वीर सपूत से। तब तक सुनते रहिए एक गीत, एक नारा और एक और इतिहास रचती कहानी के साथ। जय भारत, वंदे मातरम।

बजते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

ओम शांति। आज 16 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली में बाबा हम बच्चों को बेहद का वैराग्य दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, अब बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बची है। तो अब हम बच्चों को विशेष अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते रहना है। और ये अनुभव करने के लिए बाबा कहते हैं, संपूर्ण देही अभिमानी बनना पड़े। देह अभिमान बिल्कुल टूटा हुआ हो। बाबा ने आज युक्ति बताई है देह अभिमान को तोड़ने की। बाबा कहे, 108 चत्ती वाला कपड़ा पहन करके भी तुम रह सकते हो, क्योंकि तभी देह अभिमान टूटेगा। देही अभिमानी बनना है, अर्थात निरंतर ये स्मृति रहे कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। और देही अभिमानी होने से ही बाप की याद बहुत अच्छे से रहेगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छेछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। उत्तर है, निरंतर नशा रहे ये मिरुआ मौत मलुक का शिकार। हम मलुक, मलुक कहा है यहां फरिश्ता, तो हम मलुक बन अपने माशुक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नई लेंगे। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी और स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। ये किसने कहा? बच्चों ने। कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये किसने कहा? बच्चों ने। अति इंद्रिय सुखमय जीवन में आकर कहते हैं बच्चे भी। जब अति इंद्रिय सुखमय जीवन में आ जाते तब ये कहते हैं, बेहद का बाप आया हुआ है। इसलिए इस पतित दुनिया को

हम कैसे राज्य करेंगे? हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता, ये कोई नहीं समझते। भारत स्वर्ग था, उन जैसा कोई देश हो नहीं सकता। भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता। तुमको ये समझ में आता है? ये भारत तो अब कोई काम का नहीं है, कलयुगी अंतिम समय में तो कोई काम का नहीं है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। ये किसको याद नहीं आता? बाबा कहते यह किसको याद नहीं आता। हमारा भारत सबसे ऊंच है, सबसे प्राचीन है, तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। लेकिन सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सबकी बुद्धि में एक जैसा नहीं आता। इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है। बाबा कहते भारत के प्रति भी इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है। बेहद का बाप आया हुआ है, कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने हमारा राज्य भाग्य छीन लिया। वह हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है, नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है। श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है। हमारा भारत देश कितना छोटा था, स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे। हीरे जवाहरत के महल होंगे, वहां रावण होता नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। बाबा कहे इतना सुंदर भारत का मालिक मैं तुम्हें बनाता हूं, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। भल बड़े आदमियों से, जवहरियों से कनेक्शन था ब्रह्मा बाबा का, बड़े आदमियों से, राजा महाराजाओं के साथ, और जवहरियों से कनेक्शन था। वह नशा टूटे कैसे? देही अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा है, ये तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। ब्रह्मा बाबा ने कितना स्वयं के साथ अभ्यास किया होगा आत्म अभिमानी बनने का, देही अभिमानी बनने का। उसके लिए बार बार आत्मचिंतन करते कि ये शरीर छोड़ना है और फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, ये पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नहीं लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। ये तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। ये तो छीछी दुनिया है, इनको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़े। ये सारी दुनिया को देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है। अभ्यास तो करना पड़े ना, ये शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है, साक्षात कर लिया है। अब ये देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापस जाना है, बुद्धि योग वहां लगाना होता है। एक दो को यही सुनाना है मन मना भव। ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है। बल गीता तो बहुत पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं, ये किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बची है, अब बाकी थोड़ा ही समय है। ऐसे ऐसे अपने को बहलाते

खुशी में आना है, पुरानी दुनिया को भूलने के लिए अब बहुत उड़ी रही है, ऐसे अपने को बहलाते हुए खुशी में आना है। ये तो सब खलास होना है, निरुआ मौत मलुक का शिकार। हम मलुक बन, फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। ये आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, है भी साधारण परंतु ऊंचते ऊंच है। ऊंचते ऊंच बाप इतना साधारण रीति आकर हमें समझाते हैं। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, कल्प कल्प आते हैं, ये तो छीछे दुनिया है, ऐसी ऐसी बातें करनी होती है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। ये शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पड़े हैं, हम भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए हैं उतना और कोई ने नहीं किया है। जितना जप तप हम भारतवासियों ने किया उतना किसी और ने नहीं किया है। जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की है, पहली पहली भक्ति भी आरंभ की है, और वही ज्ञान योग में भी तीखे जाएंगे क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, सचमुच भट्ठी में बैठे हैं, वह संबंध अटूट हुआ है, और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वह सुनते सुनाते हैं तो पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं, तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, ब्रह्मा बाबा बैठ माला बनाते थे, फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे, तीन चार नंबर वाले भी निकल गए, एकदम जाए प्रजा में पड़े। अब तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ ये कोर्स पढ़ते हो, बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, घर गृहस्थ में भी रहते हैं और ये कोर्स भी उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते ये पढ़ना, इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम भी गाया हुआ है तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, है तो गोप भी, लेकिन कन्याओं का कन्हैया या गोपिकाओं का गोपाल, तो बाबा कहते हैं है तो गोप भी क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, ये लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे, ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास है, उन्होंने आगे जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्व गुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, हम पापी कपटी है, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, पर कृपा नहीं करनी है। जो भगवान के आगे गाते हैं कि हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, पर कृपा नहीं करनी है। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही करनी होती है। इतने सुंदर बात बाबा ने कहा, खुद के ऊपर करो, यानी खुद का जीवन ऐसा बनाओ। तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो, अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। शाम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, यह तो भक्ति मार्ग में कहते हैं। मरते थे फलाने की कृपा हुई बच गए, मर जाते थे लेकिन फलाने की कृपा हुई बच गए, उनके आशीर्वाद से। महात्मा आदि के हाथ पकड़ कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए, यहां तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात नहीं।
मन मना भव का अर्थ है ना, मन मना भव का अर्थ है ना। मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठ योग के सैंपल देखने हो तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो, वहां हठ योगियों के बहुत सारे पोजेस दिखाए हैं। यहाँ तो कितने आराम से बैठे हो, बुद्धि में है हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं। वहां ही अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। दो हाथ से ही ताली बजती है, एक धर्म है तो मारामारी नहीं होती है। अभी है कलयुग, कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्य की वृद्धि कितनी होती रहती है, भारत की धरती नहीं बढ़ती है। धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं। वहां मनुष्य बहुत कम होंगे, स्वर्ग में मनुष्य बहुत कम होंगे, दुनिया तो यही होगी। दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी, तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, बाप की श्रीमत पर, योग बल से और बाप की श्रीमत पर हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे, आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है ना, आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है ना। सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, ये नहीं दिखाते कि आत्मा में खाद पड़ती है। कहते हैं प्रकृति के तीन गुण सतो रजोतम, लेकिन ये खाद आत्मा में पड़ती है ये नहीं कहते हैं। पहले गोल्डन एजेड थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। चंद्रवंशी, अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं, गोल्डन सिल्वर कॉपर फिर आयरन। बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ी है, वह निकले कैसे, सतो से तमो बनी है, फिर तमो से सतो कैसे बने। समझते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु यह तो हो नहीं सकता। बाबा कहे परंतु यह तो हो न सके, गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते हैं, कोई तो नेमी हो जाते हैं, नहर पर ही जाकर स्नान करते हैं। तुमको बाप कहते हैं ये नियम रखो, कौन सा, बाप को याद करने का, याद का स्नान व यात्रा करो। कौन सा स्नान करना है, याद का स्नान व यात्रा करो। ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा भी सिखलाते हैं, बाप ज्ञान देते हैं, इनमें योग का भी ज्ञान, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है, दोनों ज्ञान है। आत्मा में ज्ञान है, योग का भी ज्ञान है, सृष्टि चक्र कैसे चलता है उसका भी ज्ञान है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं, योग को जानते ही नहीं। हठ योग समझ लिया है, योग आश्रम तो ढेर है, मन मना भव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास यह ज्ञान नहीं है। अब 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ है, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसे होती है, ये राजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़ी जाएंगे, ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेगी, थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे, सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियां ढेर जहां तहां होती रहेगी। जैसे मंदिर टिकाने निकलते जाते हैं, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी, घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी। वृद्धि को पाते जाएंगे, इसलिए आखिरन इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी। सबके पास बाप का पैगाम जाना है।
तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अभी यह प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है। बाबा कहते अभी यह प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है तो गांव गांव में दिखाना पड़ेगा। वह अच्छी रीति उठाएंगे, शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वह कैसे आते ये किसको भी पता नहीं है। शिव पुराण आदि में यह बातें हैं नहीं कि कैसे शिव आते हैं। यह बातें तुम सुनते हो, सुनने के समय अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हैं। अच्छी रीति पॉइंट्स धारण होंगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, परंतु सब पॉइंट्स किसको धारणा नहीं होगी, सब पॉइंट्स किसको धारण नहीं होती है। भाषण करके आएंगे फिर ख्याल में आएगा, अर्जुन ये पॉइंट्स भी समझाते थे तो अच्छा था। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वह झट बताएंगे, भाषण कर फिर विचार करेंगे, हमने सब पॉइंट्स ठीक समझाई। विचार करने बैठेंगे, हमने सब पॉइंट्स ठीक समझाई, अर्जुन ये पॉइंट्स भूल गए हैं। बैठ करके बाबा कहे भाषण करने के बाद सोचना चाहिए, क्या समझाया क्या नहीं समझा, क्या भूल गए। पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी है, यह है सिर्फ अभी के लिए, फिर ये खत्म हो जाएगा। इन आंखों से जो कुछ अभी देखते हो फिर सत्युग में यह नहीं होगा। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिलता है, अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं जो आत्मा धारण करती है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। ये ज्ञान कोई में नहीं है कि मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान कोई में नहीं है। इस शरीर द्वारा ये करता हूं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रखना, इसमें मेहनत है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बार बार बाबा कहे भले ये दुनिया खत्म होनी है लेकिन बच्चों को खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया, तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है, हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे, वे तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकाले माला बनाए तो सब कहेंगे फलानी बच्ची।